0: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर रंजनी, जिसमें आपने सुना उस्ताद मुस्ताक हुसैन खान का राग पराज में गायन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे। पहले हिंदी में, उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने 8 अधिसूचनाएं जारी की। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी समेत कई पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का भी अनुरोध किया जाएगा। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अधिक परिवारों तक पाइप से रसोई गैस पहुंचाना है। वर्तमान में देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र वैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग कराता है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का जिक्र किए जाने के बाद जारी की गई। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
2: The impact of climate change.
3: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए भी आमंत्रित किया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। दो क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफी प्रमुख है। भारत के दो मैचों में 3 अंक हैं और अगले दौर में पहुंचने के लिए उसे कम से कम ड्रॉ की जरूरत है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 566.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह की ठीक 6:10 और पूरे 15 सेकेंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के ठीक 6:40 होने को है। आइए अब सुनते हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के विचारों पर आधारित चिंतन।

सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का जन्म कोलकाता में एक बंगाली परिवार में हुआ था। बैनर्जी ने स्वाधीनता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सन 1905 में बंगाल प्रांत के विभाजन का विरोध करने वाले सुरेंद्रनाथ सबसे प्रमुख सार्वजनिक नेता थे। पूरे बंगाल व भारत में आंदोलन और संगठित विरोध, याचिकाओं और व्यापक जन समर्थन के क्षेत्र में बैनर्जी के अग्रणी होने के कारण ब्रिटिश को अंत में मजबूर होकर 1912 में विभाजन के प्रस्ताव को वापिस लेना पड़ा। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी स्वदेशी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वे विदेशी उत्पादों के खिलाफ भारत में निर्मित माल की वकालत करते थे। उनके इन्हीं गुणों ने उन्हें बंगाल के साथ ही पूरे देश में लोकप्रिय बना दिया था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को बंगाल के बेताज राजा के नाम से जाना जाता था। एक दिन सायंकाल कोलकाता में कोई बड़ी राजनीतिक सभा होने वाली थी। उस सभा को सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को ही संबोधित करना था। दुर्भाग्यवश उसी दिन प्रातः उनके बेटे की असामयिक मृत्यु हो गई। सभा बेहद महत्वपूर्ण थी। जल्दी ही यह दुखद सूचना चारों ओर फैल गई और इसके साथ ही सभा का स्थगन भी लगभग निश्चय सा हो गया। सभी ने सोच लिया था कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के पुत्र का निधन हो गया है। इतने बड़े आकस्मिक आघात के साथ उनके द्वारा सभा का संबोधन तो असंभव ही था। फिर भी आयोजकों ने सभा की तैयारियां की हुई थी। सभा में देश से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होनी थी। जैसे ही सभा का समय हुआ, वैसे ही सभा स्थल पर बैठी पूरी जनता अपनी आंखों से यह देखकर दंग रह गई कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी शांत कदमों से मंच की ओर बढ़े चले आ रहे थे। वे चुपचाप मंच पर पहुंचे और पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार उन्होंने बिल्कुल सहज भाव से सभा को संबोधित करना शुरू कर दिया। वे सभा को ऐसे संबोधित कर रहे थे मानो कुछ हुआ ही ना हो। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कुछ नेताओं ने जब उनसे अपनी यह जिज्ञासा प्रकट की तो वह सहज भाव से बोले, जाने वाले को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अपने कार्यों और संघर्ष से अंग्रेजों को यहाँ से अवश्य खदेड़ा जा सकता है। जो हमें छोड़कर जा चुका है वह दोबारा जीवित नहीं हो सकता। यह बोलकर उनकी आंखें नम हो गई। उनकी नम आंखों की नमी को वहां उपस्थित हर व्यक्ति ने महसूस किया और भीड़ की आंखें भी नम हो गई। पूरी भीड़ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे व्यक्तित्व को देखकर नम थी और उनके आगे अपना सिर झुकाए खड़ी थी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के विचारों पर आधारित चिंतन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रातः 7:30 पर आप सुनेंगे गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और इस खूबसूरत से कार्यक्रम को लेकर हाजिर रहूंगी मैं, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। तो सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग मेरे यानी अर्चना के साथ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 6:45 होने को है। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस। इसमें आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 22।

वन गमन के लिए तैयार श्रीराम माता कौशल्या से विदा ले चुके हैं, किंतु साथ जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ पत्नी सीता से माता की उपस्थिति में कुछ भी कहने में उन्हें संकोच हो रहा है। उधर समय अपनी गति से निकला जा रहा है, अतः सीता के लिए उनकी सिखावन भी अनिवार्य है कि यदि वो अपना और पति का कल्याण चाहती हैं तो उन्हें श्रीराम की आज्ञा मानकर घर पर ही रहकर सास की सेवा करनी चाहिए। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। पत्नी से श्रीराम का कहना है, हे सुमुखी, जब जब प्रेम से व्याकुल होकर माता मुझे याद करें तब तब उन्हें पुरानी कथाएं सुनाकर धीरज बंधाना। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु तथा वेदवाणी द्वारा सम्मत आचरण का फल बिना किसी क्लेश के तुम्हें मिल जाएगा। हठ करने के कारण गालव ऋषि तथा राजा नहुष जैसों ने केवल कष्ट ही सहे हैं, किंतु वन प्रवास में होने वाले घोर कष्टों का वर्णन सुनकर भी सीता ने अपना निश्चय नहीं बदला। वन मार्ग में नंगे पैरों में चुभने वाले कुश कांटे और कंकड़, दुर्गम पर्वत और खूह, रीछ बाघ भेड़िये सिंह आदि के डरावने गर्जन तर्जन की आशंका उन्हें तनिक भी विचलित नहीं कर सकी। वन के भीषण सर्पों, भयानक पशु पक्षियों तथा स्त्री पुरुषों को उठा ले जाने वाले राक्षसों के झुंड का वर्णन भी सीता को उनके निर्णय से नहीं डिगा पाए।

0: इसी के साथ रामचरितमानस का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। 6:55 होने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा।

0: श्वः चेन्नई नगरस्य समीपे कोवलम इत्यत्र आयोज्यमाने दक्षिण भारतस्य मुख्यमंत्रिणां सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। सम्मेलने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी चेत्येतेषां प्रदेशानां मुख्यमंत्रिणः भागं ग्रहीष्यन्ति। राष्ट्रीय परीक्षणाभिकरणेन स्वस्य परीक्षा दलस्य व्यापकं पुनर्निर्माणं कृत्वा 600 पुरातनान् विशेषज्ञान् निष्कास्य तेषां स्थाने नूतनाः विशारदाः संगृहीताः। शिक्षा मन्त्रालयेन सामाजिकान्तर्जालीय पटले संसूचितं यत् परीक्षा पत्राणां सूक्ष्म परीक्षणं सुदृढं विधातुं एनटीए संस्थया चतुःस्तरीय प्रश्नपत्र परीक्षण प्रणाली कार्यान्विता भविष्यति। वित्त मन्त्रालयेन संसूचितं यत् क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संघैः प्रवर्तमान वित्तवर्षस्य ऋण प्रदान क्षेत्रे तीव्र वृद्धिः अंकिता। मन्त्रालयानुसारं भारतीय रिजर्व बैंकस्य प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रणाल्याः अन्तर्गतं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकानां प्रदर्शनम् अतीव उत्कृष्टमासीत्। भारते तु विज्ञान विभागेन अद्य पूर्व पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु, पूर्व मध्य प्रदेशे तथा उत्तराखंड राज्ये कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टिः पूर्वानुमानं प्रकटितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना पहली सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्र सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, उप जिलाधिकारी, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी की भर्ती के लिए ली गई परीक्षाएं शामिल हैं। वहीं सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्यात वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द की गई हैं। झारखंड सरकार की अधिसूचनाओं में कहा गया है कि अनियमितता से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का अनुरोध किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा है कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम संगीतिका में स्वास्तिक भारत द्वाज द्वारा गाए भजन। इनके साथ संगत कर रहे थे हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी, सितार पर अकील अहमद, सरोद पर दानिश असलम और तबले पर पशुपति नाथ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। वक्त हो चुका है 7:32 और पूरे 30 सेकंड्स। साथ ही साथ वक्त हो चुका है आपके और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का, और इसे आज लेकर हाजिर हूं मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे उससे पहले सुनेंगे ये संदेश।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जी हाँ, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने खुद के प्यारे से कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग में, और मैं हूँ आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। लेकर आए बहुत ही खूबसूरत प्यारे प्यारे नगमे।

दोस्तों, कहते हैं ना कि कुछ पल गुजर जाते हैं, कुछ पल याद बन जाते हैं और कुछ पल तस्वीर बनकर हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, तस्वीर जिक्र चलेगा यहाँ पर आज तस्वीर का, क्योंकि आज है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि हमारी जो यादें हैं ना, वो तस्वीर के रूप में ही जो है ना, पल जो है वो यादों के रूप में, तस्वीरों के रूप में हमारे पास रह जाते हैं। आज का दिन कुछ ऐसे ही खूबसूरत पलों के नाम करते हैं। शुरुआत कर रहे हैं अपने इस दिन की इस खूबसूरत गीत के साथ और खूबसूरत बात के साथ, क्योंकि आज है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, यानी विश्व फोटोग्राफी दिवस। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी भी तेज क्यों ना भाग रही हो, कभी कभी एक पल को रोक लेना भी बेहद जरूरी होता है। क्योंकि वक्त तो आगे निकल ही जाता है दोस्तों, लेकिन एक तस्वीर जो हमेशा ठहरी रह जाती है एक याद के रूप में, एक खूबसूरत से पल के रूप में। जरा सोचिए, आपके फोन की गैलरी खोलते ही कितनी सारी कहानियां आपके सामने उभर कर आती हैं। कहीं बचपन की तस्वीर, कहीं स्कूल की यादें, कहीं दोस्तों के साथ बिताए हुए वो खूबसूरत दिन, वो खूबसूरत पल, तो कहीं परिवार की प्यारी से मुस्कुराहट वाला टाइम, कहीं कोई यात्रा की कुछ यादें, और कहीं ऐसी तस्वीर जिसे देखकर हम खुद ही कह देते हैं कि अरे ये फोटो कब खींची भाई, ये तो पता ही नहीं चला। यही जादू होता है फोटोग्राफी का। जी हाँ, फोटोग्राफी सिर्फ एक कैमरा दबाने का नाम नहीं होता है दोस्तों। फोटोग्राफी का मतलब होता है एक पल को महसूस करना, उसे देखना, फिर उसे हमेशा के लिए संभाल लेना, सजो कर रखना, अपने आगे आने वाले वक्त में उसे याद करने के लिए हम इन यादों को सजोते हैं एक तस्वीर के रूप में।

दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि एक ही तस्वीर को देखकर दो लोग बिल्कुल अलग अलग बातें महसूस कर सकते हैं। किसी के लिए समुद्र की तस्वीर सिर्फ समुद्र है, लेकिन किसी दूसरे के लिए वही तस्वीर उसकी पहली समुद्री यात्रा की याद हो सकती है। किसी के लिए किसी पुराने घर की फोटो सिर्फ एक पुरानी इमारत है, लेकिन किसी के लिए वो उसका बचपन है। इसलिए तस्वीरों की सबसे खास बात यह है कि तस्वीरें सिर्फ चीजें नहीं दिखाती, तस्वीरें तो भावनाएं दिखाती हैं। एक तस्वीर में खुशी हो सकती है, उत्साह हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, कभी कभी बिना कुछ कहे पूरी कहानी भी हो सकती है एक तस्वीर। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है।

दोस्तों, कभी सोचा है कि कैमरे से पहले की दुनिया कैसी थी? आज हमारे हाथों में मोबाइल है और मोबाइल में कैमरा। जी, एक मोबाइल एक ऐसी चीज हमारे हाथ लग चुकी है जिसने सब चीजों का स्थान जो है ना वो अपने में समेट लिया है। चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो आपके पास लिखित में कोई दस्तावेज हो, हर चीज का जो प्रारूप है वो आपके मोबाइल में आपको मिल जाता है। जहां चाहा कैमरा खोला, क्लिक किया और बस, फिर एक फोटो पसंद नहीं आई तो दूसरी क्लिक कर ली, दूसरी ले ली। लेकिन जरा सोचिए, कैमरे के शुरुआती दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं था। तस्वीर खींचना एक खास काम हुआ करता था दोस्तों। लोगों को कैमरे के सामने बैठना पड़ता था, तैयारी करनी पड़ती थी और तस्वीर बनने का इंतजार भी करना पड़ता था। याद है ना, वो नेगेटिव्स वाली जो फोटोज होती थी उनमें ही कई बार होता था कि हम देखने की कोशिश करते थे कि आखिर हम कैसे दिखते हैं उस तस्वीर में, उस नेगेटिव में जो असली में बनकर आएगी, उभर कर आएगी, एक रंगीन कागज पर उभर कर आएगी। आज हम एक सेकंड में 10 तस्वीरें खींच लेते हैं और फिर 10 में से 9 को तो डिलीट ही कर देते हैं। देखा, टेक्नोलॉजी ने कितना काम हमारा जो है ना वो आसान कर दिया है। कई बार 10वीं तस्वीर भी देख कर कहते हैं, नहीं यार, इसमें मैं ठीक नहीं लग रहा हूँ। फिर एक और फोटो लेते हैं, फिर एक और और आखिर में कैमरा रोल में 200, 250, 300, बहुत सारी जो तस्वीरें हैं वो निकल कर आ जाती हैं।

आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग और आपके साथ हूँ मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। फिलहाल यहाँ बात चल रही है आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे और बातें हो रही हैं तस्वीरों की। आज फोटोग्राफी की बात तो हो और सेल्फी की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल जी हाँ, सबसे इजी टास्क है सेल्फी लेना, बहुत इजी। एक जमाना था जब लोग कहते थे अरे भाई कोई हमारी फोटो खींच दो, अब जमाना कहता है भाई फोन देना जरा सेल्फी लेनी है। पहले फोटो खिंचवाने के लिए फोटोग्राफर्स चाहिए था, अब फोन सामने से सामने किया, एंगल देखा, लाइट देखी, बाल ठीक किए और बस एक क्लिक किया और लीजिए आपकी फोटो आ गई आपके हाथों में।

सही चीज। जी हाँ, ये वर्ड याद है। जब हम फोटो खिंचवाते हैं तो सामने जो फोटो हमारी खींच रहा होता है बंदा, फोटोग्राफर, कोई भी दोस्त यार सहेली, वो कहते हैं से चीज कहेंगे तो जो तस्वीर है आपकी बहुत ही मुस्कुराती हुई आएगी और बहुत ही खूबसूरत भी आएगी। लेकिन सेल्फी ने एक मज़ेदार चीज़ तो ज़रूर की है दोस्तों, इसी चीज़ के साथ साथ। अब हमें फोटोग्राफर से ज़्यादा ना चिंता होती है अपने कैमरे के एंगल की। ऊपर से फोटो कैसी है, नीचे से कैसी है, साइड से कैसी है, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फिल्टर कौन सा लगाए भाई। जी हाँ, एक बहुत बहुत अच्छी सी खूबी है, बहुत कमाल की खूबी है कि आप कैसे भी दिखते हो, नेचुरली आप कैसे भी दिखते हो, अच्छे, एवरेज, गुड, वेरी गुड, अगर आपका फिल्टर बढ़िया है तो आपके लुक्स में जो चार चांद आपका फिल्टर लगाता है, आपकी जो तस्वीर को और खूबसूरत जो बनाता है ना, उसके तो कहने ही क्या। लेकिन दोस्तों, फोटोग्राफी सिर्फ खूबसूरत चेहरों या शानदार जगहों की तस्वीरों को के लेने का ही नाम नहीं होता है। एक अच्छा फोटोग्राफर वो होता है जो उस चीज़ में भी खूबसूरती देख सके जिसे बाकी लोग नज़रअंदाज कर दें। जी हाँ, असली तस्वीर वही होती है जो आपको एक एवरेज सी चीज़ का एक खूबसूरत पहलू दिखाए, जैसे बारिश की खिड़की, सड़क किनारे चाय का कप, सुबह की पहली धूप, दादी के हाथों की झुरियाँ, बच्चे की खूबसूरत सी प्यारी सी मीठी सी मुस्कान, किसी पुराने घर की दीवार, पेड़ पर बैठी चिड़िया, या फिर सड़क पर दौड़ता हुआ कोई प्यारा सा बच्चा, ये सब भी जिंदगी के छोटे छोटे फ्रेम्स हैं। और कभी कभी यही छोटे फ्रेम सबसे बड़ी याद बन जाते हैं एक तस्वीर के रूप में।

आप सुन रहे हैं गीतो भरी गुड मॉर्निंग और आपके साथ हूँ मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। फिलहाल वक्त हो चुका है यहाँ पर 7:50 बस थोड़ा सा ही वक्त आपका और हमारा साथ और

दोस्तों आप जानते हैं कि रिश्तों की भी अपनी एक फोटो गैलरी होती है। कुछ लोग हमारे साथ तस्वीरों में होते हैं और कुछ लोग हमारी यादों में। कभी कभी पुरानी तस्वीर खोलते ही हमें वो लोग याद आ जाते हैं जिनसे हम बहुत समय से नहीं मिले हैं। एक तस्वीर अचानक हमें कोई साल पीछे ले जाती है। हम वही चेहरा देखते हैं, वही मुस्कान, वही जगह, और मन कहता है काश वो दिन फिर से आ जाए। लेकिन वक्त है ना, वापस कभी आया है किसी के लिए तो नहीं आता है। हाँ, उसकी तस्वीर जरूर हमारे पास रह जाती है, इसलिए शायद तस्वीरों की कीमत फोटो की खूबसूरती से ज्यादा उसमें छिपी कहानी की होती है।

तो दोस्तों, आज है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और इस पर आपको करना है एक बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा काम। अपने फोन की गैलरी खोलिए, लेकिन इस बार सिर्फ फोटोज देखने के लिए नहीं, यादें देखने के लिए। जी हाँ, वही पुरानी यादें ताज़ा कीजिए। अपने फोन की फोटो गैलरी में जाकर देखिए, ढूंढिए उन पलों को जो पल आप दोबारा से जीना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो पल वापस आ जाए। बेशक वापस ना आए, लेकिन उन पलों की यादें तो तस्वीर के रूप में आपके फोन में जरूर कैद होंगी। एक ऐसी तस्वीर ढूंढिए जिसे देखकर आपके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ जाए। मिल गई, आहा, इसी को तो ढूंढ रहे थे इतनी देर से। बस ये वाली जो बात है ना, वो आपके होठों पर आ जाए उस तस्वीर को देखते ही। और अब खुद से पूछिए, इस तस्वीर में ऐसा आखिर है क्या जो इसे मेरे लिए इतना खास बनाता है? मे बी कोई इंसान, मे बी कोई प्लेस, कोई जगह, मे बी कोई स्पेशल डे, या शायद सिर्फ और सिर्फ एक एहसास। बस इसी आशा के साथ कि आज आप उन पलों को ढूंढेंगे, उन्हें एंजॉय करेंगे, उन्हें जिएंगे, और इस आशा के साथ कि आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। आपसे दोबारा से मिलने का वादा लिए और जल्द ही मिलने का वादा लिए आपसे विदा चाहती है आपकी ये आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त। आप अपना ख्याल रखें और अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, आसपास स्वच्छता रखें। टेक केयर, बाय बाय।

0: इसी के साथ गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के ठीक 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
5: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1.74 करोड़ घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत CGD कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
4: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। NTA के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
6: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया TDPL द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर SIT की जांच और जारी CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर JSSC CGL परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की CID जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
4: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य

0: आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जाँच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। एसीबी के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जाँच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
2: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
0: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में

0: उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
1: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केवंझर और मरभज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेन देन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय के संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया, वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता। भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए, विकसित भारत के लिए ज्ञान लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा। बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू। ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉरफार्क की है और तस्वीर ली है विंस बर्टन ने। पत्र ने आइसलैंड में डैनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है, जो ज्वालामुखी से बहते गर्म लावा का विहंगम चित्र है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ने 6 इम्तहान मुलतवी करने और 17 इम्तहानात की CID तहकीकात का भी हुक्म दिया है। JPSC और JSSC इम्तहानात में मुबैना बेजाबतगियों से मुतालिक केसों के लिए हाई कोर्ट से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त की जाएगी। इन दोनों कमीशनों में दाखिली विजिलेंस शोबे भी बनाए जाएंगे, जबकि आला IAS अफसर अमिताभ कौशल की सरबराही में एक कमेटी इम्तहानात के निजाम में इस्लाहात की सिफारिश करेगी। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: दिल्ली सरकार के बदउनवानी मुखालिफ शोबे ने जल बोर्ड रिश्वत केस में दिल्ली के साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन और 5 दीगर अफराद को गिरफ्तार किया है। इनमें दिल्ली जल बोर्ड के साबिक CEO उदित प्रकाश राय भी शामिल हैं। हमारे नामा निगार ने बताया है कि दिल्ली जल बोर्ड के पानी को साफ करने के प्लांट्स को जदीद तर्ज पर ढालने और उन्हें बेहतर बनाने से मुतालिक टेंडर के अमल में मुबैना बेजाब्तगियों और मुजरिमाना साजिश के सिलसिले में ये गिरफ्तारियां की गई हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: विजिलेंस डायरेक्टोरेट की शिकायत पर इन अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। छानबीन के दौरान ये मालूम हुआ कि टेंडर के अमल में एक मखसूस टेक्नोलॉजी फर्म को फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से शरायत रखी गई थी, जिससे टेंडर का अमल महदूद होकर रह गया और एक मखसूस प्राइवेट कंपनी को नामुनासिब फ़ायदा पहुंचाया गया। इसके अलावा छानबीन से ये भी इंकशाफ हुआ कि टेंडर के अमल में हेरा फेरी करने के लिए कुछ अफराद मुबैना तौर पर कुछ सरकारी अहलकारों और बिचौलियों के साथ राबता कायम किए हुए थे। बदउनवानी मुखालिफ शोबे ने कहा है कि इससे कुछ अफराद और सरकारी अहलकारों के दरमियान मुबैना साजबाज का पता चलता है। रकम के लेन देन और इस जुर्म से हासिल होने वाली मुबैना रकम की पूरी जांच की जा रही है। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: मगरबी बंगाल में कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 अफराद की मौत हो गई, जबकि 6 जख्मी हुए। पुलिस जराये के मुताबिक आग लगने का यह वाकया रात देर गए 2 बजे के आसपास पेश आया। मालूम हुआ है कि 5 मंजिला इमारत की 3री मंजिल से घना धुआं उठता हुआ देखा गया। इब्तदाई छानबीन से मालूम हुआ है कि मस्कूरा होटल में आग बुझाने से मुतालिक कोई निजाम नहीं था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने बढ़ती हुई इलाकाई कशीदगी और इलाकाई और बैनुल अक्वामी सलामती को खतरे के ताल्लुक से तश्वीश का हवाला देते हुए अगले हुक्म तक ईरान के साथ तमाम तरह की तिजारत, कमर्शियल सरगर्मियां और माली लेन देन मुअत्तल कर दिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने वजारत खारजा में कम्युनिकेशन डायरेक्टर अफरा अल हामिली ने कहा है कि इस फैसले का मकसद बैनुल अक्वामी कानून और आलमी मेयारात के मुताबिक खित्ते के इस्तेहकाम की हिफाजत करना और बैनुल अक्वामी मालियाती निज़ाम की सालमियत को बरकरार रखना है। इस ऐलान से कबल UAE ने कहा था कि उसके फजाई दिफाई निज़ाम ने ईरान की तरफ से खलीज की तरफ दागे गए 2 बैलिस्टिक मिज़ाइल का पता लगाया था। बाद में वजारत दिफा ने बताया कि ये दोनों मिज़ाइल बहरी जहाजरानी को निशाना बनाने के मकसद से दागे गए थे जो समंदर में जा गिरे। UAE ने कहा है कि वो अमन और इस्तेहकाम के जरिए के तौर पर मुज़ाकरात, बाहमी तआवुन और इलाकाई हमाहंगी के तई अहदबस्ता है। ईरान की तरफ से UAE के इल्ज़ामात के सिलसिले में अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। ताहम ईरान ने इंतबाह दिया है कि आबनाए हुरमुज तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक अमरीका के साथ कोई अमन मुआहदा न हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुजाकिरात कारों की टीम से कहा है कि वो ईरान के साथ मुजाकिरात को तब तक के लिए रोक दें जब तक के ईरान किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं हो जाता। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी इंतजामिया ने ईरान के साथ सिफारती राबते के सिलसिले में कोई इख्तलाफ राय नहीं है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है कि जब आबनाए हुरमुज की सूरतहाल और अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के सिलसिले में इन दोनों ममालिक की तरफ से मुतनाज़ बयानात सामने आ रहे हैं। इस दौरान ईरान ने कहा है कि वो आबनाए हुरमुज को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमरीका 14 निकाती मुफाहमत नामे के तहत वादों को पूरा नहीं करता, जिसमें नाकाबंदी खत्म करना, ईरान के मुंजमद असासों को जारी करना और उसके तेल पर आयद पाबंदियों में नरमी लाना शामिल है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मशरकी और मगरबी उत्तर प्रदेश, मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। इधर शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, माहे, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में औसत से लेकर शदीद बारिश होने का इम्कान है।

0: ब्लॉक सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं, जहां गांव जेरियाब आ गए हैं और मामूल की जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। जाजपुर, केंद्रपाड़ा, बालासोर, केवंझार और मयूरभंज में भी सैलाब का पानी भर गया है और बहुत से लोगों को इमदादी अशिया, शेल्टर, खाने और पीने के पानी की किल्लत का सामना है। ब्रह्मणी और सालंदी दरियाओं में तुगयानी से बहरान बढ़ गया है, जबकि बैतरणी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। सैलाब से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है और मवेशियों के लिए चारे की शदीद किल्लत भी पैदा हो गई है। सैलाब से मुतासर इलाकों में एहतियात के तौर पर बहुत से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दाश की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम आज नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में FIH मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान का सामना करेगी। दोनों टीमें अगले राउंड के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। भारतीय टीम के पास 2 मैचों से 3 पॉइंट हैं और उसे क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 1 ड्रॉ की जरूरत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 2 मैचों से सिर्फ 1 पॉइंट है। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों ने कल नई दिल्ली में BWF आलमी चैंपियनशिप में शानदार जीत दर्ज की। मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रिया के कॉलिंस फिल्मोन को हराया, जबकि त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। लक्ष्य सेन ने पहले राउंड में ऑस्ट्रिया के कॉलिंस फिल्मोन को 16-21, 21-8 और 21-4 से शिकस्त दी। खवातीन के डबल्स में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी सीधे मुकाबलों में अमरीका की लॉरेन लैम और एलिसन ली की जोड़ी को 21-15 और 21-12 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। दूसरी जानिब खवातीन के डबल्स में कवि प्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की भारतीय जोड़ी बल्गारिया की स्टेफनी स्टोएवा और गैब्रियला स्टोएवा की जोड़ी से 21-7 और 21-14 से हारने के बाद इस चैंपियनशिप से बाहर हो गई। मर्दों के क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन आज अपनी दूसरी इनिंग्स कल के 4 विकेट पर 84 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। ये मैच श्रीलंका के गाल बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। कल शाम मैच खत्म होने पर सोनल दिनुशा और धनंजय दे सिल्वा क्रीज पर थे। इससे पहले भारतीय टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 193 रन पर आउट हो गई थी। इस तरह श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का निशाना मिला था। भारत ने पहली इनिंग्स में 462 रन बनाए थे, जवाब में श्रीलंका की टीम 284 रन ही बना सकी। सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 23 अगस्त को कोलंबो में खेला जाएगा। फुटबॉल में आज एसिड बंगाल FC का मुकाबला कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में 135वें डूरेंट कप के पहले सेमीफाइनल में स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली से होगा। यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों की नजर फाइनल में जगह बनाने पर होगी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया कौनैन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने ब्रिक्स ममालिक के वज़राए माहौलियात की मीटिंग से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार ने माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि ब्रिक्स की भारत की सदारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस नज़रिए से रहनुमाई हासिल करती है जिसमें तरक्की पजीर ममालिक और ग्लोबल साउथ के खदशात को एजेंडे में तरजीह दी गई है। अखबार इनकलाब ने वजारत दिफा के जरिए मुल्क सतह पर तैयार की जाने वाली 405 दिफाई मसनूआत की 6ठी फहरिस्त जारी करने से मुतालिक खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। जनूबी जोनल काउंसिल की 31वीं मीटिंग वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में जुमरात को तमिलनाडु में होगी, इस खबर को भी अखबारात ने अहमियत दी है।
1: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सरकार ने घरेलू PNG कनेक्शन में तेजी लाने के लिए तरगीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात कराने वाली एजेंसी ने 600 माहिरीन को हटाकर और नए माहिरीन को शामिल करके इम्तिहानात से मुतालिक अपनी टीम की तश्कील नौ की है। झारखंड सरकार ने तलबा के एहतजाज के तनाजुर में उन 44 भर्ती इम्तिहानात की फहरिस्त जारी की है जो बेजाबतगियों की वजह से मनसूख किए गए हैं। दिल्ली सरकार के बदउनवानी मुखालिफ शोबे ने जल बोर्ड रिश्वत केस में साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन और 5 दीगर अफराद को गिरफ्तार किया है। متحدہ عرب امارات نے ایران سے میزائل خطرے کا الزام لگاتے ہوئے اس کے ساتھ سبھی تجارتی اور مالی لین دین معطل کر دیے ہیں، اور نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹرلوین

0: में आज FIH मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 8:45 और 15 सेकंड हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज आप सुनेंगे नीता सूरमा द्वारा राग मिश्र भैरवी में ठुमरी व दादरा गायन। इनके साथ संगत करेंगे हारमोनियम पर बबलू खान और तबले पर शांति भूषण झा।

0: प्रेस चैनल ऑफ आकाशवाणी दिल्ली।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज से आराम 810 किलोहर्ट्ज पर सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

ये लोग गीत तुसी सुन रहे सी गायिका सुरेंद्र कौर ते प्रकाश कौर दियां आवाज़ां च। जी हाँ, मावां धीआं दी दोस्ती दी दूजी कोई मिसाल नहीं। उत्थे ही जो मनुख सिर्फ अपने लई नहीं सगों सारियां दी सोचदा है, सब दा भला करना चाहुंदा है ते औखे वेले लोकां दे कम च सहाई हुंदा है, उसनू रहिंदी दुनिया तक याद कीता जांदा है। ते अज ही कौमांतरी मनुखतावादी दिहाड़ा भी मनाया जा रहा है जो हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। जे इस दिन के इतिहास से झात पाइए तो 19 अगस्त 2003 इराक की राजधानी बगदाद विच संयुक्त राष्ट्र के मुख दफ्तर से बंब नाल हमला किया गया सी। इस भयानक हमले च 22 कर्मचारी मारे गए सन। उन्हां मारे गए कर्मचारियों की याद च संयुक्त राष्ट्र ने 2008 विच 19 अगस्त को मनुखतावादी दिवस नूं मनाउण दा ऐलान कीता सी। अपणिआं लई तां हर कोई जिउंदा ए, जो दूजिआं दे काम आवे, औखे समें सहायता करे, इही इस दिवस नूं मनाउण दा मकसद ए। देश ते कोई पीड़ पैण ते, संकट आउण ते, बीमारी, जंग जां कुदरती करोपी वेले अपनी जान नूं तली ते रख के लोकां दी मदद करना इन्हां कर्मियां दा मुख उद्देश हुंदा ए। विश्व मनुखतावादी दिवस की स्थापना 2008 विच कीती गई सी ते अधिकारक तौर ते इह दिन पहली बार 2009 विच मनाया गया सी। कौमांतरी मनुखतावादी दिहाड़ा उन्हां मनुखी कर्मियां ते सेवकां नूं सत्कार देण लई मनाया जांदा है जो संकट पैण ते अते जंगां विच

लोगों की मदद करते ने, वह किसी फरिश्ते तो घट नहीं। यह दिहाड़ा मनुखी अधिकारां की रक्षा करन प्रति लोगों नूं जागरूक करता है ते अजिहे बहादुर नायकां नूं याद करता है जो दूजियां नूं बचाउण लई अपनी जान की बाजी तक ला जांदे ने। यही हुंदी है असली सेवा जो दूजियां दे काम आवे। ते जदों असी कुल लोकाई की भलाई बारे सोचण लग पैंदे आ ते फिर दुनिया ते दुखां दा नामो निशान नहीं बचदा ते दिल खुशी नाल झूम उठदा है। ते आओ फिर सुनदे आ लोक गीत नरेंद्र बीबा की आवाज़ च, वगदी ए रावी माहीवे विच दो फुल पीले।

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 386.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 10 बजने को अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर तक पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य

0: स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। योजना के अंतर्गत पात्र सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान भी तैनात किए जाएंगे। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया टीडीपीएल द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर एसआईटी की जांच और जारी सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण प्रदान करने में तेज वृद्धि हुई है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण रूपरेखा के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का था। गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु की 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर को दूरदर्शी शासक बताया। संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार की व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन स्थगित कर दिए हैं। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत के 2 मैच से 3 अंक हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच ड्रॉ करना आवश्यक है। भारत ने अब तक वेल्स पर जीत दर्ज की है, जबकि उसे इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल्फ क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन आज श्रीलंका अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगा। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The government has approved an incentive scheme for promotion of domestic PNG connections aimed at bringing clean, safe and affordable piped cooking gas.

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम बात फूलों की।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सबका विशेष फोन इन कार्यक्रम बात फूलों की।

0: आज के इस कार्यक्रम का विषय है फूल वाले पौधों में कटाई छटाई, निराई गुड़ाई, उर्वरक प्रबंधन और संवर्धन। बारिश के इस मौसम में हमें अपने फूल वाले पौधों की कैसे देखभाल करनी है, क्या क्या उचित काम करने हैं जिससे हमें बढ़िया और गुणवत्तापरक फूलों की पैदावार मिले और अच्छा मुनाफा भी मिले। ये सावन मन भावन है और सुखद समीर चहू और बगियन में कोयल कूचत नाच रहे हैं मोर। बादलों से होड़ लेते फूलों की रंगीली छाया, मन मन में उल्लास भरा है, कुदरत की है अद्भुत माया। ये बारिश या मॉनसून, ये सावन हम सबका आस और विश्वास है, मगर साथ में कुछ कुछ मुश्किलें भी लेकर आता है। और अगर हम उसका निदान कर लें और इस समय में अपने फसलों की देखभाल कर लें सही तरीके से, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो हमें इस समय अपने फूल वाले जो पौधे हैं उनकी क्या देखरेख करनी है, ये है हमारा आज का विषय। और विशेषज्ञ हैं हमारे साथ डॉक्टर किशन स्वरूप, आप प्रधान वैज्ञानिक रहे हैं पुष्प एवं भूदृश्य निर्माण संभाग IARI नई दिल्ली में, और साथ में डॉक्टर MC सिंह, आप हैं प्रधान वैज्ञानिक पुष्प एवं भूदृश्य निर्माण संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है
1: जी। आपको भी नमस्कार, श्रोताओं को भी नमस्कार
0: जी। और आपने कहा श्रोताओं को नमस्कार, और ये है हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम। तो आप ही बताएं ना, श्रोताओं की भागीदारी के बिना ये कैसे सफल होगा? आप भागीदार बने, आपकी जो भी समस्या है फूलों से जुड़े, फूल वाले पौधों से जुड़े, इस समय हमें क्या काम करने हैं, कौन सी फसल फूलों वाली लगानी चाहिए आने वाले समय के लिए, कैसे हमें संवर्धन करना है फूलों का, नए पौधे तैयार करने हैं, ये तमाम काम आप कर सकते हैं और इनसे जुड़े प्रश्न आप पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। हमारा फ़ोन नंबर है 2342108282, और दूसरा फोन नंबर है 2342108383। और जो दिल्ली के बाहर से श्रोता हमें फोन मिलाएं, वो पहले दिल्ली का एसटीडी कोड लगाएं 0112342108201 2342108383। इन दोनों में से आप कोई भी लाइन आप लगा सकते हैं और अपने प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारा आज का विषय है कि इस समय बारिश हो भी रही है और इस समय हमारे फूल वाले जो पौधे हैं जो लगे हुए हैं उनकी हमें क्या देखरेख करनी है
1: जी। देखिए, आपने बगीचे में मोर को तो नचा ही दिया।
0: हाँ हाँ,
1: लेकिन मोर नाचता हुआ हाँ, और भी सुंदर लगेगा अगर उस बगीचे में फूल खिले।
0: क्या बात है।
1: तो आज हम जो बात कर रहे हैं, ये मौसम सावन का मौसम, बारिश का मौसम और बहुत ज्यादा पानी और मॉइस्चर का मौसम है
0: जी।
1: तो पहले तो हम बात करेंगे कि जो भी अपने गार्डन में फूल और उसके पौधे लगा रहे हैं, तो दो तरह के पौधे हैं। एक तो जो मौसमी पौधे हैं, तो पिछले मौसम के जो पौधे हैं वो तो खत्म हो रहे हैं
0: हाँ।
1: और जो मौसम पर्यंत पौधे चलते हैं वो लगे हुए हैं और उनमें बहुत ज्यादा बढ़वार इस मौसम की वजह से होती है
0: हाँ।
1: तो उसमें सबसे बड़ी सावधानी ये है कि उनकी कटाई छटाई करके उनको व्यवस्थित रखा जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ने से उनकी टहनियां टूट जाती हैं, फिर उनकी सेब खराब हो जाती हैं, सुंदर तक नहीं दिखती है। तो पौधे ऐसे उल्टे सीधे बड़े हुए दिखते हैं
0: जी।
1: तो हम सभी ने शब्द सुना होगा कि टॉपियरी, गोलाकार कटाई उनकी पौधों की कर देते हैं।
0: हाँ हाँ,
1: तो जब उनकी गोलाकार कटाई कर देते हैं, जैसे जैस्मिन के पौधे हैं, गुड़हल के पौधे हैं, या बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जैसे टेकोमा है, टेकोमा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उनमें बहुत सुंदर फूल आए रहते हैं। लेजिस्ट्रोमिया के पौधे हैं जो लोगों के गार्डन में लगे हुए हैं, और ये लेजिस्ट्रोमिया का पौधा ही एक ऐसा पौधा है इस बरसात में जो सबसे लंबी अवधि तक फूल देता है। तो आपने देखा होगा कि इसकी शाखाएं भी बढ़ जाती हैं बहुत ज्यादा। तो इसमें जो इस समय का समय है कि उस समय थोड़ा कटाई छटाई करके इनको सेप में रखने का समय है। दूसरा, आने वाले जो मौसम में के फूल हैं उनकी तैयारी का समय है। अच्छा, तैयारी का समय है दो तरीके से है, एक तो बीज बोकर नर्सरी

0: बनाने का समय है, और जिन पौधों से हम संवर्धन करके पौधे बना सकते हैं उसका समय है। अब उसमें जैसे गुलदाबदी है, गेंदा है, तो अगर गर्मी के बाद भी कुछ गेंदा के पौधे आपके बढ़ रहे हैं तो प्राय इस समय फूल तो नहीं देते, लेकिन उनकी बढ़वार बहुत होती है। अगर उससे कटिंग करके आप नए पौधे बना दें तो ये मौसम में एक तो जल्दी फूल देगा और अच्छा फूल देगा। दूसरा, आपको बाजार से बीज नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये संसाधन आपके घर में ही है, आपके बगीचे में ही है, तो
1: जी
0: इसकी कटिंग से आप नए पौधे बना सकते हैं।
1: बहुत
0: गुलदाबदी से भी नए पौधे आप बना सकते हैं, उससे तो बनाते ही हैं, उसका बीज तो होता नहीं है।
1: डॉक्टर साहब,
0: जी
1: आपकी बातों को सुन के जिज्ञासा लगातार बढ़ रही है और हमारे श्रोता भी लाइन पर आ चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो
0: खतरा हो। हेलो,
1: हेलो। हाँ नमस्कार, क्या नाम
0: सभी
1: है
0: को
1: आप
0: मेरा नमस्कार।
1: जी, नाम बताएं कृपया।
0: मेरा नाम अरुण है, मैं राजनगर एक्सटेंशन से बोल रहा हूँ।
1: हाँ अरुण जी पूछिएगा।
0: मैडम, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अभी ये मौसम जो है ये काफी ह्यूमिडिटी वाला है, तो इसमें हम अगर फूलों के संवर्धन को लेकर अगर मैं कुछ जानना चाहूँ तो मुझे कुछ जानकारी मिल सकती है?
1: जरूर मिल सकती है।
0: हाँ देखिए, बिल्कुल, अभी जैसे मैंने अभी अपने उसमें बता रहा था कि बहुत सारे पौधे हैं जिनका संवर्धन आप इस मौसम में दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो उनकी जो टर्मिनल शाखाएं हैं उसको काट कर आप कटिंग के रूप में लगा सकते हैं। दूसरा, उन शाखाओं में बिना काटे वहीं पर गोटी बना सकते हैं, जो मॉस ग्रास होती है और एक रूटिंग हार्मोन होता है, उसको थोड़ा सा बार को, उसकी छाल को थोड़ा हटाकर वहां पर थोड़ा रूटेक्स पाउडर लगाकर और मॉस से बांधकर, इसको पॉलीथीन से, टाइट पॉलीथीन से बांधकर, ध्यान रहे कि वो जो मॉस की ग्रास है उसमें थोड़ी सी मॉइस्चर होनी चाहिए। तो ये जो शाखा होती है ये रूट दे देती है और नया पौधा 15 से 20 दिन में स्वतः ही बन जाता है। और जब इसकी जड़ चल जाती है अंदर गांठ, तो उसको गांठ से पहले काट कर आप नया पौधा बना लेंगे। गुलदाबदी का मैंने बताया कि गुलदाबदी की कटिंग बनाने का, कटिंग से पौधे बनाने का ये बहुत अच्छा समय है। और जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास पुराने पौधे हैं गुलदाबदी के या गेंदा के या और भी जो एनुअल फ्लावर्स हैं उनकी कटिंग आप, जैसे डहेलिया है, अगर डहेलिया भी आपके पास है तो ये कटिंग बनाने का बहुत ही उत्तम समय है।
1: आपको
0: उसकी
1: जोड़ना
0: जो
1: चाहेंगे
0: 3 से 4 इंच
1: डॉक्टर
0: की कटिंग है उसको लगाने से रूटिंग पाउडर के साथ वो 15 से 20 दिन में रूट आ जाती है और नया पौधा बन जाता
1: साहब।
0: है।
1: जी
2: इसके साथ ही कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे श्रब्स है ना, श्रब्स में एक बोगनवेलिया बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, उसका टाइम अभी बहुत अच्छा चल रहा है प्रोपेगेशन का,
1: अच्छा जी
2: तो उसको कटिंग से भी लगा सकते हैं आराम से, और उसकी एयर लेयरिंग जैसे डॉक्टर साहब ने बताया गुटी भी बांध सकते हैं, तो कई तरीके से कर सकते हैं इसमें पौधे। जैसे हार्डवुड कटिंग बोलते हैं, सेमी हार्डवुड कटिंग, तो जिनकी जड़ें आसानी से नहीं होती उनकी गुटी बांध कर कर सकते हैं, और इसकी बहुत सारी वेराइटी होती हैं,
1: हाँ हाँ
2: तो
1: हाँ
2: जो अच्छा लगे किसान भाई या जो भी इन पसंद करते हैं वो कर सकते हैं अभी।
1: यानी कि ये जो ह्यूमिडिटी वाला मौसम है इसमें बहुत नमी है हवा में,
0: जी,
1: तो
0: उसका
1: हम
0: फायदा उठाया जा
1: फायदा उठाया जा सकता है। अरुण जी,
0: सकता
1: आप ये संवर्धन जो है आप जानना चाहते थे, आशा है कि आपको आपका उत्तर मिला होगा। हेलो
0: है। जी नमस्कार
1: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम क्या है?
0: जी, राजेंद्र बोल रहा हूँ जी, हिसार से जी, और डॉक्टर साहब को भी, विशेषज्ञों को भी नमस्कार
1: जी,
0: जी।
1: आपको भी
2: नमस्कार जी।
0: नमस्कार।
1: हाँ जी राजेंद्र
0: डॉक्टर
1: जी,
0: साहब से ये जानना था कि यह जो गुलाब की कलम भी क्या इसी महीने में अक्टूबर में लगाई जा सकती है, और दूसरा ये जानना था कुछ पौधे गुलाब के लगे उसमें जालीदार मकड़ीदार को ऐसा मच्छर को छलनी बना दिया, तो क्या इसके लिए कोई दवाई डॉक्टर साहब से ऐसे बताएं?
2: हाँ
1: और
0: देखिए, हाँ
1: दूसरा
0: जी
1: डॉक्टर साहब से ये भी जानना था कि कुछ सदाबहार के पौधे लगाए बरसात की वजह से या जल गए तो, या पानी ज्यादा जाने से जल गए या कैसे
0: हाँ
1: जल
0: देख
1: गई?
0: देखिए, जो पहला आपका प्रश्न था गुलाब के बारे में, तो जो गुलाब अपनी ही जड़ों पे चल जाते हैं उनकी कटिंग इस समय बनाकर आप लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो गुलाब का ऊपर वाला कटा हुआ हिस्सा है वो थोड़ा तिरछा कटा हुआ होना चाहिए ताकि उस पर पानी और फंगस ना रुके। दूसरा यह है कि जो आपके घर में देसी गुलाब है, अगर देसी गुलाब है तो उस

0: कटिंग लगाने का इस समय बहुत बढ़िया समय है, और ये पौधा जब चल जाएगा तो इस पे आप बडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से गुलाब आप अपने आप भी गुलाब बना सकते हैं, और इसका सबसे बढ़िया वो है। और दूसरा आपका ये है कि अभी आप 1 महीने तक इस गुलाब की कोई कटाई छटाई नहीं करें, जो भी गुलाब आपके पास है। तो इसमें पत्तियां क्योंकि पुरानी होकर झड़ेंगी, सूखेंगी, ब्राउन हो जाएंगी, सूखने लगेंगी, गिरेंगी, और ये फिर से फुटाव लेकर नए तरह से आएगा। तो इसको 15 से 20 दिन के बाद अगर इसकी कटाई छटाई आप करेंगे तो पौधा बिल्कुल नया हो जाएगा, जिसको हम विंटरिंग कहते हैं। और इसमें जो कीड़े
1: बीमारी
0: आपने बताए कि
1: मकड़ी।
0: मकड़ी लग रही है, तो इसको मकड़ी के लिए तो सबसे अच्छा घर का देसी इलाज है कि आप 100 ग्राम अदरक, 5 लीटर पानी में 100 ग्राम अदरक, 3-4 हरी मिर्चें और काली मिर्चें पीस कर इसको घोल को सड़ा दें, और इसमें नीम के पत्ते, आधा किलो नीम के पत्ते डाल दें, और फिर इसको आप छान लें। 10 से 15 दिन में ये आपका बहुत ही बढ़िया कीटनाशक तैयार हो जाएगा। और
1: हाँ
0: इसको आप 5 लीटर को बनाकर छान कर रख लें, और जब भी आपको ऐसा दिखाई दे कि कोई कीड़े मकोड़े आ रहे हैं तो आप इसको स्प्रे कर दें। एक तो रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक खरीदने से आप बचेंगे,
1: जी
0: और आपके जो क्यारियां हैं उनमें, सब्जी की क्यारियों में भी इसका जहर नहीं जाएगा।
1: जी
0: जी
1: और उन्होंने कहा कि सदाबहार के पौधे उनके सड़ गए।
0: हाँ, सदाबहार का जो मौसम है वो, एक तो इस समय बीज गिरने का मौसम होता है, तो अपने आप बीज गिर के दोबारा से पौधे जम जाते हैं। तो ये जो पौधा है सदाबहार का, कई बार एनुअल वार्षिक भी बिहेव करता है। तो अगर पौधा आप में, आपको देखना है कि वहां पर पानी का भराव नहीं होना चाहिए ज्यादा
1: जी
0: समय तक,
1: जी
0: तो
1: जी
0: पानी की निकास की व्यवस्था कर लें, ये पौधा अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: हाँ धन्यवाद राजेंद्र जी। हेलो हेलो
2: जी नमस्कार,
1: नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम क्या
2: मैं दिल्ली
1: है?
2: से बोल रहा हूँ। मेरा नाम संजय कुमार है।
1: जी संजय जी पूछिएगा।
2: एक्चुअली मुझे डहलिया बहुत पसंद है,
1: जी
2: लेकिन वो मुझे प्लांट में मिलता है, तो
1: हाँ
2: मैं चाहता हूँ कि उसका सीड्स खुद डेवलप करूँ, तो ये
1: अच्छा
2: मैं कैसे कर सकता हूँ ये
1: जी
2: मौसम
1: जी
2: में?
0: हाँ, देखिए डहेलिया जब आपका फूल दे देता है मार्च अप्रैल के महीने में, तो इसका क्या होता है कि पौधा एक तरह से खत्म जैसे होने लगता है। तो अप्रैल और मई के महीने में, यानी बहुत गर्मी से, बहुत ज्यादा गर्मी तक ना आप इंतजार करें, जब मौसम थोड़ा सा सामान्य ही रहता है, तो इसके बल्ब जो होते हैं, गांठ जो होती है पौधे के नीचे, उनको निकाल लें। और उनको निकाल कर आप एक काम करेंगे कि जो कोकोपीट बाजार में मिलती है वो बिल्कुल 100% ड्राई होनी चाहिए, उसके अंदर रख के और एक पॉलिथीन में गांठ बांध कर इसको आप वहां रख दें जहां आप फ्रिज में सब्जियां स्टोर करते हैं, और उसको रख के भूल जाएं आप। और जैसे ही सितंबर का महीना आए तो इस गांठों को सितंबर, 10 से 15 सितंबर के आसपास जमीन में इसकी बुआई कर दें।
1: जी
0: हाँ, तो सुनिश्चित करें कि जब फ्रिज से आप निकालें तो उन गांठों को 10 से 15 दिन सामान्य तापमान पर घर के किसी कोने में रखें, फिर उसके 10-15 दिन के बाद इसको प्लांटिंग कर दें आप। तो इससे जो फुटाव लेकर पौधे आएंगे, उनसे
2: जी
0: उनसे एक तो फूल भी ले सकते हैं, दूसरा उनसे कटिंग बनाकर और नए पौधे भी बना सकते हैं आप।
2: तो
0: तो
2: ये तो
0: इस
2: हमें
0: तरह से
2: पिछले साल ही
0: सुरक्षित कर
2: करना
0: सकते
2: था
0: हैं।
2: ना?
0: हाँ जी, तो अब की बार
2: अच्छा
0: जो आप पौधे खरीदें तो सुनिश्चित करें जब उनका फूल खत्म हो जाए मार्च अप्रैल में, तो उसके 10 से 15 दिन बाद उसकी गांठों को निकाल लें आप।
2: बल्ब को।
0: हाँ, और उनको छाया में 1 हफ्ते तक सुखा के, और उसको एक बहुत ही ड्राई चीज में, जैसे गांव में भूसा होता है, भूसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोकोपीट बिल्कुल ड्राई मिलती है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको एक पॉलीथीन में उसके साथ रख के गांठ बांध के और रखते हैं आप,
2: फ्रीज में।
0: बिल्कुल फ्रिज में रख दें जहां आप सब्जियां स्टोर करते हैं। तो आपको 10 गांठें भी आप बचा के रख लेंगे तो 10 से आपके कम से कम नहीं तो 200 पौधे तैयार हो जाएंगे।
1: जी शुक्रिया
2: अच्छा,
1: संजय
2: एक
1: जी।
2: एक बल्ब को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं?
0: नहीं, उसको काटना नहीं है।
2: अच्छा, उसी में से
0: हाँ,
2: निकलेगा अपने
0: उससे
2: आप।
0: 10-20 शाखाएं निकल के आएंगी जमीन के अंदर से,
2: ओके
0: फिर उनसे अलग अलग पौधे आप बना सकते हैं। हाँ
2: ओके
0: जी,
2: ओके थैंक यू।
1: जी शुक्रिया संजय जी, आपके सवाल ने डहलिया को प्यार करने वाले जो

0: भी हमारे श्रोता हैं, वो भी, उनके पास पर्याप्त समय है कि अगली बार आप स्वयं डहलिया के लिए आप बल्ब तैयार कर सकते हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते दीदी
0: नमस्ते
1: जी।
0: जी।
1: नमस्कार। हाँ, मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना बोल रहा हूँ।
0: जी लतीफ
1: मैडम,
0: साहब, पूछिएगा।
1: मेरा सवाल तो ये है, जो यहाँ कश्मीर में एक फूल बनता है, उसमें गुल अक्सब फूल होता है, वो बड़ा वाला फूल होता है, गुल
0: क्या नाम है उसका?
1: अक्सब।
0: गुले अख्ताब।
1: हाँ, वो तो सबसे फूलों से सबसे बड़ा फूल होता है, लंबा भी होता है और बड़ा फूल भी होता है।
0: अच्छा,
1: उसका
0: हाँ, कोई और दूसरा नाम बताएंगे आप? गुलदाबदी को तो नहीं कह रहे?
1: हाँ, वो तो बड़ा होता, लाल वाला होता है वो,
0: हाँ,
1: उसमें वो बीज निकलते हैं, उसमें वो तेल निकलते हैं।
0: अच्छा, नहीं,
1: हाँ, वो
0: सूरजमुखी तो
1: सूरजमुखी
0: नहीं
1: जैसा
0: है।
1: निकालते, यूनानी।
0: सूरजमुखी की बात तो नहीं कर रहे? सनफ्लावर की?
1: हाँ, फ्लावर, वो तो बड़ा बनता है, बड़ा वाला।
0: जी, आप बताएं, आप क्या पूछना
1: वो
0: चाहते
1: उसमें
0: हैं?
1: तो हम कैसा तैयार यहाँ कश्मीर में करेगा?
0: देखिए, अगर आप सनफ्लावर की बात कर रहे हैं तो
1: हाँ,
0: सन
1: सनफ्लावर,
0: हाँ
1: वही हुआ,
0: तो जो
1: उसी का।
0: हाइब्रिड हाइब्रिड सनफ्लावर होते हैं उससे बीज नहीं तैयार
1: हाँ,
0: कर
1: बड़ा
0: सकते हैं।
1: वाला।
0: हाँ, तो वो आपको बाजार से खरीदना ही पड़ेगा, उसका बीज आप तैयार नहीं कर पाएंगे।
1: ना
0: तो अगर अगर बीज से बनने वाली किस्म आप इस्तेमाल करते हैं तो बार बार आप उसका बीज रख के फिर अगली बार लगा पाएंगे। लेकिन जो
1: हाँ, सही बात
0: जो
1: है।
0: गार्डन गार्डन के लिए होता है सनफ्लावर, वो हाइब्रिड होता है और उसमें बीज नहीं बनता है। अगर बीज बनेगा आपके, क्योंकि आप आपका जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा क्लाइमेट है वहां पर, तो अगर वहां बीज बन
1: हाँ,
0: सकता है तो
1: बिल्कुल।
0: आप उसका ध्यान रखें कि उस बीज को आप देख लें और उसको संभाल के रख लें, क्योंकि आपके पास तो नेचुरल कोल्ड स्टोरेज है। तो एक बार जब बीज आपने घर में भी रख लिया तो कोल्ड स्टोरेज की जरूरत नहीं है, तो वो
1: हाँ,
0: निश्चित रूप
1: सही
0: से
1: बात
0: काम
1: है सर।
0: करेगा। हाँ जी
1: जी हाँ, सही बात है। यहाँ
0: जी
1: कश्मीर में ऐसा ठंड मौसम रहता है ना सर?
0: हाँ जी
1: हाँ, उसी समय मैंने बोला डॉक्टर साहब
0: हाँ
1: से मशवरा
0: हाँ नहीं,
1: करूँ।
0: उससे आप कर सकते हैं जी,
1: हाँ,
0: और अधिक जानकारी है तो वहाँ जो कृषि विज्ञान
1: थैंक
0: केंद्र
1: यू सर,
0: है
1: थैंक यू,
0: वहाँ से भी
1: या
0: संपर्क कर सकते हैं आप। हेलो जी, हम बात कर रहे थे, अभी बात चली रही थी संवर्धन की, और बात चल रही थी गुलदाउदी की, भी बात चल रही थी, जी। ग्लैडुलस का भी है, हम बात कर सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप?
1: इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा मैडम, अब ग्लैडुलस का समय आ रहा है।
0: जी, मैं माफी चाहती हूँ, हमारे श्रोता हैं हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, शिमला से। तो
0: हाँ राकेश जी, पूछिएगा।
1: मेरा विशेषज्ञ को नमस्कार।
0: जी
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: जी।
0: आपको भी।
1: जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम बीज जो है संभाल कर रखते हैं, तो उस संभाल के रखने से जब हम दोबारा उस बीज को लगाते हैं, तो उसको लगाने के समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए?
0: जी हाँ, देखिए, ये जो आप बीज रखते हैं तो सबसे बड़ी सावधानी तो ये रखनी है कि आपको बीज जो आमतौर पे घर का तापमान होता है उससे कम कम तापमान पर ही आप उसको रखें। दूसरा ये होता है कि जो कोई भी बीज है, सभी बीज अगर हम संभाल के उनको ठीक से नहीं रखते हैं तो उनमें जर्मिनेशन की जो प्रतिशतता है वो बहुत अच्छी नहीं होती है।
1: और जैसे
0: तो
1: मेरा एक
0: इसके
1: और इसमें एक
0: हाँ
1: चीज में और जोड़ना चाहता हूँ, जैसे हम बीज संभाल के रखते हैं, तो मतलब किस धातु में रखना चाहिए, और या कागज के रखना चाहिए, या डब्बे में, क्या किस तरह से मैं
0: नहीं,
1: बीज को
0: देखिए,
1: रखना चाहिए?
0: सबसे अच्छा तो है कि
1: शीशा
0: आप
1: की।
0: ऐसे ऐसे बर्तन में रखें कि जिसके अंदर मॉइस्चर ना जाए।
1: जी
0: तो इसके लिए अगर कांच का एयर टाइट बर्तन हो तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जब आप बीज निकालते हैं तो उसमें 8 से 12% जो मॉइस्चर होती
1: मॉइस्चर।
0: है उसको बनाए रखना जरूरी होता है। तो अगर आपका मौसम थोड़ा गीला हुआ और बीज ने मॉइस्चर सोख लिया तो वो खराब हो जाएगा, या गर्म हुआ मौसम तो अगर उसका मॉइस्चर उड़ गया तो खराब हो जाएगा। तो उस नमी को, जो बीज की अपनी नमी है जिस पे उसका जो अंदर से एंडोस्पर्म है वो जिंदा रहता है, उसको जिंदा रखने के लिए उस नमी को बनाए रखना जरूरी होता है। तो
2: जी
0: इसलिए कांच के एयर टाइट बर्तन में आप उसको रखें पूरे मौसम में।
1: जी
0: हाँ जी
1: जी
2: हाँ
1: जी धन्यवाद जानकारी।
2: धन्यवाद आपका। हेलो जी, हम बात कर रहे थे ग्लैडुलस की, डॉक्टर साहब।
3: जी
2: जी
3: हाँ, तो ग्लैडुलस के बारे में कहूँगा मैडम कि ग्लैडुलस एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकप्रिय फूल वाला पौधा है जो मुख्य रूप से घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कनफ्लावर के रूप में जाना जाता है। ये बहुत सारे फंक्शंस में काम आता है, तो इसको कॉमर्शियल खेती करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे प्रजातियों का चयन, बाजार में फूलों की मांग, किसान की आर्थिक दशा, खेत की मिट्टी, बाजार में लाने के लिए साधन, फूलों को रखने के लिए छोटे स्तर पर कूल सेंटर तथा उनके घन कंदों की आवश्यकता, उपलब्धता, सिंचाई के साधन, समाज में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समय, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप किसानों को चयन करना है कि हम इसकी खेती कर सकते हैं कि नहीं।
2: क्या ये सही समय है?
0: हाँ बिल्कुल, देखिए जो अभी आप देख रहे हैं कि बल्ब, जो बल्ब होता
2: हम
0: है
2: इस पर
0: उसको,
2: जरूर चर्चा
0: हाँ
2: करेंगे।
0: उस
2: श्रोता हमसे जुड़
0: जी
2: रहे हैं। हेलो।
4: हेलो नमस्कार
2: हाँ जी, नमस्कार,
4: जी।
2: नाम बताएं प्लीज।
0: नमस्कार धर्मवीर जी, आपकी आवाज पहचानी गई।
4: तो
0: जय हिंद।
4: आज तो आपने हमारे विशेषज्ञ गैलरीज के साथ लाए हैं,
0: हाँ
4: तरुण
0: जी
4: जी को मेरा नमस्कार।
3: नमस्कार जी।
4: डॉक्टर साहब, एक तो हमें ये पूछना है, मैं धर्मवीर गंगे दिल्ली से बोल रहा हूँ,
3: जी
4: कि हमारे पास तो छत पे रखने वाले तो पौधे तो बहुत है, सब तरह के हैं, पर हमारे पास जो अपने छाए वाले पौधे जो हैं जिसमें फूल आए, खुशबू मिले, खुशबू के लिए हम छत पे जाना पड़ता है और नीचे रहें तो नहीं, या नीचे के लिए छाए के पौधे में फूल वाले पौधे कौन से लें। और दूसरा आपने बताया था एनपीके, एनपीके हमें कितने दिन बाद रिपीट करना चाहिए, 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद, और साथ में डीएपी डालना जरूरी है कि नहीं है, ये दो बातें आप बताइए।
0: देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जैसा आपने सवाल पूछे हैं बहुत सारे, कि आपको छाया वाले पौधे भी चाहिए, फूल वाले पौधे भी चाहिए, और हर समय फूल बने रहें, और आपको ना तो ऊपर जाना पड़े ना नीचे जाना पड़े, फूल ही आपके पास आ जाएं। तो इसके लिए सबसे अच्छा प्रयोजन होता है कि आप ऐसी लताओं वाले पौधे लगाएं, क्रीपर लगाएं, जो आपके छत से उतरे और आपकी बालकनी में भी आ जाएं और नीचे भी दिखाई दें। छत में जाए तो वहां से दिखें, आंगन में हो तो वहां से दिखें, और आप बालकनी में हो तो वहां से दिखें। तो इसके
4: गमले में
0: लिए,
4: लगाने वाले?
0: हाँ इसके लिए देखो, बोगेनविलिया की भी ऐसी किस्में हैं जिनकी बेल चलती है और आपको फूल देती रहती है। इसके साथ साथ देखिए, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जैसे पायरोस्टीजिया है, एलामेंडा है, इनके फूल आते हैं, और देखिए रंगून क्रीपर है, आप उसको कितना ही 4 मंजिल तक ले जाएं, हर बालकनी में ले जाएं, हर जगह ले जाएं, आप वहीं पर देना। माधवी लता है, देखिए सबसे कॉमन फूल है माधवी लता। अच्छा, गुड़हल की बात करें, आप गमलों में लगा लीजिए गुड़हल को, कहीं भी रख लीजिए, बालकनी में रख लीजिए, छत पर रख लीजिए, तो वो हमेशा फूल देगा। इसी तरह से
3: भगवान लगा सकते
0: हाँ,
3: हैं।
0: बोगेनविलिया आप लगा सकते हैं। तो इस तरह के जो पौधे हैं, देखिए अब गुड़हल में इतनी सारी किस्में आती हैं जिनको चाइनीज गुड़हल भी कहते हैं, तो इस तरह के पौधे आप लगा सकते हैं। तो आपको हर मौसम में, हर समय ये हरा भरा भी रहेगा, छाया भी देगा, और जब फूल का टाइम आएगा तो फूल भी देगा।
2: जी
0: तो इस तरह के पौधे, जैसे ईस्टर लिट्रिया है, उसका फूल बहुत सुंदर लटकता है, और वो जितना आप उसको साइज देना चाहें उतना दे सकते हैं, गमले में भी रख सकते हैं, 3 मीटर का पेड़ भी बना सकते हैं, और उसको आंगन में लगाएंगे तो बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसी तरह से टैबूबिया के पौधे हैं, आपको सर्दियों में छाया नहीं चाहिए, धूप चाहिए, तो वो पत्तियां नहीं होंगी पूरी सर्दियों में 4 महीने, और जैसे ही सर्दियां खत्म होने वाली होंगी तो वो आपको पहले फूल देगा और पत्तियां बाद में देगा। तो
2: जी
0: इस तरह के पौधे आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने जो परिवेश है आपका, घर का, आंगन का, छत का, उसको सुंदर बना सकते हैं, लेकिन आपको पौधों का चुनाव अवश्य ही करना पड़ेगा। जी
2: और दूसरा प्रश्न था उनका उर्वरक के बारे में।
0: हाँ जी, आपने
2: जी
0: पूछा एनपीके की मात्रा, जो कि घुलनशील मिश्रण होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का, और उसमें जो तत्व

0: तत्व हैं वो इतने ही होते हैं सामान्य रूप से जितने की तत्व की पौधों की आवश्यकता होती है। तो पानी तो आप हर समय देते ही देते हैं, और बहुत अच्छा होगा पौधा डांस करेगा, नाचेगा, बढ़वार करेगा जब आप उसको हर पानी की बूंद के साथ ये खाद देंगे। तो इसको हमेशा दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सूक्ष्म तत्वों की बात आती है कि जब आप गमलों में पौधों लगाते हैं तो काफी समय के बाद जो सूक्ष्म तत्व कम होने लगते हैं, तो अगर उसको इस सिंचाई जल में 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से 1 हफ्ते में 1 बार आप दे देंगे तो पौधे की माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो आवश्यकता है वो भी पूरी हो जाएगी। और जिन लोगों को फूलों से प्यार हो और फूल ज़्यादा लेने हो तो वो एक SOP नाम का फास्फोर फर्टिलाइजर आता है जिसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा होती है अधिक, इससे पौधे की चमक बढ़ती है, फूल ज्यादा आते हैं और पौधा बहुत सुंदर लगता है। तो बीच बीच में उसको भी देते रहना चाहिए।
1: वर्मी कंपोज या कंपोज अगर ना डालें और एनपीके ही डालते रहें तो
0: देखिए जी, एनपीके है ही इस मर्ज की दवा। जब आप FYM ना डाल पा रहे हो, वर्मी कंपोस्ट ना डाल पा रहे हो और कोई भी ऐसी ऑर्गेनिक खाद ना डाल पा रहे हो अपने पौधों में, तो ये तुरंत प्रभावी दवा है इसके लिए कि पौधा आपका स्वस्थ रहेगा, अच्छी बढ़वार करेगा। तो अगर आपके पास FYM की खाद, गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट या वर्मी वास है तो और भी अच्छा है पौधे के स्वास्थ्य के लिए।
1: जी जी लिलियम आएगा?
0: हाँ लिलियम नहीं आ पाया है अभी, तो अगर आएगा तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। जी
2: जी धन्यवाद आपका। हेलो हेलो हेलो,
3: हाँ नमस्कार
2: जी। नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
3: मुकेश बोल रहा हूँ, बिहार से।
2: बिहार से जी, पूछिए।
3: मैम अभी मैं पौधा लगाना चाह रहा हूँ तो कौन सा सही रहेगा?
2: कौन सा पौधा लगाना चाह रहे हैं? फूलों के पौधे लगाना चाह?
3: फूलों के, फूलों के।
0: हाँ, आंगन में लगाएंगे या छत पे लगाएंगे? छत पे लगाएंगे। हाँ देखिए, अगर आप छत पे वार्षिक पौधे लगाना चाहते हैं तो अभी गुलदावरी और गेंदा लगाने का बहुत उत्तम समय चल रहा है, और आपको मौसम में सबसे पहले फूल देने वाले पौधे यही हैं। अगर आपको बहुवर्षीय पौधे लगाने हैं तो आप अपने घर में गमलों में छत पे बोगेनविलिया लगाइए, गुड़हल लगाइए, जैस्मिन लगाइए, जो आपको फूल भी दें, खुशबू भी दें और हरियाली भी दें। और इसी तरह से आप क्रीपर भी लगा सकते हैं गमलों में, और उनको आप छत पे छाया के लिए ट्रेन भी कर सकते हैं। तो छत पे आप जाते हैं, बहुत कड़ी धूप होती है, तो अगर आप ट्रेलिसिंग बनाकर उसको ट्रेन कर देंगे तो आप देखेंगे कि पौधा एक ही है लेकिन पूरी छत में आपके फैला हुआ है। इसका यही फायदा होता है कि दो पौधे भी बहुत हैं आपकी छत को रंगीन बनाने के लिए। तो बहुत सारे गमले नहीं लगाने हैं आपको, बहुत सारी मेहनत नहीं करनी।
4: बाकी विंटर सीजन का टाइम आ रहा है अभी, और सितंबर अक्टूबर में उसकी पौध वगैरह तैयार कर सकते हैं।
2: हाँ जी, हाँ जी जी, धन्यवाद आपका जी। हम बात कर रहे थे क्या ये सही मौसम है ग्लैडुलस के लिए।
4: अभी मैडम इसको खेत की तैयारी के लिए टाइम अच्छा चल रहा है। जैसे अगर किसी किसान ने उसमें जैसे हरी खाद बो रखी हो तो उसकी जुताई कर दी होगी उसने, और अभी बारिश हो रही है तो अच्छी तरह से वो सड़ जाएगा, और सड़ने के बाद फिर उसकी और अच्छी तरह से कल्टीवेटर से तैयारी करें। और कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो जिनको हम सितंबर से लगा सकते हैं। अच्छा। हालांकि इसका इस तरह का कोई वो नहीं है, मतलब वैरायटी कि अर्ली और लेट वाली हों, लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी हैं कि जल्दी फूल आ जाता है, कुछ मीडियम फूल आता है। तो आप सितंबर के महीने में बहुत सारी वैरायटियों को लगा सकते हैं, फर्स्ट वीक से या सेकंड वीक से। हाँ, वैसे वैसे असली टाइम इसका दिल्ली के आसपास अक्टूबर का महीना माना जाता है।
2: तो अभी क्या करना है इसके लिए?
0: हाँ देखिए, जैसा मैंने कहा कि अभी जो ग्लैडुलस है वो बहुत ही अच्छी फसल है किसानों को व्यवसाय के लिए
2: जी।
0: तो किसानों को सुनिश्चित करना पड़ता है कि जो इसका बीज मिले वो कम से कम 60 से 90 दिन ऐसे कम तापमान पर रखा गया हो ताकि वो लगाने के उसमें लगाने के बाद अच्छी बढ़वार हो और 45 से 60 दिन में उसको फूल आ जाए।
2: हाँ हाँ हाँ।

0: फूल उनका 90 दिन में या एक 3 महीने में आता है वो, या 4 महीने में आता है वो, आप देखेंगे कि 60 से 70 दिन में, 75 दिन में आ जाएगा,
1: जी
0: तो वो अपना 1-1.5 महीना बचा पाएंगे और जल्दी फूल आ जाएगा उसमें और
1: जी
0: अच्छी गुणवत्ता का आएगा। तो जब हम, आपने कहा कि तकनीकी वाली खेती की बात कर रहे हैं, हम प्रिसीजन वाली खेती की बात कर रहे हैं, तो जो किसान इसकी तैयारी कर रहे हैं, रेज बेड में आप इसकी प्लांटिंग करें, और जो बल्ब की गहराई है वो कम से कम 5 इंच रहनी चाहिए
1: जी
0: ताकि अच्छा स्वस्थ बढ़वार वाला पौधा हमें मिले, बिल्कुल खड़ा मिले, गिरे नहीं, और उसकी जो स्पाइक होती है वो सीधी रहे। और जो अगर ड्रिप सिंचाई प्रणाली उसमें लगा लेंगे तो, क्योंकि हर समय बूंद बूंद पानी करके चलेगा, खाद भी हर समय मिलेगा उसको, तो वो स्वस्थ फसल होगी और सामान्य तौर पे बहुत जल्दी पुष्पन में आएगी और बाजार के लिए उत्तम गुणवत्ता के फूल आप किसान बेच सकेंगे। और इसमें जो किसान खेती करते हैं उनको पता है कि ये आज व्यवसाय के लिए सबसे उत्तम फसल मानी जाती है ग्लैंडुलस।
1: और आप बिल्कुल सही कह रहे
0: जी
1: हैं, क्योंकि अगर हम फूलों की खेती को ज्ञान आधारित उद्यम की तरह करेंगे, एक प्रगतिशील व्यवसाय की तरह करेंगे, पूरी तरह इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तभी हम सफल हो सकते हैं। हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं उनसे हमें फ़ायदा मिल सकता है, चाहे वो थोड़े कम है या ज़्यादा। मायने ये रखता है कि आप चीज़ों को सीख कर, समझ कर और फिर उसे अपना रहे हैं। एक श्रोता हमारे साथ लाइन पर है। हेलो हेलो
2: हेलो, नमस्कार मैडम। विकास बोल रहा था।
1: जी, विकास जी पूछिए।
2: मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये बरसात के दिनों में ना, एक तो पौधों में बहुत ज्यादा फफूंदी लग जाती है, मैं जो अपने बगीचे में लगा रखा हूँ, तो उसका कैसे निवारण किया जाए? और दूसरी चीज ये है कि इस बरसात के मौसम में लोग ज्यादा सुगंधित पौधे फूल खोजते हैं, तो उसके लिए किस, कौन से फूल ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा, जो सवाल था मेरा।
0: जी बिल्कुल। आप देखिए, बरसात में पौधों के लिए इतना अनुकूल मौसम होता है कि पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और जो बादलों के बीच से जब सूरज झांकता है तो उसकी जो किरणों की गुणवत्ता होती है बहुत अच्छी होती है, और हमें पता नहीं है कि एक हफ्ते में ही हर पौधा इतनी तेजी से बढ़ता है और बढ़ जाता है। तो आप जो शिकायत कर रहे हैं कि आपके फफूंदी या फंगस लगा है पौधों में, वो एक तो इसलिए लगा होगा कि बहुत ज़्यादा जो शाखाएँ बढ़ जाती हैं, पत्ते बढ़ जाते हैं, उनकी समय समय पर कटाई छटाई करते रहना चाहिए। दूसरा ये है कि जो, जैसा आपने कहा कि खुशबू वाले फूल, और बरसात ही नहीं, आप पूरे साल में खुशबू तो आपको हमेशा मिलनी चाहिए, तो इसके लिए देखिए जैस्मीन के पौधे बहुत अच्छे होते हैं जो खुशबू देते हैं। आप अपनी क्यारियों में ट्यूब रोज लगाएं, खुशबू वाले जो रजनीगंधा है, खुशबू देता है। अच्छा, हार श्रृंगार का पौधा है उस, वो आपको लगाना चाहिए, वो भी साल में कम से कम 4-5 महीने फूल देता है, 2 बार देता है बारी बारी से, और जब भी आप उसके फूल खिलते हैं, रात में खिलते हैं क्योंकि सफ़ेद फूल होते हैं और रात में भीनी भीनी खुशबू आती है। इसी तरह से जैस्मिन की आती है, मोगरा जिसको कहते हैं। अच्छा, मधु जो, ये चंपा है, इसकी भी खुशबू आपके लिए, आप चंपा के फूल पौधे लगा सकते हैं अपने गार्डन में। अच्छा, मधु मालती की भी बहुत भीनी भीनी खुशबू आती है, अगर बहुत सारे फूल होंगे तो खुशबू से भर जाएगा। तो इसमें वाइट कलर की भी मधु मालती होती है, वेरीगेटेड भी होती है, तो 2 तरह के फूल आते हैं। जी
1: तो अभी शुक्रिया आपका। और जैसे कि हमारा विषय ही है आज का, कि जो हमारे फूल वाले पौधे हैं उनमें क्या इस समय हम कटाई छटाई करें,
0: बिल्कुल।
1: निराई गुड़ाई करें, और साथ में हमें क्या उर्वरक प्रबंधन करना है।
0: देखिए, अभी जो मौसम है बहुत ही अनुकूल मौसम है, सारे पौधे इतने बढ़ चुके होंगे कि जो बहुवर्षीय पौधे हैं कि वो अपनी सेप से बाहर निकल गए,
1: जी
0: तो उनकी कटाई छटाई करके उनको एक सेप दे दें,
1: हाँ हाँ
0: ताकि अभी जो, जब मौसम में बदलाव होगा,
1: हाँ हाँ
0: तापमान जैसे ही गिरेगा, तो ये 2 काम करेंगे पौधे, एक तो अपनी शाखाएं बढ़ाएंगे और इन पे फूल आएंगे।
1: हमारे विषय को
0: जी
1: आगे बढ़ाने
0: हाँ,
1: में हमारे श्रोता हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब।
0: इस समय आप कटाई छटाई करेंगे तो सही समय पे आप इनकी बढ़वार के साथ नई शाखाओं में अच्छे फूल आएंगे, तो ये बहुत ही उत्तम समय है कि आप इनकी कटाई छटाई और उसका ध्यान रखें। दूसरा, जैसे मैंने बताया था कि इसके 2 फायदे हो सकते हैं, एक तो उन्हीं पौधों की कटाई छटाई करके जो हमें शाखाएं मिलती है, हम उनसे

0: पौधे कटिंग के द्वारा बना सकते हैं,
1: जी
0: तो आपको पौधे खरीदने नहीं पड़ेंगे,
1: हाँ हाँ
0: अगले
1: हाँ
0: एक महीने में आपके नए पौधे बन जाएंगे।
1: जी
0: दूसरा, इन पौधों में जो है आपको ये जो बीमारी लग रही थी ये भी नहीं लगेगी
1: जी
0: बिल्कुल।
1: जी और हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। हेलो
2: नमस्कार डॉक्टर
1: जी, नमस्कार, नाम क्या है, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: साहब, मैं तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा
1: हाँ
2: नाम
1: जी
2: अब्दुल गफ्फार है।
1: जी पूछिए क्या।
2: मुझे मालूम करना था, उन्होंने अमरूद के 20 तैयार हमारे पास, ये दिखाने पड़ेंगे इनका, 20 तैयार करके पौधा तैयार करना है। दूसरा,
1: अमरूद
2: अमरूद की कटाई,
1: के
2: और ये अमरूद की कटाई करनी है ना, कटिंग करनी, वो कटाई करनी है, दूसरी बड़ा हो रहा है और एक नींबू
0: देखिए
2: का, इसकी भी कटाई करनी है, क्या इस मौसम में सही रहेगा?
0: देखिए अमरूद की कटाई छटाई के लिए अभी आप एक महीना इंतजार करें,
1: जी
0: क्योंकि अभी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, तो तुरंत फंगस लग जाएगा कटाई छटाई करेंगे तो। दूसरा, बीज से पौधे आप ना बनाएं उसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ अगर आपको ग्राफ्टिंग करनी है तो बीज से आप पौधे बनाएं और दूसरे पौधे से आप साइन लेकर ग्राफ्टिंग कर लें। तीसरा, अगर आपको इस अमरूद के पौधे से आपको नए पौधे बनाने हैं तो उसकी जो तना है उस पर 1 फीट ऊंचाई तक मिट्टी चढ़ा दें आप, 1 फीट 1 फीट दूर तक, दोनों तरफ 1 फीट दूर तक 1 फीट ऊंचाई की मिट्टी चढ़ा दें, तो इसमें आप देखेंगे कि जड़ों में से नई शाखाएं निकल के आ गई और वो जड़ के साथ आ जाएंगी और इसको कहते हैं हम स्टूलिंग। तो इससे नए पौधे तैयार हो जाते हैं, अच्छी गुणवत्ता के पौधे तैयार हो जाते हैं और फिर उनसे आपको अच्छे फल भी मिलेंगे।
1: जी शुक्रिया। हेलो
2: हेलो जी,
1: हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं
2: मैं बलवान बोल रहा हूँ, गांव कंदरम जिला कैथल हरियाणा से। जो
1: आप? अच्छा बलवान साहब, पूछिए।
2: खाद बता दो जी आपने प्राकृतिक की, वो पूछना दोबारा एक बार, मैं लिख नहीं पाया जी।
1: अच्छा, जो आप अदरक वाला कीटनाशक जो बता रहे थे। हाँ
2: हाँ, कीटनाशक जी,
1: जी
2: कीटनाशक जी।
1: जी
0: देखिए मैंने आपको बताया था कि 5 लीटर पानी में आप करीब करीब 100 ग्राम अदरक, 4-5 हरी मिर्चें और चार पांच लहसुन की कलियां,
2: तीनों है जी, ये तीनों चीज है जी।
0: हाँ, इनको पीस के आप उस पानी में मिला दें और आधा किलो नीम के पत्ते उसमें डाल दें और 15 दिन के लिए इसको बंद कर दें, तो आपका बहुत बढ़िया घरेलू कीटनाशी तैयार हो जाएगा।
2: ठीक है डॉक्टर साहब,
0: हाँ
2: धन्यवाद आपका,
0: बिल्कुल,
2: बहुत
0: आपको
2: बहुत
0: जहर
2: धन्यवाद।
0: डालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है
2: हाँ जी, ठीक है जी, मैं
0: जी।
2: प्राकृतिक खेती भी
0: हाँ,
2: करूंगी,
0: और
2: सब्जी
0: अगर
2: भी। ठीक
0: आपके पास कच्ची हल्दी भी हो तो इसमें 100 ग्राम कच्ची हल्दी भी डाल लें,
2: मिल जाएगी जी
0: फिर
2: कच्ची
0: देखिए
2: हल्दी
0: आपका नेचुरल हर्बी नेचुरल पेस्टिसाइड बन जाएगा ये
1: जी।
2: ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद आपका। और हम बात कर रहे थे, हमने कटाई छटाई की बात की, तो निराई गुड़ाई?
3: हाँ, तो निराई गुड़ाई मतलब पौधों के ऊपर निर्भर करती है, कौन सा पौधा लगा रखा है। तो
1: हाँ जी हाँ जी
3: अगर बारिश हुई है और निराई करना जरूरी है, तो जैसे ही पानी उसमें से निकल जाए तो निराई करना बहुत जरूरी है।
1: हाँ हाँ
3: तो
1: हाँ
3: उससे चाहे गमले में लगे हों चाहे फील्ड में लगे हों, तो टाइम टाइम पर उसकी निराई गुड़ाई करते रहें, जिससे कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगे या कोई फंगस की बीमारी नहीं लगे।
1: जी
3: वो पौधों के ऊपर निर्भर करता है कि हमने कौन से पौधे लगा रखे हैं,
1: जी जी जी
3: उन इन सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। कहीं घने पौधे लग रहे हैं तो उनको भी बीच बीच में छोटे पौधों को निकाल देना चाहिए, जिससे उनका डिस्टेंस मेंटेन रहे
1: हाँ जी
3: जी।
1: जी और हम बात करेंगे उर्वरक प्रबंधन की भी।
0: जी
1: जी
0: देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि क्या करें, सरकार भी अब सब्सिडी देना बंद कर देगी ना, आप उतना डीएपी भी आपको महंगा पड़ेगा, यूरिया भी महंगा पड़ेगा, सिंगल सुपरफास्ट भी महंगा पड़ेगा, तो आम तौर पे क्या करें,
1: जी
0: तो किसानों के लिए ये बड़ा ही मुश्किल है। हमारे आपके आंगन में तो थोड़े बहुत पौधे होते हैं, गमले होते हैं, उनमें हम वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं या जो खाद हमें मिलती है ऑर्गेनिक खाद हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसान क्या करे,
1: हाँ बिल्कुल।
0: लेकिन किसान भी ऐसा कर सकता है कि जो जैविक खाद है उसको

0: अपने घर पर ही बना सकता है और बहुत बड़ी मात्रा में बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा एक आईसीआर का संस्थान है जहां पर एक ऐसा कल्चर मिलता है जो 1 लीटर की बोतल में आता है, वो मेहरौली में है, उसको हम कहते हैं NCIPM, तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है,
1: जी
0: वहां पर एक जैविक जो हमारे जीवाणु होते हैं उनका एक ऐसा घोल मिलता है कि जिसको 200 लीटर के एक ड्रम में किसान डालकर 2 किलो गुड़ डालकर और 1 किलो नीम की खली डालकर और 2 किलो सरसों की खली डालकर 50 से 55 दिन में ऐसा खाद तैयार कर सकता है कि जब हम 1 एकड़ क्षेत्रफल में इस 200 लीटर पानी को सिंचाई जल के साथ खेत में डालेंगे तो ये हमें उतना प्रभाव देता है जितना हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं।
1: जी
0: तो एक तो ये तरीका है कि किसान अपना खाद, जैविक खाद खुद बनाए, और जब भी आप सिंचाई देते हैं यानी 1 महीने में अगर 2 सिंचाई 3 सिंचाई आप देते हैं तो 1 सिंचाई में इस 200 लीटर के घोल को आपने डालना है।
1: जी
0: तो आप देखेंगे कि 1 महीने तक अगर आपने दूसरा ड्रम फिर से रख दिया है तो वो भी अगली सिंचाई तक
1: तैयार हो
0: डालने के लिए तैयार
1: जाएगा।
0: हो जाएगा। तो जब प्रत्येक सिंचाई में आप इस जैविक मिश्रण को डालेंगे खेत में तो ये क्या करता है, आपके खेत में जो मित्र जीवाणु हैं उनकी संख्या इतनी बढ़ा देता है, इतनी बढ़ा देता है कि वो आवश्यक पोषक तत्वों को उपलब्ध करा देते हैं।
1: हम इसके बारे में और भी
0: जी
1: जानना चाहेंगे। श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो
2: हेलो। हाँ,
1: जी, नमस्कार।
2: मैं धर्मवीर डॉक्टर द्वारा से एक सवाल
0: जी
2: मेरे याद आया कि जब हम नर्सरियों में जाते हैं वहाँ गमले में 8 इंची 10 इंची के गमले में बहुत अच्छा पौधा मिल जाता है और घर लाते हैं इसकी सेवा करते हैं, पर हमारे पास तो वो ऐसे फूल नहीं दे पाते। ऐसा क्यों होता है कि नर्सरी में तो बहुत, इसलिए हम
0: अभी
2: लेके आते हैं?
0: अभी हमारी चर्चा इसी बात पर चल रही थी धर्मवीर जी, कि कैसे आप अगर 1 ग्राम मिट्टी को उठाकर देखें और उसका परीक्षण करें तो इसमें आपको लाखों जीवाणु मिलेंगे, और इन लाखों जीवाणुओं में अगर अच्छे जीवाणु अधिकतम होंगे तो आपको किसी भी खाद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जीवाणु जो कार्बनिक अवशेष होता है मिट्टी के अंदर उसको तोड़ के पोषक तत्व बनाते रहते हैं, और इसी से जो पौधा है वो अपनी इम्यूनिटी भी लेता है। तो आप देखिए कि अगर 1 स्क्वायर इंच मिट्टी में, आप बताएं 1 स्क्वायर इंच मिट्टी कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा 5 ग्राम मिट्टी।
1: जी
0: अगर 5 ग्राम मिट्टी में मैं कहूं 30 लाख से भी ज्यादा जीवाणु हैं तो आपको कैसा लगेगा, और ये जीवाणुओं की फौज अगर सिर्फ हमारे लिए पोषक तत्व बनाने का काम कर रही हो तो हमारी खेती में कितना आश्चर्यचकित बदलाव आ सकता है। तो हमें आवश्यकता है कि हम अपने खेत में जैविक पदार्थ इतना डाल दें कि ये जीवाणु खुशी से हमारे लिए पोषक तत्व बना रहे हों, यानी ये पोषक तत्व बना नहीं रहे होते हैं, ये खाद की फैक्ट्री होते हैं जो हमारे पौधों को खाद पोषक तत्व देते ही देते हैं। हमें जो हानिकारक जीवाणु हैं उनसे लड़कर इम्यूनिटी भी देते हैं, यानी इम्यूनिटी बूस्टर भी होते हैं ये।
1: जी
0: तो हमें
1: जी
0: इस बात का ध्यान अपने गमले में भी रखना है
1: हाँ हाँ
0: कि हम
1: हाँ
0: गमले में अपने जो जीवाणुओं की संख्या है उसको बढ़ाए रखें।
1: जी
0: तो उसके
1: बिल्कुल
0: लिए आवश्यक है कि आपको ह्यूमिक एसिड या ह्यूमिक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ डालने हैं जो आजकल बायोचार के नाम से बाजार में मिलता है। तो आप बायोचार 100 ग्राम डालें और 200 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद डालें, वो लगभग बराबर होता है।
1: जी
0: जी
1: हाँ। एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो
2: नमस्कार डॉक्टर साहब,
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: मैं द्वारा से अब्दुल वफार बोल रहा हूँ। ये नींबू की छटाई जो करनी है वो भी अगले महीने में करनी पड़ेगी है? जी,
0: नींबू की छटाई,
2: नींबू की छटाई।
0: देखिए नींबू की छटाई, नींबू में 3 बार फसल आती है, तो जब भी आप छटाई
2: आ रही है,
0: करें,
2: क्या
0: हैं
2: फसल आ रही है उसमें? बिल्कुल
0: हाँ
2: लास्ट चल रहा है।
0: हाँ लास्ट चल रहा है, तो जब भी आपकी फसल आकर खत्म हो रही होती है उसी समय आप छटाई करें, और नींबू की छटाई आप 30% से 40% तक कर सकते हैं।

0: एक बार में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार फसल खत्म होगी तो हर बार छटाई करेंगे, साल में एक ही बार करनी है 30-40%। हाँ, और दर्द ना करें आप छटाई का, जितनी अच्छी छटाई करेंगे उतनी अच्छी नई शाखाओं की बढ़वार होकर आपको फल मिलेंगे।
1: जी शुक्रिया आपका। और हम बात कर रहे थे कि NCIPM जो एक जैविक वो मिश्रण तैयार कर रहा है, घोल तैयार कर रहा है, उससे हमारे किसान कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमें फूलों की खेती को इस तरह से व्यवसाय के रूप में अपनाना है कि हर छोटी बात में हम लागत भी कम कर सकें और मुनाफा भी कर सकें और बढ़िया पैदावार ले सकें।
0: जी बिल्कुल जी। देखिए मुनाफा तो आप जब ही बढ़ा पाएंगे जब आप लागत कम करेंगे
1: जी।
0: और लागत करने का सीधा सा तरीका है कि आपको खेती को मित्र व्यवस्था से ही करना है
1: जी।
0: आपको रासायनिक खाद इतने नहीं डालने कि आपकी खेती फिर कहे कि फिर डालो नहीं तो मैं नहीं दूंगी कुछ। तो वापस फसल पाने के लिए, बढ़वार पाने के लिए और आपको मुनाफा कमाने के लिए अपने खेत को सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा
1: जी।
0: सस्टेनेबल बनाने के लिए ये होगा कि जो खेत में प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है, जीवाणुओं की प्रक्रिया है, वो सतत रूप से जारी रहनी चाहिए। तो इसके लिए किसानों को दो चीजें मुख्य रूप से करनी चाहिए, एक तो अपना जैविक खाद का मिश्रण खुद बनाना है, दूसरा तीन फसल अगर कोई किसान लेता है तो तीन में एक फसल जिसका मुख्य समय आजकल होता है यानी जून से लेकर सितंबर तक रहता है, तो हरी खाद, हरी खाद में चाहे तो आप मूंग लगाइए, चाहे ढेंचा लगाइए, चाहे अरहर लगाइए, चाहे सनी लगाइए, ऐसी फसलें जरूर एक फसल करनी है कि वापस आपकी खेत की मिट्टी को वही उर्वरता प्राप्त हो जाए जो पहले थी या जो आवश्यक है अगली फसल उगाने के लिए। तो ये अवश्य करना होगा। अभी मैंने बताया कि बायोचार, बायोचार क्या है या जीवामृत क्या है, वो ऐसा है कि जिसमें आप जैसे गाय का गोबर, जो गोबर गैस बनाने के बाद निकलता है वो, और जो गाय का मूत्र है एक सीमित मात्रा में
1: जी।
0: तीसरा जो वर्मी कैंचों की खाद बनाई जाती है, उस कैंचों की खाद से एक पानी निकलता है, रिसता है, जिसको वर्मी वास कहते हैं। तो इसके अंदर जो विशेष जीवाणु होते हैं जो हमें फायदा करते हैं और हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाते हैं, अगर हम इसका कॉम्बिनेशन एक बना लें तो हम उतना ही खाद और पोषक तत्व और उर्वरक अपने खेत में बढ़ा सकते हैं बजाय इसके कि हम कोई रासायनिक खाद खरीदें। तो इसके लिए आप देखेंगे कि जो किसान की फसल है वो बहुत ही सुगमता से होगी और बिना रासायनिक खाद पर निर्भर होने के होगी
1: जी।
0: और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो आपके मित्र कीट हैं वो भी वापस आ जाएंगे, क्योंकि रसायन नहीं डाल रहे आप, कीटनाशी नहीं डाल रहे, और जो हानिकारक कीट हैं जो आपके मित्र कीट हैं उनको खाकर बराबर कर देते हैं, यानी आपके दुश्मन को पहले ही मार देते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब बिल्कुल, आज जो कार्यक्रम में चर्चा रही वो बिल्कुल ऐसे रही जैसे कोई सावन की कविता कह रहा हो, और इतनी मतलब प्राकृतिक रूप से हम कैसे अपनी खेती को समृद्ध कर सकते हैं ये बहुत ज़रूरी है। फूलों की खेती कर रहे हैं तो जीवन में सबके समृद्धि की सुगंध रहे, सेहत की सुगंध रहे, और हम इसे एक ज्ञान।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम सुन रहे थे बात फूलों की। कार्यक्रम के संयोजक और प्रस्तुतकर्ता थे शिव नंदन लाल।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सरकार ने पाइपलाइन से रसोई गैस PNG कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की योजना को स्वीकृति दे दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना पहली सितंबर से दो चरणों में लागू की जाएगी।
4: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। योजना के अंतर्गत पात्र सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस टिप की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया TDPL द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर SIT की जांच और जारी CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर JSSC CGL परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की CID जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज मंत्री स्तरीय शिष्टमंडल के साथ सिंगापुर के आधिकारिक दौरे पर रवाना हो गई हैं। वे वहां 4th भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में हिस्सा लेंगी। प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में 10 परिसरों पर तलाशी ली है। निदेशालय ने बताया है कि ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की गई है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की 1 तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 800,000 महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया था, जबकि इसके बाद 500,000 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। गोल में क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें दिन श्रीलंका ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत अपनी दूसरी पारी में 193 रन पर ऑल आउट हो गया और श्रीलंका को 372 रनों का लक्ष्य मिला है। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। उधर भारतीय महिला टीम ने कल शाम दूसरे ग्रुप मैच में दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से करारी शिकस्त दी। भारत अपने अंतिम पूल मैच में कल इंग्लैंड से खेलेगा। घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 315 अंक गिरकर 76,919 अंक पर और निफ्टी 100 अंक गिरकर 24,053 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी के अंतर्गत लीजिए सुनते हैं संतूर वादन राग बसंत मुखारी में। कलाकार हैं अभय रुस्तम सोपोरी। आपके साथ तबले पर संगत की है मोहम्मद अकरम खान ने।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संतूर वादन राग बसंत मुखारी में। कलाकार थे अभय रुस्तम सोपोरी। आपके साथ तबले पे संगत की थी मोहम्मद अखरम खान ने। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने को है। अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। श्री वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है।
2: इन्वेस्टमेंट स्टोरी, हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में एक डॉलर के निवेश पर करीब 3.6 डॉलर की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
3: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि देश के 99.6% रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है।
2: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।

श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4th भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के 2025-27 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की 1 तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है, उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने मकाऊ के लियोन योक चोंग और एनजी वेंग ची को हराया। क्वार्टर फाइनल में ध्रुव और तनिषा का मुकाबला चीन की जोड़ी चेंग फांग हुई और गुआओ शिनवां से होगा। भारत के साथ गोल में क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें दिन श्रीलंका ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 175 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत अपनी दूसरी पारी में 193 रन पर ऑल आउट हो गया और श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया गया। घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 342 अंक गिरकर 76,893 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 24,051 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

घर आंगन। घर आंगन के इस शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप हमें सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। और अब बात करते हैं कुछ मौसम बदलने की। मौसम बदल तो रहा है, लेकिन सावन तो चल ही रहा है, क्योंकि जब तक रक्षाबंधन है तब तक तो सावन है ही। तो सावन की बात जब हम करते हैं, हमने खूब ढेर सारी आपसे बातें की सावन के बारे में और इस दिन के बारे में, बारिश के बारे में, लेकिन एक खासतौर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। पर कभी कभी जिंदगी में खुश रहने के लिए बड़ी वजहों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सावन कुछ कुछ कहता भी है कि कभी बारिश को महसूस कीजिए, मिट्टी की खुशबू को अपने अंदर उतरने दीजिए, पेड़ों की हरियाली को देखिए और अपने पुराने किसी खूबसूरत पल को फिर से याद करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इस सावन जो भी आपको याद आए या मुस्कुराइए थोड़ा और प्रकृति को महसूस कीजिए और उन लोगों को याद कीजिए जिनके साथ आपने बारिश में कोई खूबसूरत याद बनाई हो। तो फिर क्योंकि सावन सिर्फ आसमान से बरसता नहीं, सावन तो यादों में बरसता है, रिश्तों में बरसता है और दिल के किसी कोने में छुपी खुशियों को फिर से हरा भरा कर देता है और जगा देता है।

और अभी आप ये सुन रहे थे गीत प्यारा सा, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने, फिल्म थी विश्वनाथ। दोस्तों आज बहुत सारे दिन हैं, आज बहुत सारे दिनों की बातें हम आपसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व फोटोग्राफी दिवस की। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, सच भी है।

एक तस्वीर सिर्फ किसी पल को कैद नहीं करती, बल्कि उस पल से जुड़ी हमारी भावनाओं, यादों और कहानियों को भी हमेशा के लिए अपने साथ रखती है। बचपन की वो तस्वीरें, परिवार के साथ बिताए खास पल, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, किसी खूबसूरत सफर की याद या फिर किसी प्रिय व्यक्ति की मुस्कुराहट, जब हम तस्वीरों में देखते हैं तो ऐसा लगता है जब कुछ समय के लिए पल वहीं से लौट के आ गया हो। और आज मोबाइल फोन ने फोटोग्राफी को हर किसी के पहुंच में ला दिया है। अब खूबसूरत तस्वीर लेने के लिए हमें महंगे कैमरे का होना जरूरी नहीं है, और जरूरी तो बस एक खूबसूरत नजर जो साधारण पल के लिए खासियत खोज सके। तो आज विश्व फोटोग्राफी दिवस पर क्यों ना हम सिर्फ तस्वीरें खींचने के बजाय पलों को महसूस करने की कोशिश करें। कभी आसमान में बदलते रंगों को कैमरे में कैद कीजिए, कभी बारिश की बूंदों को, कभी फूलों की मुस्कान को, कभी अपने और अपनों की वो मुस्कान जिसे देखकर आपका दिन बन जाता है। और हाँ, आज अपनी गैलरी में मौजूद किसी पुरानी तस्वीर को जरूर देखिए, हो सकता है उस एक तस्वीर के पीछे कोई खूबसूरत याद आपके चेहरे पर फिर से मुस्कान ले आए। कैमरा सिर्फ तस्वीरें नहीं बनाता, वो जिंदगी के खूबसूरत पलों को यादों में बदल देता है।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में एक गीत फिल्म थी रोमांस। और अब बात करते हैं कुछ विश्व मानवतावादी दिवस की। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ही दिन की, क्यों एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म, कोई पहचान और कोई रिश्ता नहीं। मानवतावाद का अर्थ है दूसरे इंसान के दर्द को समझना, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ना या बिना किसी भेदभाव के इंसान को इंसान समझना। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी की मदद करने के लिए हमारे पास बहुत सारा पैसा या बहुत बड़े साधन होने चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि मानवता की शुरुआत बहुत छोटी छोटी चीज़ों से होती है। यानी किसी परेशान व्यक्ति की बात ध्यान से सुन लेना, किसी बुजुर्ग को सड़क पार करा देना, भूखे को खाना खिला देना, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना या फिर किसी दुखी चेहरे पर मुस्कान ला देना, ये सभी मानवता के खूबसूरत उदाहरण हैं। दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, बीमारी, कई तरह के संकट आते हैं। ऐसे समय में मानवतावादी कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह किए बिना ज़रूरतमंद लोगों तक भोजन, दवाइयाँ, पानी और ज़रूरी सहायता पहुँचाते हैं। उनका संदेश यही होता है कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसानियत हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। तो आइए एक छोटा सा संकल्प हम भी कर लें कि जहाँ किसी को हमारी मदद की ज़रूरत होगी, हम अपनी क्षमता के अनुसार उसका साथ देंगे। क्योंकि दुनिया को बदलने के लिए हमेशा बड़े कदमों की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी एक छोटी सी मदद, एक मीठी सी मुस्कान और एक संवेदनशील दिल ही किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। मानवता ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि इंसान बने और इंसानियत को जिंदा रखें और सबके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें। आइए सुनिए राधा पांडवल की आवाज में गीत।

और अब बात करते हैं, हम आज याद कर रहे हैं दक्षिण भारत के सिंह कहे जाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता एस सत्यमूर्ति को। वे वकील, सांसद और मद्रास के मेयर भी रहे। गांधी जी के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई बार जेल भी गए। सत्यमूर्ति जी को दक्षिण भारत का शेर कहा जाता था। उनकी ओजस्वी वाणी और देशभक्ति के हजारों युवा प्रेरित हुए। उन्होंने हमेशा कहा, देश पहले, बाकी सब बाद में। उनके विचार आज भी हमें ईमानदारी, साहस और सेवा की प्रेरणा देते हैं। और हाँ, अब बात करते हैं भारत के नौवें राष्ट्रपति, महान विधिवेत्ता और शिक्षाविद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म 19 अगस्त 1918 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ और कानून, शिक्षा और राजनीति तीनों क्षेत्रों में उन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ी। वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे और पंजाब, महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। 1992 से 1997 तक उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा की। शर्मा जी सादगी, शालीनता और संविधान के प्रति निष्ठा के प्रतीक थे। उन्होंने हमेशा कहा, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपद है। उनके विचार और सेवा भाव आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। और अब बात करते हैं कुछ खास आज के दिन की, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। और साहित्य के सूर्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जयंती की। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आठ तारा गांव में हुआ था। वे सिर्फ लेखक ही नहीं थी, वे एक युग लेखक थे। निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार और संस्कृति के महान ज्ञाता थे। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाई दी। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, अशोक के फूल, कुटज जैसे ग्रंथ आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उनकी भाषा में संस्कृत की मिठास और लोक जीवन की सादगी दोनों मिलती थी। वे कहते थे, मनुष्य ही साहित्य का केंद्र है। उन्होंने पुरानी परंपराओं को नए नजरिए से देखा और बताया कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है। पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उनके विचार आज भी जीवित हैं और आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं।

और अब बात करते हैं कुछ महान संत, योगी और समाज सुधारक पार्श्वनाथ का जीवन त्याग, सेवा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण, सत्य और धर्म के प्रचार में समर्पित किया। उनकी शिक्षाओं का मूल मंत्र था, सेवा ही सच्ची पूजा है। वे कहते थे, ईश्वर मंदिर में नहीं बल्कि हर भूखे, गरीब और ज़रूरतमंद की सेवा में बसते हैं। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास और भेदभाव को दूर करने का काम किया। पार्श्वनाथ जी का योग, ध्यान और सादगी भरे जीवन से लोगों को आत्मबल और चरित्र निर्माण की प्रेरणा मिली। इसी संदेश के साथ सच्चाई, करुणा और सेवा का मार्ग अपनाकर लोग अपने आसपास के लोगों की मदद करेंगे और समाज को बेहतर बनाएंगे, यही उनका मानना था। और साथ में आज बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती की। उनका जन्म 1554 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गाँव में हुआ था। कहा जाता है कि जन्म के समय उनके मुंह में 32 दांत थे और वे राम कहते हुए पैदा हुए थे। बचपन का नाम उनका था राम बोला। तुलसीदास जी ने अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम की भक्ति में लगा दिया। उन्होंने संस्कृत में लिखे रामायण को आम जनता की भाषा अवधि में लिखा ताकि हर कोई प्रभु की कथा सुन सके, और इसी का परिणाम है हमारा प्रिय ग्रंथ श्री रामचरित मानस। और इसके अलावा उन्होंने सिया राम मैं सब जग जानी, इस एक लाइन में उन्होंने पूरे विश्व को प्रेम विश्वास का संदेश दिया। हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली जैसी रचनाएं आज भी करोड़ों लोगों को शक्ति देती हैं। तुलसीदास जी कहते थे, खासकर उनकी रचनाओं में भक्ति, ज्ञान और नीति तीनों का संगम होता था,

दोस्तों, आप क्या सुनना चाहते हैं? आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? आपके सुझाव, आपके विचार और आपकी पसंद का स्वागत है। आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com।

लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और अशोक कुमार की आवाज में फिल्म थी खूबसूरत। और अब बात करते हैं कुछ महिला सशक्तिकरण विकास की नई दिशा की, आज एक ऐसे विषय की जो महिलाओं के जीवन को नहीं बल्कि पूरे समाज और देश के भविष्य को बदलने की ताकत रखता है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को अधिकार देना नहीं बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने की स्वतंत्रता, अपने सपनों को पूरा करने का अवसर देना भी है। जब एक बेटी शिक्षित होती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब एक महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है तो वह अपने पूरे परिवार को साथ साथ समाज की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाती है। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, खेल, राजनीति, सेना, व्यवसाय और कला, हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। लेकिन उनकी असली शुरुआत तब होती है जब महिलाओं को बराबरी का सम्मान मिले, उन्हें अपने फैसले लेने का खुद अधिकार मिले। और हमें ये समझना होगा कि महिलाओं का विकास बहुत ही जरूरी है और आगे महिला को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इसीलिए बेटियों की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, समान अवसर और आर्थिक स्वतंत्रता, ये सभी विकास की मजबूत नींव है। एक ऐसा समाज बनाने का संकल्प हर कोई ले कि जहाँ हर महिला ये कह सके कि मेरी पहचान मेरे सपनों से है, मेरी उड़ान मेरी अपनों से है और मेरे फैसलों की आवाज़ मेरी अपनी है। याद रखिए, जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है और समाज आगे बढ़ता है और देश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ता है। लीजिए लता मंगेशकर को सुनिए, फिल्म है एक

और अब बात करते हैं कुछ पहाड़ी बारिश में। बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो या होने वाली हो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये मौसम, लेकिन सड़क पर गाड़ी चलाते समय कहीं बारिश में कई सारे खतरे बन सकते हैं। गीली सड़क, टायरों की पकड़ कम हो जाती है और अचानक ब्रेक लगाने या तेज़ रफ्तार में मोड़ लेने पर गाड़ी फिसल सकती है। तो इस सभी चीज़ों के लिए बहुत सारी सावधानियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार कम रखें, आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें ताकि अचानक ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़े तो आपके पास गाड़ी संभालने का समय हो। बारिश शुरू होने से पहले अपने टायरों की ग्रिप और हवा दबाव ज़रूर जांच लें। ख़राब या ज़्यादा घिसे हुए टायर गीली सड़क पर ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाते हैं। साथ ही ब्रेक, वाइपर, हेडलाइट, इंडिकेटर भी ठीक स्थिति में होने चाहिए। अगर सड़क पर पानी जमा हो तो तेज़ गति से उसमें गाड़ी ना उतारें, क्योंकि पानी की गहराई का अंदाज़ा ना हो तो रास्ते से बचना ही बेहतर है। और पानी में गाड़ी का संतुलन बिगड़ सकता है और इंजन में पानी जमा होने का खतरा भी रहता है। और हाँ, बारिश के दौरान अचानक ब्रेक लगाने के बजाय धीरे धीरे ब्रेक लगाएं, और ख़ास तौर पर घबरा कर अचानक ब्रेक या तेज़ स्टीयरिंग ना करें। याद रखिए, बारिश में मंजिल तक पहुँचने की जल्दी से ज़्यादा ज़रूरी है सुरक्षित पहुँचना। थोड़ी सी सावधानी आपकी सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की ज़िंदगी को सुरक्षित रख सकती है। तो इस बारिश में गाड़ी चलाइए धीरे, संभल कर और सुरक्षित, क्योंकि सड़क पर सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ये सुनिए आंचल फिल्म से गीत, फिल्म और जिसे गाया है आशा भोसले ने।

0: वाह वाह, जाने दे गाड़ी तेरी, जाने दे, जाने दे,
1: जाने दे। और अब हम ये कहना चाहते कि हमें यूं ही सुनते रहिए इसी वादे के साथ कि आपसे होगी अगली मुलाकात। तब तक के लिए सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
2: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4थी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की 1 तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियाती तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है, उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेन देन स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामेली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता तथा वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। बैडमिंटन में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की भारतीय जोड़ी BWF विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट का रुख है। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 315 अंक गिरकर 76,921 पर और निफ्टी 97 अंक गिरकर 24,058 पर था। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़ में दिन में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw has said that India's economic growth is now recognized globally and the country is growing at a growth range of 6-8%. He said this growth story is driven by four key pillars: investment in social, digital and physical infrastructure, inclusive growth and a strong focus on manufacturing. Addressing the Uttar Pradesh Japan Investment Summit 2026 in New Delhi today, Mr. Vaishnaw said investment is an important part of the country's growth journey, with India investing around $130 billion every year.
4: We have been growing at a very sustained pace of 6-8% growth band, with moderate under control inflation, with very good balance sheet, and making sure that the entire country grows together. This is possible because of the four pillars of our growth story: investment in social, digital and physical infrastructure.
3: The Enforcement Directorate or ED has conducted searches at 10 premises in Rampur and Saharanpur in Uttar Pradesh and Delhi in connection with a money laundering investigation involving the Maulana Muhammad Ali Johar Trust and Muhammad Ali Johar University in Rampur. The ED said the searches were carried out under the Prevention of Money Laundering Act 2002. It added the investigation relates to the alleged diversion of government contract funds through private contractors and their subsequent use, including for creation of assets for the university or the trust. The ED said that the searches were aimed at tracing the alleged proceeds of crime and recovering financial records, documents and digital evidence related to the diversion and utilization of government funds. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has today embarked on an official visit to Singapore with a ministerial

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और इस कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत।

0: करती हूँ। श्रोता, आज जो हमारी फिल्म है वो है आखिर क्यों, और इस फिल्म के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और जो इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जे ओम प्रकाश ने किया था। और सबसे रोचक की बात ये है कि ये अभिनेत्री रीना रॉय के ससुर थे और बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन के नाना थे। श्रोता, सुनते हैं अगला गीत, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, अगर मैं हम इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो निशा, जो कि स्मिता पाटिल है, एक अनाथ लड़की है जिसके जिसके रिश्तेदारों ने उन्हें गोद लिया है, और वह अपनी चचेरी बहन इंदु यानी टीना मुनिम के साथ पली बड़ी है। इंदु को अमीर और आकर्षक कबीर राकेश रोशन से प्यार हो जाता है, हालांकि कबीर को पारंपरिक स्वभाव वाली निशा पसंद आती है और वह उससे शादी कर लेता है। इंदु निराश हो जाती है। हंसमुख निशा कबीर के अन्य महिलाओं के साथ प्रेम संबंधों और इश्कबाजी के बारे में अनजान रहती है, और जिनमें वह व्यापारिक यात्राओं के बहाने घूमता रहता था।

श्रोताओं, निशा और कबीर के विवाह के बाद जब निशा गर्भवास अवस्था में आती है तो इंदु की माँ इंदु से निशा और कबीर के साथ रहने और निशा की देखभाल करने के लिए कहती है। जैसे जैसे निशा अपनी दैनिक गतिविधियों में व्यस्त हो जाती है वैसे इंदु और कबीर करीब आ जाते हैं। निशा एक बच्ची को जन्म देती है। अपने पति और चचेरे भाई के बीच के संबंध का पता चलते ही वह टूट जाती है और उनसे इस बारे में बात करती है। कबीर अपना संबंध खत्म करने से इनकार कर देता है और उसे इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए कहता है। निशा घर छोड़कर चली जाती है और अपनी बेटी की जिम्मेदारी नौकरानी को सौंप देती है। पुरुष प्रधान दुनिया में निशा को जीवित रहने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। उसकी दोस्ती आलोक, जो कि राजेश खन्ना है, उनसे हो जाती है। निशा अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखती है और एक सफल लेखिका बन जाती है। कबीर और इंदु की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जाती है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है।

निशा और कबीर की बेटी जब शादी के उम्र में आ जाती है तो चिंतित कबीर को समझ नहीं आता कि वह इस रिश्ते का खर्च कैसे उठाएगा। लेकिन निशा कबीर की मदद करती है और उसे अपने प्रकाशन अधिकार बेचकर जीवन भर के लिए रॉयल्टी देने का वादा करती है। कबीर जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है और गहरा पश्चाताप करता है। इस पर निशा कहती है कि वह आगे बढ़ चुकी है और नहीं चाहती कि उसकी बेटी को उसकी पहचान और उसकी माँ के दर्दनाक अंजाम का पता चले। आलोक निशा से मिलता है और उसे बताता है कि अब उनके रिश्ते को औपचारिक रूप देने का समय आ गया है। निशा पारंपरिक मूल्यों को मानते हुए इसका विरोध करती है। आलोक उससे पूछता है, आखिर क्यों? जब वह वैवाहिक समस्याओं से जूझ रही थी तब समाज ने उसे दोषी ठहराया और उसका साथ देने से इनकार कर दिया, तो अब समाज की चिंता क्यों?

श्रोताओ, हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं और जो पहला संदेश है वो है सुदर्शन शाह का, पद्मा टॉकीज नेपा नगर से, और उनके साथ है पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। जो अगला संदेश है वो है नितेश देवांगन का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से, और इनके साथ है दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन। अगला संदेश है वो स्वर्ण सिंह का है, इनके साथ है दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, और ये हमें लिखकर भेज रहे गांव लोगर ठाकुरावाला से। अगला संदेश आर कुमार का, वंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, धर्मेंद्र छीपा में लिखकर भेज रहे हैं, और इनके साथ है कपिल छीपा, पूजा परिहार। अगला जो संदेश है वो है संदीप मकर का, इनके साथ है ज्योति मकर, मन्नत मकर, भरत मकर, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, जालंधर पंजाब से। सुधाकर जाधव हमें लिखकर भेज रहे हैं, इनके साथ हैं डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख और इनके अन्य परिवार के सदस्य। जो अगला संदेश है वो है संतोष काले, इनके साथ है तेजस लोकेश, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं शेगांव बुलडाड़ा महाराष्ट्र से। जो अगला संदेश आया है वो आया

है राजू माठे का, और इनके साथ है गजानन माठे, ज्ञानेश्वर माठे, संजय माठे, और ये हमको लिख कर भेज रहे हैं असल गांव बाजार तहसील जलगांव जामोद महाराष्ट्र से। और जो साथ ही जो अगला संदेश है वो है भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, ये हमें लिख कर भेज रहे हैं दतरिंगी से। और जो अगला संदेश है वो है पीएस नहाकर, संतोष और मोहन निवारे, राजू माठे, और ये हमें लिख कर भेज रहे हैं नरवेल महाराष्ट्र से। श्रोताओं अगला जो संदेश है वो है हीरामणि वर्मा का, और ये हमें लिख कर भेज रहे हैं भाटापारा से। रामशरण विश्वकर्मा जी ने हमें संदेश भेजा है, और ये हमें लिख कर भेज रहे हैं ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से। अगला जो संदेश है वो है सुर संगम रेडियो श्रोता की तरफ से, विरम गाम गुजरात, अजीत भावसार और प्रमिला भावसार ने हमें लिख कर भेजा। दिग्दर्शन गौर हमें संदेश भेज रहे हैं, और इनके साथ है कविता गौर मेरठ कैंट से। जो अगला संदेश है सुदर्शन मुखी का है, और इनके साथ है अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, सोनीपत से। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा हमें लिखकर भेज रहे हैं छत्तीसगढ़ पलारी से। फारूक अली खान हमें संदेश भेज रहे हैं, और ये जो हमारे पास जो और जो बाकी लोगों का संदेश है श्रोताओं, हम उनको अपने अगले कार्यक्रम में इंक्लूड करेंगे। और फिलहाल आज के लिए श्रोताओं बस इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी ठीक इसी समय पे इस कार्यक्रम को लेकर एक ही फिल्म से, लेकिन फिल्म होगी दूसरी। तब तक के लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए विदा। नमस्कार।

0: श्रोताओं, दिन के 1:40 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन में अमन देव। पहला चोणवीं खबर। सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत के आर्थिक विकास नूं हुण विश्व पद्धर ते मानता मिल रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बाल कृष्णन नाल मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत ते सिंगापुर दरमियान व्यापक रणनीतिक भाईवाली नूं होर मजबूत करन ते चर्चा की। पंजाब पुलिस ने नवे भर्ती हुए रक्षा मुलाजमान लई तस्दीक प्रक्रिया नूं तेज करन लई एक ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। भारत ने श्रीलंका खिलाफ पहला क्रिकेट टैसट मैच 165 दौड़ा नाल जीत लिया। भारत के ध्रुव कपिला ते तनिष्ठा क्रास्टो की जोड़ी नवी दिल्ली विच BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल विच पहुंच गई है। हुण खबरां विस्थार नाल। सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत के आर्थिक विकास नूं हुण विश्व पद्धर ते मानता मिल रही है। उन्होंने कहा कि देश 6-8% की विकास दर नाल अगे वध रहा है। श्री वैष्णव अज नवी दिल्ली विच उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन 2026 नूं संबोधन कर रहे सन। उन्होंने कहा कि निवेश देश के विकास विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदा है अते भारत सालाना लगभग 130 अरब अमरीकी डालर निवेश कर रहा है।
2: हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में $1 के निवेश पर करीब $3.6 की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
1: उन्होंने कहा कि देश के 99.6% रेलवे नेटवर्क

65 दौड़ों नाल जित लिया है। गोल विच जित लई 372 दौड़ों के टीचे का पिछा करदे श्रीलंका की टीम अपनी दूजी पारी च 206 दौड़ा बना के आउट हो गई। भारत ने अपनी पहली पारी च 462 ते दूजी पारी च 193 दौड़ा बनाईआं सन। इस जित नाल दो टेस्ट मैचों की सीरीज च भारत 1-0 नाल अगे हो गया है। भारत के ध्रुव कपिला ते तनिषा क्रास्टू की जोड़ी नवी दिल्ली विच BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल ते क्वार्टर फाइनल पहुंच गई है। उन्होंने मकाओ के लियोन योक चोंग ते एनजी वैंग ची नू 21-11 नाल हराया। क्वार्टर फाइनल विच भारतीय जोड़ी का मुकाबला चेन फेंग हुई ते गो जिनवा की चीनी जोड़ी नाल होगा। नीदरलैंड FIH हाकी विश्व कप के पूल डी विच अज भारत का पाकिस्तान नाल मुकाबला होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3 बजे शुरू होगा। भारत के दो मैचों विच 3 अंक ने, पाकिस्तान का 2 मैचों तो सिर्फ 1 अंक है। उधर भारतीय महिला हाकी टीम ने कल शाम अपने दूजे ग्रुप मैच विच दक्षिणी अफ्रीका 6-1 की करारी हार दिती। इस जीत नाल भारत 2 मैचों विच 4 अंकों नाल पूल डी विच सिखर ते पहुंच गया है। अंत विच चोणवीआं खबरां एक बार फिर सुन लो। सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत के आर्थिक विकास नूं हुण विश्व पद्धर ते मानता मिल रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बाला कृष्णन नाल मुलाकात की। दोहां नेतावां ने भारत ते सिंगापुर दरम्यान व्यापक रणनीतिक भाईवाली नूं होर मजबूत करन ते चर्चा की। पंजाब पुलिस ने नवे भर्ती हुए रक्षा मुलाजमां लई तस्दीक प्रक्रिया नूं तेज करन लई एक ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। भारत ने श्रीलंका खिलाफ पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 165 दौड़ों नाल जीत लिया है। इस दे नाल ही खबरों का राष्ट्रीय बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रदेशक खबरों का बुलेटिन शामी 6:20 ते होएगा। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन चौथी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सिंगापुर में वजारती वफद की क्यादत कर रही हैं। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि पायदार इक्तसादी तरक्की को बरकरार रखने के लिए भारत हर साल तकरीबन 130 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने काले धन को जायज बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश और दिल्ली में समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता 10 जगहों पर छापे मारे हैं। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने गाले में पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। और हॉकी में नीदरलैंड्स में जारी FIH वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मुकाबले में भारत की मर्दों की टीम का सामना रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन एक वजारती वफद के साथ सिंगापुर के सरकारी दौरे पर रवाना हो गई हैं, जहां वो चौथी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। भारतीय वफद में वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर, तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल, नीज इलेक्ट्रॉनिक्स और IT महकमे के मरकजी वजीर ममलकत जितिन प्रसाद भी शामिल हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर पहुंचने के बाद अपने हम मनसब विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। जनाब जयशंकर कल मुनाकिद होने वाली चौथी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए वहां पहुंचे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बाद में उन्होंने जनाब बालाकृष्णन के हमराह भारतीय हाई कमीशन के नए चांसरी कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद भी रखा। वजीर मौसूफ ने उम्मीद जाहिर की कि नया कॉम्प्लेक्स भारत और सिंगापुर के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी के नए दौर की अक्कासी करेगा और सिंगापुर में मुकीम भारतीय बिरादरी के लिए खिदमात को मजीद बेहतर बनाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने भारत और सिंगापुर के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत और उसत देने के तौर तरीकों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल आज भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज ISMR फ्रेमवर्क के तहत आला सतह के राबते के सिलसिले में सिंगापुर के 3 रोजा दौरे पर रवाना हुए। तकरीबन 70 सीनियर कारोबारी रहनुमाओं पर मुश्तमिल भारतीय कारोबारी वफद भी उनके हमराह है, जिसका मकसद भारत और सिंगापुर के इक्तसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना।

है। दौरे के दौरान जनाब गोयल कल चौथी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आईएसएमआर भारत सिंगापुर जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए आला सतह का वजारती प्लेटफॉर्म है। गोलमेज कॉन्फ्रेंस के साथ चौथी भारत सिंगापुर कारोबारी गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी मुनाकिद होगी, जिसके बाद मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे। जनाब गोयल के हमरा वजीर खजाना निर्मला सीतारमन, वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर और इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महकमे के वजीर अश्विनी वैष्णव भी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर तिजारत सिंगापुर के अपने हम मनसब और सिंगापुर के दिगर आला सतह के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। जनाब गोयल सिंगापुर के वजीर आजम लॉरेंस वोंग से भी मिलेंगे। इसके अलावा वो आलमी मालियाती टेक्नोलॉजी नेटवर्क YPO ग्लोबल और मिल्केन इंस्टीट्यूट के सीनियर नुमाइंदों के साथ कई मीटिंग करेंगे। इत्तलात व नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की इक्तसादी तरक्की को अब आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है और मुल्क 6-8% की शरह तरक्की से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह तरक्की 4 अहम सतूनों समाजी, डिजिटल और फिजिकल बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी, सभी की शमूलियत वाली तरक्की और मैन्युफैक्चरिंग पर खसूसी तवज्जो पर मरकूज है। आज नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान सरमायाकारी समिट 2026 से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि सरमायाकारी मुल्क की तरक्की के सफर का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारत हर साल तकरीबन 130 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से मुतालिक काले धन को जायज बनाए जाने की छानबीन के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर और दिल्ली में 10 ठिकानों पर तलाशी ली है। ईडी ने कहा है कि तलाशी की कार्रवाई काले धन को जायज बनाए जाने की रोकथाम से मुतालिक 2002 के कानून के तहत अंजाम दी गई। उसने मजीद कहा कि यह छानबीन सरकारी कॉन्ट्रैक्ट फंड को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट के जरिए मुबैना तौर पर दूसरे कामों में लगाए जाने से मुतालिक है। लखनऊ में कायम मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, जिसके उत्तर प्रदेश के साबिक काबीना वजीर आजम खान अपने कुंबे के अरकान और साथियों के साथ असल ट्रस्टी हैं, रामपुर जिले में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और एक पब्लिक स्कूल चलाता है। ईडी ने कहा है कि तलाशी की इन कार्रवाइयों का मकसद सरकारी फंड को दूसरे कामों में लगाए जाने से मुतालिक माली रिकॉर्ड्स, दस्तावेजात और डिजिटल शवाहिद हासिल करना था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत के साबिक सदर आजहानी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को उनके यौम पैदाइश पर गुलाह अकीदत नजर किए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें सदर थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में आग लगने के वाकये के सबब होने वाले जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने महलूकीन के कुम्मों से ताजियत का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ भी की। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन आज उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वो देहरादून की इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी के 2025-27 बैच के तरबियत पाने वाले अफसरों से खिताब करेंगे। आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में भारत में ऑस्ट्रिया के सफीर डॉक्टर रॉबर्ट ज़िसे से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान तरफैन ने जमहूरियत और चुनाव बंदोबस्त से मुताल्लिक भारत की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए विजन के मुताबिक जमहूरी ताउन को मजबूत बनाने के अपने मुशरक आज़म का यादा किया। इसके अलावा उन्होंने चुनाव बंदोबस्त और चुनावी अमले की तरबियत के शोबे में बाहमी ताउन को मजीद उसत देने के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तफाक किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तकबिल में पेपर लीक होने के वाकयात की रोकथाम की खातिर महफूज बुनियादी ढांचे में इम्तिहान के मखसूस मराकज, साइबर सिक्योरिटी निज़ाम, इदारा जाती महारत और इम्तिहानात से मुतालिक कामकाज के लिए एक मुस्तकिल निज़ाम के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को इदारा जाती शक्ल दिए जाने की जरूरत का इरादा किया है। नीट UG 2026 पेपर लीक से वाबस्ता दरखास्तों की समाअत करते हुए अदालत आलिया ने तालीम की वजारत के सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वो इस बात की तफसील बयान करते हुए एक हलफनामा दाखिल करें कि राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशात को नाफिज करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। मर्दों के

0: क्रिकेट में भारत ने गाली में पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। आज खेल के पांचवें दिन श्रीलंका की पूरी टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 206 रन बनाकर आउट हो गई, जबकि जीतने के लिए उसे 372 रन का निशाना मिला था। इस तरह भारत ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। इससे कबल भारत ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 193 रन बनाए थे। हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम आज नीदरलैंड्स के एम्स्टरवीन में FIH हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान का सामना करेगी। ये मैच भारतीय वक्त मुताबिक 3:00 PM शुरू होगा। पंजाब पुलिस ने नए भर्ती होने वाले दिफाई एहलकारों की तस्दीक के अमल को तेज करने के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल वजारत दिफा से मुंसलिक है, जो नए भर्ती होने वाले एहलकारों की असनाद और दस्तावेजात की तस्दीक करेगा। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने लैंड पूलिंग पॉलिसी 2026 को नोटिफाई किया है। इस पॉलिसी के तहत जमीन के मालिकान और तरक्याती इदारों की रजाकाराना शमूलियत के जरिए मनसूबा बंद शहरी तरक्की के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि पायदार इक्तिसादी तरक्की को बरकरार रखने के लिए भारत हर साल तकरीबन 130 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट UG पेपर लीक के बाद इम्तिहान में इसलाहात से मुतालिक राधा कृष्णन कमेटी की सिफारिशात के नफाज के लिए मरकज से जवाब मांगा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन चौथी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सिंगापुर में वजारती वफ्द की क्यादत कर रही हैं। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने गाले में पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। और हॉकी में नीदरलैंड्स में जारी FIH वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मुकाबले में भारत की मर्दों की टीम का सामना रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Union Minister Ashwini Vaishnaw says government investing around $130 billion in public investment every year, resulting in sustained economic growth. Supreme Court seeks Centre's response for implementing Radhakrishnan Committee's recommendations on exam reforms after NEET UG paper leak. Weather Department forecasts very heavy rainfall over parts of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. India defeats Sri Lanka in first test by 165 runs. Manav Suthar takes 6 wickets. And in men's hockey, India to take on arch rivals Pakistan in FIH World Cup at Wagener this afternoon. And now the news in detail. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw has said that India's economic growth is now recognized globally and the country is growing at a growth range of 6-8%. He said this growth story is driven by 4 key pillars: investment in social, digital and physical infrastructure, inclusive growth and a strong focus on manufacturing. Addressing the Uttar Pradesh Japan Investment Summit 2026 in New Delhi today, Mr. Vaishnaw said investment is an important part of the country's growth journey, with India investing around $130 billion every year. The minister said increased economic activity has enabled the country to maintain sustained growth, generate new employment opportunities and ensure that the benefits of growth reach every section of society.
2: The investment story is very important part of our entire growth journey. From a very minuscule investment that we used to make in our country, the public investment, today we have reached a level where we are making a sustained public investment of $130 billion every year. That much economic activity has helped our country grow in a very sustained manner, generate lots of new employment opportunities and make sure that the benefits of growth reach every segment of this society.
1: Speaking on the occasion, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath said the partnership between India and Japan is based on shared growth, technology and prosperity. He highlighted that Uttar Pradesh has now emerged as one of India's top 3 economies and has become a growth

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
1: इन्वेस्टमेंट स्टोरी, हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में एक डॉलर के निवेश पर करीब 3.6 डॉलर की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
2: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
3: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और जापान सहयोग महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े हैं।
4: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम तो मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पेरिटी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरी कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्री कोइजुमी ने आज मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4थी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गई। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
5: इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी परिसर की आधारशिला भी रखी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय है। इसके अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास तथा सतत विकास सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाती है और नए अवसर तलाशे जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में भारत सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। NEET UG 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे एक हलफनामा दाखिल करें जिसमें ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। NEET UG 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद पूर्व ISRO अध्यक्ष डॉ. के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय DNA और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 800,000 महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जबकि इसके बाद 500,000 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन, चालक और सहायक दिया जाएगा। इसके अलावा ईंधन खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तरी चेन्नई में 300 करोड़ रुपए की लागत से 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा राशि 5,00,000 रुपए से बढ़ाकर 25,00,000 रुपए करने की भी घोषणा की। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
6: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है, खासकर भद्रक जिले में, जहां बैतरणी और सालंदी नदियों के उफान के कारण बड़े इलाके जलमग्न है। वासुदेवपुर, तिहिड़ी, धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली ब्लॉक के गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज 297 स्कूल और 395 आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ओडराफ के जवानों ने केंद्रापड़ा जिले के कुलसाही गाँव में एक सरकारी आवासीय स्कूल में 4 दिन से फंसे 230 छात्रों को बचाया है। आईएमडी ने शुक्रवार से रविवार तक उड़ीसा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कल देर रात हुई तेज वर्षा से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
7: धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त होने से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दालमा, चौदास और व्यास घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय और धारचूला क्षेत्र से कट गया है। प्रशासन ने पुल को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। बीआरओ के अनुसार आज शाम तक डायवर्जन रूट का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। वहीं टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
8: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहले से पंजीकृत और वैध RFID कार्ड वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं से श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नए पंजीकरण पर फैसला मौसम और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का 455 श्रद्धालुओं वाला तीसरा जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ के राजपुरा गांव के लिए रवाना हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मीनाक्षी।
0: भारत ने गोल में 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में आज श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 200

0: और 6 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में नीदरलैंड्स में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने 2 मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मकाऊ की जोड़ी को उन्होंने हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल हैं। 16 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट दर्ज की गई। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 76,871 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,045 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने NEET UG पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, आज हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जिन्हें पर्दे पर देखते ही दर्शक समझ जाते हैं कि कहानी अब कुछ खास होने वाली है। तो आज जिन कलाकार के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एक ऐसे ही कलाकार हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता हो, आवाज में ठहराव हो या फिर सिर्फ एक नज़र से सामने वाले को डरा देने वाला अंदाज, ऐसे कलाकारों में एक नाम बेहद खास है। वो है उत्पल दत्त।

श्रोताओं, आज की पीढ़ी उत्पल दत्त को खास तौर पर गोलमाल की भवानी शंकर के रूप में याद करती है। एक ऐसा किरदार जो अनुशासन, परंपरा और अपने बनाए नियमों को लेकर इतना सख्त है कि उसके सामने आधुनिक जमाने की छोटी सी बात भी बड़ी समस्या बन जाती है। लेकिन उत्पल दत्त सिर्फ गोलमाल के भवानी शंकर नहीं थे, वो अभिनेता थे, रंगमंच के बड़े कलाकार थे, निर्देशक थे, लेखक थे और सामाजिक राजनीतिक विचारों को अपने थिएटर के माध्यम से सामने रखने वाले बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उनका सफर इतना लंबा और विविधता की तरह था, अगर उत्पल दत्त को सिर्फ एक कॉमेडी अभिनेता कह दिया जाए तो ये उनके पूरे व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं होगा। उत्पल दत्त का जन्म 1929 में तत्कालीन ब्रिटिश भारत के बरिसाल क्षेत्र में हुआ था, जो आज बांग्लादेश में है। बचपन से ही उनका झुकाव साहित्य की तरफ था, अभिनय और थिएटर की तरफ उनका रुझान जो है लगातार वो बढ़ता था। उनके समय में रंगमंच केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं हुआ करता था, थिएटर सामाजिक और राजनीतिक विचारों को लोगों तक पहुँचाने का माध्यम हुआ करता था और वो एक बहुत ही शक्तिशाली रोल प्ले करता था। यहीं से उनके अभिनय शैली को एक मजबूत आधार भी मिला। उनकी आवाज, संवाद बोलने का तरीका और मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की क्षमता धीरे धीरे उन्हें एक अलग पहचान देने लगी। उत्पल दत्त का सबसे बड़ा योगदान भारतीय रंगमंच में माना जाता है। उन्होंने थिएटर को केवल मनोरंजक तक सीमित नहीं रखा था, उनके नाटकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की झलक दिखाई देती थी। वो मानते थे कि कलाकार का समाज के प्रति भी एक दायित्व होता है और इसी सोच के कारण उनका थिएटर कई बार सत्ता व्यवस्था पर भी सवाल उठाने वाला हुआ होता था। उन्होंने कई नाटक भी लिखे, उनका निर्देशन भी किया, उनमें अभिनय भी किया, यानी कि मंच के पीछे लेखक निर्देशक भी वही और मंच पर सामने दिखाई देने वाले अभिनेता भी वही। यही बहुमुखी प्रतिभा आगे चलकर उनके फिल्मी करियर का सबसे बड़ा साधन बना, ताकत बना।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी। और आज बात हो रही है एक बहुत ही मजे हुए कलाकार रंगकर्मी की, उत्पल दत्त नाम है जिनका। तो अब बात करते हैं उनकी फिल्मों में प्रवेश। अभी तक हमने सुना कि कैसे वो रंगमंच की दुनिया में छाए हुए थे, लेखन करते थे, अभिनय भी करते थे, निर्देशन भी करते थे।

दूसरी तरफ कॉमेडी करते थे, व्यंग करते थे, और ये सभी चीजें बहुत ही प्रभावशाली लगती थी। भुवन शोम ने उनकी पहचान को बदल दिया। 1969 में ये मूवी आई थी और इस तरह से इस फिल्म में जो उनका अभिनय था उसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान मिला था। और खास बात यह थी कि जिस अभिनेता को आगे चलकर लोग हिंदी फिल्मों में हास्य और गंभीर भूमिकाओं के लिए याद करने वाले थे, उनके भीतर का गंभीर अभिनेता इस फिल्म में पूरी ताकत के साथ दिखाई दिया। 1970 के दशक में जो हिंदी भाषी दर्शक थे, जो हिंदी फिल्मों को देखा करते थे, उनके यहाँ पर फेमस हो गए उत्पल दत्त। उनकी शुरुआती हिंदी फिल्मों में साथ, हिंदुस्तानी, गुड्डी, बॉम्बे टॉकी, मेरे जीवन साथी, सबसे बड़ा सुख और कई बहुत सारी ऐसी फिल्म थी, लेकिन हिंदी सिनेमा ने उन्हें एक ही तरह की भूमिका में बांध कर नहीं रखा था। कभी वो पिता बनते तो कभी अधिकारी, कभी सख्त व्यक्ति, कभी खलनायक और कभी ऐसे किरदार में दिखाई देते जिसमें उनकी कॉमेडी का अंदाज सामने आया और उनके चेहरे के हाव भाव आवाज का इस्तेमाल निर्देशक अलग अलग तरीके से करते थे। और गुड्डी और हिंदी दर्शकों में पहचान उनको इस फिल्म से मिली जो कि 1971 में आई थी, गुड्डी फिल्म, जिसमें उन्होंने निभाया था प्रोफेसर गुप्ता का किरदार।

खास तौर पर तो उत्पल दत्त की को याद किया जाता है। कई किरदार और फिल्में ऐसी हैं जैसे गुड्डी में प्रोफेसर गुप्ता, अमानुष में गंभीर भूमिका में, गोलमाल में भवानी शंकर का अंदाज, नरम गरम में उनका हास्य अंदाज, शौकीन, अंगूर, रंग बिरंगी, पसंद अपनी अपनी, किसी से ना कहना, लाखों की बात, जॉन जॉनी जनार्दन, साहेब, राम बलराम, द ग्रेट गैम्बलर, कई अन्य फिल्मों में उनके जो किरदार थे वो बहुत ही यादगार रहे। उनकी हिंदी फिल्मोग्राफी 1970 और 1980 के दशकों में विशेष रूप से काफ़ी सक्रिय रही। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने हिंदी फिल्मों में खुद को केवल एक कॉमेडी तक सीमित नहीं रखा, वो एक ऐसे चरित्र अभिनेता रहे जो कहानी की जरूरत के अनुसार अपना पूरा व्यक्तित्व बदल लिया करते थे। उत्पल को कई अभिनय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। भुवन शोम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इसके अलावा गोलमाल जैसी फिल्मों के लिए उन्हें फिल्म फेयर के हास्य अभिनेता वर्ग में भी सम्मान मिला। लेकिन उनके लिए पुरस्कार शायद उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं थी। उनकी असली उपलब्धि थी कि उन्होंने थिएटर और सिनेमा दोनों में अपनी अलग अलग पहचान बनाई।

हमारे बहुत सारे श्रोता साथी भी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और उन्होंने भी अपने संदेश भेजे हैं ईमेल के माध्यम से। तो छत्तीसगढ़ चुड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा जुड़ रहे हैं अपने सभी परिवारी जन के साथ में। और दिग्दर्शन कविता गौर जुड़ रहे हैं मेरठ कैंट से, लिखते हैं कि एक ही कलाकार कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, बेहतरीन जानकारी, दिलचस्प किस्से और दिल को छू लेने वाले गाने बहुत ही सुकून दे रहे हैं, आपको उत्कृष्ट तथा उत्तम प्रस्तुतिकरण के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। तो धन्यवाद आपको भी। वडिंगखेड़ा से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जुड़े हैं कार्यक्रम में। और सिंहभूम चाईबासा झारखंड से जुड़े हैं हमारे श्रोता शिवा गोप, प्रेम गोप, कविता, कपिल गोप, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपा जी। और साथ ही ये संदेश आया तुलसी मस्कीन जी का, ये लिखते हैं, ये बिहारी कॉलोनी चाहतरा दिल्ली से जुड़ रहे हैं, लिखते हैं एक ही कलाकार में आज उत्पल दत्त के बारे में बहुत उम्दा जानकारी मिल रही है, नाइस गीत से आगाज आने वाला पल। जी बिल्कुल। और अगला संदेश अमर रमेश कुमार खत्री का है, चनेश्वर गोट कराची से। और पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक जुड़ रहे हैं। टकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अभिराज जुड़ रहे हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहार जुड़ रहे हैं, लिखते हैं कि आज एक ही कलाकार के अंतर्गत बहुत बढ़िया शानदार बेहतरीन बातें, रोचक किस्से सुनाए, नगमे भी सुनवाए, बेहतरीन प्रस्तुति रही, हमें भी बेहतरीन जानकारी आपने दी जो हमारे ज्ञान में इजाफा करती हैं। तो मैं श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस तरह से हमारा भी हौसला अफजाई करते हैं। और अगला संदेश है दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से मस्कीन दादा का, और ये लिखते हैं कि उत्पल दत्त के बारे में जो जानकारियां मिल रही हैं काफ़ी अच्छी लग रही हैं। हीरामणि वर्मा दतरंगी भाटपारा भाटापारा से जुड़ रहे हैं, लिखते हैं एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज उत्पल दत्त जी पर केंद्रित कार्यक्रम में उत्पल दत्त साहब जी की फिल्मी सफरनामा पर रोचक जानकारी के साथ बेहतरीन गीत सुनने को मिल रहे हैं, यादगार प्रस्तुति के लिए बधाई। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग, अशोक कुमार सहगल जुड़ रहे हैं। इसके अलावा पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जुड़ रहे हैं, शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए बधाई। फिल्म अमानुष का सॉन्ग सुना बहुत ही अच्छा लगा, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल सहानी पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से जुड़ रहे हैं हमारे श्रोता। तो भाई ये जो कार्यक्रम में हमारे साथ सभी श्रोता जुड़ रहे हैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज कार्यक्रम में बात हो रही थी उत्पल दत्त के बारे में, और उत्पल दत्त एक ऐसा एक ऐसे कलाकार थे जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, एक अभिनेता भी थे, निर्देशक भी थे, लेखक भी थे और सबसे बढ़कर एक बहुत ही शानदार रंगकर्मी थे। और आज के ज़माने के लोग उन्हें चाहे याद करें या ना करें, लेकिन गोलमाल फिल्म के भवानी शंकर के रूप में ज़रूर याद करते होंगे। तो चलिए चलते चलते एक और उन्हीं की फिल्म का गीत सुन लेते हैं।

इसी के साथ एक ही कलाकार कार्यक्रम में मुझे यानी विजेता को दीजिए इजाजत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। ये कार्यक्रम वो है जहां हम बात करते हैं बॉलीवुड की उस गोल्डन एरा की, जहां पर ब्लैक एंड वाइट के काली और सफ़ेद रंग से सिनेमा पर इस तरह की कहानियां उतरती थीं जो आज तक दिलों में रह जाती हैं। और आज जिस तरह की फिल्मों की हम बात कर रहे हैं, ज़्यादातर उस वक्त पर जो फिल्में हुआ करती थी वो सामाजिक परिदृश्यों पर आधारित फिल्में होती थीं, क्योंकि कहा भी जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। और वाकई वही आईना उस दौर की फिल्मों में ख़ास तौर से देखने को मिलता था, उस तरह की इमेज उन फिल्मों में देखने को मिलती थी जो वाकई में समाज में हो रहा होता था। तो आज ऐसा ही एक मुद्दा इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं, जहां पर हम बात करेंगे अमीर और गरीब के बीच की प्रेम कहानियों पर आधारित फिल्मों की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे एक ऐसी फिल्म की जहाँ पर एक राज कपूर की फिल्म के बारे में बात करते हैं जो कि 1951 में आई थी। इस फिल्म में नरगिस साथ में थी और ये इंडियन सिनेमा की सबसे पहचान रखने वाली अमीर गरीब प्रेम कहानियों में से एक है। राज कपूर हालात की वजह से एक गरीब चोर पॉकेटमार बन जाते हैं, जबकि जो रीता है जिन्होंने किरदार निभाया नरगिस जी ने, एक अमीर परिवार की से ताल्लुक रखती हैं और लॉयर बन जाती हैं। रीता राज कपूर के भोलेपन और उसकी सच्चाई से प्यार करती हैं और समाज के खिलाफ जाकर कोर्टरूम में उनका केस लड़ती हैं। तो इस तरह की प्लॉटिंग पर ये फिल्म आधारित है, जहां पर दिखाया गया है कि अमीर और गरीब के बीच का ये प्यार है ये किस तरह से परवान चढ़ता है।

1962 में एक फिल्म आई थी अमीरी गरीबी। इस तो फिल्म के नाम से ही अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ पर अमीर और गरीब के बारे में बात हो रही है। ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित एक बेहद खूबसूरत और अलग तरह की अमीर गरीब प्रेम कहानी है। कहानी में देवानंद एक बेहद अमीर परिवार के इकलौते पोते हैं जिनका नाम है आनंद, और वो ये देखने के लिए कि क्या कोई उनसे उनके पैसे के बिना भी प्यार कर सकता है, अपना घर इसलिए छोड़ देते हैं, इस भाव से छोड़ देते हैं और एक गरीब बस्ती में जाकर रहना शुरू कर देते हैं। वहाँ उन्हें एक आम और बहुत भोली लड़की मिलती है, नाम है नूतन। उसे प्यार हो जाता है जो उन्हें एक आम गरीब लड़का समझकर मोहब्बत कर बैठती है।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं, मतलब आनंद ले रहे हैं मैटिनी मेलोडीज का। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट विजेता चतुर्वेदी, और आज बात हो रही है उस दौर की, उन फिल्मों की जहां पर अमीर और गरीब का प्यार दिखाया गया है, यानी कि समाज का वो मुद्दा जो कहीं ना कहीं आज भी है ही, लेकिन जो प्यार है ना, वो ना तो अमीर देखता है ना वो गरीब देखता है, वो बस प्यार देखता है, वो बस अट्रैक्शन देखता है। और ऐसी एक फिल्म थी 1960s में आई थी, नाम था बम्बई का बाबू। चोरी और अमीर घराने फिल्म में रोमांस के साथ एक गहरा ट्विस्ट था। देवानंद एक गरीब क्रिमिनल बनते हैं, चोर बनते हैं, जिनका नाम है बाबू, और हालत की वजह से वो चोर बन जाते हैं, गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं, और वो धोखे से एक अमीर परिवार का खोया हुआ बेटा बनकर उनके घर में रहते हैं, और वहाँ उस परिवार की बेटी माया से उन्हें प्यार हो जाता है, जहां पैसा और झूठ की दीवार उनके बीच में आ जाती है। तो 1960s की बम्बई का बाबू फिल्म का ये गाना आपके लिए है।

ब्लैक एंड व्हाइट के एरा में जिस तरह से फिल्मों को इस्टेब्लिश किया जाता था, प्रस्तुत किया जाता था, वो अपने आप में एक अलग तरह के अंदाज से जो आज तक भी लोग जब उस फिल्म को उन फिल्मों को देखने बैठते हैं या फिर जिन्होंने देखी हुई होती है वो सब कुछ ताज़ा हो उठता है। और ऐसी एक और फिल्म के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, फिल्म का नाम प्यासा। गुरुदत्त जी की इस महान फिल्म में प्यार और सामाजिक दर्जे का एक अलग ही रूप दिखाया गया था। कहानी है विजय की, जिसको रोल प्ले किया गुरुदत्त साहब ने, एक गरीब और नाकाम शायर हैं और जिन्हें समाज ठुकरा देता है, और उनकी जो प्रेमिका है वो काफ़ी अमीर है जिनका नाम है मीना, और ये किरदार निभाया माला सिन्हा ने, उन्हें छोड़ देती है उनकी नाकामयाबी की वजह से और एक अमीर व्यक्ति से शादी कर लेती हैं। ऐसे में गरीब पर नेक दिल की गुलाबो नाम की महिला जो किरदार निभाया वहीदा रहमान ने, विजय के संगीत को और शायरी को पसंद करती है और उन्हें वो प्यार देती है और साथ ही साथ उनकी मदद भी करती है। ये है फिल्म प्यासा की कहानी।

0: अब बात करते हैं 1974 में आई एक बेहद सटीक फिल्म अमीर और गरीब। सबसे सटीक उदाहरण है ये अमीर गरीब की। अगर फिल्म प्रेम कहानी की अगर बात करें तो ये जो फिल्म है ये पूरी तरह से इसी थीम पर बनी है। इसमें देवानंद एक आम म्यूजिशियन बने हैं, बोनी नाम है, और जो रात में बगुला भगत बनकर अमीरों को लूट कर गरीबों की मदद करता है और उन्हें सोनी यानी कि हेमा मालिनी से प्यार हो जाता है और जो बाद में एक बेहद अमीर परिवार से मिल जाती है और दोनों की मोहब्बत में अमीर और गरीब की दीवार खड़ी हो जाती है।
1: मैं बहुत अमीर आदमी नहीं हूँ, तो मेरे पास बिलियन पैसे हैं या करोड़ों या अरबों मेरे जेब में पड़े हुए हैं, वो कहाँ ले जाना है? We should spend it here for good things. I earned it. My experience is my wealth.

मैं बहुत अमीर आदमी नहीं हूँ, तो मेरे पास कोई बिलियन पैसे हैं या करोड़ों या अरबों मेरे जेब में पड़े हुए हैं, वो कहाँ ले जाना है? वी शुड स्पेंड इट हियर फॉर गुड थिंग्स, आई हैव अर्नड इट, माय एक्सपीरियंस इज माय वेल्थ।

चलिए आपको फिर दोबारा से लिए चलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट एरा की तरफ। 1957 की एक बेहद कमाल की फिल्म नया दौर, दिलीप कुमार और वैजंती माला फिल्म में अमीर मतलब वैजंती माला जो है वो एक अमीर जमींदार की टकरार और गरीब मजदूरों से होती है, जिसके बीच एक प्यारी सी प्रेम कहानी बनती है। कहानी है शंकर की, एक गरीब टांगे वाला है जो गांव के सभी गरीबों के हक के लिए लड़ता है, और गांव का एक अमीर जमींदार का बेटा वहां बस आकर मशीनें लगाना चाहता है जिससे गरीबों का रोजगार छिन सकता है। तो शंकर इस टकरार के बीच रजनी से प्यार कर बैठता है, और उनकी मोहब्बत जो है वो अमीर और गरीब के बीच का फासला दिखाती है। तो यही इस फिल्म की खूबसूरती है, यही इस फिल्म की ताकत है कि कैसे एक गरीब लड़का जो कि एक टांगा चलाता है, एक अमीर लड़की जो एक जमींदार की बेटी है, उनके बीच का जो प्यार है वो किस तरह से पनपता है और आगे बढ़ता है और सफल हो जाता है।

0: उर्दू मजलिस के सामईन की खिदमत में मेरा आदाब। प्रोग्राम हिफ्ज़ान सेहत के साथ हाजिर हूँ मैं मोहम्मद अली कमाल। तंदुरुस्ती है तो है दुनिया में हर नेमत का लुत्फ, तंदुरुस्ती है तो है दुनिया में हर नेमत का लुत्फ, गर नहीं सेहत तो फिर ये ज़िंदगी बेकार है। सामईन, हमारी सेहत कुदरत का अता करदा एक बेहतरीन तोहफा है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। ज़िंदगी की तमाम नेमतें और खुशियाँ सेहत के बगैर अधूरी हैं। अगर इंसान सेहतमंद ना हो तो वो दुनिया की किसी भी आसाइश से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकता। सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। जब हम जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त होते हैं तो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसलिए बीमारियां हमसे जितनी दूर रहें बेहतर है। हम रोज़ाना छोटी मोटी एक्सरसाइज अगर करते हैं तो असाबी बीमारियों से तो बचा ही जा सकता है, इसके साथ ही दूसरी बीमारियों से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वर्जिश और फिजियोथेरेपी, बेहतर सेहत की जमानत। आइए इस मौजू के तहत सुनते हैं डॉक्टर शमीम अख्तर की बातचीत। आपसे गुफ्तगू कर रही हैं मोहतरमा रेशमा फारूकी।
1: समीन, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में कमर दर्द की बात करें, गर्दन के दर्द की बात करें, या फिर घुटनों के दर्द की बात करें, या फिर कंधों में तकलीफ और मांसपेशियों में खिंचाव जैसी शिकायतें आम होती जा रही हैं। लंबे वक्त तक कुर्सी पर बैठकर काम करना, मोबाइल और कंप्यूटर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, या फिर जिस्मानी सरगर्मी की कमी और गलत पोस्चर हमारी सेहत पर बुरा असर डालता है। ऐसे में फिजियोथेरेपी एक अहम इलाज के तौर पर सामने आती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शमीम अख्तर रिजवी साहब, जो कई हॉस्पिटल्स में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम हिफ्ज़ानी सेहत में।
2: शुक्रिया
1: डॉक्टर साहब। शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की, और सबसे पहले हम अपने सामईन के लिए ये जानना चाहेंगे कि आखिर फिजियोथेरेपी है क्या।
2: जी, फिजियोथेरेपी एक्चुअली ऐसा है कि बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत अहम हिस्सा है फिजियोथेरेपी। कई बार गर्दन में दर्द होता है, घुटनों में होता है, कंधों में होता है, उस

0: उसके बाद रिस्ट जो बोलते हैं कलाई, उसमें होता है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए, और हम फिजियोथेरेपिस्ट एट द इंजरी साइट पे काम करते हैं। सपोज एक लोकल एरिया है, कमर में पेन है, आजकल बहुत आम है कमर का दर्द, सियाटिका, उसको किस हिसाब से ठीक किया जा सकता है विदाउट सर्जरी, विदाउट मेडिसिन, बिना दवाई के उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, पोस्चर कैसे करेक्ट करना है, किस हिसाब से हम लोग को चलना है, उसको मेडिकल टर्म में गेट बोलते हैं, उसको हमको किस हिसाब से चलना है, उन सारी चीजों को हम लोग ये करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वेंटिलेटर पे भी पेशेंट होता है, वहां भी फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। जी, जैसे चेस्ट फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है। कई बार ऐसा होता है कि पैरालिटिक केस है, मान ले किसी को लकवा मार दे, लकवा में क्या है कि उसको फिजियोथेरेपिस्ट ही ठीक कर सकता है, उसके एक्सरसाइजेस होती है, कुछ मशीन लगते हैं, ये सारी चीजें। और हाँ, लकवा जिक्र किया मैंने, उसमें एक्सरसाइज है, उसमें देख हम ये देखते हैं कि किस कैटेगरी का है, उसमें फिर डिसाइड करते हैं किस कैटेगरी का है, तो कितना एक्सरसाइज देना है और कितना नहीं देना है।
1: तो फिजियोथेरेपी सिर्फ चोट की बात करें या फिर दर्द की बात करें या फिर कोई अगर सर्जरी होती है तो क्या सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी कराई जा सकती है?
0: खाली ऐसा नहीं है कि सिर्फ चोट लगे तो ही फिजियोथेरेपी लेंगे या दर्द हो रहा है। अब देखिए, बहुत कॉमन है आजकल घुटने चेंज हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड नी रिप्लेसमेंट। बहुत लोगों के कमर के हड्डी चेंज हो रहे हैं, हिप रिप्लेसमेंट, तो उस पे फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल है। उसमें हमें कुछ मसल्स पे फोकस करने पड़ते हैं कि कौन से मसल, जैसे थाई के मसल्स, उसके पीछे के मसल्स जो हैं, उस मसल्स को काफ बोलते हैं, पिंडली जिसको बोलते हैं हिंदी भाषा में, उस मसल्स पे काम करते हैं। उसके बाद उसको हम करेक्ट करवाते हैं कि कैसे खड़ा होना है, कैसे मूव करना है। सर्जरी के बाद अगर फिजियोथेरेपी ना हो तो कई बार पेशेंट से हिस्ट्री मिलता है हमें, मैंने 10 दिन 15 दिन लिया था फिजियोथेरेपी, उसके बाद छोड़ दिया मैंने, लेकिन उसके बाद उसको दिक्कतें बढ़ती है। घुटने चेंज की बात करें, नी रिप्लेसमेंट की बात, मिनिमम 3 मंथ तो लेना चाहिए
1: जी।
0: मेरा सजेशन आपके सामने से सबसे ये होगा, मिनिमम 3 मंथ्स लें, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती है। फिर थोड़ा थोड़ा आप भी एक्सरसाइज करें तभी जाके ठीक होगा, क्योंकि उसके फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है, बोन किस हिसाब का है, इम्प्लांट किस हिसाब का लगा, जो मेटल वगैरह लगते हैं उस पर काम करते हैं हम लोग।
1: बिल्कुल, आजकल आमतौर पर देखा जाता है कि कम उम्र में ही कमर का दर्द की बात करें या फिर गर्दन के दर्द की बात करें, मतलब ये काफी शिकायतें सामने आ रही हैं कम उम्र में।
0: कम उम्र में होने का 2-3 रीजन है। एक तो लैपटॉप पे हम लोग काम करते हैं, हमारा पोस्चर फॉरवर्डेड हो जाता है, मतलब आगे की तरफ कंधे हमारे झुक जाते हैं। दूसरा, मोबाइल बहुत अहम है
1: जी,
0: हम लोग बैठे भी हैं तो मोबाइल यूज कर रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: तब भी हमारा गर्दन, और मोबाइल कई बार ऐसा होता है लोग घंटों घंटों यूज करते हैं, कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है
1: जी, जी।
0: कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, मोबाइल पे गेम खेलते हैं, इन चीजों से थोड़ा बचना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा लैपटॉप का जरूरत है ही है, उसको यूज करना ही करना है, मोबाइल का यूज करना है, तो उसको थोड़ा मोबाइल को ऊपर की तरफ रखें ताकि आपकी गर्दन सीधा रहे
1: जी।
0: और लैपटॉप, आप सपोज आप जैसे चेयर पे बैठे हैं, आपको गर्दन झुका के लैपटॉप पे काम करना पड़ेगा, बट आपको ऑलरेडी गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द हो ही रहा है, तो कैसे बचाएं? तो क्या करें, लैपटॉप का जो हाइट थोड़ा बढ़ा दें ताकि आपका पोस्चर करेक्ट रहे। इन चीजों को हमें ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ एक्सरसाइजेस हैं, इसको खुद से करना चाहिए गर्दन पे, जैसे हम उसको आइसोमेट्रिक बोलते हैं, जैसे हाथ आगे दे दिया, गर्दन से धक्का दे रहे हैं साइड से, चारों तरफ से। और जब भी फिजियोथेरेपी लें, मेरा आपके जितने भी लिसनर हैं, सबसे ये कहूंगा किसी एक्सपर्ट से ही लें। आजकल बहुत आम हो रहा है कि जो वीडियोस बना देते हैं उन्हें खुद नहीं पता कि कितना एक्सरसाइज करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, वो लोग क्या फॉलो करते हैं, फिर बाद में आके हमारे पास आते हैं कि सर ये परेशानी हमारी बढ़ गई।
1: आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो अनट्रेन्ड पहलवान होते हैं उनके पास भी आम लोग चले जाते हैं कि शायद जल्दी ठीक हो जाएगा
0: जी,
1: लेकिन नतीजा जो सामने आता है वो बिल्कुल उलट होता है।
0: सही,
1: और ज्यादा उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है।
0: कई बार ऐसा भी आया है कि PIVD हो गया, स्लिप डिस्क जो बोलते हैं, वो हो जाता है पेशेंट को, हमने किया है ट्रीट, लेकिन उसके बाद फिर ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक करना टाइम लग जाता है। फिर जिस भी इंसान के पास जाएं आप सब, पहले एक्सपर्ट देख लें कैसा है, उसके बाद जाएं, चाहे किसी से भी इलाज करवाएं।
1: बिल्कुल, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आजकल लैपटॉप पर हमें घंटों बैठकर काम करना पड़ता है, सिस्टम सामने होता है और हम कंटिन्यूस बैठे रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारी कमर पर इसका बुरा असर पड़ता है।
0: कमर पे भी पड़ता है,
1: बिल्कुल,
0: गर्दन पे पड़ता है, सबसे अगर पड़ता है कमर और गर्दन पे पड़ता है।
1: अगर जैसे दर्द तो होगा ही, ऑब्वियसली उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना ही होगा, लेकिन उससे पहले क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए कि अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो आप किस तरह का पोस्चर लें या फिर कोई एक्सरसाइज ऐसी हो जो आप सजेस्ट कर सकें?
0: एग्जैक्टली वही मैं बताना चाह रहा था कि आपका जो चेयर का लेबल है वहां से शुरू करते हैं, चेयर का लेबल थोड़ा डाउन हो ताकि आपका गर्दन सीधा रहे। अगर चेयर का लेबल डाउन नहीं हो पा रहा है तो लैपटॉप का लेबल को थोड़ा ऊपर बढ़ा दें, चाहे नीचे कुछ रख दें, किताब वगैरह या रजिस्टर वगैरह रख दें, कुछ इस तरह का रख दें कि वो थोड़ा सा ऊपर हो जाए, उससे ये होगा कि आपके गर्दन का जो पोस्चर है वो थोड़ा सीधा रहेगा।

0: दूसरा अब रहा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के लिए क्या करना है, अपने हाथ को आगे रखना है, आगे की तरफ धक्का देना है, पीछे रखना है, पीछे की तरफ, ये स्ट्रेंथनिंग है।
1: हाथ जो है वो माथे पे रखना
0: जी
1: है।
0: चारों तरफ जैसे ऐसे रख दिया
1: जी,
0: फिर साइड की तरफ रख दिया
1: जी,
0: फिर दूसरे साइड की तरफ, फिर पीछे की तरफ, उससे धक्का देना है एक लेवल तक, उससे स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी। क्या होता है कि एक पोस्चर में रहते रहते मसल का जो एरिया है उसका क्या होता है, वो वीक हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है। कई बार हम क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि अपने चिन, जैसे ये ठुड्डी बोलते हैं, इस पे हाथ रख करके नीचे की तरफ दबाएं, तो उससे क्या होगा कि आपका जो एकदम जो पीछे वाला जो एरिया है उसको C1 C2 बोलते हैं मेडिकल टर्म में, तो C1 C2 एरिया में स्ट्रेंथ आएगा। ये बहुत जरूरी है। कुछ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेचिंग है। उसके लिए क्या करें कि आप सिंपल एक लकड़ी वाले चेयर में जैसे आप बैठते हैं, चेयर में बैठ जाएं, दोनों हाथ को आप चेयर के दोनों साइड में ऐसे पकड़ लें, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ। क्या करें कि गर्दन को एक एंगल बनाना है। अब मान ले सपोज राइट साइड में दाहिने साइड आपको अगर दर्द हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, टाइट फील हो रहा है, तो उसको स्ट्रेच सेल्फ कैसे कर सकते हैं, उसको क्या करें कि अपने राइट साइड में स्ट्रेच करना, तो राइट आई से लेफ्ट वाले नी की तरफ देखें, अपने आप छोटा सा एंगल बन जाता है, फिर गर्दन को धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे उस तरफ ले जाएं, वो स्ट्रेच होगा। फिर उसके बाद अब लेफ्ट साइड भी करना है, तो उसी तरह से अपने लेफ्ट आई से राइट नी की तरफ देखें, तो एक सिंपल सा एंगल बन जाता है।
1: जी जी।
0: जो ऐसे होगा धीरे धीरे धीरे धीरे स्ट्रेच होगा, ये होगा पूरा। उसके बाद क्या, अपने हाथ से एक हाथ से पीछे ले ऐसे करके,
1: यानी गर्दन पर हाथ रखें,
0: हाँ, रख करके थोड़ी सी मोबिलाइज कर दें, इससे ये हो जाएगा रिलैक्स हो जाएगा। ये तो रहा गर्दन की बात। अब आते हैं कमर पे
1: जी,
0: कमर पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है इसका। कमर पे क्या करना है कि चेयर आपका ऐसा हो कि ज्यादा सॉफ्ट ना हो, वो पोस्चर मेंटेन रहे। ऑलरेडी अगर जिसको कमर में दर्द है उसके बावजूद उसको बैठना है, तो उस केस में या तो वो बेल्ट यूज करें। कमर के लिए बेल्ट आती है हर साइज का, आपने मेडिकल शॉप में आप जाएंगे वो दे देगा आपको साइज के हिसाब से, वो यूज करें। और कोशिश करें कि कमर दर्द है उसके बावजूद आपको काम करना ही पड़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं मैं, क्योंकि लोग केयर नहीं करते इस चीज का, फिर बोलते हैं सर मेरा दर्द बढ़ गया। आप आधे घंटे बैठें, अगर इतना भी टाइम नहीं है कि बाहर निकल सकते, तो उसी जगह थोड़ी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए खड़े हो जाएं।
1: जी जी।
0: इससे ये होगा पोस्चर नॉर्मल होगा, फिर आप बैठें, फिर काम करते रहें।
1: डॉक्टर साहब, आमतौर पर ये भी आजकल के अगर मैं बात करूं, तो आजकल पहले बल्कि ऐसा सुना जाता था कि जब बुजुर्गिया जाती थी तो घुटनों में दर्द ज्यादा बढ़ जाता था और कैल्शियम की कमी अक्सर डॉक्टर्स बताते थे, लेकिन आजकल कम उम्र में ही घुटनों में दर्द ज्यादा रहता है, बच्चों के भी घुटनों में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है, तो इसकी क्या वजह है और आप इसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे?
0: देखिए, एक्चुअली होता क्या है, मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं सैनुअल फ्लूइड, बट इसको आम भाषा में लोग आजकल बोलते हैं उसको ग्रीस, वो ग्रीस कम हो जाता है घुटने का। 45 ईयर के बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे उस बनने का जो रेट है वो कम होने लगता है। फिर क्या होता है, नी जो हमारा घुटना जो है कई सारे बोन से बनता है, एक तो थाई की बोन है जिसको फीमर बोलते हैं, नीचे दो बोन है टीबिया फेबुला वो है, उसके बाद एक पटेला चक्की जैसी होती है
1: जी।
0: उसके बीच में लुब्रिकेंट होता है वही जो ग्रीस बोलते हैं
1: जी।
0: अब वो सपोज करिए वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, तो बोन आपस में टकरेंगे
1: जी।
0: जब टकराएंगे तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्ट्स टूटेंगे अंदर में। ये 45 ईयर के बाद स्टार्ट होता है। अभी मैं उस छोटे छोटे बच्चों पर भी आ रहा हूं, तो वहां क्या होता है कि फिर टकराते एक टाइम ऐसा होता है कि नी जाम हो जाता है, और फिर क्या होता है कि नी का सेप बिगड़ना शुरू हो जाता है, फिर वहां पर सर्जरी जरूरत पड़ जाती है।
1: ठीक है।
0: उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो ही आपको लगे कि मेरे घुटने में दर्द होने लगता है, सीढ़ी चढ़ते में कभी कभी दर्द नहीं होता, उतरने में ज्यादा दर्द होता है, ये भी बात है, तो उसके लिए क्या करें, स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी आपको, कुछ स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी, जैसे इसको बोलते हैं थाई मसल्स को, पीछे की मसल्स को, एक छोटा सा सिंपल सा एक टॉवल ले लें, रोल करें
1: जी।
0: उस टॉवल के ऊपर घुटना रखें और लेट करके धीरे धीरे उसको दबाएं 10 सेकंड के लिए, फिर ढीला छोड़ें, फिर दबाएं, फिर ढीला छोड़ें। उसके बाद दोनों पैर घुटने के बीच में एक पीलो रख दें, कंफर्टेबल पोजीशन, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मोटा बहुत ज्यादा पतला ना हो, दोनों पैर से पीलो को दबाएं
1: जी,
0: ये स्ट्रेंथ होगी। फिर आपको क्या करना है, एक मेडिकल टर्म आता है SLR, सिंपल भाषा में उसको कहते हैं पैर उठाना है,
1: पैर उठाना,
0: हाँ पैर सीधा करके उठाना है, तो उसका ध्यान रखना है कि 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, नॉट मोर देन 45, उससे थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा। उससे ये आएगा कि स्ट्रेस आएगा, लोड आएगा आपके थाई मसल्स पर, उस पर लोड आएगा तो स्ट्रेंथ और बढ़ेगा, एक तो ये। दूसरी रही स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग आप खुद से नहीं कर पाएंगे।
1: अच्छा।
0: हाँ, स्ट्रेचिंग आप जैसे क्वाड्रिसेप्स जो ये बोलते हैं थाई मसल्स, फ्रंट वाली सामने वाली मसल्स, उसकी भी स्ट्रेचिंग है। उसके लिए मैं फिर भी बताता हूँ, अगर पीछे वाली मसल्स को करना है, एक लंबा सा चादर या टॉवेल या दुपट्टा कुछ भी लें, आप अपने एंकल के पीछे वहां लगाएं और घुटना सीधा रखें और लेट करके दोनों हाथ से धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे अपने तरफ खींचे, तो उससे यह होगा स्ट्रेच आएगा पूरा।

0: तकरीबन 45 साल के बाद आमतौर पर घुटनों में दर्द हो जाता है, सीढ़ियां उतरते हुए ज्यादा दर्द होता है। आमतौर पर हम देखते हैं अपने घरों में जो हमारे घर में बच्चे होते हैं 13 साल 15 साल, उनके भी घुटनों में दर्द होता है तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि वो तो एक उनको अच्छी डाइट मिल रही है और खेल कूद रहे हैं, इतनी कम उम्र में भी ऐसा क्यों हो रहा?
1: एक्चुअली देखिए, मसल्स को पानी की बहुत जरूरत होती है
0: जी।
1: पानी आप जब भी कम पियेंगे, बॉडी के किसी न किसी हिस्से में आपको क्रैम्स आएगा, टाइटनेस आएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बोलते हैं उसको,
0: जी जी,
1: जो ही वो कम होगा। बच्चे आजकल क्या करते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं, और सच्चाई है ये, रात में जगते हैं बहुत देर। अगर आप जगेंगे, बॉडी को एक रेस्ट चाहिए, तो वो नहीं दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं बहुत ज्यादा, एक्सरसाइज कर नहीं रहे बच्चे, सच्चाई यही है। पहले जब हम लोग खेलते थे, बहुत ज्यादा खेलते थे, आज के बच्चे खेलते हैं क्या? बहुत ही कम,
0: बिल्कुल नहीं।
1: और जो खेलते हैं उसको नहीं होता है, जो प्लेयर्स की बात अगर करेंगे तो उसको नहीं होता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। जब तक फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगा, मसल वीक होता चला जाएगा। आप कितना भी एक्सरसाइज कर लें, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। मैं जितना भी पेशेंट देखता हूँ, जिससे भी मिलता हूँ, सबको ये कहता हूँ, ये बहुत जरूरी है, ये जरूर करो।
0: बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि मसल्स जो है वो वीक भी हो जाते हैं आमतौर पर, अगर पानी कम पिया जा रहा है ऐसा। अगर हम यहाँ लेडीज की बात करें, शुरुआत करते हैं उनकी मसल्स से ही। वक्त के साथ साथ मसल्स में दर्द होता है, मांसपेशियों में, और कहीं ये कह सकते हैं नस पे नस भी चढ़ जाती है, तो ऐसे में फिजियोथेरेपी कितना काम करती है? और अगर वो घर पर हैं, फॉरेन डॉक्टर के पास नहीं जा सकती हैं, तो ऐसे में वो क्या करें?
1: जी, एक्चुअली नस पे नस तो नहीं चढ़ती है, मसल क्रैम्प होता है, जो हमने बताया कि नस पे नस चढ़ गया, ऐसा होता नहीं है कभी।
0: ये अच्छी बात आपने बताई कि ऐसा कभी नहीं होता,
1: कभी नहीं होता मसल क्रैम्प्स। जो हम फीमेल्स में, मैं, मेरी भी जो बहने हैं, तो मैं सबको हमेशा यही कहता हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी करो, इससे बचते हैं लोग। एक ग्लास पानी भी लेना है, तो सिर्फ ये फीमेल्स का प्रॉब्लम नहीं, हर किसी का है। फला पानी दे दो एक ग्लास, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो मसल टाइट होगा। अपने लिए वक्त निकालें, फीमेल्स से स्पेशली, आपके जितने लिसनर्स हैं फीमेल्स, उनसे ये कहूंगा कि अपने लिए दिन भर में 10 से 15 मिनट मिनिमम निकालें, तभी आप फिट रहेंगे, क्योंकि आपके बिना घर नहीं चलेगा।
0: बिल्कुल,
1: और आप फिट हैं तो पूरा घर फिट है, वरना कोई फिट नहीं है। एक्सरसाइज करें, पेन नहीं है कुछ नहीं, नॉर्मल एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहीं नहीं जा पा रहे तो घर में भी करें, इतना भी टाइम अगर नहीं मिला, घर में भी 15 मिनट टाइम निकाल के किसी बालकोनी में खड़े हो जाएं, स्ट्रेचिंग करें, एक्सरसाइज करें, नहीं हो तो किसी ट्रेनर को बुलाएं, एक्सपर्ट ट्रेनर को बुलाएं, फिजियो को बुलाएं, वीडियो बना लें, उसको फॉलो करें 15 दिन 20 दिन पर, फिर उसके बाद चेंज करें।
0: अगर गलत एक्सरसाइज हो जाती है तो बॉडी पर इसका क्या असर पड़ता है?
1: बहुत असर पड़ता है। अब जिसका घुटना मुड़ नहीं रहा, उसको जबरदस्ती खींच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बोन टकराएगा, टूटेगा, फिर
0: बिल्कुल
1: फ्रैक्चर होने के चांसेस हो जाएंगे। इसलिए किसी एक्सपर्ट से ही करना चाहिए।
0: जो एक्सरसाइजेस आपने बताई वाकई बहुत काम की हैं। और दूसरी बात, जब खवातीन का जिक्र चल रहा है तो ये बात भी सामने आती है कि प्रेगनेंसी से पहले
1: जी
0: और प्रेगनेंसी के बाद
1: जी
0: किस तरह की एक्सरसाइज होनी चाहिए?
1: अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। देखिए, प्रेगनेंसी से पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो एक्सरसाइज नहीं करना है
0: जी,
1: क्योंकि फर्स्ट टाइमर्स में फीमेल्स को दिक्कतें होती हैं। उसके बाद थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, स्क्वाटिंग जरूर करें। जो घर में स्क्वाटिंग का मतलब मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, घर में जो पोछा लगाते हैं ना
0: जी,
1: बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आजकल बहुत आम हो गया है कि डिलीवरी जो हुआ, बेबी हुआ, सिजेरिन हुआ, बहुत आम हो गया, उससे बचने के लिए स्क्वाटिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, आजकल देखने में यही आता है कि घर में मेड्स होती हैं, घर के काम करती हैं वो, और जो घर में है लेडी वो काम नहीं कर पा रही।
1: प्रेगनेंसी जो ही एडवांस करे, 3 महीने के बाद थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें, वॉकिंग करें, झाड़ू पोछा अगर नहीं करना मन करता है लेकिन कभी कभी वो कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वाटिंग बहुत जरूरी है। क्या होता है कि जो ही प्रेगनेंसी एडवांस करता है, टाइम आगे बढ़ता जाता है, तो एक लिगामेंट होता है कमर का, बॉडी का, तो वो लिगामेंट स्ट्रेच होना शुरू होता है धीरे धीरे धीरे धीरे। और गॉड से ये दिया हुआ, खुदा से, अल्लाह से दिया हुआ है कि ये पोस्चर इस तरह का बनाया गया ताकि वो बैलेंस कर सके, कि स्टमक जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे और पीछे का जो बटक एरिया है वो बैलेंस कर सके, वो धीरे धीरे स्ट्रेच होता है। सपोज नॉर्मल डिलीवरी हो गया, उसके बाद में एक चरण क्या, एक्सरसाइज नहीं करना, क्यों करना, हो गया बस, वहाँ प्रॉब्लम शुरू होता है, वहाँ बैक पेन शुरू होना स्टार्ट होता है। उसके बाद सारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है आपको, ज्यादा ना कर सके तो मिनिमम 2 मंथ तो आप करें, उसके बाद फिर आप नॉर्मल रहेंगे।
0: आमतौर पर जब डिलीवरी हो गई उसके बाद जो लेडीज होती हैं, आमतौर पर देखा जाता है कि या तो उनका वेट बढ़ जाता है, और अगर वेट नहीं भी बढ़ता तो जो पेट का पोर्शन है वो ज्यादा हो जाता है।
1: बहुत
0: तो
1: अच्छा,
0: इसके
1: अच्छा
0: लिए क्या करें?
1: बहुत अच्छा पूछा आपने। वेट पुटअप जानते हैं कब करेगा? जब सिजरियन होगा।

0: कहीं ना कहीं स्टेरॉइड्स इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, उससे बढ़ते हैं और पूरी तरह से बेड पे हो जाते हैं, काम नहीं करना है, दर्द हो रहा है, और दर्द तो होना है थोड़ा सा, उसको ओवरकम करना है तभी आप फिट होंगे।
1: बिल्कुल।
0: एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है, ब्रिस्क वॉक बहुत जरूरी है, रनिंग कोई जरूरत नहीं, अगर आप नहीं कर पा रही है वॉक पे जरूर जाए, फिजिकल एक्टिविटी, घर के काम जरूर करें, इससे आपकी हेल्थ फिट रहेंगे।
1: पेट ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या उसकी भी कोई फिजियोथेरेपी
0: जी, उसकी भी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज। आप क्या करें, सीधे लेट जाएं, पहले ये ध्यान रहे अगर पीरियड्स चल रहे हैं तो उस वक्त ना करें, कि ऑलरेडी उस वक्त पेन होता है, जो ही पीरियड्स खत्म हो आप सीधा लेट जाएं, बटक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं उसको, थाई को पीछे स्क्वीज करना बोलते हैं
1: जी,
0: वो करें। उसके बाद अगर कमर में दर्द नहीं है तब क्या करें, कि दोनों घुटना को मोड़ें, अगर कमर में दर्द है तो ये वाला ना करें जो हम बताने जा रहे हैं, दोनों घुटना को मोड़ें, अपने चेस्ट की तरफ लें, उससे क्या होगा थोड़ा थोड़ा वो डाउन होगा
1: जी।
0: उसके बाद कुछ स्ट्रेचिंग होती है
1: जी,
0: आप खड़े हो जाएं, खड़े होने के बाद सपोज बाएं तरफ करना है, बाएं हाथ को ऊपर खड़ा कर लिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा थोड़ा, उसमें भी ये शर्त है कि कमर में दर्द ना हो, स्ट्रेच किए लेफ्ट राइट साइड की तरफ, वो थोड़ा थोड़ा साइड का मसल स्ट्रेच होगा, दोनों साइड का, इस तरह से आप कर सकते हैं।
1: आमतौर पर जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं कि वजन आप कम कीजिए और घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा इससे।
0: जी।
1: तो अगर वजन ज्यादा है और पेशेंट कम करने की कोशिश भी कर रहा है लेकिन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में उसका जो घुटनों का दर्द है, अब उसके लिए वो पेशेंट क्या करे?
0: ऐसे केस में आपको डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, आपका डाइट कैसा है। आजकल बहुत आम हो गया, बिना सादा रोटी शायद ही कोई खाता है, मैं बहुत पेशेंट को टोकता हूँ, क्या जरूरत है घी लगाने का, खाएं, लेकिन आपके बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा फैट है और फैट लेने की क्या जरूरत है। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, डाइट को अपना चेंज करना पड़ेगा, पेट साफ होना बहुत जरूरी है, कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होना चाहिए, ये डाइट लें कि आपका रफेज वाले सब्जी या इस तरह की चीजें लें कि पेट साफ हो, एक तो वो, दूसरा आपका वेट बढ़ रहा है, घुटना भी पेन हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं अपना वेट को कंट्रोल करने के लिए डाइट, एक्सरसाइज, वॉकिंग, फिजिकल एक्टिविटी, इस पे ध्यान देना पड़ेगा और करना पड़ेगा।
1: घुटने में जैसे कोई भी उम्र में दर्द हो रहा है तो क्या सबके लिए फिजियोथेरेपी जरूरी है या कहीं कहीं जरूरी नहीं भी है?
0: जी देखिए, कई बार होता है कि घुटना में चोट लगा
1: जी,
0: इसमें दो कैटेगरी में बांटते हैं पेन को, एक्यूट एंड क्रोनिक। चोट लगा है, मतलब सपोज बताऊं, बहुत लोगों को चोट लगता है तुरंत क्या करता है, गर्म पानी सेकाई करता है।
1: जी जी,
0: गलत है। आपको 72 आवर्स तक आइसिंग करें, आइसिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है
1: जी।
0: बर्फ सिंपल कोई नहीं मिल रहा था, सब्जी वाली पॉलिथीन होती है ना, उसमें बर्फ के टुकड़े रख दें, जिस एरिया में अगर वो नील भी पड़ गया है, सिर्फ ये ध्यान रहे कि कट ना लगा हो, नील भी पड़ गया है, दिन में 3 बार 10-10 मिनट तक, अगर ज्वाइंट में लगा है तो आइसिंग विथ मूवमेंट, बस घुटना में ही लगा है या शोल्डर में लगा, आइसिंग करें, मूवमेंट कर दें, उससे पेन बढ़ेगा उस वक्त, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो कंट्रोल होगा। 3 दिन तक ये करें, 3 दिन के बाद फिर आप क्या करें, गर्म पानी सेकाई करें, फिर धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे वो कंट्रोल रहना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं घुटने पे
1: जी।
0: घुटने में कई सारे पेन होते हैं, अब मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस जो बताया गया, घुटने का दर्द है, जो सैंडिबल फ्लूइड ग्रीस जो कम है उसमें बोन बढ़ जाते हैं, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस ठीक नहीं होते हैं, जिसको आप मैनेज करके रख सकते हैं। आप सामने वाले मसल्स को स्ट्रेंथ करें, थाई के पीछे वाले मसल्स को स्ट्रेंथ करें, स्ट्रेचिंग करें, आप उसको मेंटेन कर, हाँ आपका पेन बहुत बढ़ रहा है, आप चले जाइए फिजियोथेरेपिस्ट के पास, 15-20 दिन उससे ट्रीटमेंट ले, 20 डेज आप काफी है, एक्सरसाइज ले लीजिए, ट्रीटमेंट ले लीजिए, एक्सरसाइज सीख लीजिए, फिर एक्सरसाइज को कंटिन्यू करिए धीरे धीरे, अगर 15 मिनट भी रोज आप निकालेंगे तो फिर आगे जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: डॉक्टर साहब, अक्सर आपने भी सुना होगा, आपके पास पेशेंट आते होंगे और हमने खुद भी महसूस किया है कि हम रास्ते से जा रहे हैं, अक्सर पैर मुड़ जाता है और या फिर ये कह सकते हैं कि पैर में चोट आ जाती है, जिसे अक्सर लोग कहते हैं मोच भी आ गई है, तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको, और उनके लिए फिजियोथेरेपी कितनी जरूरी है और फौरी तौर पर वो क्या करें?
0: एंकल स्प्रेन बोलते हैं इसको
1: जी।
0: अब उसमें ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तो आम लोग तो ग्रेड नहीं अंदाज कर सकते हैं कैसे किस ग्रेड में है
1: जी।
0: आपको जो ही लगे
1: जी,
0: एंकल अगर मुड़ गया, उसमें सबसे पहले आइसिंग,
1: आइसिंग करें
0: और एंकल का मूवमेंट करें, चाहे ज्यादा कुछ ना कर पाए तो रोल रोल घुमाए भी एंकल को आइसिंग करने के बाद, पेन होगा उसके बाद, आप 2-3 दिन तक भी अगर करेंगे ना तो आप खड़े हो पाएंगे, और अगर आप खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, 1% भी अगर वेट नहीं दे पा रहे हैं अपने एंकल पे, पैर पे, फिर इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर आप दे पा रहे हैं 1-2% भी दे पा रहे हैं, 2% भी आप दे पा रहे हैं, तो आपका ट्रीटमेंट हो सकता है खुद से भी। आइसिंग करें, उसके बाद मूवमेंट करें, 3 दिन के बाद गुनगुना पानी में क्या करें कि आज पहले बहुत आम था और बहुत अच्छी थी, लोग आजकल

0: क्या इलेक्ट्रिक वाला यूज करते हैं,
1: जी,
0: करते
1: जी.
0: हैं, मैं जल्दी सजेस्ट नहीं करता हूँ. सबसे बेहतर है एक टब में गुनगुना पानी लें, जितना आपका पैर सह पा रहा है उस पानी में डिप कर दें. उसके बाद पैर अपना मूव करें धीरे धीरे धीरे धीरे कंट्रोल.
1: गर्म पानी लें टब में और इतना लें जितना आप सह पाएं,
0: जितना सह पाएं,
1: और उसके बाद पैर उसमें डालकर थोड़ा सा मूवमेंट करें.
0: जी जी.
1: तो इससे काफी हद तक रिलैक्स मिल सकता
0: जी.
1: है.
0: और एक चीज बताता हूँ, आजकल क्या होता है, बहुत लोग कहते हैं मेरे एरी के नीचे दर्द हो रहा है, उसको कालकेनेट स्पर बोलते हैं मेडिकल टर्म में. वो क्या होता है, हड्डी बढ़ जाता है, जो कमर जो पैर वाली हड्डी जो है वहां बढ़ जाता है. वो बहुत कॉमन हो रहा है. आई थिंक आप कभी महसूस कर रहे
1: हैं. बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब. अक्सर ऐसा सुनने में भी आया, बल्कि मैंने खुद भी अपने ऑफिस में देखा है कि जैसे पैर है और पांचों उंगलियां हैं, जो अंगूठा है अंगूठे के साइड में, वो हड्डी बढ़ जाती है तो पैर का शेप भी बिगड़ जाता है. तो ऐसे में क्या उसमें फिजियोथेरेपी की?
0: एकदम एकदम, ये ज्यादातर फीमेल्स में होती है.
1: अच्छा, ये फीमेल्स में होती है.
0: हाई हील पहनने की वजह से एंकल जो पीछे वाला उसको तो रेस्ट में दे दिया, पूरा लोड किस पे गया, टोज पर.
1: टोज पर
0: मोटा वाला जो उंगली है उसको टोज बोलते हैं, उस पर गया तो लोड पड़ेगा तो बोन कहने का बढ़ेगा ना, वहाँ पेन होगा. तो वो
1: यानी ये कह सकते हैं कि अगर जो खवातीन हमारा प्रोग्राम सुन रही है उनसे आप ये कहना चाहेंगे कि वो हील ना पहना करें.
0: नहीं पहने, लेकिन ओकेजनली पहने. पूरी तरह से मना तो मैं नहीं करूंगा, हमेशा के लिए मैं मना नहीं करूंगा, कभी कभी जरूर पहने, लेकिन बहुत लोग रेगुलर पहनते हैं, बचे हैं उससे.
1: बिल्कुल,
0: उससे बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी. नी में प्रॉब्लम आ जाएगा, कमर में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस है.
1: और हील पहनने से कहीं ना कहीं पोस्चर भी चेंज हो जाता है.
0: वही तो मैं बता रहा हूँ, वो पोस्चर चेंज हुआ, नी में लोड आएगा, आपके कमर में लोड आएगा, पूरे स्पाइन तक जाएगा. तो इसलिए पहने, आप जरूर पहने, लेकिन थोड़ा अवॉइड करें. अब आ रहे हैं, मैं हील की बात कर रहा था, हील के पीछे दर्द बहुत कॉमन आता है.
1: बिल्कुल.
0: और जो लोग आप सुन रहे होंगे शायद, बहुत लोग एहसास भी कर रहे होंगे शायद ऐसा होता है. उसके लिए सिंपल है, 5 और 3 का रेशियो होता है एक, वो जो हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे. 5 मिनट गुनगुना पानी में रखें अपने हील को डिप करके, जितना बर्दाश्त कर पाते हैं. फिर उसी वक्त नॉर्मल पानी में 3 मिनट, 5:3 का रेशियो, दिन में 2 बार कम से कम 10 से 15 मिनट तक के लिए करें. एक तो वो, दूसरा अपने हील के पीछे हील पैड लगाएं, शू मॉडिफिकेशन कराएं. जूता अगर ज्यादा हार्ड है तो सॉफ्ट वाला यूज करें, शू मॉडिफिकेशन कराएं. वहां पर हील कुशनिंग मिलती है मेडिकल शॉप में, उसको बोलिएगा कि मेरे हील में दर्द हो रहा है. सिंपल भाषा में बता रहे हैं कि लोग समझ पाए. दवाई दुकान में जाइएगा, अच्छे दुकान में, उसको बोलिएगा मेरे हील में दर्द हो रहा है, उसके लिए कुशनिंग दीजिए, तो वो दे देगा, हील पैड दे देगा. अपने शूज के अंदर डालें, उसको यूज करें. और मेल्स भी हील्स पहनते हैं, उनको भी कहूंगा कि ना पहने तो बेहतर है.
1: अच्छा कहा कि आप बैलेंस करते चल रहे. अगर हम अपने बुजुर्गों की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं. तो ऐसे में क्या उनको फिजियो की जरूरत पड़ सकती है? और अगर फिजियो की जरूरत पड़ रही है तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे?
0: उसको जेरियाट्रिक बोलते हैं, जो ओल्डर पेशेंट है.
1: जी.
0: डाइट, पानी प्रॉपर लें, एक्सरसाइज जितना कर सकें थोड़ा थोड़ा ही, ना कर पाए तो वॉक करें. और एज बढ़ने के बाद ऑस्टियोपोरोटिक हो जाता है बोन, जो कमजोर होता है, हड्डियां जो कमजोर हो जाती है, बोलते हड्डी कमजोर हो गया है, उसके लिए डाइट में थोड़ा कैल्शियम डाइट लें.
1: अच्छा.
0: जैसे आप खाने पीने में, जिसमें आप अगर नेट पे भी सर्च मारेंगे कैल्शियम रिच फूड कौन सा है तो उसमें मिलेगा, वो लें. उसका मेडिसिन का प्रॉपर केयर करें, अपने पोस्चर का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करवाएं, जैसे काफ मसल्स है पिंडली उसकी स्ट्रेचिंग, हैमस्ट्रिंग जो है पीछे वाली मसल थाई के पीछे उसकी स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग, ये सारी चीजें पिलो दबा के, जो मैं बता रहा था पिलो दबाना है तो मसल स्ट्रेंथ होगा, ये सारी चीजें करनी है.
1: डॉक्टर साहब वक्त वैसे बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं ये सवाल छोटा सा जानना चाहूंगी आपसे कि आप कौन सी एक्सरसाइज के बारे में हमारे सामाइन को बताना चाहेंगे जिससे वो चुस्त दुरुस्त रह सके?
0: सिंपल है, वॉक. वॉक कर 10 से. हाँ, वॉकिंग में क्या है कि एकदम से वो कहते क्या कि मैं एकदम से दौड़ जाऊं, मैं समझे नहीं. स्टार्टिंग में आप वॉक करें मॉर्निंग में या इवनिंग में. हाँ, एक आजकल बहुत मिथ हो गया कि मैं सुबह ही दौड़ूंगा, सुबह ही चलूंगा तभी फिट रहूंगा, ऐसा नहीं है. अब मैं धूप में चलने के लिए नहीं कर रहा हूँ, इवनिंग में भी आप कर सकते हैं. अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है 9 बजे पहुंचना, तो बंदा नहीं कर सकता. शाम में फ्री होते हैं, शाम में जाएं, बॉडी से पसीना निकलना चाहिए, थोड़ा सा पानी रखें साथ में, थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग करें काफ की, हैम्स की, ये सब सारी. उसके बाद आप रनिंग पे स्टार्ट करें, तब जाके आप फिट रह सकते हैं, वरना आप लग्जरी लाइफ और जीते रहेंगे तो स्ट्रेचिंग.
1: एक और छोटा सा सवाल यहीं खड़ा हो रहा है कि एक्सरसाइज किस वक्त करें, खाने से पहले, बाद में, या कितने घंटे पहले या कितने घंटे के बाद?
0: देखिए, ऐसा नहीं है कि आप खाने के बाद ही एक्सरसाइज करें या खाने से पहले ना करें. इस हिसाब कर लें कि आपको डाइजेशन अच्छे से हो गया हो, गैस ना बनने लगा. ऐसा नहीं कि यहाँ तक भरपेट भर लिया वो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे आप.
1: जी, जी, जी.
0: लाइट हल्का रखें मॉर्निंग में. जैसे अब हम लोग जाते हैं रनिंग के लिए, कुछ ना कुछ तो लेते हैं ना, एक केला ले लिए, बिस्किट ले लिए, चना. चना बहुत इंपॉर्टेंट.

0: लगता है वो ले ले, थोड़ा सा ले ले, पेट पूरा ना भरे, हल्का सा ले, उसके बाद एक्सरसाइज करें, उसके बाद आधे एक घंटे के बाद रिलैक्स हो जाए, फिर ले खाना।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ इतनी अच्छी गुफ्तगू करने के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सामईन फायदा उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: वर्जिश और फिजियोथेरेपी बेहतर सेहत की जमानत, अभी आप इस मौजू के तहत डॉक्टर शमीम अख्तर की गुफ्तगू सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी मोहतरमा रेशमा फारूकी। तो सामईन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम हिफ्जान सेहत, और अब अपने दोस्त मोहम्मद अली कमाल को आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें 4 रेलवे की परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रूपये की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को सेवाओं के दायरे में लाएंगी। ये परियोजनाएं हैं खड़गपुर भद्रक चौथी लाइन, भद्रक हरिदासपुर चौथी लाइन, गुमड़ी पुंडी गुदुर तीसरी और चौथी लाइन तथा कटक पारादीप तीसरी और चौथी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030 से 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोन बरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6 से 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
2: इन्वेस्टमेंट स्टोरी हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब $130 अरब का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में $1 के निवेश पर करीब $3.6 की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
3: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
4: उत्तर प्रदेश आज भारत की top 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमु के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4थी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल स्तर के साथ सिंगापुर पहुंची। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल स्तर में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

0: इसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल करने की बात कही गई है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने विशेष रूप से प्रश्न पत्रों को सील करने के लिए स्थायी समिति, वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और संस्थागत विशेषज्ञता के निर्माण से संबंधित सिफारिशों के कार्यान्वयन पर विस्तृत जानकारी मांगी। भारत ने गोल में आज दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन पर ही सिमट गई। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। भारत अब तक दो मैचों में 3 अंक हासिल कर चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Projects worth over 13,000 crore rupees were approved by the Union Cabinet today under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. These include 4 railway and 1 highway project. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav gave the details about the projects while briefing media after the Cabinet meeting in New Delhi today. Mr. Vaishnav informed that 4 multi-tracking projects of railways will cover 8 districts across West Bengal, Orissa, Tamil Nadu and Andhra Pradesh.
2: आज 5 बहुत बड़े फैसले लिए।
3: टुडे 5 मेजर डिसीजंस हैव बीन टेकन। द फर्स्ट 4 प्रोजेक्ट्स आर रिलेटेड टू रेलवेज, व्हाइल द 5th इज अ हाईवे प्रोजेक्ट। अमंग द 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स, सम इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोड लिंक्स ऑन द हावड़ा चेन्नई मेन रेलवे रूट, व्हाइल अनदर इज द कोड लिंक ऑन द कटक पारादीप रेलवे लाइन। द 5th प्रोजेक्ट इज अ 4 लेन हाईवे फ्रॉम मुजफ्फरपुर वीआ सीतामढ़ी टू सोलबरसा। दिस प्रोजेक्ट्स विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 13,881 करोड़ रुपीज वर अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट टुडे।
1: Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav has said that India's economic growth is now recognized globally and the country is growing at a range of 6-8%. He said this growth story is driven by 4 key pillars: investment in social, digital and physical infrastructure, inclusive growth and a strong focus on manufacturing. Mr. Vaishnav was addressing the Uttar Pradesh Japan Investment Summit 2026 in New Delhi today. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said that the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost-effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the 4th edition of the Tunnels and Bridges Conference 2026 in New Delhi. The Supreme Court today reiterated the need to institutionalize the National Testing Agency or NTA with secure infrastructure, dedicated testing centers, cyber security systems, institutional expertise, and a permanent mechanism for examination-related operations to prevent future paper leaks. While hearing pleas concerning the NEET UG 2026 paper leak, the court directed the Secretary for the Union Ministry of Education to file an affidavit setting out the steps being taken to implement the Radhakrishnan Committee's recommendations. President Draupadi Murmu has said that the world of technology, media, economics and public policy is changing rapidly. She stated this while interacting with officer trainees of Indian Information Service and Indian Statistical Service who had called on her at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. On the occasion, she advised the officers to be judicious in their decisions, compassionate in their conduct and unwavering in upholding integrity. Kolkata police has formed a special investigation team to probe the death of 9 people in a fire at a hotel on Mirza Ghalib Street in Kolkata's New Market area. Industry Minister Tapash Roy and Municipal Affairs and Urban Development Minister Agnimitra Pal visited the spot this morning. She questioned how the hotel was allowed to operate despite allegedly lacking adequate fire safety arrangements and an emergency exit. Heavy rain in Uttarakhand, particularly in the hilly areas, has disrupted road connectivity at several places. Efforts are underway to restore connectivity at the earliest. Flood situation remains critical in several parts of North Odisha, with Bhadrak among the worst affected as swollen rivers inundate villages and disrupt normal life.

0: India Meteorological Department has forecast very heavy rainfall conditions over North Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. Iran's Armed Forces Chief of Staff Major General Ali Abdullahi has warned that countries on the southern shores of the Persian Gulf should not assist or facilitate U.S. military forces. He also alleged that the presence of military aircraft stationed at regional bases cannot be without the knowledge of the host countries. Benchmark domestic equity indices ended in a negative zone today. Sensex declined 326 points to close at 76,910. In men's cricket, India beat host Sri Lanka by 165 runs in the first test of the two-match series in Galle today. India now leads the two-match series 1-0. Chasing a target of 372, Sri Lanka were bowled out for 206 during the post-lunch session on day 5, handing India a comfortable victory. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त शाम के 4:10 हुए हैं और साथ ही हुए हैं 6 सेकंड। आइए आपको अब गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित जानकारी दे दें। पहली जानकारी प्राप्त हुई है थाना नंद नगरी दिल्ली से। खोए हुए व्यक्ति का नाम है अंजलि, जिनकी उम्र 31 वर्ष है, कद 5 फुट है। अंतिम बार इन्हें 19 जुलाई 2026 को देखा गया। किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो तो वह पुलिस स्टेशन नंद नगरी दिल्ली में संपर्क करें। अगली जानकारी प्राप्त हुई है थाना नंद नगरी से दिल्ली। खोई हुई व्यक्ति का नाम है सलमा, इनकी आयु 30 वर्ष है, कद 5 फुट है। अंतिम बार इन्हें 18 जुलाई 2026 को देखा गया। किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो या कहीं देखा गया हो तो वे थाना नंद नगरी दिल्ली में संपर्क कर सकते हैं। अगली जानकारी प्राप्त हुई है पुलिस स्टेशन नंद नगरी से। खोए हुए व्यक्ति का नाम है साक्षी, इनकी आयु 17 वर्ष है, कद 5 फुट है। अंतिम बार इन्हें 15 अगस्त 2026 को देखा गया था। ये घर से बिना बताए कहीं चली गई है। किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो तो वह पुलिस स्टेशन नंद नगरी दिल्ली में संपर्क करे। थाना नंद नगरी दिल्ली से प्राप्त जानकारी के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम है प्रियंका, अंतिम बार इन्हें 5 अगस्त 2026 को देखा गया। इनकी आयु 25 वर्ष है, कद 5 फुट 2 इंच है। घर से बिना बताए ये कहीं चली गई है। अगर इन्हें कहीं देखा जाए या किसी को भी इनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो वे पुलिस स्टेशन नंद नगरी दिल्ली में संपर्क करें। थाना नंद नगरी दिल्ली से प्राप्त जानकारी के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम है मिन्नत, इनकी आयु 23 वर्ष है, कद 5 फुट है। अंतिम बार इन्हें 2 मई 2026 को देखा गया। किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो तो वे थाना नंद नगरी दिल्ली में संपर्क कर सकते हैं। अगली जानकारी प्राप्त हुई है थाना नंद नगरी दिल्ली से। खोए हुए व्यक्ति का नाम है राधिका, जो जगदम्बा की पुत्री है, इनकी आयु 23 वर्ष है, कद 5 फीट है। शरीर की बनावट मध्यम है। अंतिम बार इन्हें 1 मई 2026 को देखा गया था। किसी को भी इनके बारे में कोई सूचना प्राप्त हो तो वह पुलिस स्टेशन नंद नगरी दिल्ली में संपर्क कर सकते हैं। अगली जो जानकारी प्राप्त हुई है वो थाना सफदर जंग एनक्लेव साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट न्यू दिल्ली से प्राप्त हुई है। खोए हुए व्यक्ति का नाम है निशा, जो मंजूर आलम की पत्नी है। अंतिम बार इन्हें 9 मई 2026 शाम 4:15 पर घर पर ही देखा गया। किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो तो वे पुलिस स्टेशन सफदर जंग एनक्लेव साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट न्यू दिल्ली में संपर्क कर सकते हैं।

अगली जानकारी प्राप्त हुई है थाना बजगेड़ा गुरुग्राम से और खोए हुए व्यक्ति का नाम है उज्जाली। इनकी आयु 17 वर्ष है, कद 5 फीट है, रंग सांवला है और शरीर की बनावट मजबूत है। अंतिम बार इन्हें 3 अप्रैल 2026 को देखा गया। किसी को भी इनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो या कहीं देखा गया हो तो वह पुलिस स्टेशन बजखेड़ा गुरुग्राम में संपर्क करें। तो श्रोताओं, ये थी गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर्स अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 4:15 होने वाले हैं। अब वक्त है कार्यक्रम युवा वाणी का।

0: दिन की भागदौड़ में यूं ही गुजर रही है जिंदगी। शाम ढली तो ख्यालों ने दस्तक दी। चलिए इस शाम को थोड़ा और खास बनाते हैं, कुछ पल इस भागती जिंदगी से चुराते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू युववाणी, आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त डिंपल, और आज मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट आदित्य।
1: वेरी गुड इवनिंग टू ऑल आवर लिसनर्स। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज क्या कुछ खास है डिंपल?
0: बिल्कुल आदित्य, हर दिन की तरह आज भी हम बात करेंगे कुछ दिलचस्प विषयों पर, सुनेंगे कुछ शानदार गीत, और बीच बीच में होंगे कुछ ऐसे पल जो शायद हमारे श्रोताओं के चेहरे पर मुस्कान ले आए, क्योंकि जो पल अभी हमारे पास हैं वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा डिंपल। इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं गुलजार साहब का लिखा फिल्म गोलमाल का यह सदाबहार गीत। आने वाला पल जाने वाला है।

0: वाह आदित्य, क्या मजेदार गीत था। वैसे सही बात है, जो पल एक बार जिंदगी से चले जाते हैं वो फिर कभी लौट कर नहीं आते।
1: हाँ डिंपल, और वक्त भी कितनी जल्दी बदल जाता है, पता ही नहीं चलता।
0: सही बात है आदित्य, जैसे कि बचपन में ही हमारी सुबह कितनी जल्दी शुरू हो जाती थी। सुबह उठो, तैयार होकर 7:30 बजे स्कूल पहुंचो, फिर घर आकर खाना खाओ, ट्यूशन जाओ, थोड़ा खेलो, पढ़ाई करो, और इन सब के बीच हमें कार्टून देखने का भी वक्त मिल जाता था।
1: सही कहा डिंपल, इनफैक्ट रात को 9 बजे सो भी जाते थे, और अब देखो सोने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। 9 to 5 जॉब में ही दिन खत्म हो जाता है, सुबह आंख खुलती है तो सीधे काम की चिंता, ऑफिस जाने की जल्दी, ट्रैफिक, मीटिंग्स, डेडलाइंस, और देखते ही देखते शाम हो जाती है।
0: सच में आदित्य, अब तो जिंदगी बहुत बिजी हो गई है। मतलब आधी जिंदगी हमारी ट्रैफिक में निकल रही है और बाकी आधी लैपटॉप के सामने, और घर पहुंचते पहुंचते इतनी थकान हो जाती है कि बस मन करता है खाना खाओ और सो जाओ।
1: सही में डिंपल, और बस फिर वीकेंड का इंतजार रहता है, पर वीकेंड भी चुटकियों में बीत जाता है। ना हम खुद को टाइम दे पाते हैं और ना ही घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाते हैं।
0: सच में, वैसे एक बात बोलूं आदित्य, मुझे कभी कभी लगता है कि इससे अच्छा तो बचपन था हमारा। पर बचपन में भी हमेशा बड़े होने का ही इंतजार करते थे। बड़े हुए तो कॉलेज गए, कॉलेज में भी वही असाइनमेंट्स की टेंशन, डेडलाइंस और एग्जाम्स का प्रेशर और पता नहीं क्या क्या।
1: मगर डिंपल, इस सब के बीच अच्छे दोस्त हों तो कॉलेज लाइफ मजेदार हो जाती है। सच में कभी कभी जिंदगी एक पहेली जैसी लगती है।
0: बिल्कुल आदित्य, और इसी बात ने मुझे एक बहुत ही प्यारे गीत की याद दिला दी। तो चलिए सुनते हैं फिल्म परिणीता का एक बेहद खूबसूरत गीत, कैसी पहेली जिंदगानी, जिसको आवाज दी है सुनिधि चौहान जी ने।

0: वाह, क्या गीत था। तो अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट यानी कि मन से माइक्रोफोन तक का।
1: तो डिंपल, आज हमें सुनने को मिलेंगे दो इंटरव्यूज।
0: हाँ आदित्य, तो पहला इंटरव्यू है तुषार चौधरी जी का, जिन्होंने ईएसई 2025 में ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल की थी। इनसे बातचीत की है हमारी साथी शिवी सक्सेना ने। तो आइए सुनते हैं इंटरव्यू।
2: नमस्कार श्रोताओं, एक नदी अपना रास्ता एक दिन में तय नहीं करती। वह हर रोज चट्टानों से टकराती है, बहती है, आगे बढ़ती है और अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। सफलता भी इसी निरंतर प्रयास का दूसरा नाम है। मन से माइक्रोफोन तक के आज के सेगमेंट में हमारे साथ हैं आईईएस तुषार चौधरी जी, जिन्होंने अपनी लगन और परिश्रम से यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन ईएसई 2025 में ऑल इंडिया रैंक 4 अर्जित की तथा इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज आईआरएमएस के लिए चयनित हुए। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है तुषार जी। तुषार जी, मुझे विश्वास है

0: है कि आपने अब तक कई इंटरव्यू दिए होंगे जिनमें आपकी उपलब्धियों पर विस्तार से बात हुई होगी, पर आज के अपने युवा दोस्तों के साथ हम उन उपलब्धियों से परे एक व्यक्तित्व को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक ऐसा सवाल जो सभी श्रोतागण जानना चाहेंगे, जब परिणाम आया और आपने ऑल इंडिया रैंक 4 देखी, तो उस क्षण आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी और यह खुशी आपने सबसे पहले किनके साथ साझा की?
1: जी शिवी, सबसे पहले इस डीप इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने यंग लिसनर से आज ये साझा करना चाहूँगा। उस समय मैं MCR हैदराबाद, जो कि हैदराबाद में एक सिविल सर्वेंट्स का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उस समय मैं अपनी ट्रेनिंग में था। उस वक्त शाम का समय था और हम फुटबॉल खेल रहे थे, तभी तुरंत अचानक से मेरा एक मित्र रुक जाता है और कहता है कि लगता है शायद रिजल्ट आ गया है। और सब उसकी ओर देखते हैं, बॉल वहीं छोड़ के उसकी तरफ भागते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट तो वाकई में आ गया है। और फिर वो बताता है कि आपकी AIR 4 आई है, तो सब ये मानो कि खुशी से झूम उठते हैं और मैच छोड़ के सब कहते हैं कि चलिए आज तो पार्टी होगी। वो पल बहुत यादगार रहेगा। जी
0: तो बहुत ही स्वीट सरप्राइज की तरह ये आपके सामने आया। तुषार जी, हमारे साथियों को सिविल सर्विसेज और कॉरपोरेट सेक्टर की जिम्मेदारियों में अंतर के बारे में बताएं।
1: जी मैंने IIT दिल्ली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से BTech करने के बाद लगभग 4 से 5 महीना इंटेल टेक्नोलॉजीज, जो कि ग्राफिक हार्डवेयर इंजीनियरिंग की प्रोफाइल पे, जैसे आप माने कि जो VLSI सेक्टर है आजकल, जो AI के ज़माने में बहुत भूमिका अहम है उसकी, उसमें काम किया। फिर वहाँ से 5-6 महीने के बाद फिर मैंने UPSC की ओर अपना रुख रखा। तो मेरा मानना यह है कि कॉरपोरेट या फिर गवर्नमेंट साइड, आप जिधर भी मेहनत करेंगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। परंतु अगर हम जैसे कॉरपोरेट की बात करें, तो इंटेल में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था कि हमें शुरुआती दिनों में, जैसे कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ओर अगर ज़्यादा हमारा रुझान है, तो मुझे इंटेल टेक्नोलॉजीज़, NVIDIA, AMD, ये सारी जो सेमीकंडक्टर कंपनीज़ हैं, इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी का आपको एक्सपोजर मिलता है। और दूसरी तरफ अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, खासकर की इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो इसमें आपको शुरुआती पहली ही पोजीशन से एक लीडरशिप स्किल डेवलप कराने का अवसर सरकार देती है। इफ़ आई हैव टू कंक्लूड इट, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट में आपका रोल एक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से ग्रो होता है, और कॉरपोरेट में, खासकर कि केवल इंजीनियरिंग की बात करें, तो आपका रोल एज अ प्योरली स्पेशलिस्ट के रूप में डेवलप होता है।
0: बहुत से युवाओं के लिए IIT एक सपना और मंजिल होती है, लेकिन आपके लिए वह एक पड़ाव की तरह था। आप किस तरह के विद्यार्थी थे और IIT ने आपको किताबों से आगे जीवन के बारे में क्या सिखाया?
1: IIT ने जीवन के बारे में मुझे सब कुछ सिखाया। मैं याद करता हूँ वो दिन जब मैं IIT दिल्ली में BTech के लिए गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। हम यही देखते थे कि ये कॉलेज का कैंपस है, ये इमारतें हैं, परंतु कुछ महीने बीतने के बाद ये समझ में आता है कि किसी भी संस्था या किसी भी इंस्टीट्यूट में सबसे अहम भूमिका होती है उसके ह्यूमन रिसोर्स की, जो कि हो गए हमारे प्रोफेसर्स, हमारे बैचमेट्स से लेके हमारे स्टाफ, पूरा जो कॉलेज का होता है। सबसे बड़ी लर्निंग्स मुझे अपने सहपाठियों से हुई। इंडिया के अलग अलग जगह से IIT JEE, JEE एडवांस के नाम से जो एग्जाम जाना जाता है, वो एग्जाम क्लियर करने के बाद जब बच्चे आते हैं, आप किसी भी अपने साथी में कोई एक कॉमन पैटर्न नहीं देखते। आप उससे सबसे बड़ी सीख ये लेते हैं कि हर इंसान का तरीका सीखने का और परफॉर्म करने का एग्जाम में और लाइफ में अलग होता है। तो देर इज नो वन सिंगल कट डेफिनेशन फॉर सक्सेस, ये मुझे अपने कॉलेज से सीखने को मिला।
0: जी तुषार जी, हमारे युवा साथी जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या टिप्स रहेंगी?
1: अगर हम इस एग्जाम को देखें, इंजीनियरिंग सर्विसेज को, तो उसकी हमें स्टेजेस समझनी होंगी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, पहला पेपर GS का, दूसरा पेपर हमारा जो टेक्निकल है। उसी तरह मेंस में हमारे दो पेपर्स हैं, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1 और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 2, और फाइनली इंटरव्यू होता है। तो टिप्स ये रहेंगी, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में आपको हर पड़ाव पे मौके मिलेंगे मार्क्स स्कोर करने के, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के मार्क्स ऐड होते हैं। दूसरा ये रहेगा कि सबसे जो आपकी कोर सोर्स रहेगी, जो सबसे अहम सोर्स रहेगी, वो आपके रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। क्योंकि अगर हम इंजीनियरिंग एज अ सब्जेक्ट को देखें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखें, पावर सिस्टम, मशीन, सिग्नल सिस्टम, इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं कहीं ना कहीं 1980s, 1990s की जो किताबों में होते थे, कहीं ना कहीं एग्जाम में भी वही सवाल आते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स नेवर चेंज। जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कभी चेंज नहीं होगा। तो आप इस चीज को समझें कि अगर हमसे एग्जामिनर कोई सवाल बनाना चाहेगा, कहीं ना कहीं एक रेपुटेशन का एंगल इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में रहता है। उस कारण से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि जब आपने ये समझ लिया कि हर पड़ाव अहम है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं,

0: सर रहेगा इसमें रिवीजन और फीडबैक एनालिसिस का। मेरे साथीगण जो इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी हैं वो समझेंगे कि एक फीडबैक लूप होता है, तो हमको टेस्ट को एज अ फीडबैक लूप यूज करना है। ये कर सकते हैं कि आपने एक बेस कंटेंट पढ़ा, फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, और टेस्ट को एज अ फीडबैक लूप को आप बार बार चलाते रहेंगे, बार बार निरंतर रिविजन करते रहेंगे, तो इस तरीके से आपकी तैयारी और मजबूत होती रहेगी। इसी प्रकार फाइनली इसका कंक्लूजन आपको एग्जाम में निकल के आएगा।
1: तुषार जी, अब बारी है रैपिड फायर राउंड की। इस राउंड में आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको उनका जवाब एक सेंटेंस में देना है। कॉफी या चाय?
0: जी, मैं कॉफी ज्यादा पसंद करता हूँ।
1: किताबें या नोट्स?
0: नोट्स।
1: थ्योरी या न्यूमेरिकल?
0: इंजीनियरिंग सर्विसेज के रुख से देखें तो न्यूमेरिकल।
1: आईआईटी लाइफ या सर्विस लाइफ?
0: ये बहुत मुश्किल सवाल है। आईआईटी लाइफ की अपनी एक अहम भूमिका है और सर्विस लाइफ की अपनी एकदम अहम भूमिका है, तो मेरे हिसाब से दोनों अपनी अपनी जगह एकदम ठीक है।
1: AIR 4 एक सेंटेंस में।
0: पहले तो लगा था कि ये इम्पॉसिबल है, बट जब हासिल हो गया तो भी आज भी यकीन नहीं होता है।
1: हमारे यंग लिसनर्स के लिए आपका कोई संदेश?
0: जी, एक सक्सेस और फेलियर को लेके मेरा एक संदेश जरूर रहेगा। हम देखते हैं समाज में बात होती है कि अगर आपने कोई एग्जाम निकाल लिया तो आप सक्सेसफुल हैं, या कोई आप एग्जाम नहीं निकाल पाए तो आपको एक फेलियर की माला पहना दी जाती है। परंतु मेरी लर्निंग ये रही है कि सक्सेस और फेलियर दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है। कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों सेम नंबर ऑफ टाइम्स फेल होते हैं, परंतु बस फर्क दोनों में इतना है कि कोई एग्जाम वाले दिन पास होता है और कोई एग्जाम वाले दिन फेल होता है। इसका कंक्लूजन ये है कि कभी आप किसी एक परीक्षा में फेल भी होते हैं तो आप ये समझें कि वो परीक्षा उस समय ले गई जिस समय आपकी तैयारी नहीं थी, पर अगर आप तैयारी करेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। धन्यवाद।
1: जी, सक्सेस और फेलियर के बारे में हमारे श्रोताओं को बताने के लिए धन्यवाद। तुषार जी, आज हमारे साथ जुड़ने और अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। डियर लिसनर्स, यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अपनी प्रतिभा की तुलना दूसरों से करके स्वयं को कम आंकने लगे हैं, तो बस एक बात याद रखिए, सपनों की ऊंचाई नहीं उन्हें पाने का हौसला ही इंसान की पहचान बन जाता है। इसी प्रेरक संदेश के साथ मैं शिवी आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।
2: आशा है कि आप सभी श्रोताओं को भी इस बातचीत से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। इसी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन को बरकरार रखते हुए पेश है ये खूबसूरत गीत, रुक जाना नहीं, फ्रॉम द मूवी इम्तिहान।

0: सच में काफी मजेदार गीत था। वैसे आदित्य, डू यू नो दैट टुडे इज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे?
1: यस ऑफ कोर्स आई नो डिंपल, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट आवर नेक्स्ट इंटरव्यू इज ऑफ अ रिनाउंड फोटो जर्नलिस्ट मिस्टर हिमांशु व्यास, हु हैज बीन अवार्डेड विद रामनाथ गोयनका प्रेस फोटो अवार्ड फॉर टू कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स 2006 एंड 2007, और उनसे बातचीत की है हमारी साथी वंशिता ने।
0: वाओ, आई कैन वेट टू लिसन, तो चलिए सुनते हैं।
2: कहा जाता है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। एक फोटो जर्नलिस्ट के लिए तस्वीर सिर्फ एक दृश्य नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करती है। इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमांशु व्यास जी, जो एक जाने माने फोटो जर्नलिस्ट है। आपको प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हिमांशु जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
3: धन्यवाद वंशिता, मुझे ऑल इंडिया रेडियो पर फोटोग्राफी के 200वें वर्ष में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर आमंत्रित करने के लिए बहुत आभार।
2: हिमांशु जी, इतने सारे करियर ऑप्शन होने के बावजूद आपने ट्रेडिशनल करियर डॉक्टर इंजीनियर के बजाय फोटो जर्नलिस्ट बनना चुना। आपने कब सोचा कि आपको फोटो जर्नलिज्म में अपना करियर बनाना है?
3: ये बड़ा रोचक सवाल है वंशिता, क्योंकि मैं जिस समय फोटो जर्नलिज्म कर रहा था या करने की सोच रहा था, उन दिनों यह एज अ कैरियर रिकॉग्नाइज नहीं होता था। केवल फोटोग्राफर जो होते थे, स्टूडियो के ही कुछ फोटोग्राफर होते थे, स्पेशली छोटे शहरों में, जो अखबारों के लिए कुछ तस्वीरें खींच दिया करते थे। बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, बंबई या बड़ी पत्रिकाओं में जरूर होते थे फोटो जर्नलिस्ट, पर इसकी कोई विधिवत शिक्षा दीक्षा, कहीं इसकी डिग्री, ऐसा नहीं होता था। तो बाकी सारे मेरी उम्र के लड़के लड़कियों की तरह मैंने भी करीबन 6-7 बार प्री मेडिकल टेस्ट दिया, फॉरेन सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, पर उनमें हमेशा मैं रह जाता था। पर होता यह था कि मैं जब भी पढ़ाई करने जाता था कहीं बाहर, कॉलेज वगैरह, बैग में कैमरा हमेशा रहता था, और मैं उनसे जोधपुर जहां मेरी पढ़ाई लिखाई हुई कुछ तस्वीरें लेता रहता था। तो वो तस्वीरें धीरे धीरे वहां के लोकल अखबारों में छपना शुरू हुई जब मैं कॉलेज में था, और फिर धीरे धीरे मैं उन तस्वीरों को लेकर दिल्ली गया, और इस प्रकार से मेरा फोटो जर्नलिज्म में अखबार में चयन हुआ और विधिवत फोटो जर्नलिज्म करने लगा।
2: फोटो जर्नलिज्म में आपका कोई रोल मॉडल?
3: हाँ, रोल मॉडल मैं अक्सर सोचता हूँ जब भी ये सवाल किया जाता है कि मैं किससे प्रभावित हूँ, मेरे जहन में किसी व्यक्ति की बजाय कुछ बहुत सुंदर पत्रिकाएं और किताबों की छवि उभरती है। हमारे घर में शुरू से ही बहुत पत्रिकाएं आती थी, जैसे कि लाइफ मैगजीन है, सोवियत रूस थी, स्पेन थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान थी, तो मैं बड़ी तस्वीरों का चलन था। एक एक पन्ने की तस्वीरें छपती थी और बहुत एस्थेटिक होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट, थोड़े उनके ग्रेन्स होते थे, तो वो सारे जो प्रभाव थे बाल मन पर, वो आगे जाके मैं देखता हूँ कि मेरी तस्वीरों में, और एज अ इंस्पिरेशन या एज अ रोल मॉडल कह सकते हैं आप उनको।
2: सर, इस बार वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की थीम होम रखी गई है, आप होम को किस तरह देखते हैं?
3: हाँ, ये थीम बड़ी प्रासंगिक है, और जैसा मैंने पहले कहा कि ये 1826 में जब नीपसी ने फ्रांस में पहला तस्वीर लिया था, पहला परमानेंट फोटोग्राफ, तो वो अपने घर से ही लिया था। उस सेंस में थीम बड़ी सुंदर, क्योंकि उन्होंने अपने घर की खिड़की से ही शहर की छतों का एक तस्वीर लिया था, जो आज भी एक म्यूजियम में मौजूद है। तो थीम बड़ी सुंदर है, और एज अ फोटो जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि उसमें एक ऐसा कंपैशन या एक ऐसी मानवीयता होती है कि उसे हर स्थान घर लगता है। वो फोटो जर्नलिस्ट जहां भी होता है उसे वो अपना घर जैसा ही लगना चाहिए। और एक चीज और है, मुझे लगता है कि क्योंकि होम थीम है, लोगों को अपने घर के थोड़े एस्थेटिक फोटो लेने चाहिए और थोड़ी थोड़ी अपनी परंपराओं को डॉक्यूमेंट करना चाहिए अपने घर के अंदर।
2: जी सर, आज हम और आप, हर कोई फोटोग्राफर है, सबके पास मोबाइल फोन्स हैं, कैमरा है, रील्स और वीडियोस के टाइम एम्प्लॉयमेंट के क्या ऑप्शन और विकल्प आप देखते हैं?
3: मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अपने समय से जब मैं उसकी तुलना करूं, जो कि लेट 90s की बात है या 20 साल पहले की बात कह लीजिए, तो इतने ऑप्शंस नहीं थे फोटोग्राफी में जितने आज हैं। जैसे फैशन फोटोग्राफी है, वेडिंग फोटोग्राफी अद्भुत है, उसके अंदर जो संभावनाएं हैं। अब जब से डिजिटाइजेशन हुआ है कैमरे का, करीबन 2000 से कह सकते हैं अपन डिजिटल कैमरा पॉपुलर हुआ है, तब से ट्रैवल फोटोग्राफी, फूड फोटोग्राफी, एक सामान्य व्यक्ति को भी एक ब्रांड बनना है, उसको भी अपनी अच्छी तस्वीरें चाहिए, उसको अपनी एक कथात्मक स्टोरी टेलिंग वाली तस्वीर आजकल हर व्यक्ति को चाहिए। वो करेगा कौन? वो वही

0: उसकी इतनी आवश्यकता नहीं रह गई आजकल, पर आज भी देखने का महत्व है कंपोजिशन के नियम आते हैं कि नहीं, आप में एथेटिक सेंस है कि नहीं, आपको रंगों का समझ है कि नहीं, आपको मोमेंट क्या होता है, आपने इतिहास की सुंदर तस्वीरें देखी है कि नहीं, आपको चित्रकला की कितनी समझ है, आपको नृत्य की कितनी समझ है, ये सारी चीजों को जानना ही जरूरी है, वरना आपकी तस्वीर और किसी और लेमैन की तस्वीर में अधिक फर्क नहीं रहेगा। थोड़ा इतिहास की समझ, थोड़ा एस्थेटिक्स की समझ और थोड़ा धैर्य। तस्वीर लेने के लिए एक धैर्य चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट के साथ समय बिताना होगा। फोटोग्राफी एक बहुत तेज गति की कला है, पर आपको उसको धैर्य के साथ बरतना होगा, तब आप अच्छी फोटो ले पाएंगे। और कैरियर के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा समय दें, अपने कैमरे को समय दें, उसको समझें, फोटो स्टोरीज अधिक करें और उनके साथ लिखें और उन्हें थोड़ी गहराई लाएं, थोड़ी उनमें रिसर्च होना चाहिए, तब आपका काम दूसरे लोगों के कामों के सामने थोड़ी गंभीरता से दिखेगा। मुख्य चीज मैं ये कहना चाहूंगा, कैरियर ऑप्शंस खूब सारे हैं, पर उन्हें अलग दिखने के लिए थोड़ा धैर्य, थोड़ा स्किल, थोड़ा एस्थेटिक्स, इन चीजों का समावेश आजकल के यूथ के लिए आवश्यक है।
1: जी सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी शुक्रिया वंशिता।
2: ग्रेट इंटरव्यू इंडीड। आज बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड इट सेज दैट पिक्चर्स आर रियली इम्पॉर्टेंट। एक तस्वीर में बहुत सारे इमोशंस छुपे होते हैं। तो इसी विचार के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अजीब दास्ता है ये सॉन्ग, जो कि मूवी है दिल अपना और प्रीत पराई।

0: वाह डिंपल, ये गीत सुन के तो मेरा दिल गदगद हो गया।
1: सेम आदित्य, बिल्कुल। आजकल वैसे भी जिंदगी काफी व्यस्त हो गई है, और ऐसे गाने सुनकर तो मजा ही आ जाता है। वैसे आजकल सबको अपने करियर की बहुत टेंशन है आदित्य।
0: बिल्कुल डिंपल, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और करियर रिलेटेड कुछ जानकारी अपने श्रोताओं के साथ शेयर करते हैं।
1: बिल्कुल, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां बातें होंगी फटाफट और जानकारी होगी झटपट। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का क्विक बज।
0: सबसे पहले बात उन युवाओं की जो बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं। IBPS ने जूनियर एसोसिएट्स की रिक्रूटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। एप्लीकेशंस 21 अगस्त 2026 तक चलेंगी।
1: और दोस्तों, अगर आप एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन से भी एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। मणिपाल एकेडमी ने माइक्रोसॉफ्ट और हिताची सिस्टम्स इंडिया के साथ

0: कोलैबोरेशन किया है, जिसके तहत अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में 5 माइक्रोसॉफ्ट एआई लैब्स स्थापित किए जाएंगे।
1: तो दोस्तों, जो भी श्रोताओं ने हमें सुना है उनके लिए ये जानकारियां काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ये था आज का हमारा क्विक बज।
0: तो चलिए लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं दंगल मूवी का टाइटल ट्रैक दंगल।

0: It was such a good and motivational song.
1: Indeed, Aditya. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जो है टुडे इन हिस्ट्री।
0: हाँ बिल्कुल डिंपल। वर्ष 1600 में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में मुगल सेना ने अहमदनगर के किले पर अधिकार कर लिया। पश्चिम से चलते हैं पूर्व की ओर। साल 1757 में कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला रुपया सिक्का ढाला गया।
1: अमेजिंग, मतलब आज की तारीख सच में बहुत खास है। वर्ष 1887 में 19 अगस्त के दिन स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर वक्ता और प्रमुख कांग्रेसी नेता एस सत्यमूर्ति का जन्म हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ भारतीय संसदीय लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: जैसा कि मैंने कहा था डिंपल, यह दिन आम दिन नहीं है। 19 अगस्त 1907 को प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार, निबंधकार, आलोचक और साहित्य इतिहासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म भी हुआ था।
1: बिल्कुल, तो चलिए लेते हैं इसी के साथ म्यूजिकल ब्रेक और चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, जो कि गाया है किशोर कुमार जी ने।

0: काफी मजेदार गीत था। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारी आज की आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ, वीकली सेगमेंट, जिसमें आज हम बात करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम के बारे में।
1: डिंपल, मुझे अचानक से ख्याल आया।
0: कैसा ख्याल आदित्य?
1: हम देख रहे हैं कि आज के समय में हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं और आसमान छू रहे हैं। ऐसे में तुम्हें क्या लगता है, क्या 5 रुपए में किसी का पेट भर सकता है?
0: ये कैसा सवाल है आदित्य? 5 रुपए में बड़ों का तो छोड़ो, किसी बच्चे का पेट भी भर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आजकल 5 रुपए में आखिर आता ही क्या है?
1: डिंपल, मैं तुम्हें बताता हूँ। दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ एनिवर्सरी पर, यानी कि 16 अगस्त को 25 और नई अटल कैंटीन का इनॉग्रेशन हुआ है।
0: अरे वाह, तो इसका मतलब अब कुल मिलाकर 100 अटल कैंटीन है दिल्ली में, जिनमें 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा।
1: हाँ, इस पहल के तहत 5 रुपए में भरपेट थाली खाने को मिलेगी, जो न केवल पेट भरेगी मगर पौष्टिक एवं संतुलित आहार के द्वारा वयस्क की प्रतिदिन के एक समय के भोजन के मिलने वाले पोषण की जरूरतों को भी पूरा करेगी।
0: ये तो बहुत ही अच्छी पहल है। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं जिंदगी दो पल की फ्रॉम मूवी काइट।

0: तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। दोस्तों, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप अपना सुझाव हमें भेज सकते हैं yuvvanifeedback@gmail.com पर, yuvvanifeedback@gmail.com।
1: दोस्तों, आज के लिए बस इतना।

0: ही, कल हमारे साथी इसी समय आपसे फिर जुड़ेंगे। चलिए आपसे विदा लेते हैं। मैं आदित्य,
1: मैं डिम्पल।
0: दोस्तों, आप अपना सुझाव yuvvani@gmail.com पर भेजना मत भूलिएगा।
1: नमस्कार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुम्मीडी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन और कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि 42 किलोमीटर से अधिक लंबी यह परियोजना 3,590 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। नई दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में श्री वैष्णव ने कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
3: उत्तर प्रदेश आज भारत की top 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले को रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल करने की बात कही गई है। गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, तेलंगाना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4थी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंची। यह बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4,611 लोग घायल हुए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और खेलों में भारत ने गोल में आज दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है।

भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 76,910, while the Nifty lost 77 points to settle at 24,078. In FIH Hockey World Cup, the Indian men's team will face arch rivals Pakistan in a crucial Pool D encounter in the Netherlands this evening. And with that, we end this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त शाम के 5:10 हुए हैं। अब आप सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोकरंजनी सुनने वाले हमारे सभी साथियों को
1: नमस्कार।
0: और अश्विनी भाई, हम कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और यही सोच रहे थे कि सावन का महीना है, सावन के महीने में कुछ ऐसे भी गीत होते हैं जो आपको इतना तरोताजा कर देते हैं, जिसमें ये लगता है कि वाकई हर तरफ नज़ारा जो है वो हरियाली का है।
1: बिल्कुल, देखिए ना, कार्यक्रम लोकरंजनी है और अपने आप में लोगों द्वारा रचित कार्यक्रम, जो लोगों द्वारा छेड़खानियाँ है ना। अब तीज त्यौहार जैसे जैसे अभी भी तीज गई है, बोलते हैं कि तीज आ गई और बोगी बीच, जैसे इसमें होता है कि वहाँ से शुरुआत होती है त्यौहारों की। लगातार आप देखेंगे कि अभी तीज गई है, फिर रक्षाबंधन आएगा, फिर उसके बाद त्यौहारों की जो लड़ी है लगातार अब चलती चली जाएगी। और ऐसे ही मौसम में, जैसे आपने जिक्र किया है कि भाई मौसम भी कहीं ना कहीं बरसात लगातार हो रही है और सावन का महीना भी है और कार्यक्रम भी है लोकरंजनी, लोगों द्वारा पसंद किया का कार्यक्रम। कहीं पर ये देखा जाता है कि लोकरंजनी की कार्यक्रम की इतनी बड़ी विशेषता है कि लोग कई बार मार्केट या खेत में, तो क्योंकि छोटे छोटे ट्रांजिशन होते हैं ना, जैसे कई लोग बताते हैं हमारे प्रोग्राम में, करीबन जो पत्र हमारे आता है, कई बार बताते हैं कि कार्यक्रम की जो गरिमा है और इनका जो इतना अपार स्वरूप है वो इतना बड़ा है कि लोग ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि इसमें लोग देखिए, हम शहरों में रहते हैं और लोग जो हम कभी थक जाते हैं ना, तो मन करता है कि चलो लौट चलते हैं उस पगडंडी की तरफ जहाँ पर हरियाली है, जहाँ पर गाय है, जहाँ पर पशु है, जहाँ देख देख के मन कितना प्रसन्न होता है। यही लोकरंजनी कार्यक्रम की एक खूबसूरती है।
0: बिल्कुल, तो क्यों ना इसी के साथ अब हम सुनते हैं रोली बरुआ की आवाज में ये सावन गीत।

0: तो अभी आपने सुना रोली बरुआ से इस खूबसूरत सावन गीत को। और अश्वनी भाई, अब हम लेकर चलते हैं अपने साथियों को एक देशभक्ति के रंग में। क्यों? क्योंकि अभी 15 अगस्त हमने मनाया है और देशभक्ति से जुड़ी बहुत सारी यादें हमारी जो है वो फिर से हमें नया कर गई। और अभी भी हमें लगता है कि देशभक्ति एक ऐसी भावना है जिससे हम कभी दूर हो ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा ही एक गीत मुझे याद आ रहा है जो गाया है ओमपाल रतौलवी ने, कुसुम गौड़ ने। क्यों ना हम देशभक्ति के रंग में अब रंग जाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और सिवा हम लोग मना रहे हैं त्यौहार, मना त्यौहार के टाइम जैसे ही हमें लगता है कि ओतप्रोत रहते हैं। अभी हमने ऐसा लग रहा है कि आज आज ही है या कब, हमने अभी उस भावना से कहीं ना कहीं बाहर निकल ही नहीं पाए हैं एक्चुअली हम लोग। और आपने ऐसा एक गीत हमें हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि दोबारा कहीं ना कहीं हम उसी वहीं वहीं पर पहुँच के उसका आनंद ज़रूर उठाएंगे।

0: जो भी आप सुना, आप ही सुना ओमपाल राठौल की और कुसुम कोट की आवाज़ में ये दो गाना। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें देशभक्ति गाना सुन के प्रीति हमें ये कहीं महसूस होता है कि हमें हम अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, चाहे घर से शुरुआत हो या कहीं से शुरुआत हो। जैसे स्वच्छता भारत आंदोलन की अगर हम बात बात करें तो कहीं ना कहीं अपने घर को, एक घर से जैसे हम सोचते हैं कि घर हमारा साफ रहे तो वैसे हमारा देश भी, हमारा मोहल्ला भी, हमारा गांव भी कहीं ना कहीं साफ रहना, जिससे आने वाली जो बीमारियां हैं ना, जैसे मौसम लगातार बदलता चला जा रहा है प्रीति, तो ऐसी दिशाओं में भी लोगों को, युवाओं को आगे आना चाहिए और कहीं ना कहीं शुरुआत करनी चाहिए और अपने देश देश से प्रेम करना चाहिए।
1: जी,
0: तभी तो हमारा देश कहीं ना कहीं ऊंचाई में पहुंचेगा और कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। और
1: और अब सुनवाते हैं केशव कुमार की आवाज में ये अगला लोकगीत।

तो अभी आपने सुना केशव कुमार की आवाज़ में ये सावन गीत, और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम लोक संगीत पर आधारित लोक रंजनी यहीं संपन्न होता है। और

0: सुनने वाले हमारे सभी साथियों को राम राम।
1: नमस्कार। और इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है तुषार पराशर और संयोजक किशन लाल, और इसी के साथ ही हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। सुनने वाले सभी को नमस्कार।

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: खेल खिलाड़ी सुनने वाले सभी श्रोताओं को नवीन कुमार शर्मा का नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका कार्यक्रम में और आज हम चर्चा करेंगे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की। इसके अलावा बात होगी स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 यानी कि अर्जुन अवार्ड और तमाम जो अवार्ड दिए जाते हैं खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के लिए, प्रशिक्षकों को उनके शानदार योगदान के लिए। इसके अलावा चर्चा होगी विश्व कप हॉकी की, जहां भारत को अब जो मुकाबला है पाकिस्तान के साथ उसका होना है और भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन करेगी उम्मीद की जा रही है जिस तरह की परफॉर्मेंस है। और इसके अलावा बात अन्य खेलों की भी होगी, डोनट कप की होगी, सुब्रतो कप की होगी। और इसके अलावा सबसे एक खुशखबरी ये देनी है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने गॉल में श्रीलंका के खिलाफ 165 रन से पहला मुकाबला जीत लिया है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है और भारत ने 1-0 से शानदार शुरुआत की है और भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा है। ये विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है इसलिए ये जीत काफी मायने रखती है। बहरहाल इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे साथ हैं प्रतीक आनंद। स्वागत है प्रतीक
2: जी। नमस्कार।
1: बिल्कुल। और प्रतीक क्यों ना शुरुआत हम विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप से करें, जहां जो कि दिल्ली के आईजी स्टेडियम में चल रही है और हमारे वरिष्ठ सहयोगी शाहिद आजमी खास तौर पर वहां मौजूद हैं और खिलाड़ियों से खास बातचीत और खिलाड़ियों का कैसा प्रदर्शन रहा और क्या चल रहा है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप पे, इस पे पेश है ये रिपोर्ट।

0: दिल्ली के आईजी स्टेडियम में चल रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का सफर शानदार ढंग से आगे बढ़ रहा है। मिश्रित युगल में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी ने राउंड ऑफ 32 के अपने मुकाबले में मकाऊ के लियोंग इयोक चैंग और एंजी वेंगचिंग को 21-11, 21-11 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। यह जोड़ी सिंगापुर सुपर 750 के सेमीफाइनल में पहुंची थी। भारत को इनसे आगे बड़ी उम्मीदें हैं। ध्रुव और तनिषा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा,
1: My racket's quite lightweight and a lot of the doubles and mixed doubles players use it because it's it helps in faster reaction since it's light.
2: Thank you. last 2 years has been like good. The first year we were progressing like what we have to do and how we need to achieve. But since last year we learned a lot and this year it's going well now. Like there are days like when we are not at the best but still we are trying to figure it out like how do we have to become more stable. And keep performing well in the match.
1: I think before him coming, my game was a lot more like women's doubles, not more mixed doubles oriented. But I think after him stepping in, he's changed my game a lot, especially for like moving in and being more aggressive, which gives Dhruv a lot more opportunity at the back. And that's, I think, that's exactly what's needed in mixed doubles and gives us the right plan.
2: I think, yeah. Training with Tankoj is totally different. Like before we used to train Boxer and Manuga and now we are still training with everyone, but the main program is through Tankoj and it's more physical and which helps me a lot to, you know, maintain my physique and keep moving faster. So yeah.
1: It's not actually much because even when I used to play with Ashwini Didi, a lot of my movement was front based. But still I think mixed requires a lot more of that. Constantly doing it and being consistent in doing that is, I think, what has changed. Because since Dhruv needs to cover most of the court and he does cover most of the court, my job mainly is to be more consistent in moving forward, and I think that's the change that has come in.
2: Yeah. Of course, like we are just trying to, you know, not be happy when we are winning, and when we lose also we have to be neutral. So we are just trying to progress those things, like how we have to be stable, you know. It's not like up and down, like there shouldn't be a graph which, you know, shows there's too much of a
1: again.
2: So we're just trying to, like, sometimes it used to be because, but now it's been going well. Like we learned this year a lot, like how we have to maintain it, like
1: so. Yeah, I mean, we do have our own share of bad days, but at the end it's really important to get back together. We sit and we watch a lot of matches together, which really helps us figure out actually what went wrong.
0: पुरुष युगल में भारत की सात्विक रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार जोड़ी को राउंड ऑफ 32 में वॉकओवर मिला। अब ये जोड़ी अंतिम 16 यानी प्री क्वार्टर में प्रवेश कर गई है। उनके प्रतिद्वंद्वी स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर डून और एडम प्रिंगल मुकाबले से हट गए। दरअसल अलेक्जेंडर के टखने में चोट लग गई है। हालांकि पुरुष युगल में अन्य भारतीय जोड़ी एमआर अर्जुन और हरिहरन एम्स करुणन को कोरिया के कैंग और डी की जोड़ी ने 21-17, 21-14 से पराजित कर दिया। पहले सेट में अर्जुन हरिहरन ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन दूसरे सेट में कड़े मुकाबले के बीच मैच गंवाना पड़ा। आईजी स्टेडियम में मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी शाहिद आजमी से बातचीत में अर्जुन ने कहा,
3: मैच कैसा रहा, कहाँ लेक हुआ, क्या रीड किया, क्या लर्न किया, सब बताओ।
4: आई थिंक हम लोग स्टार्ट अच्छा ही किया था मैच से पहले। हमारा टैक्टिक ऐसा था कि कोरियंस के साथ, यू नो, दे आर वेरी गुड एट डिफेंस, तो मैच लंबा होने वाला था एंड हम लोग मेंटली प्रिपेयर था लंबा मैच खेलने के लिए। एंड आई थिंक 15 ऑल तक वी एक्सिक्यूटेड आवर टैक्टिक प्रीटी वेल। हियर एंड देयर मिस्टेक्स हो रहा था, बट हम लोग कवर भी कर रहा था 15 ऑल तक लेके आया मैच को। बट फिर उधर से जो I think 2-3 points continuous chala gaya, I think that cost us the match because 18-15 se experience pair hai wo log, to ek experience pair se 18-15 down se to bring up the match or close the match is a difficult task. I think 15 all se if we would have not made those mistakes and probably then first set jeet jata, to I think match could have gone to either side because second set se started playing from the slower side, thoda aur difficult task tha, we knew it because slower side se especially hamara tactic aisa ki Hari jab piche khelta hai uska smash generally finish hota hai, but jab slower side se khelta hai it's usually a difficult task to finish those with the Korean defense like they have. To second set mein we, you know, starting se hi thoda down ho gaya tha.
5: Is championship
3: कितना नंबर दोगे, कितना अपने परफॉर्मेंस से संतुष्ट है, कैसे देखते हैं?
4: परफॉर्मेंस देखा तो ऑब्वियसली वी आर नॉट हैप्पी विद, आई मीन वी ऑब्वियसली वांट टू गो डीप इनटू अ टूर्नामेंट, बट अभी देखा तो वी न्यू इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क एंड वी प्रिपेयर्ड फॉर इट. अभी देखा दो गेमें खेला है, बट इफ यू सी द मिनट्स वी प्लेड इट वाज क्लोज टू 45 मिनट्स. यूजुअली तीन गेम यूजुअली 45 मिनट्स तक जाता है, तो दैट क्लियरली सेज की लंबा रैलीज हो रहा था. आई थिंक पॉइंट्स इफ वी कुड हैव स्कोर्ड देम.
0: महिला एकल में हालांकि उन्नति हुड्डा की हार से एक झटका लगा. एमली के खिलाफ तीन गेमों के मुकाबले में 21-11, 9-21, 21-23 से उन्नति को नजदीकी हार झेलनी पड़ी. एक समय उन्नति जीत के करीब लग रही थी. हालांकि हार के बावजूद उन्नति को लगता है इस विश्व चैंपियनशिप में उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला.
3: कैसा रहा मैच, कहां लेक हुआ, क्या लगता है, क्या सीखा, बताओ.
1: बहुत अच्छा मैच था. आई प्लेड रियली गुड, मैंने अपना पूरा दिया, बट लास्ट में मैं अपने साइड मैच को कन्वर्ट नहीं कर पाई. दो बारी एडवांटेजेस भी आए, मैच पॉइंट भी आया, बट दैट्स हाउ बैडमिंटन एनी गेम इट इज. बट आई एम रियली हैप्पी दैट आई पुश्ड माई सेल्फ एंड पुश्ड हर ऑल्सो. इट वॉज अ रियली गुड मैच एंड आई एम हैप्पी द वे आई प्लेड ऑन द नेट. आई डिड फ्यू गुड टैप्स एंड ड्रिबल्स ऑल्सो, सो इट हैज रियली, माई नेट हैज रियली इम्प्रूव्ड फ्रॉम माई पास. सो बट आई फील लाइक हूसोएवर वॉज कमांडिंग ऑन द नेट वॉज गेटिंग अ रियली गुड चांस टू अटैक एंड लाइक आइदर मी और शी, लाइक बोथ ऑफ अस वर गेटिंग पॉइंट्स फ्रॉम अटैक्स. Yeah, I feel like in between, I just 2-3 points, I did few silly mistakes from my hand that shouldn't have been done because wo world number 13 hai, so I think uski taraf se silly mistakes beech mein critical moments pe bahut kam hue and whenever she had the chance, she just took it. So I should learn this from.
0: जी हाँ बिल्कुल, जब मौका मिला मिशेल इली को तो उन्होंने उसको भुनाया और मुकाबला जब मैच पॉइंट तक चला गया, कड़ी टक्कर दी. 13वीं वरीयता के खिलाड़ी हैं और उन्नति 45वीं वरीयता के हैं, लेकिन उन्होंने दिखाया कि शानदार प्रदर्शन करने की वो क्षमता रखती हैं. बहरहाल अभी भी मुकाबले चल रहे हैं. पुरुष एकल में लक्ष्य सेन अभी ये मुकाबला खेल रहे हैं अमेरिका के गैरी टेन के खिलाफ, और ये मुकाबला अभी दो पहला गेम 21-19 से लक्ष्य ने जीत लिया था, लेकिन उसके बाद दूसरे मुकाबले में उन्हें कड़ी टक्कर हुई और 19-21 से उन्हें हार का सामना करना पड़ा. अभी निर्णायक गेम चल रहा है. बहरहाल इस चैंपियनशिप

0: में कई उलटफेर भी देखने को मिल रहे हैं। और आज का जो उलटफेर है वो ये है कि ऑल इंग्लैंड चैंपियन लिंच यू बाहर हो गए हैं। इस साल उन्होंने इंडिया ओपन जीता था, लेकिन यहाँ विश्व चैंपियनशिप में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। प्रतीक, क्यों ना बात श्रीलंका में मिली भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर करते हैं। एक शानदार जीत, शानदार शुरुआत सीरीज की।
1: जी हाँ, भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त 2026 तक गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 165 रनों से हराया और श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली। भारत ने पहली पारी में 462 और दूसरी पारी में 193 रन बनाए, जबकि श्रीलंका की टीम दोनों पारियों में 284 और 206 रन ही बना सकी। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक श्रीलंका का स्कोर 4 विकेट पर 84 रन था। उस जीत के लिए 372 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतिम दिन 288 रनों के बनाने थे। क्रीज पर कप्तान धनंजय डी सिल्वा 31 और सोनल दिनुषा 25 रन बनाकर मौजूद थे। भारत को 6 विकेट की जरूरत थी। पांचवें दिन श्रीलंका ने शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों का मजबूती से सामना किया। धनंजय डी सिल्वा और सोनल दिनुषा ने 5वें विकेट के लिए 95 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। धनंजय ने 151 गेंदों पर 59 रन बनाए, जबकि दिनुषा ने 128 गेंदों पर 84 रन की जुझारू पारी खेली। दिनुषा ने 8 चौके और 1 छक्का लगाया, लेकिन धनंजय डी सिल्वा का विकेट गिरते ही मैच का रुख फिर भारत की ओर मुड़ गया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाया। युवा बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज मानव सुथार ने निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने दूसरी पारी में 55 रन देकर 6 विकेट लिए। पहली पारी में भी 4 विकेट मिलाकर सुधार ने पूरे मैच में 10 विकेट हासिल किए। इस शानदार प्रदर्शन से भारत की जीत सुनिश्चित कर दी। जीत के बाद भारत के उप कप्तान केएल राहुल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: इनसे साई ऑफ रिलीफ, वी जस्ट हैप्पी एंड एवरी टेस्ट मैच विक्ट्री इज स्पेशल। वी कमिंग बैक टू श्रीलंका आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सो लॉट ऑफ द गाइस हैवंट बीन हियर एंड या सो इट्स अ ग्रेट स्टार्ट टू the tour. I think we ticked most of the boxes and we did most of the things right that we spoke about before the test match, and the way we prepared, I think we could put that into practice and put that into the game. So that was really good to see, and I think this victory will obviously give a sense of happiness that we did the right things.
0: जी बिल्कुल, और खिलाड़ियों का प्रदर्शन होता है जो उन्हें पुरस्कारों की श्रेणी में लाता है, उनका सम्मान होता है, अभिनंदन होता है। और अब जो खेल परिदृश्य है वहाँ खिलाड़ियों को काफ़ी प्रोत्साहन है, काफ़ी अभिनंदन किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, उनको काफ़ी शाबाशियाँ मिलती हैं, प्रोत्साहन मिलता है। और खेल स्पोर्ट्स जो ये स्पोर्ट्स अवार्ड है वो भी इसी का एक परंपरा है, खिलाड़ियों की सम्मान की। और 2025 के खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स अवार्ड है उन पर ये खास रिपोर्ट, जिनमें 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। देश में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और खिलाड़ियों की उपलब्धियों को सम्मान देते हुए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इनमें 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, 5 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। अर्जुन पुरस्कार पाने वालों में ट्रैक एंड फील्ड से तेजस्विन शंकर और प्रियंका गोस्वामी, शतरंज से विद्युत गुजराती और विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख, बैडमिंटन से त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद, हॉकी से राजकुमार पाल और लाल रेमसियामी, मुक्केबाजी से नरेंद्र, निशानेबाजी से धनुष श्रीकांत और अखिल श्योराण, कबड्डी से सुरजीत और पूजा, पैराशूटिंग से रुद्रांश खंडेलवाल, पैरा एथलेटिक्स से एकता भयान, रोइंग से अरविंद सिंह और एथलेटिक्स से मोहम्मद अजमल शामिल हैं। पैदल चाल में भारत का लगातार नाम रोशन करने वाली महिला एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक रजत पदक जीता था। 10,000 मीटर के अलावा 20 किलोमीटर और 35 किलोमीटर की रेस वॉक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली प्रियंका टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में भी हिस्सा ले चुकी हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शाहिद आजमी ने अर्जुन पुरस्कार मिलने की बधाई दी तो उन्होंने कहा,
3: थैंक यू,
4: आपको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, नाम आ गया आपका लिस्ट में, जब देखा, जब आपने सुना तो कैसा फील हुआ, बताइए अपनी फीलिंग्स के बारे में।
3: काफी अच्छा लगा, और मेरे को तो फर्स्ट आपसे ही पता चला कि मुझे अवार्ड मिलने वाला है, तो काफी अच्छा लगा कि मेरी इतने सालों की जो मेहनत थी वो फाइनली आज रंग लाई और मैं थैंक्स करूंगी सभी का।

0: और इसके बाद जो अब एक अर्जुन अवार्ड मेरे नाम के आगे अवार्ड ही जुड़ जाएगा, तो ये एक अलग ही बात होती है प्लेयर के लिए, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स का ये काफी बड़ा अवार्ड माना जाता है। तो सभी एथलीट का एक ड्रीम होता है कि हम ओलंपियन बने, अर्जुन अवार्ड ही हो। तो बाय स्टेप हर चीज मुझे मिलती जा रही है, तो मैं थैंक्स करूंगी भगवान का भी इसके लिए।
1: प्रियंका, ये जो अवार्ड मिला इससे कितना हौसला बढ़ेगा, क्योंकि आगे बहुत से इवेंट होने वाले हैं, तमाम तरह के इवेंट है अभी आपकी मंजिल और आगे, कितना उत्साह आपका बढ़ेगा, कितना मोटिवेट होंगी?
0: मोटिवेट तो हर चीज से ही होता है प्लेयर, जब हमें कोई भी अचीवमेंट मिलती है या हमें कोई सम्मान मिलता है तो हमें हर चीज से उस मोटिवेशन मिलता है। और अवार्ड भी एक मेरे स्पोर्ट्स करियर में ऐड हुआ है, अर्जुन अवार्ड जो है, तो इससे भी मोटिवेशन ही मिलेगा ताकि मैं और आगे और अच्छा करूँ, और कुछ जो हमारे और अवार्ड्स हैं उनको मुझे मिले, और उसके लिए मैं और क्या मेहनत कर सकती हूँ, कहाँ मैं मेडल ले सकती हूँ, वो मैं हमेशा अपना टारगेट। बस अगला निशाना भी एशियन गेम्स आ रहा है, मेरा कॉमनवेल्थ में मेडल मिस हुआ है, मैं फोर्थ पोजीशन से फिनिश किया,
1: जी
0: तो
1: जी
0: यही टारगेट है कि मैं एशियन गेम्स में अच्छा करूँ और अपने देश के लिए मेडल जीतूँ।
1: जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, आपने आकाशवाणी दिल्ली को समय दिया, शुक्रिया प्रियंका,
0: थैंक यू
1: ओके,
0: सो मच,
1: थैंक यू, थैंक यू।
0: धन्यवाद।
1: भारतीय
2: महिला हॉकी खिलाड़ी लाल रेम सियामी ने अर्जुन पुरस्कार के लिए चुने जाने पर अपनी खुशी कुछ यूं जाहिर की

0: जी बिल्कुल, तमाम खिलाड़ियों ने अपना जो एक जो पुरस्कार मिला है, उन्हें सम्मान मिला है, उसके लिए सभी का धन्यवाद किया, न केवल प्रशंसकों का बल्कि सरकार का और साई का जिनका रोल रहता है, अपने कोचिज का। और एक जो एक पुरस्कार मिलता है वो एक प्रतीक है इस बात का कि उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, उनकी शानदार उपलब्धि रही है। बहरहाल, अब बात करते हैं वर्ल्ड कप हॉकी की, और क्या प्रतीक बताना चाहेंगे विश्व कप में जो चल रहा है?
1: बेल्जियम और नीदरलैंड्स में खेले जा रहे FIH हॉकी विश्व कप में 18 अगस्त का दिन भारतीय हॉकी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की, जबकि पुरुष वर्ग में भारतीय टीम का बहुप्रतीक्षित मुकाबला आज पाकिस्तान से होगा। 18 अगस्त को महिला और पुरुष वर्ग को मिलाकर कुल 9 मुकाबले खेले गए। आइए नजर डालते हैं सभी मुकाबलों पर। शुरुआत करते हैं उस मुकाबले से जिस पर भारतीय हॉकी प्रशंसकों की अधिक नजर रही। एम्स्टलवीन के वैगनर हॉकी स्टेडियम में भारतीय महिला टीम का सामना दक्षिण अफ्रीका से हुआ। भारत ने इस मुकाबले में शुरू से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा और दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से हराया। भारत ने पहले ही क्वार्टर में बढ़त हासिल कर ली। मैच के 11वें मिनट में सुनेलिता टोप्पो ने गोल करके भारत को 1-0 से आगे कर दिया। भारतीय टीम की तेज शुरुआत से दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बढ़ गया। दूसरे क्वार्टर में भारत ने अपनी बढ़त को और मजबूत किया। 17वें मिनट में नवनीत कौर ने गोल किया और स्कोर 2-0 हो गया। इसके बाद 25वें मिनट में पुखरबम सुशीला चानू ने गोल करके भारत की बढ़त 3-0 कर दी। पहले हाफ तक भारत पूरी तरह नियंत्रण में था। भारतीय खिलाड़ियों ने गेंद पर बेहतर नियंत्रण रखा और दक्षिण अफ्रीका को लगातार अपने सर्किल से बाहर रखने की कोशिश की। तीसरे क्वार्टर में भी भारतीय आक्रमण जारी रहा। 39वें मिनट में दीपिका ने गोल किया। इसके बाद 44वें मिनट में लालरम सियामी ने भारत के लिए 5वां गोल दागा। तीसरे क्वार्टर के अंतिम मिनट में साक्षी राणा ने गोल करके भारत की बढ़त 6-0 कर दी। इस समय तक मुकाबले का परिणाम लगभग तय हो चुका था। हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने अंतिम क्वार्टर में एक गोल करके स्कोर में कुछ कमी जरूर की। 55वें मिनट में कायला डिवॉल ने दक्षिण अफ्रीका के लिए गोल किया और स्कोर 6-1 कर दिया। इसके बाद भारतीय टीम ने अपनी बढ़त को सुरक्षित रखा और मुकाबला 6-1 से अपने नाम कर लिया। यह विश्व कप के इतिहास में भारतीय महिला टीम की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले साल 1974 में भारत ने स्पेन को 4-1 से हराया था। जीत के बाद भारतीय खिलाड़ी लाल रेम सियामी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: आज का मैच भी बहुत अच्छा रहा। जैसे हम एज ए टीम हमने डिसाइड किया खेलने के लिए, हमारा गेम प्लान सब हमने वो फॉलो किया है। काफी चीज हम बीच में हम इम्प्रूव भी तो कर सकती है कि हमारा अटैकिंग पार्ट में, हमारा फिनिशिंग लाइन में, और हम वहीं पे हम वॉच बैक करेंगे और नेक्स्ट मैच में हम और क्या बेहतर कर सकती है हम देखेंगे। ओवरऑल हमने हमारा परफॉर्मेंस आज के लिए हम खुश है क्योंकि एज ए टीम हमने खेला है, जैसे हमने प्लान किया वही हमने फॉलो किया है।
1: यह जीत भारतीय महिला टीम के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रही। चीन के खिलाफ पहले मुकाबले में 2-2 की बराबरी

0: के बाद भारत को 3 अंक हासिल करने के लिए इस मैच में जीत की जरूरत थी। इस जीत के बाद भारत पूल डी में 4 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गया है। भारत के 2 मुकाबलों में 1 जीत और 1 ड्रॉ है। साथ ही साथ भारत ने प्रतियोगिता में अब तक 2 मुकाबलों में सर्वाधिक 8 गोल भी दागे हैं। भारत के लिए सबसे ज्यादा गोल नवनीत कौर और दीपिका ने किए हैं, दोनों के नाम 2-2 गोल हैं। भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला 20 अगस्त को इंग्लैंड से होगा। और बात उस मुकाबले की जिसका इंतजार भारतीय हॉकी प्रशंसक बेसब्री से कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान की पुरुष हॉकी टीमें 19 अगस्त को एम्स्टेलवीन के वैगनर स्टेडियम में आमने सामने होंगी। इससे पहले भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हॉकी वर्ल्ड कप 2010 में हुई थी, जहां भारत ने पाकिस्तान को 4-1 से हराया था। यह 16 साल बाद होगा कि भारत और पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप में आमने सामने होंगे। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 से खेला जाएगा। भारत ने विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत वेल्स के खिलाफ 3-1 की जीत से की थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4-2 से हरा दिया था। इस हार के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। भारत के पास इस समय 3 अंक हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जीत भारत को अगले चरण में पहुंचने की मजबूत स्थिति में रखेगी। श्रोताओं, बात करें भारत पाकिस्तान प्रतिद्वंदिता की, तो 2016 के साउथ एशियन गेम्स के फाइनल के बाद से पाकिस्तान कभी भारत के खिलाफ जीत नहीं हासिल कर सका। साउथ एशियन गेम्स के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 1-0 से शिकस्त दी थी। इसके बाद से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 19 मुकाबलों में से 17 जीते और 2 ड्रॉ खेले हैं। हाल ही में समाप्त हुई FIH प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 2 बार हराया, जिसमें 1 जीत का अंतर तो 7-1 का रहा था। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में भी भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया था। वहीं एशियन गेम्स 2023 में भी भारत ने पाकिस्तान को 10-2 से करारी शिकस्त दी थी। लेकिन विश्व कप में पाकिस्तान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। विश्व कप में दोनों टीमों के बीच 5 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 3 और पाकिस्तान ने 2 मुकाबले जीते हैं। भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई और पेनल्टी कॉर्नर रहे हैं। भारत के हरमनप्रीत सिंह अब तक प्रतियोगिता में 3 गोल दाग चुके हैं। वेल्स के खिलाफ भारत ने 3 गोल पेनल्टी कॉर्नर से किए थे। इंग्लैंड के खिलाफ भी हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल किया था। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ सेटपीस भारत के लिए एक बार फिर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन भारत को केवल पेनल्टी कॉर्नर पर निर्भर रहने के बजाय ओपन प्ले में भी बेहतर मौके बनाने होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने 2 गोल किए, लेकिन दूसरे हाफ में टीम की रक्षात्मक संरचना कमजोर हुई। पाकिस्तान के खिलाफ इस कमी को दूर करना जरूरी होगा। दूसरी ओर पाकिस्तान ने इंग्लैंड से 1-4 की हार के बाद वेल्स के साथ 3-3 से ड्रॉ खेला है। पाकिस्तान ने वेल्स के खिलाफ मुकाबले में आक्रामक हॉकी दिखाई। पाकिस्तानी टीम तेज आक्रमण और व्यक्तिगत कौशल के दम पर भारतीय डिफेंस को परेशान कर सकती है, इसलिए भारतीय डिफेंस के साथ साथ मिडफील्ड का नियंत्रण भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। भारत के लिए समीकरण स्पष्ट है। पाकिस्तान के खिलाफ जीत टीम को अगले चरण की दौड़ में मजबूत स्थिति देगी। ड्रॉ की स्थिति में दूसरे मुकाबले के परिणाम और गोल अंतर की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, जबकि हार भारत के लिए बेहद मुश्किल स्थिति पैदा कर सकती है। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले भारतीय खिलाड़ी मनप्रीत सिंह से हुई बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: अगर ऑनेस्टली बात करें सर, हमारा यही रहेगा कि जो हम लोगों ने अभी लास्ट 2 मैच जैसे खेले हैं वैसे ही खेलेंगे तो हम लोग उनको बीट कर सकते हैं। बट हमें इमोशनल नहीं होना है। जो हमारा गेम स्ट्रक्चर रहेगा, जो गेम प्लानिंग हम लोग उस दिन के लिए करके जाएंगे, तो उसको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि एक हॉकी टीम के में सभी को अपना 100% देना होगा उस दिन, क्योंकि वर्ल्ड कप है, वो भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। और हमारा यही रहेगा कि हम लोग अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग रखे, तो उनके साथ जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले हम लोग उसको गोल में करें।
0: वही बात करें महिला वर्ग में खेले गए अन्य मुकाबलों की, तो पूल सी में न्यूजीलैंड का सामना आयरलैंड से हुआ। आयरलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। इसके अलावा पूल डी में इंग्लैंड और चीन के बीच मुकाबला खेला गया। दोनों टीमों के बीच जोरदार संघर्ष देखने को मिला, लेकिन चीन ने 4-2 से जीत दर्ज की। अब बात महिला वर्ग के अंतिम मुकाबले की। पूल सी में बेल्जियम ने स्पेन के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला। अब रुख करते हैं पुरुष वर्ग की ओर। 18 अगस्त को पुरुष वर्ग में 5 मुकाबले खेले गए। पूल बी में जर्मनी ने मेजबान बेल्जियम को 1-0 से हराया। पूल ए में न्यूजीलैंड ने जापान को 2-0 से हराया। पूल सी में ऑस्ट्रेलिया ने स्पेन के खिलाफ 1-0 से जीत दर्ज की। इसी पूल में आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला भी खेला गया। एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में आयरलैंड ने 4-1 से जीत दर्ज की। दिन के अंतिम पुरुष मुकाबले में पूल ए में मेजबान नीदरलैंड्स ने अर्जेंटीना को 3-1 से हराया।
2: जी बिल्कुल। और प्रत्येक ग्रुप की भी बात कर लेते हैं। पुरुष हॉकी की बात करें तो पूल डी में भारत शामिल है। 2 मैच खेले हैं, 1 जीता है।

एक ड्रॉ खेला है, 4 अंक हैं, चाइना दूसरे स्थान पर है, 2 मैच में से एक जीता है, एक ड्रॉ खेला है, उसके भी 4 अंक हैं। इंग्लैंड वो ये वुमेन टीम की अगर बात करें तो, और मैन टीम की अगर बात करें तो पूल डी में भारत का जो प्रदर्शन है, 2 मैच में एक जीत का है और एक में उसे हार का सामना करना पड़ा, 3 अंक हैं। तो महिला वर्ग में भारतीय टीम और पुरुष वर्ग में दोनों जगह भारतीय टीम से आगे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। और बात खेल पुरस्कारों की हो रही थी, और जो अर्जुन अवार्ड पाने वाले 17 खिलाड़ी हैं उनमें ट्रैक एंड फील्ड से तेजस्वी शंकर, प्रियंका गोस्वामी शतरंज से विदित गुजराती और विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख, बैडमिंटन से त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद, हॉकी के राजकुमार पाल और लाल रेम सियामी, मुक्केबाजी में नरेंद्र, निशानबाजी से धनुष श्रीकांत और अखिल शिवराणा, कबड्डी से सुरजीत और पूजा, पैराशूटिंग से रुद्रांश खंडेलवाल, पैरा एथलेटिक्स से एकता बयान, रोइंग से अरविंद सिंह और एथलेटिक्स से मोहम्मद आजमल शामिल हैं। भारतीय फुटबॉल में लंबे समय से योगदान के लिए लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड आई अरु मैन यागम को दिया गया है। वे 1962 की एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय फुटबॉल टीम के सदस्य रहे हैं। कोचिंग के क्षेत्र में परवीर सिंह एथलेटिक्स, छोटेलाल यादव मुक्केबाजी और नेहानंद कुमार चौहान को नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलेगा। वहीं मुक्केबाजी में धर्मेंद्र यादव और कुश्ती से धीरेन्द्र कुमार को लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड पुरस्कार के लिए चुना गया। आर्मी पैरालंपिक नोट पुणे को खेलों के प्रोत्साहन और विकास में योगदान के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है।

0: और प्रतीक, क्यों ना बात अब फुटबॉल की करें।
1: जी हाँ, आइए बात करते हैं एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डरन कप 2026 में। आज यानी 19 अगस्त 2026 को फुटबॉल प्रेमियों की नज़रें कोलकाता पर टिकी हैं, जहां पहला सेमीफाइनल स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली और घरेलू पसंदीदा ईस्ट बंगाल FC के बीच खेला जाएगा। यह रोमांचक मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन सॉल्ट लेक स्टेडियम में ठीक शाम 7 बजे से शुरू होगा। आज का यह मुकाबला SC दिल्ली की घातक आक्रमण और ईस्ट बंगाल के अभेद्य डिफेंस के बीच एक कांटे की टक्कर होने वाला है। घरेलू दर्शकों का भारी समर्थन ईस्ट बंगाल के साथ होगा, लेकिन दिल्ली के हौसले भी सातवें आसमान पर होंगे।
0: बिल्कुल, फुटबॉल की बात को जारी रखते हैं और दिल्ली के IG दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में चल रहे सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका वर्ग में पश्चिम बंगाल ने तेलंगाना को 6-0 से हराया। मध्य प्रदेश ने ISSC को 9-0 से पराजित किया। NC ने जम्मू कश्मीर को 19-0 से मात दी। IPSC ने त्रिपुरा को 7-0 से हराया। दिल्ली ने APS को 1-0 से शिकस्त देकर जीत हासिल की। बिहार ने NSC को 3-0 से हराया। अरुणाचल प्रदेश ने सैनिक स्कूल को 3-0 से पराजित किया। तेलंगाना ने NSC को 13-0 से हराया। गुजरात ने जम्मू कश्मीर को 13-0 से मात दी। और प्रदीप, बात दिल्ली प्रीमियर लीग की भी करते हैं, DPL हाँ। की जो कि क्रिकेट लीग चल रही है दिल्ली में।
1: जी हाँ, कल अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दिन के मुकाबले में पुरानी दिल्ली 6 ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को 20 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पुरानी दिल्ली 6 ने अपने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 211 रन बनाए। 212 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की टीम 20 ओवरों में 151 रन ही बना सकी। बात करें शाम के मुकाबले की तो सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 30 रनों से शिकस्त दी। सेंट्रल दिल्ली किंग्स की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवरों में 179 रनों पर सिमट गई। 179 के जवाब में ईस्ट दिल्ली राइडर्स की टीम 20 ओवरों में 149 रन ही बना सकी।
0: हाँ बिल्कुल प्रतीक, अब चलते चलते बात कर लेते हैं अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की। और कुश्ती में जितना शानदार प्रदर्शन हालिया वर्षों में रहा है बहुत ही शानदार है, और यही दिखा रहे हैं अंडर 20 के काजल धोचक, जो कि 76 किलो बारह वर्ग में, और सविता दलाल ने 62 बारह वर्ग में अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाकर शानदार प्रदर्शन किया है। और उम्मीद की जा रही है कि वो न केवल अब सेमीफाइनल में पहुंची हैं बल्कि अब जीत स्पोर्ट ने स्वर्ण पदक से महज 2 कदम दूर हैं। बहरहाल घड़ी की सुइयां हमें ज़्यादा अनुमति प्रदान नहीं कर रही हैं, तो अपने कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे नवीन कुमार शर्मा और साथी
1: प्रतीक आनंद
0: को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। नई दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में श्री वैष्णव ने कहा कि देश 6 से 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4,611 लोग घायल हुए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार अब से कुछ देर में शुरू होगा। भारत ने अब तक 2 मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भी बाई मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड।

0: हिंदी वार्ता कार्यक्रम के इस अंक में आपका स्वागत है। तुलसी जयंती के सुअवसर पर प्रस्तुत है विशेष वार्ता लोक मंगल के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास। वार्ताकार हैं तुलसी शोध संस्थान के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर उमेश पाठक।
1: तुलसी जयंती के पावन अवसर पर आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं उमेश पाठक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरी वार्ता का विषय है लोक मंगल के महाकवि विश्ववंद तुलसीदास जी। भारतवर्ष में जब कभी भी लोक मंगलकर्ताओं के नाम लिए जाते हैं तब उनमें विश्ववंत तुलसीदास जी का नाम अग्रगण्य है। लोक मंगल को दूसरे शब्दों में व्यष्टि के कल्याण या सामाजिक हित भी कह सकते हैं, पर तुलसीदास तो अपने आप को मौसम दीन कहते हैं, तब कोई दीन व्यक्ति व्यष्टि का मंगलकर्ता कैसे हो सकता है। रामचरित मानस उनके विराट व्यक्तित्व और कृतित्व से सृजा गया लोक मंगल का विधान ही तो है। उनके व्यक्तित्व में यह विराटता राम जी की भक्ति से आई है और राम जी की भक्ति के बारे में वे कहते हैं कि राम भगत सुरसरते जाई, अर्थात राम जी की भक्ति मुझे गंगा जी से मिली। गूढ़ और कूटार्थ में यह तुलसीदास जी अपने जन्म और शिक्षा भूमि स्वर्ण शुकर क्षेत्र की ओर संकेत करते हैं। गंगा जी स्वर्ण शुकर क्षेत्र का लोक प्रचलित नाम है। सहजता तुलसीदास जी एक भक्त व कवि के रूप में ही जाने जाते हैं, पर उनके कृतित्व में अनेक विधाओं के विद्यावारिद व मर्मज्ञ का दर्शन होता है। वे भक्त, कवि, ज्ञानी, वीतरागी, दर्शनाचार्य, ज्योतिर्विद, आयुर्वेदाचार्य, अर्थशास्त्री, वास्तुकार, मनोवैज्ञानिक, स्त्री व बाल व्यवहार के पारखी, राजनीति के पंडित, कूटनीतिज्ञ, सेवक, धर्म के ज्ञाता, भूगोल व पर्यावरणविद, शिक्षाविद, अभियांत्रिक, वैद्य, रसोईया, विनोदी, शकुन अपशकुन ज्ञाता, गुरुकुल, ऋषि आश्रमों और राज परिवारों के संवाद की श्रेष्ठता, काव्यांगों और विविध संस्कृतियों के पंडित हैं। तुलसीदास जी ज्ञानारण्यम में विराटतम मत्स्य की भांति आनंदित रहने वाले हैं। उन्हें सहानुभूति है, विद्या पाए नमय बुद्ध, यह उनके शिक्षा दीक्षा गुरु पंडित नरसिंह चौधरी जी का यशाशीष है। फिर भी तुलसी को कोई अहंकार नहीं है। वे स्वयं को सकल कला सब विद्या हीनु या कवित विवेक एक नहीं मोरे ही कहते हैं। तुलसीदास जी ने अनेक विषयों पर अपना पूर्ण परिपक्व विचार व्यक्त किया है। विभिन्न विषयों पर लोक में जो वैषम्य या विरोधाभास था उसे समाप्त कर वे लोक व साहित्य आकाश में भास्कर की भांति दैदीप्यमान होते हैं, और इसके लिए वे गुरुपद रज को आंखों में और मस्तक पर धारण करना आवश्यक मानते हैं। मानसकार के लोक मंगल को एक वाक्य में व्यक्त करूं तो वे ऐसे महाप्रबंधक महाचार्य हैं जो जीव को इस लोक में श्वास श्वास का समय की एक घड़ी आदि में पुनः आदि का सत प्रबंध बताते हैं, तथा देह त्याग के बाद परलोक भी कैसे सुखद होगा तथा परलोक के लिए मार्ग व्यय क्या है, वहाँ का विधान क्या है, सब कुछ परिचित करा देते हैं। विश्ववंद भवरोगों को ऐसा भेषज देते हैं कि जीव मानवीय मूल्यों का आगार बन जाता है और निज प्रभु में देखे जगत कैसन करें विरोध के नयन व मन का स्वामी बन जाता है। साहित्य, समय और श्वास प्रबंधन की दृष्टि से तुलसीदास सर्वोच्च स्थान पर हैं और ध्रुव की भांति स्थान च्युत भी नहीं हो सकते, जबकि वे सब तज भजन करो दिन राति की बात करते हैं। वे कुटुंब, परिवार, समाज के मंगलादर्श की स्थापना करने में सफल होते हैं। तुलसीदास जी के मानस का मंगलाचरण तो अनुपम, अद्भुत, अद्वितीय है, पर उनके जीवन का मंगलाचरण अत्यंत ही दुखद था। जब वे ब्राह्मण कुल में ही भिक्षावृत्ति करने वाले सनाड शुक्ल आष्पदीय ब्राह्मण कुल में गंगा भागीरथी तटवर्तीय भगवान धरणीधर की लीला भूमि सनातन के आदि तीर्थ सप्त क्षेत्रों में गण एकमात्र स्वर्ण शुक्र क्षेत्र के योगमार्ग मोहल्ले में संवत 1568 ईस्वी सन 1511 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष सप्तमी को विशाखा नक्षत्र में जन्मे। उसके 10 मास बाद में ही उनकी माता हुलसी व आत्माराम शुक्ल जी का प्रभु मिलन हो गया। 36 वर्ष की आयु में बदरिया निवासी दीनवंत पाठक की पुत्री व उनकी पत्नी देवी रत्नावली के प्रेरणास्पद शब्दों से प्रेरित होकर कुटुंब व गृहस्थ बंधन से मुक्त हो गए, पर किसी सन्यासी या वैरागी अखाड़े में दीक्षित नहीं हुए। वे स्मार्त वैष्णव रहे। वे सभी देवी देवताओं की पूजा कर अर्चन करते हैं। तुलसीदास जी का समकाल लोक के विविध अमंगलों से त्रस्त था, जिसे उन्होंने कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरित अभिव्यक्त किया है। ऐसे समकाल में जब धर्म, संस्कार, आचरण सब कुछ हाहाकार कर रहा था, तब तुलसीदास जी ने राम नाम बट विश्वास लोक को प्रदान करते हैं। वे लोक मंगल के आर्थ अभिलाषी हैं। उनके राम के गुणों को लोग स्वीकार और अंगीकार करें और शोक संताप से मुक्त हों, यही उनकी अभिलाषा है। साहित्य में अनेक कवियों को उक्ति वैचित्र के लिए जाना जाता है। रामचरितमानस का मंगलाचरण भी उक्ति वैचित्र से परिपूर्ण है। जब तुलसीदास जी कहते हैं स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, यह गाथा लोक के लिए अमीय वृष्टि सिद्ध हुई। मैं इसे दधीच के अस्थि दान से बड़ा अवदान मानता हूँ, क्योंकि दधीच का दान तात्कालिक प्रभावी रहा, पर तुलसीदास जी का लोक मंगल यज्ञ नित्य है, जो युगों युगों तक पूर्ण प्रभावी, क्रियाशील व प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि किसी भी काल में जीव परमात्मा के समान नहीं हो सकेगा, उसे कहना ही पड़ेगा जयविद नाथ होए हित मोरा। तुलसीदास जी ने लोक में जीव का चरित्र, कुटुंब, परिवार, धर्म, अध्यात्म, शासन के अंग व काव्याद सभी को सद्गुणों व मंगल मूल्यों से निबद्ध किया है। मनुष्य मात्र के चरित्र में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेह, दयालुता, विनयशीलता, परोपकार, कृतज्ञता, साहस, शौर्य, आत्मबल, सद असद विवेक, वचन पालन, उत्साहक होना, स्वावलंबी होना, संतोष, काम क्रोधात पर नियंत्रण रखना, निष्कपट रहना, आत्मवत संबंध होना, जिज्ञासु होना, अपराध बोध होना, शिष्टाचार आदि अवश्य होना चाहिए। तुलसीदास जी के रामचरित मानस के पात्रों ने यह गुण मंगल मूल्य स्थापित किए हैं। कुटुंब परिवार में विविध संबंधों के मध्य जो होना चाहिए वह है मातृ पितृ भक्ति, वात्सल्य भाव, भ्रातृत्व भाव, पत्नी भाव, पति भाव, सास ससुर, पुत्र वधू का संबंध, पुत्री की महत्ता, छोटों के प्रति स्नेह, कुलानुकूल मर्यादाओं का पालन, देश धर्म व जाति का अपमान का प्रत्युत्तर, अतिथि सत्कार, प्रगाढ़ मैत्रता, सज्जन का साथ, शरण आए हुए की रक्षा, सेवा धर्म, नारीजन्य लज्जा व मर्यादा का पालन, स्त्रियों की पराधीनता का निषेध, सभी वर्ण व जातियों के प्रति प्रेम, कर्तव्य मुक्त होते ही दायित्वों से मुक्ति और वानप्रस्थ व संन्यास लेना। तुलसीदास जी का धर्म व अध्यात्म के क्षेत्र में मंगल सृजन मानसकार सनाड कुलकर्णी ने धर्म के 22 लक्षण बताए हैं। शौर्य, धैर्य, सत्य, शील, बल, विवेक, आत्मसंयम, परोपकार, क्षमा, कृपा, समता, ईश आराधना, वीतरागता, संतोष, दानशीलता, सद्बुद्धि, श्रेष्ठ विज्ञान, निर्मल और अचल मन, ये सब तुलसीदास जी के द्वारा बताया गया महत्वपूर्ण धर्म का विषय है। अष्टछाप के महाकवि नंददास के अग्रज तुलसीदास ने युवाओं के लिए बहुत ही वर्णनीय भाव व्यक्त किए हैं, जो लक्ष्मण परशुराम संवाद, पुष्प वाटिका में सीताराम मिलन प्रसंग, अंगद रावण संवाद में अनुकरणीय है। ब्रह्मचर्य के बारे में वे क्षत्रिय वर्ण के राम के द्वारा कहलवाते हैं, रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंत पग धरे नकाऊ, मोय अतिशय प्रतीत मनिकेरी, जय सपनऊ पर नार नहेरी, इम कुपंत पग देत खगेसा, रहे न तेज बुद्धिबल लेशा। यदि वर्ण कर्म व्यवहार आधारित है तब आज के जैन जी को रघुवंशी बनने की में ही कल्याण होगा। राजनीतिक मूल्यों में राज्य शासन संचालन के लिए राजा, मंत्री, राजदूत, राजकर्मी आदि के कर्म को बहुत विस्तार से उन्होंने व्यक्त किया है। शासन की प्रणाली के बारे में कहते हैं, बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भाव भानसो होए। तुलसीदास जी ने लगभग 350 दोहा चौपाइयों में लोक मंगल के लिए गढ़ावा जड़ा है। भारतवर्ष एक कर्म भूमि है, यहाँ कर्म विज्ञान को जो अनुशीलन और आत्मसात कर लोक हित में प्रयोग करता है वह समन्वय कर सके वह लोकनायक या लोक मंगल करता कहा जाता है। तुलसीदास जी ने लोक मंगल के लिए लोक और शास्त्र, गृहस्थ और वीतरागिता, भक्ति और ज्ञान, भाषा और संस्कृति, निर्गुण और सगुण, पुराण और काव्य, पंडित और अज्ञानी, ब्राह्मण और चांडाल, आदर्श और व्यवहार, प्रकृति और निवृत्ति, मानवतावादी विचारधारा, शैव वैष्णव, शाक्त का समन्वय, राम और पुष्टि मार्ग का विरोध आदि किया है। इस तरह से हम देखते हैं कि तुलसीदास जी ने लोक मंगल के लिए सब कुछ किया है। अंत में मैं उन्हें एक शब्द और कहना चाहूंगा कि उनकी भाषात्मक लिपि प्रवृत्तियां उन्होंने अपनी जन्मभूमि पर ही रखी हैं, जो सोनो सूकर क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। मैं उन्हें एक ब्रह्मा के समान मानता हूं। ब्रह्मा जी ने जैसे अपने लिए, सृष्टि के लिए जो कुछ भी सृजित किया है उसमें विष और अमृत दोनों है। तुलसीदास जी ने भी साहित्य में मृदुल और खटकने वाली बातें दोनों ही प्रकार की कही और पिरोई है, चयन आप करें। तुलसीदास जी के राम द्रुतगामी कार्यों के लिए ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान का चयन करते हैं। राजनीति के लिए राजदूत अंगद को बनाते हैं। वन में प्रवास के लिए बाथान ऋषियों से पूछते हैं। केवट से नौका मांगते हैं। सेतु निर्माण के लिए नलनील से करवाते हैं। मेघनाथ से लक्ष्मण का युद्ध करवाते हैं। ये हमारे लिए आज देखना है कि आज कर्म सांकर्य कितना प्रभावी होता जा रहा है। तब जैन जी को भी आज की स्थिति में सोचना चाहिए कि हित क्या है। वार्ता को सुनने के लिए आकाशवाणी के श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आकाशवाणी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस वार्ता के लिए आमंत्रित किया।
0: तुलसी जयंती के सुअवसर पर अभी आप सुन रहे थे विशेष वार्ता लोक मंगल के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास। वार्ताकार थे तुलसी शोध संस्थान के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर उमेश पाठक। प्रस्तुतकर्ता

0: वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन एकचत्वारिंशदधिक त्रयोदश सहस्रकोटि रूप्यकाणां पञ्च परियोजनाः अनुमोदिताः, यत्र चतस्रः रेल परियोजनाः एका राजमार्ग परियोजना वर्तते। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव असूचयत यत् सर्वकारेण प्रतिवर्षं प्रायः त्रिंशदधिकैकशत अर्बुद अमेरिकी डॉलर मितं सार्वजनिक निवेशः क्रियते, येन सततार्थिक विकासः संवृत्यते। सर्वोच्च न्यायालयः नीट यूजी प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणात् परं परीक्षा परिष्कारे राधाकृष्णन समित्याः संस्तुतीनां क्रियान्वयनाय केन्द्र सर्वकारस्य प्रतिवचनम् ऐच्छत्। कोलंबिया देशे भीषण भूकंपेन मृतानां संख्या द्वादशाधिक त्रिशतं यावत् प्रवर्धिता। अपि च भारतेन प्रथम निकष स्पर्धायां श्रीलंका दलं पञ्चषष्ठ्यधिकैकशतं धावनांकैः पराजितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां समुपविष्टेन केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य एकचत्वारिंशदधिक त्रयोदश सहस्रकोटि रूप्यकाणां पञ्च प्रमुख परियोजनानां अनुमोदनं कृतम्।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो देश के लिए बुनियादी ढांचा है, देश के लिए एक फाउंडेशन है, वो प्रोजेक्ट्स 62 रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, 38 हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, 12 मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारे के सारे स्ट्रेट अवे हमारे मिडिल क्लासेस और यूथ को बेनिफिट करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इससे नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी।
0: एतासु चतस्रः रेल परियोजनाः एका च राजमार्ग परियोजना समाविष्टा अस्ति। नवदिल्ल्यां मन्त्रिमण्डल उपवेशनानन्तरं प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः असूचयत् यत् रेल विभागस्य चतस्रः बहुमार्ग परियोजनाः पश्चिमबंग ओडिशा तमिलनाडु आन्ध्रप्रदेश राज्यानां अष्ट जनपदान् समावेक्षन्ति। एतासु खड्गपुर भद्रक चतुर्थ रेल मार्ग, भद्रक हरिदासपुर चतुर्थ रेल मार्ग, गुम्मिडी पुंडी गुटूर तृतीय चतुर्थ रेल मार्ग, सहिव कटक पारादीप तृतीय चतुर्थ रेल मार्ग परियोजनाः समाविष्टाः सन्ति। अनेन भारतीय रेल मार्ग संजाले प्रायः 10-400 किलोमीटर परिमितस्य नूतन मार्गस्य योगः भविष्यति।
1: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले चार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले चार प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये फोर लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् 50-400-900 कोटि रूप्यकाणां व्ययेन युक्ताः एताः रेल परियोजनाः 2000तमस्य 30-31 वा वर्षपर्यन्तं सम्पूर्णाः भविष्यन्ति। श्रीवैष्णवः अवदत् यत् मार्गक्षमतायाः वृद्ध्या यातायात गतिशीलतायां महान् परिष्कारः भविष्यति, येन भारतीय रेलवे संचालन दक्षता सहैव सेवा विश्वसनीयता सुदृढा संवर्तिष्यते। एताभिः परियोजनाभिः प्रायः 48,400-600 ग्रामाणां संपर्क व्यवस्था सुगमा भविष्यति। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः प्रतिपादितवान् यत् भारतस्य आर्थिक विकासः सम्प्रति वैश्विक स्तरे मान्यतां प्राप्नोति, सहैव देशः 6%-8% यावत् तीव्रगत्या संवर्धते। सः अवदत् यत् विकासस्य अयम् उपक्रमः चतुर्षु प्रमुखस्तम्भेषु आधारितो वर्तते। अद्य नवदिल्ल्यां 26,000-2000तमवर्षस्य उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीवैष्णवः असूचयत् यत् निवेशः देशस्य विकास यात्रायाः महत्वपूर्णः भागः वर्तते, यत्र भारतं प्रतिवर्षं प्रायः 30-100 अर्बुद अमेरिकी डॉलर मितं यावत् धनं निवेशयति। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् वर्धित आर्थिक गतिविधिभिः देशः सततम् विकासम् रक्षितुम् नूतन उद्योगावसरान् स्रष्टुम् अथ च विकासस्य लाभान् समाजस्य प्रत्येकं वर्गं यावत् प्रापयितुम् सफलो जातः। अत्र अवसरे उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः प्रतिपादितवान् यत् भारत जापानयोः सहभागिता विकासे प्रौद्योगिक्यां समृद्धौ च आधारिता विद्यते। सः प्रोक्तवान् यत् उत्तर प्रदेशः सम्प्रति भारतस्य शीर्ष त्रिषु अर्थव्यवस्थासु अन्यतम रूपेण उद्भूतः, सहैव देशस्य समग्र विकासस्य चालकश्च संवृत्तः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः प्रावोचत् यत् प्रौद्योगिक्याः प्रसारमाध्यमस्य अर्थनीतेः अथ च लोकनीति क्षेत्राणां स्थितिः तीव्रगत्या परिवर्तते। सा एतत् तदा प्रतिपादितवती यदा भारतीय सूचना सेवायाः भारतीय सांख्यिकी सेवायाश्च प्रशिक्षु अधिकारिणः नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने तया सह शिष्टाचार मेलनम् अकुर्वन्। अवसरेऽस्मिन् राष्ट्रपतिः अधिकारिभ्यः परामृष्टवती यत् ते स्वनिर्णयेषु विवेकशीलाः, व्यवहारे करुणापराः, सत्यनिष्ठाश्च भवेयुः। राष्ट्रपतिना एतदपि प्रतिपादितं यत् तेभ्यः प्रदत्तः अधिकारः निष्पक्षतया, विनयेन, समर्पणेन च जनतायाः सेवायै एकं महत्तरम् उत्तरदायित्वं धारयति। सर्वोच्चन्यायालयेन अद्य प्रतिपादितं यत् भविष्ये प्रश्नपत्र गोप्यताभंग निवारणाय राष्ट्रीय परीक्षा संस्थायाः संस्थागतकरणम् अतीव अनिवार्यं वर्तते। न्यायालयस्य अनुसारम् अस्याः कृते सुरक्षिता आधारभूत संरचना, समर्पितानि परीक्षा केन्द्राणि, सुदृढा साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत दक्षता अथ च परीक्षा संचालनाय एका स्थायी व्यवस्था आवश्यकी वर्तते। नीट यूजी 20-26 प्रश्नपत्र प्रकटन प्रसंगे याचिकानां श्रवणं कुर्वन् उच्चन्यायालयेन केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालयस्य सचिवः आदिष्टः यत् सः राधाकृष्णन समित्याः संस्तुतीनां क्रियान्वयनाय स्वक्रियमाणानां चरणानां विवरण सहितं एकं शपथपत्रं न्यायालये प्रस्तुयादिति। प्रवर्तन निदेशालयेन 10 स्थानेषु अन्वेषणं कृतम्। मौलाना मोहम्मद अली जौहर परिसरेण, रामपुरस्थेन मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालयेन च सम्बद्धे धनशोधन प्रकरणे उत्तरप्रदेशे दिल्लीनगरे, रामपुरे, सहारनपुरे च विभिन्नेषु स्थानेषु प्रवर्तन निदेशालयेन सहसान्वेषणं प्रवर्तितम्। प्रवर्तन निदेशालयेन ज्ञापितं यत् धनशोधन निवारण अधिनियमस्य 2002 वर्षे प्रवर्तितस्य अधिनियमस्यान्तर्गतम् अन्वेषणं कृतमिति। इदम् अन्वेषणं स्वायत्त करदातृभिः माध्यमैः सर्वकारीय अनुबन्धनीतेः कथित विचलनस्य, ततः प्राप्तस्य धनस्य विश्वविद्यालयस्य अथवा परिसरस्य कृते सम्पत्तिनिर्माणे कथित उपयोगस्य च विषये वर्तते। लखनऊ नगरे स्थितः मौलाना मोहम्मद अली जौहर परिसरः, यस्य मुख्य न्यासीरूपेण उत्तरप्रदेशस्य पूर्व मन्त्रिमण्डलीय मन्त्री आजम खान इत्येषः परिवारस्य सदस्यैः सह कार्यं निर्वहति। रामपुरमण्डले मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालयं सार्वजनिक विश्वविद्यालयं च प्रचालयति। प्रवर्तन निदेशालयेन विज्ञापितं यत् अन्वेषणस्य प्रमुख उद्देश्यम् अपराधजनित धनस्य उद्घाटनं, वित्तीय अभिलेखानां अथ प्रलेखानां संग्रहणं, सर्वकारीय निधेः उपयोगेन सम्बद्धानां डिजिटल साक्ष्याणां प्राप्तिश्च अस्ति। कोलंबिया देशे 4.7 तीव्रतायां भूकंपेन मृतकानां संख्या 12-300 यावत् वर्धिता। प्रायः 11,600+ यावत् जनाः व्रणिताः, यस्मिन् 90+200 यावत् जनाः अद्यापि लुप्ताः सन्ति इति सूच्यते। भारतेन प्रथमनिकषस्पर्धायां श्रीलंकादलं 65+100 धावनाङ्कैः पराजितम्। इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 306।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार सुनने वाले हमारे सभी भाइयों बहनों को
1: राम राम।
0: अश्विनी भाई
2: जी,
0: आज हमारा है विशेष फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, जिसके प्रायोजक हैं IPL।

0: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहैलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। IPL की पॉलीहैलाइट।
1: प्रीति, जैसा कि आपने बताया कि आज इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आज विशेष विशेषज्ञ रहते हैं। एक टॉपिक होता है जो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है जिस पे विशेषज्ञ आप बात कर सकते हैं। हमारे कुछ फ़ोन नंबर्स रहेंगे, वो भी आपको हम बताएंगे। गन्ने फसल में रोग नियंत्रण और इससे संबंधित समस्याएं, इस विषय पर आप जो भी बातचीत करना चाहते हैं गन्ने की फसल से, कोई भी आप इस अगर आपको खेतों में समस्या आ रही है गन्ने की फसल को लेकर, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर्स है 011, दिल्ली का कोड है, उसके बाद आप हमारे नंबर डायल कर सकते हैं 23 42 10 82, और दूसरा नंबर है 23 42 10 83। दो नंबर पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं गन्ने की फसल से को लेकर। कोई भी अगर आपके पास जहन में कोई भी समस्या है, आप इन नंबर पर फ़ोन करके बोल सकते हैं। हमारे डॉक्टर साहब भी इसमें, दो डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर सुरजीत प्रताप सिंह, वैज्ञानिक गन्ना अनुसंधान संस्थान शाजापुर, और डॉक्टर DS सिरोही, वरिष्ठ गन्ना वैज्ञानिक मुजफ्फरनगर से हैं। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपने और इससे संबंधित जो भी आप समस्या का अगर आप फेस कर रहे हैं अपने खेतों में, तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम यहीं पे शुरुआत करते हैं अपनी।
2: डॉक्टर सुजीत, डॉक्टर सिरोही जी, आप दोनों का फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, जैसे अश्विनी और प्रीति ने बताया कि आज का तो जो हमारा विषय है वो है गन्ना फसल में रोग नियंत्रण, लेकिन जितने भी हमारे सुनने वाले किसान हैं उनको गन्ने से संबंधित कोई भी समस्या हो, कीट की समस्या हो, बढ़वार पूरी नहीं हो रही हो, पत्ते पीले पड़ रहे हो, मतलब किसी भी तरह की गन्ने की समस्या है, तो बेझिझक आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और हम यकीन दिलाते हैं कि जो हमारे विशेषज्ञ हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये बहुत गुणी हैं, ये आपकी समस्या का समाधान तुरंत करेंगे। फ़ोन नंबर एक बार फिर से बताना चाहूँगा, फ़ोन नंबर हमारे हैं तो वही जो हर बार रहते हैं 23 42 10 82, 23 42 10 82। दूसरा नंबर है 23 42 10 83, 23 42 10 83। क्योंकि ये स्टूडियो के नंबर हैं और आप दिल्ली के बाहर से बात कर रहे हैं या मोबाइल से बात करना चाह रहे हैं, तो इन दोनों नंबरों से पहले दिल्ली का जो STD कोड है 011 वो ज़रूर लगाइएगा, तभी आप हमसे संपर्क कर पाएंगे और हम आपकी समस्या का समाधान करने में सक्षम हो पाएंगे। डॉक्टर साहब, बारिश हो रही है यदाकदा, और बारिश जो है जहाँ कहते हैं कि जो हमारी फसलें हैं उनके लिए लाभदायक होती है, वहीं क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जो हवा में नमी है, तो ऐसी जो परिस्थिति है ये कीटों के लिए, रोगों के लिए

0: भी उतनी ही अनुकूल हो जाती है। और गन्ने की बात करें खास तौर पे, तो मिठास सबको अच्छी लगती है डॉक्टर साहब, चाहे इंसान हो कीट पतंगे हो। तो कौन कौन से रोग डॉक्टर सुजीत इस समय खास तौर पर देखे जा रहे हैं?
1: सभी श्रोतागण, सभी किसान भाई और बहनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आपके बीच में गन्ने से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं होंगी उसकी चर्चा करेंगे और उम्मीद यही करेंगे कि आप उसके प्रश्न भेजें और उस प्रश्नों के माध्यम से जितने भी हमारे श्रोतागण हैं सभी लाभान्वित होंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इस समय जो बरसात का समय चल रहा है और इस समय उत्तर प्रदेश में काफ़ी बरसात हो रहे हैं, और बरसात के साथ साथ नमी भी दिख रही है और तापमान भी लगभग 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये बीमारियों को पैदा करने के लिए बहुत ही अनुकूल समय होता है।
0: डॉक्टर साहब इस पर चर्चा करेंगे। किसान का फोन आ गया, पहले देखते हैं कौन है किसान। हेलो,
2: नमस्कार जी,
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
2: मेरा नाम शक्ति भाटिया जी, मैं गांव सौंपवी, जिला मेरठ, तहसील मवाना, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ जी।
0: नाम क्या बताया भाई? भाटी
2: शक्ति भाटी। डॉक्टर
0: जी बताइए क्या सवाल है।
2: साहब हमारी बात सुन रहे हैं?
0: हाँ बिल्कुल
1: हाँ
0: सुन
1: बिल्कुल
0: रहे हैं,
1: सुन रहे हैं,
0: दोनों सुन रहे हैं,
2: हमारी जो
0: बताओ
2: पौधा है उसमें जो उसकी पत्ती लाल हो रही है।
1: जी। अभी मैं उस विषय पे जरूर आता, जो क्योंकि इस समय जो मैंने बताया कि बारिश की वजह से पत्तियां पीलापन के साथ लालिमा, पहले लाल हो रहा है उसके बाद पीले हो रहे हैं, तो उस रोग के बारे में भी आपको चर्चा करता। लेकिन भाटी जी मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के जो भी गन्ना उत्पादक प्रदेश हैं सभी लाभान्वित होंगे। इस समय गन्ने में पीलापन और लाल लालिमा दिखाई दे रही है, ये मुख्य रूप से जो बरसात के समय में या तो दो कारण से होता है। पहला तो ये जड़ बेधक की वजह से ये पीलापन और लालिमा हल्का सा दिखाई देगा, दूसरा उकठा रोग के कारण भी शुरुआत में लालिमा दिखाई देगा और धीरे धीरे मिड्रिप भी मध्य सिरा पीला होगा और सबसे ऊपर का हिस्सा पीलापन के साथ पत्तियां पीला हो जाती हैं। ये मुख्य रूप से कई ऐसी वर्तमान किस्में हैं जिसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है, और इस उकठा रोग से बचने के लिए या जड़ बेधक कीट से बचने के लिए आपको उकठा रोग जो कि फफूंद जनित बीमारी है, तो इस फफूंद जनित से बचाव करने के लिए आप थायोफिनेट मिथाइल 70% WP का जो आता है, 2 ग्राम 1 लीटर पानी की दर से आप मिट्टी में अगर सिंचाई के पानी के साथ ड्रेंचिंग करवा दें तो सबसे लाभप्रद मिलेगा। साथ ही जड़ बेधक की वजह से यदि पीलापन आ रहा है तो क्लोरोपायरीफास उसमें डाल सकते हैं, 20% EC का जो आ रहा है, 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से आप उसमें प्रवाहित कर दें, या इमिडा क्लोरपिट भी प्रवाहित कर दें, तो जो पीलापन और लालिमा का शिकायत आपके खेत में आ रही है तो उससे ये निजात पा जाएंगे।
2: ठीक है जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद,
0: बहुत
1: थैंक यू।
0: बहुत धन्यवाद भाटी जी। डॉक्टर साहब इसमें मैं एक पूछना चाहता, आपने दवाई बता दी है कि पानी के साथ दे दो, अब क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है तो बरसात भी यदा कदा कहीं ना कहीं हो ही रही है, तो बरसात हो रही हो तो रुकें?
1: हाँ बिल्कुल, अगर बहुत तेजी से बारिश हो रही है तो कोई भी दवा डालने से क्या होता है कि फ्लड वाटर से पानी का बहाव की वजह से पानी हमारा दवा हमारा नुकसान में चला जाता है।
0: जी
1: तो बरसात जब ना हो उस समय दवाओं का संचार करना चाहिए,
0: जी
1: अन्यथा पानी दवा हमारा खराब भी हो सकता है,
0: और नुकसान होगा उससे,
1: नुकसान हो जाता है।
0: तो इस बात का आप ध्यान रखें, मौसम खुला हो उसी दिन आपको जो दवाई डॉक्टर साहब ने बताई है, कीट के लिए भी है, रोग के लिए भी है, तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब चर्चा पे लौटते हैं, तो हम आप बता रहे थे कि कौन कौन से कीट
1: हाँ,
0: हैं
1: तो
0: क्या?
1: ये नमी और तापमान अनुकूल होने की वजह से लालसड़ रोग का आपतन इस समय ज्यादातर दिखाई दे रहा है।
0: जी
1: किसान भाई भी परेशान है क्योंकि गन्ने उनके सूख रहे हैं। मुख्य रूप से CO0238 का जो रकबा हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भाई बहन के पास है और उसका रकबा अभी भी ज्यादा होने की वजह से उसमें लाल सड़न दिखाई दे रहा है। यद्यपि ये मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जहां जहां भी 238 के बहुत ही छोटे प्लाट हैं वहां भी दिखाई दे रहे हैं। तो इससे बचने के लिए किसान भाइयों को जब भी फाड़ के आप देखेंगे तो लालिमा के साथ साथ उसमें सफेद धब्बे का होना जरूरी है, तभी उसकी पुष्टि लाल सड़न रोग के रूप में की जाती है। यदि उसमें सिरके जैसी महक भी है तो उस क्लंप को, संक्रमित क्लंप को निकाल के कहीं नष्ट कर दीजिए, और उस गड्ढे में कम से कम जो सिस्टमिक फफूंदनाशक है जैसे थायोफिनेट मिथाइल दवाई है 70% WP में, कार्बेंडाजिम 50% WP में आता है, यह एजॉक्सिस्टोबिन 18.2% और डाइफेनाकोनाजोल 11.4% का आता है, इसका 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से उस गड्ढे में आप डाल देंगे तो गड्ढे में पाए जाने वाले जितने भी कोलेटोटाइकम फलगेटम के फंगस हैं जो कैंसर को पैदा करते हैं ये समाप्त हो जाएंगे और उसका जो प्रसार होता है इस प्रसार से रुक जाएंगे। बहुत सारे किसान भाई स्प्रे भी करना चाहते हैं, तो मैं किसान भाइयों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ, साधारण भाषा में बताऊँ, जिससे कि

0: इस समय बरसात के समय में स्प्रे करने से थोड़ा परहेज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाल सड़न रोग का जो प्रसार है पानी के माध्यम से नीचे से बड़ी तेजी से फैलेगा, और जब किसान भाई ऊपर से स्प्रे करता है तो उस जो उसका प्रबंधन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो जितनी भी दवाओं का नाम मैंने बताया, इनका जड़ों के माध्यम से यदि खेतों में ड्रेंचिंग करके सिंचाई कर दे तो निश्चित रूप से ज्यादा ज्यादा लाभ मिलता है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो आपने लाल सड़न रोग के बारे में बताया है, अब चर्चा और भी करेंगे, किसानों को बता दें आज हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम है गन्ना की पाठशाला के अंतर्गत, विषय है गन्ना फसल में रोग नियंत्रण। विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह, आप गन्ना वैज्ञानिक है गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहांपुर में। दूसरे जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर डी एस सिरोही जी, आप वरिष्ठ गन्ना वैज्ञानिक हैं मुजफ्फरनगर में। दोनों हमारे जो वैज्ञानिक हैं बहुत ही वरिष्ठ हैं, बहुत ज्ञान है इनके पास, तो आप कोई भी सवाल इनसे पूछ सकते हैं और मैं यकीन दिलाता हूं कि कोई भी आपकी समस्या हो उनका समाधान ये अवश्य कर देंगे, चाहे रोग के बारे में हो, कीट के बारे में हो, या जो सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, यानी कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हो आपको फसल पे और आपको लग रहा है कि ये समस्या है, तो आप तुरंत हमें फोन कीजिएगा। फोन नंबर हमारे हैं 23 42 10 82 2342 1082, दूसरा नंबर है 23 42 10 83 2342 1083, दिल्ली के स्टूडियो के नंबर हैं, तो उनसे पहले जो दिल्ली का एसटीडी कोड है 011 वो आप जरूर लगाइएगा, और जैसे ही आप लगा के फोन नंबर डायल करेंगे फोन तुरंत प्रीति और अश्विनी के पास पहुंचेगा और वो हमारे पास पहुंचा देंगे। डॉक्टर साहब, इसके अलावा सरोही साहब बताएं कि इसके
0: जी
1: अलावा और कौन सा रोग है जो अभी आ सकता है या 2-4-10 दिन में आने की संभावना है?
0: देखिए, बहुत अच्छा सवाल। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया आपको, एक जो मुख्य रोग हमारे 0238 जो वैरायटी है, इसमें रेड रॉट पूरे प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका प्रकोप थोड़ा सा कम है। बाकी कई, अगर हम मुरादाबाद मंडल की बात करें, बरेली मंडल की बात करें, गोरखपुर मंडल की बात करें, ईस्टर्न यूपी के पार्ट में करें, क्योंकि वहीं से इसका जो आविर्भाव बढ़ा है बीमारी
1: जी,
0: का,
1: जी।
0: और आते आते है, तो यहाँ पे लोगों का प्रबंधन और समय से प्रबंधन कर रहे हैं और मेहनत करके अवेयर होकर के किसान इसको रोके हुए हैं। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया रेड रॉट के बारे में, अभी उसके साथ साथ एक 0238 में ज्यादा बीमारी आती है जिसे हम लोग कहते हैं पोका बोइंग,
1: जी
0: फंगल डिजीज है ये। और आमतौर पर के पश्चिम प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ये थोड़ी सी अंकलित होती दिख रही है, कहीं थोड़ी ज्यादा है, कोई ज्यादा कम है। लोग अपना अवेयर होकर के उसको अपना उसका स्प्रे के द्वारा उसका निदान भी कर रहे हैं। और किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा, जिन किसान भाइयों को केवल अकेला पोका बोइंग के सिम्टम अगर खेत में नजर आ रहे हैं, तो उसमें सबसे बेहतरीन दवा जो है हम कहते हैं सीओसी,
1: सीओसी
0: सीओसी, तो उसको आप जो है 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अकेला उसका स्प्रे कर दें। और कोई जैसे बरसात का मौसम है, मौसम खुलता है, उसमें स्टिकर का जरूर इस्तेमाल करें, जिससे वो जो पौधे के अंदर जो दवा है वो अति शीघ्र उसमें पहुंच जाए,
1: चिपक जाएगी तो वो पहुंचती
0: रहेगी, जल्दी उसको पहुंच जाएगी
1: जी।
0: दूसरा जो रोगों में मैन पोका बोएंगे, कहीं कहीं ज्यादा कदा किन्हीं खेतों में हम एक बीमारी होती है बैक्टीरियल डिजीज
1: जी,
0: डॉक्टर साहब और विस्तार से बताएंगे उसके बारे में, उसको हम कहते हैं टॉप रॉट। तो स्टॉप रॉट के केस में होता क्या है कि ऊपर से पौधा मुरझा करके और वो बिल्कुल नीचे को मुड़ जाता है और उसमें कैसे बदबू आनी शुरू हो जाती है, एक तरीके से बैक्टीरियल डिजीज को हम बोलते हैं, उसका अटैक हो जाता है। उसके लिए भी ये जो दो दवाएं हमने अपने प्रयोग किए हैं किसानों के खेतों पर, उसके रिजल्ट भी आए हैं। और किसान जहां ऐसे ज्यादा कदा कहीं दिख रही है बीमारी
1: जी,
0: तो उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 30 से 50 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप स्प्रे कर देंगे, तो आपका 80% पहले स्प्रे में ही उसमें नियंत्रण आ जाता है। और 15 दिन के बाद में आप दूसरा स्प्रे कर दें जहां पर इस तरह के सिम्टम दिखते हैं, तो बिल्कुल उसका 100% क्योर हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, 238 की आपने जिक्र किया, 238 का जिक्र मैं करीब हर कार्यक्रम में आप लोग करते हैं और कहते हैं कि इसमें बीमारी रोग जो है, कीट जो है, वो भी काफी आते हैं, अभी भी किसान जो है वो 238 लगा रहे हैं, क्या कारण है और आप किसानों से क्या कहना चाहोगे कि ये 238 की जगह कौन सी किस्म है जिसको आप रिप्लेस

0: हम किसानों को एडवाइज इसलिए करते हैं कि इसमें पिथ ज्यादा नहीं है, इसके अंदर खोखलापन जिसे कहते हैं वो ज्यादा आने लगा है, और बीमारियों का अटैक चाहे वो टॉप बोरर है या कोई से भी बोरर है, रूट बोरर है, और अन्य बीमारी जैसे हमने डिजीज के बारे में बताया, पोका बोइंग है, रेड रोट, इस बीमारी के ज्यादा आते हैं, तो किसान को खर्चा ज्यादा करना पड़ता है, इस पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। अभी इंट्रोड्यूस जो वेराइटी, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया रोगों के बारे में, हमारे शाहजहानपुर संस्थान से एक वेराइटी रिलीज हुई है COSE 18231, किसानों के खेतों पर पहुंच गई है, काफी अच्छी वेराइटी जो हो गई है, और उसके साथ एक वेराइटी है COLK 16202
1: जी,
0: वो वेराइटी उभर के आई है और वैज्ञानिक लोग इसमें लगे हुए हैं, और दो तीन वेराइटी बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस होंगी। तो तहत हमारा उद्देश्य सलाह किसानों की, वैज्ञानिकों की ये रहती है कि किसान का नुकसान कम हो और बीमारियों से निजात मिले, धीरे धीरे से वैरायटी को कम करते जाएं और दूसरी वैरायटियों को बढ़ाते जाएं।
1: बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब, कई बार एक पिछले कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो किसान ना डरा हुआ होता है हमेशा। फोन आ गया डॉक्टर साहब, पहले फोन लेते हैं उसके बाद चर्चा करेंगे। हेलो हेलो हेलो,
2: नमस्कार सर।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं विकास बोल रहा हूँ जी, जिला बागपत यूपी से जी।
1: विकास भाई बताइए, क्या सवाल है आपका?
2: सवाल ये है सर, ये जो अब गन्ने की जो फसल है उसमें एक तो पोका पॉइंट का सर सर
1: जी, हाँ जी,
2: और एक उसमें जी माइट जैसे नीचे व्हाइट व्हाइट जैसे सिलाई नुमा सी हो जा गए, पत्ती पे ऐसे चमक रहा और उसमें ब्लैक ब्लैक भी है जी, धब्बे से नीचे पत्ती के,
1: पत्ती के निचले हिस्से पे।
2: हाँ जी।
1: अच्छा,
2: मतलब सर क्या किस दवाई का स्प्रे करें जी ठीक हो जावे?
1: डॉक्टर सुजीत बताओ जी।
3: विकास जी नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजीत बोल रहा हूँ। जो आपके गन्ने के किस्म में दिखाई दे रहा है, तो पहला तो पोका बोइंग है। देखो, पोका बोइंग आने का मुख्य कारण, मैं किसान भाइयों की अभी दवा डॉक्टर सिरोही जी ने बता दिया, इसके कारण भी थोड़ा आप जान लो और थोड़े लक्षण भी जान लो। पोका बोइंग के जो आने का मुख्य कारण होता है, जैसे आज बारिश है या कल धूप है, तो इस तरह से बारिश और धूप के कॉम्बिनेशन की वजह से टेम्परेचर, तापमान और आर्द्रता के संयोजन से ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। लेकिन जब बारिश लगातार होने लगती है, मूसलाधार बारिश होती है और कई दिनों तक होती है, तो इस बारिश, इस बीमारी का, इस रोग का प्रभाव धीरे धीरे कम भी हो सकता है। लेकिन इस समय बीमारी ज्यादा फैल रही है, तो जो डॉक्टर सिरोही साहब ने बताया दवाई, उसका भी इस्तेमाल करके
1: दोस्तों आप भी बता दीजिए, एक बार रिपीट कर दीजिए, नोट कर लेंगे।
3: तो मैं एक फिर से दवा का रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुख्य बीमारी है और सभी किसान भाई इसे थोड़ा सा परेशान है फसल को लेके। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP का जो आता है, इसका जो डोज है 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से, आप पानी उतना ही मात्रा में पानी मिला के इसका स्प्रे कर सकते हैं। विकल्प के रूप में कार्बेंडाजिम 50% WP के रूप में आता है, इसका भी उतना ही मात्रा में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैंकोजेब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यद्यपि जितने भी फफूंद नाशक हैं सभी पोका बोइंग पे अच्छी तरह से प्रभावी होते हैं, लेकिन जो सस्ता हो, इकोनॉमिक हो, उस फफूंद नाशक का प्रयोग करके पोका बोइंग जैसे बीमारी को खत्म किया जा सकता है। विकास जी, दूसरा एक प्रश्न आपका था कि पत्तियों पे माइट जैसा कुछ लक्षण दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से मैं बता दूं, जो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हिस्सा है उसमें, चाहे वो 238 का किस्म हो या कोई भी गन्ना किस्म हो, सभी में मकड़ी के आप प्रकोप उसमें दिखाई दे रहे हैं।
2: मकड़ी तो बहुत ज्यादा है।
3: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपके प्रश्नों का ही उत्तर दे रहा हूँ। और मकड़ी के जो लीफ सरफेस होता है, पत्ती के ऊपरी वाले भाग पे लाइन से कम 6 की पंक्तियों में सफेद सफेद रंग के, पिंक कलर के, कहीं कहीं वो जब पक जाते हैं तो वो काले रंग के भी, ब्राउन कलर के भी हो जाते हैं।
2: सर पत्ती बिल्कुल काली हो रही, मतलब।
3: हाँ जी, तो इस तरह से अगर मकड़ी है तो या तो मूसलाधार बारिश होगा तो ये धीरे धीरे उसके कुकून मकड़ी के खत्म हो जाते हैं, या उसके प्रभाव इसमें ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहा है तो कोई भी कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं, जैसे इमिडाक्लोरपीड का भी आप इस्तेमाल स्प्रे कर सकते हैं, जो कि 17.8 SL में आता है, 80 से 100 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दें। इसके अलावा क्लोरपाइरिफास और साइपरमेथ्रिन का जो मिक्सचर आता है, इसका भी इस्तेमाल आप 300 ml प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं, या प्रोपेनोफास साइपरमेथ्रिन का भी 40% 44% का जो आता है, इसका भी कर सकते हैं।
2: सर जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का बताया आपने पोका बोइंग में,
3: हाँ जी,
2: तो उसके साथ ही मिला सके सर?
3: मैं आपके प्रश्नों का उत्तर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके माध्यम से सारे लाभान्वित होंगे। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ कोई भी अन्य रसायनों का मिक्सचर नहीं किया जाता है। अगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के विकल्प के रूप में जो दवाओं

0: का इस्तेमाल करने का नाम बताया। कार्बेंडाजिम 50% डब्ल्यू का पोकाबोइंग के लिए नियंत्रण के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। और इसी के साथ दूसरा जो कीटनाशक हमने बताया इमिडाक्लोरोपीड 17.8, उसका मिक्सचर बना के आप यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, जिससे चूसा कीट से के प्रभाव से भी, उसके प्रकोप से भी बचा जा सकता है, और कार्बेंडाजिम जैसे फफूंदनाशक का इस्तेमाल करके बीमारी से भी बचा जा सकता है।
1: जी सर,
0: तो
2: जी विकास भाई, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। और जैसा डॉक्टर
1: चलिए
2: साहब ने बताया उसी तरह से आप नियंत्रण करना, तो हम समझते हैं कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने
1: जी
2: के लिए।
1: सर,
2: तो
1: धन्यवाद सर।
2: डॉक्टर साहब, अब जैसे किसान वैसे तो पहचान ही लेता है कि क्या लक्षण है क्या नहीं, पर मैं एक बार ये आपसे जानना चाहूंगा कि शुरुआत में, चाहे बीमारी हो या कीट हो, शुरू में पकड़े जाएं ताकि कम मेहनत कम पैसे में नियंत्रण हो जाए, क्योंकि बाद में तो देखो दिक्कत ही होती है, चाहे रोग हो या कीट हो। तो शुरू में क्या ऐसे लक्षण हैं, जैसे आपने लाल सड़न की बात करी, पोका बोइंग की बात करी, टॉप रोट की बात करी, तो शुरू में ऐसा क्या, मतलब किसान क्या देखे तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये वाला रोग है, ये वाला कीट है।
0: हाँ, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि किसी भी रोग आने से पहले यदि किसान समझ जाए, कीट आने से पहले यदि समझ जाए, तो उसका निदान बड़ा आसान हो जाता है और कम लागत में ही उसका निदान किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर सिरोही साहब ने बैक्टीरियल टॉप रॉट की बीमारी की बात की, निश्चित रूप से किसान भाई इसमें और लाल सड़न रोग में थोड़ा भ्रमित हो जाता है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा लाल ही होता है। तो
2: जी
0: जब भी हमारी रॉटिंग बैक्टीरिया वाली बीमारी होती है तो उसमें बदबू बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आता है। तो जैसे ही खेत में कुछ ऐसी किस्में हैं उसमें ज़्यादा दिखाई देता है, कुछ किस्में कम हैं उसमें कम दिखाई देता है, तो दोनों में एक तो बदबू आएगा तो वो बैक्टीरिया से जनित बीमारी है। यदि उसमें बदबू दुर्गंध नहीं आ रहा है तो लाल सड़न या कुछ अन्य बीमारी या कीट हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया वाली बीमारी है तो पत्तियों के ऊपरी हिस्सों पर, सबसे ऊपर वाले गोंद की पत्ती सड़ती है, और बीज की पत्ती, गोंद की पत्ती को जैसे ही आप ऊपर की तरफ निकालेंगे तो उसमें बहुत ही लचीलापन हो जाएगा, मुलायम होती है और बदबू बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, और धीरे धीरे ऊपर की आंखें सारी के सारे कल्ले फूट जाते हैं।
2: तो सब चर्चा इस पे आगे भी करेंगे, एक फोन आ गया, पहले फोन ले लेते हैं। हेलो,
3: हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
3: बोल रहा
2: इंदरवीर भाई, थोड़ा सा डायरेक्शन बदल लो या घर के
3: हूँ।
2: बाहर आ जाओ, आवाज कट रही है आपकी।
3: कौन?
2: हाँ, बाहर ही है, बताओ क्या क्या सवाल है।
3: ये है कि इंक में ऊपर से पीली पट्टी पड़ रही है और जो गोब है वो सफेद है, उसमें चिपचिपा का पदार्थ है और वो बिल्कुल झूठ टाइप बन रही है टेढ़ी। एक तो
2: अच्छा,
3: सवाल ये है, दूसरा
2: हाँ जी,
3: सवाल ये है, ईख में बारूमासी आम के पौधे लगा दिए, उसके ऊपर लालड़ी आ रही है और वो भी वो गुएरू इसके पत्तों को खा रही है। तो दोनों का सवालों का जवाब आप दिलवाइए डॉक्टर साहब से। बस
2: बिल्कुल जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब,
1: बस
2: बताइए। सुजीत, डॉक्टर सुजीत जी,
0: आपको नमस्कार। जो आपने लक्षण
3: नमस्कार
0: बताया,
3: जी।
0: हाँ, जो लक्षण आपने बताया है, गन्ने की पत्तियों के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे थोड़ा पीलापन है, थोड़ा सफेदी है, चिपचिपा जैसे चीजें आपको महसूस हो रहा है। तो ये जो चिपचिपा जैसी चीजें महसूस हो रही हैं, इस समय जो मौसम चल रहा है, इस समय एक चूसक कीट आता है जिसे कहते हैं मिली बग। मिली बग की वजह से गन्ने की पत्तियों पर ऊपर से लेके नीचे तक गुलाबी रंग के या पिंक कलर के, सफेद रंग के हल्की सी लेके, उसमें चिपचिपापन चिपचिपापन आता है। और ये चिपचिपापन इसलिए आता है, थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, क्योंकि उसमें से हनी ड्यू निकलते हैं, मतलब मधुमक्खी वाली जो हनी होती है उसमें मीठापन होता है, जिसकी वजह से उस पर फंगस आ जाएंगे और पूरे पूरे गन्ने के ऊपर काले रंग की एक परत भी बन जाती है, जो कि ब्लैक सूटी मोल्ड के फंगस होते हैं, और ये मीली बग की वजह से होता है। अगर इस तरह के लक्षण आपके खेतों में दिखाई दे रहे हैं तो कोई भी कीटनाशक जिसकी चर्चा मैंने अभी किया है, चाहे वो इमिडाक्लोरोपीड 17.8 SL का है, इसका 100 ML प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या क्लोरोपायरीफास साइपरमेथ्रिन का 55% का मिक्सचर आता है, इसका 300 ML प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं स्प्रे, या प्रोफेनोफास साइपरमेथ्रिन का 44% का मिक्सचर आता है, इसका भी 300 ML प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे करके इस चिपचिपे वाले चूसक कीट से, मीली बग से बचाव किया जा सकता है।
1: जी
0: दूसरा प्रश्न था आपका आम के कीटनाशक ये ऊपर कुछ ऐसे कीट दिखाई दे रहे हैं।
2: डॉक्टर सिरोही भी कुछ बोलना चाहेंगे जी, बताएं।
4: हाँ इंदर जी नमस्कार।
3: अरे डॉक्टर नमस्कार,
4: मैं ये पूछ रहा था ये जो बीमारी के लक्षण अभी हमारी चर्चा हो रही है डॉक्टर साहब के साथ आपकी, इसमें ये खेत के किनारे की साइड से है ये?
3: खेत के किनारे।
4: हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया उसके सिम्टम है ये मिलीबग कीड़ा होता है, और इसके लिए जो दवा जैसे डॉक्टर साहब ने बताई आपको 17.85 से इमीडा क्लोरोपिड जो दवा आती है उसका इस्तेमाल करें। दूसरा आपके आम के पेड़ों पे जो बताइए इमीडा भी इसमें काम कर देगी, और आपको अगर ज्यादा उसमें कुछ ऐसा चिपचिपा है, अगर मान लिया लाडली आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे जो कद्दू वर्गीय फसलों पे वो लाल तरह का कीड़ा लगता है, अगर उस तरह का कीड़ा आपको नजर आ रहा है, BSA वगैरह सब बैन हो गई है, तो एक दवा का आप नाम लिख लो, एक डस्ट आती है क्लोरोपाइरोफॉस 10%। हाँ क्लोरोपाइरोफॉस 10%, वो हाँ वो पाउडर रूप में आती है, तो उसका भी उस पर आप बुरकाव कर सकते हो आमों के पेड़ों पे।
3: वो आम उसी में है, लाली लग रही है, आम ही नहीं आ रही है।
4: हाँ मैं समझ गया आपकी बात। अगर इस पे आप पहले अगर स्प्रे आप गन्ने के खेत पे आप इमीडा क्लोरोपिड का स्प्रे कर लीजिए, उससे भी नियंत्रण हो जाएगा। अगर उसके नियंत्रण में कोई आपको दिक्कत आती है तो वो लाडली जो कीट आपने नाम लिया है उस पाउडर से जो है कंट्रोल हो जाएगा।
2: इंद्रवीर भाई दो चीज बताई है, पहली दवा जो गन्ने का भी जो आपका नुकसान है उसको बचाएगी और आम के को भी बचाएगी, अगर एक कर लोगे तो। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आम वाली लालड़ी जो है नहीं गई है, तो वो जो क्लोरोपाइरीफायस 10% वाला डॉक्टर साहब ने बताया धूड़ा, उसको धूड़ देना, ठीक है जी।
3: और
2: बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए जी। डॉक्टर साहब हमारा कार्यक्रम जो है वो जारी रहेगा, पर छोटा सा ब्रेक लाना पड़ेगा।
5: तो अभी आप सुन रहे थे इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम, जो कि हमारा विशेष कार्यक्रम था फोन इन कार्यक्रम, जिसका विषय था गन्ना फसल में रोग नियंत्रण, जो कि गन्ने की पाठशाला के तहत था। और इसमें जो भी आपको समस्या रही उसमें आप हमें सीधे फ़ोन पर बात कर सकते थे। फ़ोन नंबर हमारे 011-2342-1082, दूसरा नंबर है 2342-1083। और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे नरेश पराशर। हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह, जो कि वैज्ञानिक हैं गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहाँपुर, और दूसरे जो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो DS सिरोही, वरिष्ठ वैज्ञानिक मुजफ्फरनगर, और इस कार्यक्रम के इंडियन पोटाश लिमिटेड प्रायोजित हैं।
6: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ खूब कमाओ मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद।
7: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर, शीघ्र बुक करें।
8: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। और लीजिए अब सुनते हैं समाचार।
9: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
10: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे

0: का है। पहले चार प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं, और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन, और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये फोर लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को चार लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
0: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है, 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा फोर लेन हाईवे में, और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोक नीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नागरिकों को सूचित करने और उनसे जुड़ने के लिए करें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। इससे पहले उपराष्ट्रपति आज दो दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णनगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक पेश की जाए। गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4,611 लोग घायल हुए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पाकिस्तान पर 2-0 की बढ़त बना ली है। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भी बाई मिलने के कारण प्री क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई है। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़। श्रोताओं, जारी है हमारा फोन इन कार्यक्रम। हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम जारी है। इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम गन्ना फसल में रोग समस्या जो भी है उससे संबंधित अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप विशेषज्ञ से सीधे फोन पर बात कर सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 2342108 2 और दूसरा नंबर है 2342-1083।
3: और इस समस्या को लेकर कोई भी आपके मन में अगर जहन में कोई सवाल आता है या कोई आपको लग रहा है कि हमारी फसल में कोई आप रोगग्रस्त हो रही है, तो हमारे डॉक्टर साहब भी वहाँ पर बहुत तैयारी से जुटे हुए हैं, डॉक्टर सुरजीत प्रताप सिंह और डॉक्टर डी एस सिरोही जी। अपना सवाल आप पूछ सकते हैं।

0: लाइट।
1: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहैलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद।
0: IPL की पॉलीहैलाइट।
2: किसान बहनों भाइयों, फोन इन कार्यक्रम में कृषि जगत कार्यक्रम के तहत आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा हमने कहा था कि ब्रेक के बाद हम आपसे फिर मिलेंगे, तो फिर से हम आ गए हैं। हमारे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह और डॉक्टर DS रोही जी, वो हमारे साथ हैं। क्योंकि फोन इन कार्यक्रम है तो बिना फोन के कैसे संपर्क करोगे आप, तो फोन नंबर बता देते हैं आपको। फोन नंबर हमारे वही हैं जो अक्सर रहते हैं, 2342108223, 2342108223, 2342108283, 2342108283। दिल्ली का STD कोड जरूर लगाइएगा इन नंबरों से पहले, 011। कोई भी समस्या गन्ने से संबंधित तुरंत फोन कीजिए। और जैसा आप सुन ही रहे हैं, कुछ किसानों ने फोन किए थे, उनकी समस्या का समाधान हमने करा दिया है। तो हम इंतजार कर रहे हैं आपके फोन का, तुरंत फोन कीजिए। इससे पहले थोड़ी चर्चा डॉक्टर साहब आपसे कर लें। आपने फोन आ गया है, डॉक्टर साहब इशारा कर रहा है अश्वनी बहुत देर से कि फोन आ गया, तो देखते हैं किस किसान का फोन है। हेलो।
3: हेलो,
2: नमस्कार जी।
3: जी नमस्कार, सबको नमस्कार। मेरा
2: फोन बोल रहे हैं जी?
3: जी मैं गौरव कुमार, गांव संदलीपुर, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
2: गौरव भाई बताइए क्या सवाल है?
3: मेरा सवाल ये है, अगले महीने सितंबर अक्टूबर में गन्ने की बुवाई होती है, तो उसमें हम क्या सावधानियां रखें जिससे गन्ने की फसल को बीमारियों से बचाया जा सके,
2: बताइए डॉक्टर साहब। सुजीत जी,
4: गौरव जी नमस्कार।
3: आपको
4: बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके माध्यम से सारे कृषक भाई बहन हमारे लाभान्वित होंगे। तो अगला 15 सितंबर से जो समय स्टार्ट हो रहा है, शुरुआत हो रही है, शरद काल के लिए बहुत ही अनुकूल समय है और अधिक पैदावार के लिए भी एक अनुकूल समय होता है किसान भाइयों के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा शरद काल में गन्ने की बुआई करेगा तो निश्चित रूप से ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक फायदे भी होते हैं। क्या क्या से बीमारी और कीट से बचने के लिए आपको सबसे पहले खेत की तैयारी अच्छे से करना चाहिए। और एक चीज और मैं कर दूं किसान भाइयों को, जो किसान भाई ग्रीन मैन्यूरिंग में ढैंचा अभी लगा रखे होंगे, तो उस ढैंचा को बहुत जल्दी उसको पलटाई कर दें, क्योंकि पलटाई करने के बाद उसको कम से कम 45 से 60 दिन के आसपास होना चाहिए। अगर उसमें फ्लावरिंग हो जाती है या उसमें पक जाते हैं तो वो फायदे नहीं मिल पाते जो 45 से 60 दिन में फायदे मिलते हैं, क्योंकि जैसे ही ढांचा आपका मुलायम होता है उसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो जल्दी से जल्दी सड़ने में सहायक होता है, जिससे कि खेत की जुताई कर दें तो उसमें ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं और खेत में गन्ने की पैदावार में लाभान्वित लाभ पहुंचाते हैं। खेत की तैयारी आप सबसे पहले आप मिट्टी प्लटहल से कीजिए, गहरी जुताई से कीजिए, चीजलर से कर लीजिए, जिससे कि आपके जो नीचे की जो परत है वो टूट जाए। उसके बाद कल्टीवेटर वगैरह चलाइए। सबसे पहले आप मिट्टी को शोधित जरूर कीजिए। मिट्टी को शोधन करने के लिए आप ट्राइकोडर्मा का जो कल्चर आता है, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद में अंकुश के नाम से आता है, या कोई भी ऐसी प्रतिष्ठित संस्थान है उस प्रतिष्ठित संस्थान से आप ट्राइकोडर्मा के कल्चर को आप लीजिए और कम से कम 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, या कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे जल प्लावित क्षेत्र हैं वहां पे इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि भूमिगत में भूमिजनित जो मृदा जनित बीमारियां हैं इससे बचाव के लिए भी है ट्राइकोडर्मा उसमें मुख्य रोल प्ले करता है। भूमिगत कीट से बचने के लिए बवेरिया बेशियाना और मेटाराइजियम यानी सोपली का 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सड़ी हुई गोबर के साथ दोनों जैविक चीजों को मिला लेंगे, जिससे कि उसकी मात्रा बढ़ जाए।

0: और पहली जुताई पे, सबसे पहली जुताई करें उससे पहले मिला के मिट्टी में मिला दें, उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए, जिससे कि भूमिगत कीट से भी बचाव कर सकते हैं और मृदा जनित बीमारी से भी बचाव कर सकते हैं। ये तो रही मिट्टी को शोधन करने का तरीका। उसके बाद जो बीज का चयन आप करेंगे, कम से कम 10 महीने का बीज होना चाहिए और कोशिश ये करें कि उसमें रोग और कीट का प्रकोप ना हो, और ऐसे शुद्ध बीज का उपयोग करना चाहिए। और उस बीज को दो आंख का टुकड़ा काट सकते हैं, या नर्सरी लगाना चाहते हैं तो एक आंख के टुकड़े को काट लें। उसके बाद शोधन किसी भी रासायनिक दवा के साथ शोधन करें, या थाइफेनेट मिथाइल ले सकते हैं, कार्बेंडाजिम ले सकते हैं, या जो इसके अलावा एजॉक्सिस्टोबिन और डाइफेनाकोनाजोल का मिक्सचर है, 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से, या लिक्विड है तो 1 ml प्रति लीटर की दर से आप घोल बना लीजिए और कटे हुए बीज को शोधित करके तभी गन्ने की बुआई करना चाहिए। इसके लिए किस्मों का चयन एक बहुत ही बड़ा कदम होता है किसान भाइयों के लिए। किस्मों का चयन, ऐसे किस्मों का चयन करना चाहिए जो आपके क्षेत्र के लिए अनुकूल हों। जैसे कुछ अस्वीकृत गन्ने की किस्म किसान भाई कभी कभी लगा देते हैं, तो ऐसे अस्वीकृत गन्ने की बुआई नहीं करना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुशंसित किस्में हैं, उन किस्मों की ही बुआई करें और अपने क्षेत्र के अनुसार उस क्षेत्र का चयन करना चाहिए। यदि उस क्षेत्र में गन्ना किस्म अच्छा चल रही है तो उसी गन्ना किस्म की बुआई करके ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने बीज संशोधन की बात कही है, तो कितनी देर डुबो के रखना चाहिए वो?
2: देखिए, ऐसा है जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि बीज का शोधन बहुत जरूरी है।
1: जी
2: और डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही, जैसे आपने रेड रॉट का जिक्र किया होगा,
1: जी
2: पिछले
1: जी
2: श्रोता समझ रहे थे
1: जी
2: कि किसान भाई सुन रहे हैं कि किसान भाई आप ये ध्यान रखें कि बीज का उपचार 100% करना है आपको। हमारी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए फसल जाती है, 1 साल प्लांट केयर हम लेते हैं, दूसरे साल हम जो है रेटून लेते हैं।
1: जी
2: तो अगर वह बीज का शोधन हमारा प्रॉपर हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियों से उसमें निजात मिलेगी।
1: जी
2: जैसे डॉक्टर साहब ने ट्राइकोडर्मा का भी जिक्र कर दिया, आपको अपनी बीज का जो हेग्जास्टॉप दवा होती है या थायोपनेट मिथाइल है, कोई भी कार्बिडिजम है, किसी भी दवा से आप अपना इसका इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बात और बतानी है किसान भाइयों को, जैसा डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि जैसे जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रमाणित हमारी वेराइटी है, जैसे CO0118, हम 0238 का अब जिक्र नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, CO0118 है, COLK16202 है, COS18231 है। तो ये वैरायटी जो है, इन वैरायटियों का चयन अब थोड़े थोड़े क्षेत्रों पे हम जैसे बीज मिल जाता है, इन बीजों को प्रयोग करें। साथ ही साथ थोड़ा सा एक बात बताना चाहूँगा, इसमें मिश्रित फसल के रूप में किसान भाई सरसों की फसल ले सकते हैं अक्टूबर की बुआई के साथ में, और जो है दूसरी फसल लहसुन की भी खेती इसमें कर सकते हैं।
1: तो गौरव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। अगला फोन लेते हैं जी। हेलो,
3: हेलो जी,
1: नमस्कार जी,
3: नमस्कार,
1: कौन साहब बोल रहे हैं?
3: पवन कुमार, जयतोला डिस्ट्रिक्ट संभल, उत्तर प्रदेश।
1: बताएं जी पवन जी, क्या सवाल है आपका?
3: मुझे सितंबर गन्ना बहना था 18231, ये बीज कहाँ से प्राप्त करें?
0: पवन जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बता दूं। आपने एक अच्छे किस्म का चयन किया है जिसका कोसा 18231 नाम है, जो कि अगेती फसल है और ये सरकार के द्वारा अनुशंसित भी है। तो आप सबसे पहले ये कीजिएगा, आप संभल जनपद के रहने वाले हैं तो आपके क्षेत्र में जो भी लोकल गन्ना विकास परिषद है या सोसाइटी है, उस सोसाइटी पे आप जाइए, अपने इस 18231 के नाम को बताइए और वो लोग हमारे गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर या गन्ना शोध केंद्र मुजफ्फरनगर से ये किस्म मंगवा के आपके आपके पास स्वतः ही पहुंचा देंगे। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बस अपना नाम, अपना पता, कितनी मात्रा में आपको बीज की मात्रा चाहिए, गन्ना विकास परिषद या गन्ना समिति में आप नोट करा दीजिए, आपको शोध संस्थान से उपलब्ध हो जाएगा।
1: तो पवन भाई, बहुत बहुत तो आपकी जो जितनी मेहनत थी ना, वो सारी डॉक्टर साहब ने ख़त्म कर दी है। तो आप ऐसे ही कीजिए, धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। और फ़ोन एक और आ गया डॉक्टर साहब, तो देखते हैं किस किसान का फ़ोन है और वो क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो,
4: हेलो,
1: नमस्कार जी।
4: जी नमस्कार डॉक्टर साहब,
1: कौन साहब बोल रहे हैं जी?
4: डॉक्टर साहब, मैं सोनू नागर बात कर रहा हूँ मेरठ से।
1: सोनू भाई बताइए, क्या सवाल है?
4: डॉक्टर साहब, मुझे सामान्य की प्रजाति लगानी है सितंबर माह में।
1: जी
4: तो प्रजाति का नाम जानना चाहते हैं, सामान्य की कौन सी प्रजाति लगा सकता हूँ सितंबर में?
0: हाँ, सोनू नागर जी नमस्कार।
4: जी नमस्कार, ठीक।
0: मैं हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, आप लोगों का आशीर्वाद है किसान भाइयों का। तो आप सामान्य गन्ना लगाना चाहते हैं तो सामान्य गन्ने में बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिसका उपयोग करके आप ज्यादा ज्यादा लाभ ले सकते हैं। सामान्य गन्ना में यदि हम बात करें तो अभी देखिए बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि 0-50-11 की खेती कर रहे हैं, अच्छी खेती कर रहे हैं,
4: ठीक है जी,
0: हाँ अच्छी खेती है जैसा आपने भी बताया, और इसकी भी खेती कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सामान्य में बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। सामान्य में यदि हम बात करें तो कोसा 16233 एक किस्म है जो कि मध्य देश से पकने वाली है, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर से ये अवमुक्त हुई है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसमें चीनी की मात्रा भी ज़्यादा है और उपज भी आप अच्छा ले सकते हैं। इसके अलावा कोसा 14233 है जो कि ये भी बहुत पुरानी वैरायटी नहीं है, नई वैरायटी है और ये भी मध्य देश से पकने वाली है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसका बुआई में आप यूज करके ज़्यादा ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको और वैरायटी की ज़रूरत है मध्य देश से पकने वाली, तो अपने संबंधित गन्ना विकास परिषद या सोसाइटी में आप संपर्क कीजिए, वहाँ से जो भी अनुशंसित है उस गन्ना किस्म का बुआई करके आप प्रयोग कर सकते हैं। एक और किस्म है जो कि आपके क्षेत्र में है, ये लखनऊ से रिलीज हुई है, कोसा कोलक 15207, तो इस किस्म का भी आप बुआई कर सकते हैं। कोलक 15206 भी किस्म है, इस किस्म की बुआई करके आप ज्यादा ज्यादा ले सकते हैं। ये सारे सामान्य पकने वाली वैरायटी।
1: डॉक्टर सरोही को जोड़ना चाहिए।
2: मैं किसान भाई आप मेरी बात सुन पा रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा दो वैरायटी करनाल से जो रिलीज हुई है उनके बारे में बताना, थोड़ा बीज लेकर के आप अपना मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। एक वैरायटी का नाम है CO17018 और जिसको हेलो
1: हाँ बोलिए बोलिए
2: एक वैरायटी CO18022, इन दो किस्मों को भी आप अपने सामान्य प्रजाति के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: सोनू भाई बहुत बहुत धन्यवाद, अगला फोन लेते हैं जी।
5: हेलो हेलो नमस्कार सर।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
5: ऋषिपाल नागर बोल रहा हूँ जी, दादूपुर गांव जिला गौतम बुद्ध नगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से।
1: बहुत स्वागत ऋषिपाल भाई आपका, बताइए क्या सवाल है?
5: मैं ठीक है नरेश भाई, और सुनाओ?
1: बढ़िया है जी, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब?
5: बस वो गन्ने के चक्कर में ही था, असल में हमने पेड़ी वो रखी थी 10-20 पेड़।
1: हाँ जी
5: हेलो।
1: हाँ बोलिए बोलिए।
5: हाँ जी, तो उसमें सड़ाई सी लग रही है पेड़ी में।
0: पेड़ी में सलाई, थोड़ा लक्षण हमें स्पष्ट नहीं हो रहे हैं आपके द्वारा।
5: जैसे सलाई चीनी हो जाती है जी, या ऊपर से जैसे कुछ खा लेता है?
0: हाँ जी मैं बता रहा हूँ, सलाई तो या तो अंकुर भेदक लगते हैं, लेकिन ये अंकुर भेदक लगने का समय नहीं है, तो आपके कीटों में जो छेद हो जा रहे होंगे, अगर पत्तियां कट जा रही होंगी, तो ये पेड़ी फसल में एक सामान्य जो कीट होता है, जो जिसे हम सैनिक कीट कहते हैं। सैनिक कीट मुख्य रूप से पेड़ी फसल में ही पाई जाती है और पत्तियों को कुतर कर ये खाने वाला कीट होता है, जिससे कि पत्तियों में छेद भी हो जाता है। इसके अलावा ग्रासहॉपर भी होता है जिसे टिड्डा कहा जाता है, ग्रासहॉपर से भी पत्तियां नुकसान में पहुंच जाती हैं, या यूं कहें जहां पे पुरानी पत्तियों का सम्मेलन होता है, पुरानी पत्ती ज़्यादा पाई जाती हैं, वहां पे सैनिक कीट का भी प्रकोप ज़्यादा होता है और उन जगहों पे कुछ अन्य कीट भी आ जाते हैं। इनसे बचने के लिए आप कीटनाशक का इस्तेमाल स्प्रे कर दें, जिससे सैनिक कीट से बचाव आप कर सकते हैं। क्लोरपाइरीफास का भी स्प्रे कर सकते हैं, इमिडाक्लोरपीड का भी कर सकते हैं।
1: ऋषिपाल भाई
5: जी,
1: ये तो आपने थोड़े क्षेत्र में लगा रखी है ना अपने लिए?
5: हाँ जी।
1: डॉक्टर साहब कोई जैविक तरीका है रोकने का?
0: बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं आप सभी आपके माध्यम से किसान भाइयों को बता दूं, इस समय जो समय चल रहा है चोटी बेदक का, तीसरी पीढ़ी खत्म होगी, चौथी पीढ़ी की यह शुरुआत हो गई है, और आपके क्षेत्र में बिजनौर जनपद में एक नया कीड़ा मुझे दिखाई दिया है, जो कि अभी निरीक्षण करने के बाद दिखा है, जो कि प्लासी बोरर के नाम से यह जाना गया है। और प्लासी बेदक एक ऐसा कीट है जो कि बिजनौर जनपद में है और मुजफ्फरनगर जनपद के कुछ ऐसे जगहों पे दिखाई दिया है। इसमें एक गन्ने में कम से कम लार्वा जो होती है, सूंड़ी की संख्या 100 से ज़्यादा होती है। यदि ऐसी स्थिति हो तो इस समय रसायनों का उपयोग कम से कम करें और जैविक रूप से आप उसमें इस्तेमाल करें। जैविक के रूप में कौन सा हथियार यूज करेंगे? ट्राइकोकार्ड के नाम से एक जाना जाता है, ट्राइकोगर्मा जापानिकम के नाम से एक जैविक कीट आता है, या जापानिकम के अलावा ट्राइकोगर्मा किलोनिस के नाम से एक जैविक कीट है, जिनका उत्पादन कृषि विश्वविद्यालय में भी किया जाता है और उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान के 3 केंद्रों पर, मुजफ्फरनगर संस्थान, शाहजहांपुर और पूर्वांचल में कुशीनगर जनपद के सेवरही संस्थान पर भी किया जाता है। तो ट्राइकोकार्ड का इस्तेमाल 20,000 अंडे प्रति एकड़ की दर से आप यूज करेंगे, तो उसमें आप जो सलाई अंकुर बेधक या चोटी बेधक, इसके अलावा जो प्लासी बेधक की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें ट्राइकोग्रामा किलोनिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि उसकी संख्या की मैं बात करूँ तो 125,000 की संख्या में आप अंडों की अंडे उस

0: जला देंगे, मतलब मोबाइल से बेच रहे थे।
1: प्रत्यारोपित करेंगे तब जाके प्लासी बेधक से भी बचाव कर सकते हैं या चोटी बेधक से बचाव कर सकते हैं। और इस समय तना बेधक का बहुत ही अनुकूल समय
0: पता
1: चल रहा
0: नहीं
1: है,
0: अब
1: तो तना बेधक से बचने के लिए भी
0: आवाज
1: आप
0: कौन सा है।
1: ट्राइकोकार्ड का इस्तेमाल करके जैविक विधि से बिना किसी दवा का इस्तेमाल किए तना बेधक से भी बचाव कर सकते हैं, पूरी बेधक से भी बचाव कर सकते हैं, अन्य बेधक से भी बचाव किया जा सकता है।
2: तो ऋषिपाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, जो हम पहले बात कर रहे थे, रोग की बात चल रही थी हमारी शुरू में, तो तीन रोगों का जिक्र आप दोनों ने किया है कि ये रोग हैं और उनका नियंत्रण भी बताया। इसके अलावा बरसात के इस मौसम में कोई अन्य रोग भी है जो आके जो हमारे गन्ना किसान हैं उनको परेशान करे?
1: हाँ, कुछ ऐसे पश्चिमी क्षेत्र हैं या मध्य क्षेत्र हैं वहां पे कुछ रोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी गन्ना किस्म है जिसमें घासी परोरो रोग दिखाई दे रहा है। घासी परोरो रोग को मैं आसान भाषा में बता दूं, ग्रासी सूट डिजीज कहा जाता है। और इसमें एक क्लब में कम से कम झूठे कल्लों की संख्या बहुतायत मात्रा में हो जाती है। और एक मदर सूट होता है तो जो झूठे कल्ले होते हैं वो गन्ने में परिवर्तित नहीं हो पाते। ऐसे जहां पे बीमारी दिखाई दे रहे हैं तो किसी भी दवा का इस्तेमाल किसान भाई ना करें, फफूंद नाशक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यदि आप कहीं अनभिज्ञ व्यक्ति से आप दवा के बारे में पूछेंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत सारे दवाओं का आपका
2: नाम बता देगा।
1: दे देगा और आपके पैसे ज्यादा नुकसान होंगे। तो आपको करना क्या है, उस संक्रमित पौधे के मूल को, उस क्लंप को जिसमें जिसमें उसमें जो झूठे कल्लों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रहा है उसको समूचा जड़ सहित निकालें और मिट्टी के नीचे दफना दें। यदि इसकी मात्रा ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसका आपतन ज्यादा है, तो एक काम किसान भाई जरूर करें, उसमें कोई कीटनाशक का स्प्रे कर दें। जैसे इमिडाक्लोरबिट का भी इस्तेमाल कर स्प्रे कर सकते हैं। इससे फायदे क्या हैं, इससे फायदे यह हैं कि इस बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो काम करते हैं ये चूसक कीट करते हैं। जब चूसक कीट को मारने के लिए हम कीटनाशक का स्प्रे कर देंगे तो बीमारी केवल एक क्लब में ही बचा रहेगा, दूसरे पौधे पे ये ट्रांसमिट नहीं हो पाता, जिससे दूसरा स्वस्थ पौधा आपका बच जाता है। तो ये ग्रासी सूट से बचने के लिए बहुत ही आसान और ये इकोनॉमिक तरीका है, आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने वाला तरीका है। एक बीमारी और चर्चा में कर दूं क्योंकि वो बीमारी आने वाली है। किसान भाई कभी कभी परेशान हो जाता है गन्ने के पीलापन को लेके, और गन्ने के पीलापन में एक वायरस जनित बीमारी आती है जो कि अक्टूबर महीने से शुरुआत होती है, सितंबर लास्ट से अक्टूबर से शुरुआत होती है। इससे किसी भी तरह के इकोनॉमिक लॉस, आर्थिक नुकसान किसान भाइयों को नहीं दिखाई देता है। लेकिन इस समय और इस वायरस से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी दवा का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इस उत्तर प्रदेश के वातावरण के अनुकूल जो वातावरण दिखाई दे रहा है, वायरस से बिल्कुल ना घबराएं। इस समय जो पत्तियां पीलापन दिखाई दे रही हैं तो बहुत सारे किसान भाई इसको वायरस मान ले रहे हैं, लेकिन आज के समय में जितनी भी पत्तियां पीलापन दिखाई दे रही हैं ये ऊपर जो नुकीला वाले पत्ती हैं वहां से शुरुआत में दिखाई दे रहा है, तो वहां से यदि पीलापन दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से जड़ों में ये इसकी बीमारी है, जिसे उकठा रोग कहा जाता है, विल्ट कहा जाता है, जिसकी संक्षिप्त चर्चा मैंने पहले ही शुरुआत में किया था। उससे बचने के लिए कोई भी फफूंदनाशक, सिस्टमिक नेचर के फफूंदनाशक की ड्रेंचिंग कर देंगे तो निश्चित रूप से उस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। तो ये सम्यक विषय पे समसामयिक बीमारी थी जो कि किसान भाइयों को मैंने बहुत ही विस्तार से बताया, बहुत ही संक्षिप्त सरल भाषा में बता दिया। यदि किसान भाई इसको पहचान के यदि समय से इसका उपचार कर ले तो निश्चित रूप से बीमारी से होने वाले जो आर्थिक नुकसान है इससे बचा जा सकता है।
2: डॉक्टर साहब, पीलेपन की आपने जिक्र करी है, पीलापन आपने कहा कि रोग की वजह से भी हो रहा है, पीलापन हो सकता है कि सूक्ष्म पोषक तत्व है या बाकी जो तत्व है उनकी वजह से भी हो सकता है, तो अंतर कैसे करें किसान?
3: देखिए, ऐसा है जैसे डॉक्टर साहब ने भी इंसेक्ट और डिजीज के बारे में अभी विस्तार से समझा दिया।
2: जी जी,
3: अभी एक किसान भाइयों के लिए एक चैलेंजिंग जो समस्या है इस टाइम पे, किसान भाई ज्यादातर लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी के अभाव में किसान भाई यूरिया का अत्यधिक प्रयोग बरसात के बाद भी करते रहते हैं। जैसे हम न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट की बात करें, पोषक तत्व का प्रबंधन के ऊपर हम बात करें, अब किसान भाइयों को चाहिए इस समय में कि जो यूरिया का इस्तेमाल है उसको ना करें, क्योंकि बरसात का समय चल रहा है, मानसून दरकिनार चलता आ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है।
2: जी, जी।
3: जो नाइट्रोजन की मात्रा किसान भाइयों ने सभी ने डाल ली है।
2: जी।
3: अभी अगर उनका मन नहीं मानता है तो एक तत्व जैसे अभी आईपीएल का प्रोडक्ट है, दो खाद इस टाइम पे और गन्ने के पोषण के लिए बहुत बढ़िया है,
2: जी।
3: पॉलीहेलाइट 25 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करें, या एक बाजार में आता है पोटेशियम सोनाइट के नाम से, किसी भी कंपनी का हो सकता है, तो उसको जो है 15 किलो से 20 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से किसान भाई बधाई के बाद अपनी उसकी लाइनों में इस्तेमाल कर दें, तो उससे गन्ने की वृद्धि भी होगी, मोटाई भी बढ़ेगी और गन्ने का वजन भी बढ़ेगा।
2: डॉक्टर साहब एक फोन आ गया है, देखते हैं किस किसान का है। हेलो हेलो, नमस्कार जी।
4: नमस्कार जी, बलवान बोल रहे हैं कलम डिस्ट्रिक्ट से।
2: बलवान?
4: हाँ जी
2: हाँ, बता भाई बलवान, ये सवाल है तेरा।
4: मेरा सवाल है जी, मैं किचन गार्डन में लाना जी, किस्म बताओ तो ही।
2: अच्छा, अपने घर की ताई चाहिए?
4: हाँ, घर दौगा चाहिए जी।
2: चलो कितनी जगह है वो फिर उसके हिसाब से डॉक्टर साहब बता देंगे।
4: वैसे आधे कनाल है जी।
3: अच्छा, आधा कनाल है तो साहब आप कैथल से हैं तो आप करनाल से जो आप अपने किचन गार्डन पर्पज के लिए वैरायटी ले सकते हैं, तो अभी उस पर्पज के लिए आपको जो वैरायटी है वहाँ पे 2-3 वैरायटी मिल जाएंगी आपको, उस CO 18022 उसकी आंख मिलेंगी आपको। 1 अक्टूबर से बीज मिलना शुरू हो जाएगा वहाँ पे आपको, और 17018 16030 कोई भी तीनों किस्मों में से कोई भी आप किस्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वैरायटी सामान्य बिजाई की है, सामान्य कैटेगरी में आती हैं और अच्छी हैं, आपको गन्ना चूसने के लिए खाने के लिए चाहिए, उस पर्पज के किचन गार्डन में चाहिए, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: कब हो सके डॉक्टर साहब ये बता दो?
3: 15 सितंबर के बाद जो है, जैसे मैं कोशिश करूंगा इन्हें कि ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बोएं।
4: अच्छा डॉक्टर साहब, और इसमें खाद पाद यूज, खाद खुद या के?
3: खाद में आप इसमें किचन गार्डन के तो जैविक का प्रयोग करें, आप गोबर की सड़ी खड़ी खाद का इस्तेमाल करें, ठीक है ना
4: जी? गोबर की, ठीक है जी।
3: और ऊपर से हल्की फुल्की जरूरत होगी तो फिर आपको बता देंगे, बाकी इसमें इस टाइम पे गोबर की खाद डालें अपने किचन गार्डन के लिए। आप जैविक खाद
2: तैयारी करोगे ना, जब उस जगह की खेत की तैयारी करोगे आप, तो उसमें सड़ी हुई गोबर की, पर सड़ी हुई होनी चाहिए।
4: खाद है जी मेरे पास, खड्डा की खाद है, वो गेट
2: दूंगा। हाँ हाँ, वही। ठीक है बलवान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए।
4: डॉक्टर साहब धन्यवाद आपका।
2: राम राम भाई। डॉक्टर साहब, शरदकालीन जो गन्ने की बुआई है उसकी चर्चा हुई थी, लेकिन वो पूरी हुई नहीं है क्योंकि समय नजदीकी है, तो जो किसान शरदकालीन समय में गन्ना लगाना चाह रहा है तो किस तरह से आपने खेत की तैयारी तो बताई है, पर एक बार दोबारा से आप बताओ कि किस तरह से खेत की तैयारी करें, कौन से क्षेत्र के लिए कौन सी किस्म अनुकूल रहेगी, ज्यादा पैदावार मिलेगी, इसके बारे में चर्चा आप थोड़ी सी करते हैं।
3: देखिए ऐसा है, जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, खेत की तैयारी कैसे नहीं, गहरी जुताई करनी है खेत की, है कि नहीं
2: जी?
3: और साथ ही साथ जो आपने खेत की तैयारी करने के बाद में दो चीजों, गन्ने का मेथड का खास तौर से ध्यान रखना है। अगर किसान भाई अपना उत्पादन अच्छा चाहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, किसी भी चाहे हम पूर्वांचल की बात करें
2: जी,
3: ट्रेंच मेथड से कम गन्ने की जो वो है अक्टूबर का जो महीना है, इसमें अगर ट्रेंच के साथ अंत्य फसल के रूप में दूसरी भी फसल लेंगे, तो ट्रेंच विधि से अगर गन्ने की खेती करेंगे तो उससे उत्पादन पे कम से कम 20-25% की पैदावार पे फर्क पड़ेगा।
2: आपने सह फसलीकरण की बात की है डॉक्टर साहब, तो जो गन्ने की लाइन है दो, उनके बीच में कितना अंतर छोड़ना पड़ेगा?
3: अब डॉक्टर साहब विस्तार से बताएंगे जो इनकी अनुसूचित वैरायटी है ट्रेंच विधि में कौन कौन सी किस्में हैं, कितने पे गैप करके हम करें, 5 फीट पे हम करें,
2: क्योंकि जगह तो दूसरी फसल के लिए चाहिएगी ना डॉक्टर साहब, तो क्या कितनी दूरी बना के रखनी पड़ेगी?
1: अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि किसान भाइयों का इस शरदकाल का समय आने वाला है, तो आप देखो किसान भाई इस समय वाइड डिस्टेंस पे ही जा रहा है, क्योंकि जितना अगर वाइड डिस्टेंस से, मतलब वाइड डिस्टेंस का मतलब कि दूरी जितना ही बढ़ाएंगे, गन्ने की मोटाई निश्चित रूप से बढ़ती है, क्योंकि प्रकाश अच्छे तरीके से सारे गन्नों को मिलेगा, तो कम से कम 4 फीट रखने की बिल्कुल जरूरत है। 4 फीट आप रखिए, 4 फीट पे गन्ने की बुआई कीजिए। किस्मों का चयन निश्चित रूप से जितना डॉक्टर साहब ने बताया, कोसा 18231 ले सकते हैं, कोसा 19231 ले सकते हैं, कोसा 17231 ले सकते हैं, कोसा 13235 ले सकते हैं, या कोयम्बटूर की को 0118 ले सकते हैं, को 98014 है, लखनऊ की अनुशंसित वैरायटी जो है कोलक 14201 है, कोलक 16201 है। जल प्लावित क्षेत्र हैं, यदि कम जल प्लावित क्षेत्र है वहाँ पे अगेती फसल लगाना चाहते हैं तो कोसा 13231 का चयन कर सकते हैं, कोसा 10239 का चयन कर सकते हैं, या UP 05125, ये तीनों किस्में जल प्लावित क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्मेंस करती है, अच्छा उपज देने की क्षमता रखती है। इन वैरायटी किस्मों का चयन करके 4 फीट की दूरी पर आप गन्ना बोएं। अगर बीच में

0: सह फसल ही चुकी, शरद काल में सह फसल लगाना है तो निश्चित रूप से सह फसल के साथ जाना चाहिए। सह फसल में सबसे अच्छा पैदावार सह फसल के रूप में दूसरी क्राप की भी ले सकते हैं और मेन क्राप आपकी गन्ने से भी ले सकते हैं, तो आलू गोभी भी बुआई कर सकते हैं, मूली साग सब्जी में मूली ले सकते हैं, सरसों ले सकते हैं, गाजर की खेती कर सकते हैं, अलसी फ्रेंच बीन जितने भी आपकी साग सब्जी हैं उन सारी लहसुन भी ले सकते हैं। तो इस तरह
1: कम अवधि वाली जितनी फसल
0: कम अवधि में जो कि 3 से 4 माह में ये पक के कट जाती हैं, तो गन्ने पे किसी भी तरह के विषम प्रभाव नहीं पड़ता और आपकी गन्ने की पैदावार भी किसी भी तरह की हानि नहीं होती और अधिक से अधिक उत्पादन भी मिलता है।
1: तो सह फसली अगर आपने लेनी है गन्ने के साथ दूसरी फसल लेनी है, अपना मुनाफा बढ़ाना है किसान बहनों भाइयों, तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया है कम से कम 4 फीट का आपको लाइन से लाइन की दूरी रखनी है और उसमें आप बीच में जो आलू बो दो
2: अंतिम फसल के रूप में साग सब्जी में, जैसे आलू हो गया आपके, अन्य साग सब्जी फसल कोई भी आप उसमें ले सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब अब सवाल ये उठता है, दो फसल ले रहे हैं हम, गन्ना तो है ही, दूसरी फसल और उसमें ले रहे हैं हम खेत में, तो जो खाद है चाहे आप जैविक खाद की बात कर लो या रासायनिक खाद की बात कर लो, तो उनकी मात्रा बराबर ही रहेगी या थोड़ी बहुत बढ़ानी पड़ेगी?
2: देखिए अभी डॉक्टर साहब विस्तार से बताएंगे। 100 ये जो हमारे जो अक्टूबर वाली जो प्लांटिंग होती है, ऑटम प्लांटिंग जिसको हम कहते हैं, इसमें हमारी खाद की रिकमेंडेशन थोड़ी सी ज्यादा रहती है स्प्रिंग प्लांटिंग के बनस्पत, तो उसमें विस्तार से डॉक्टर साहब बताएंगे।
1: छोटे शब्दों में बता दो।
0: बिल्कुल, आप अभी शरद काल में जो भी गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं तो 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटेशियम का यूज करना चाहिए। तो इस अनुशंसित रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करके, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके हम शरद काल गन्ने की बुआई किया जा सकता है।
1: डॉक्टर सुजीत जी, डॉक्टर सरोही जी, आप कार्यक्रम में आए, हमारे किसानों की जितनी भी समस्याएं थी उनका समाधान किया, बहुत अच्छी जानकारी दी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
0: धन्यवाद सर।
3: अभी आप सुन रहे थे इंडियन पोटास लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जिसका विषय था गन्ना फसल में रोग नियंत्रण पर। हमारे सारी किसानों ने बहुत अच्छे कॉल भी आए, उन्होंने जानकारी भी अपने लिए, और हमारे हमारे हमारे जो नरेश पराशर साहब ने इसका संचालन किया, और हमारे डॉक्टर साहब सुरजीत प्रताप सिंह जो वैज्ञानिक गन्ना अनुसंधान संस्थान शाजापुर से थे, डॉक्टर DS सरोही जो वशिष्ठ गन्ना वैज्ञानिक मुजफ्फरनगर से थे, बहुत अच्छे और बहुत तरीके से सलीके से इन इन इन फसलों पर जो जो प्रश्न हमारे पूछे गए उनका उनका जवाब दिया। और अब सुन लेते हैं एक स्पॉट।
4: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद।
5: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर, शीघ्र बुक करें।
6: इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को
3: राम राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और सहयोगी शिवनंदन लाल।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओं, अब वक्त है कुछ गजल सुनने का, तो लीजिए सबसे पहले सुनते हैं पंकज उदास के स्वर में ये गजल।

0: श्रोताओं, गजलों का सफर यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स। और लीजिए, आप सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें 56 लेडीज स्पेशल इलेक्ट्रिक बस सेवाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली करनाल अंतर्राज्यीय ई बस सेवा और राजघाट डिपो पर एक पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
1: इन बस सेवाओं के माध्यम से नेहरू प्लेस, एम्स, साउथ एक्सटेंशन, आरकेपुरम, कनॉट प्लेस, आईटीओ, दिल्ली सचिवालय, करोल बाग, कश्मीरी गेट और शिवाजी स्टेडियम जैसे प्रमुख रोजगार, शैक्षणिक और संस्थागत केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके साथ ही दिल्ली करनाल अंतर्राज्यीय ई बस सेवा का शुभारंभ दिल्ली से हरियाणा के प्रमुख शहरों को स्वच्छ और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इस मार्ग पर 5 इलेक्ट्रिक और एयर कंडीशन बसें संचालित होंगी और दोनों दिशाओं में प्रतिदिन कुल 10-10 यात्राएं निर्धारित की गई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का दृष्टिकोण ऐसा सार्वजनिक परिवहन तंत्र तैयार करना है जो पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दे। वहीं दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर सभी माताओं, बहनों और बेटियों को यह लेडीज स्पेशल बस सेवा एक विशेष उपहार है। श्री सिंह ने कहा कि इन सभी पहलों के माध्यम से दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए खास बसें शुरू की गई हैं, जिनमें अभी 56 बसें चल रही हैं और जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई जाएंगी। यह नई पहल राजधानी दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन के आधारभूत संरचना को और अधिक मजबूत बनाने और शहर को साफ सुथरी और स्थायी गतिशीलता की तरफ ले जाने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
0: निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब इस महीने की 24 तारीख तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जिन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा किए हैं वे 31 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम जांच सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन की गिरफ्तारी पर कहा है कि सदन में CAG की 19 रिपोर्ट पेश की गई। उन्होंने कहा कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के समय हुए सभी घोटालों की जांच चल रही है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि CAG की सभी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
2: 19 CAG रिपोर्ट सदन पटल पे प्रस्तुत की गई, जो कि एक एक घोटाला जो पिछली सरकार आम आदमी पार्टी सरकार केजरीवाल सरकार का था वो घोटाले को प्रस्तुत करता था। सब CAG रिपोर्टों पे कार्रवाई चल रही है, एजेंसीज अपना काम कर रहे हैं और जो बीज बोए हैं वो तो सामने आएंगे ही। तो सत्येंद्र जैन उस नाते से जो उन्होंने स्कैम किया था जल बोर्ड का, उसके नाते से जेल गए हैं और कार्रवाई चल रही है, एजेंसीज काम कर रही है।
0: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार 26 अगस्त को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया कि पेंशन की राशि 1 सितंबर से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 8 लाख महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया था, जबकि इसके बाद 5 लाख से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने आज JJ कॉलोनी और ओल्ड पंखा रोड में अटल कैंटीन का शुभारंभ किया। ये दिल्ली के जरूरतमंद नागरिकों तक सस्ती पौष्टिक भोजन की सुविधा पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पत्रकारों से बात करते हुए श्री सूद ने कहा कि जो लोग दिनभर काम करते हैं

0: और उन्हें घर पर खाना बनाने का समय नहीं मिलता, उनके लिए ये एक उपयोगी सुविधा होगी।
1: जो लोग दिन में दो बार एक ही बार बना खाना खाते हैं, उनके लिए एक उपयोगी साधन होगा और ये हमारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास का जो हमारा नारा है, जिसमें हमने दिल्ली की गरीब बस्तियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जीवन देने का वादा किया था, उनको वहीं पर पक्के मकान भी देने का काम चालू हो गया है, भोजन देने का काम शुरू हुआ है। ये नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री जी की सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।
0: श्री आशीष सूद ने आज एक जनसुनवाई के दौरान जनता की समस्याओं और सुझावों को भी सुना। उन्होंने अधिकारियों के साथ संबंधित विषयों पर चर्चा कर समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि जनता की बात सुनना और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना ही जनसुनवाई का उद्देश्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यायालय ने कहा कि इसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र होना चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: नीट यूजी 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधा कृष्णन की अध्यक्षता में के राधा कृष्णन समिति का गठन किया गया था। प्रादेशिक समाचार के लिए जागृति शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बच्चों की डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान के लिए एक सुरक्षित केंद्रीकृत व्यवस्था बनाने की मांग की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा आयोजित स्वास्थ्य और कल्याण शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उन सभी डॉक्टरों का धन्यवाद किया जिन्होंने इस मेडिकल शिविर में अपनी सेवाएं दी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनीरका इलाके में मणिपुर के दो लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दो लोगों पर हमला किया था। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आयोग ने इस मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के मंडोली इलाके में एक इकाई पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान लगभग 250 कम गुणवत्ता वाली एल्यूमिनियम फॉयल पेपर रोल जब्त किए गए। ये कार्रवाई अधिनियम 2016 की धारा 28 के तहत कथित गैर अनुपालन की सूचना मिलने के बाद की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सूचना सेवा सरकार और नागरिकों के बीच संबंध मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग न केवल नागरिकों को सूचित करने और उनसे जुड़ने के लिए करें बल्कि उनकी चिंताओं को सुनने, समझने और उचित प्रतिक्रिया देने के लिए भी करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
3: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक, ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत और अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली अधीनस्थ सेवा DSS कैडर के 111 अधिकारियों को पदोन्नत करते हुए उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व और अन्य विभागों में तैनात किया है। सर्विस विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार पदोन्नत अधिकारियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, व्यापार कर और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान श्री जोशी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ऑनलाइन कोचिंग का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और संरचित तैयारी रणनीतियों को देशभर के विद्यार्थियों तक पहुंचाकर एक सशक्त राष्ट्रीय मंच का निर्माण करना है। आगामी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ दूसरे चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी और दक्षिणी परिसरों में CCTV कैमरों के जरिए मुख्य मार्गों पर निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान आज ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए सबसे पहले छात्रों को एक एडवाइजरी जारी की गई है कि लिंगदोह कमेटी के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। नई दिल्ली के टिकरी कलां के एक CNG पंप पर आज दोपहर एक ट्रक में धमाका हुआ। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि दोपहर 3:37 पर आग लगने की खबर मिली। अग्निशमन विभाग की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी और PV सिंधु ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी भी मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, जबकि पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को बाई मिलने के कारण प्री क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है। और अब बात मौसम की। राजधानी दिल्ली में आज कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि कल बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में 200 नई इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ। 56 लेडीज स्पेशल बसें विशेष रूटों पर चलाई जाएंगी। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया। प्रमुख तारीखें आगे बढ़ाई गई। दिल्ली सरकार 26 अगस्त को दिल्ली लक्ष्मी योजना की पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। और नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी और PV सिंधु ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। और श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम गीत मालिका में कुछ अपने मनपसंद गीत सुनने का। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसे गीत लाई हूँ जो मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन आशा है कि आप सभी को भी बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना ये कार्यक्रम इस प्यारे से गीत के साथ।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे हीर राजा फिल्म में अनवर और लता मंगेशकर की आवाज, और लीजिए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

दोस्तों, आप सुनते हैं फिल्म खुदा गवाह का ये गीत, जिसे स्वर से सजाया है कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज ने।

साथियों, अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक गाना नहीं, ये उन तमाम दिलों की आवाज़ है जिन्होंने कभी किसी को चुपके से चाहा है, किसी का इंतज़ार किया और फिर मुस्कुराकर कहा, हाँ मुझे प्यार है।

साथियों, आप सुन रहे थे फिल्म जुनून का ये गीत, जिसे स्वर से सजाया था अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेव ने। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हम भूल सकते हैं, लेकिन पहली मोहब्बत की खुशबू, पहली मुलाकात की धड़कन और किसी अपने की आवाज में छुपी वो मिठास शायद कोई कभी नहीं भूलता।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सड़क का ये गीत, जिसे स्वर दिया था अनुराधा पौडवाल ने। दोस्तों, प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसमें दूरी भी रिश्तों को कमज़ोर नहीं कर पाती हैं। अगर आपको सच्चा प्यार है तो इंसान दूर होकर भी दिल के सबसे करीब रहता है।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म लावारिस से आशा भोसले और किशोर कुमार को। और इसी गीत के साथ आज का हमारा ये गीत मालिका कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम धरती आकाश।
1: नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ मैं सुजाता शुक्ला। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आज किसी भी राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला है। भारत ने पिछले वर्षों में विज्ञान अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। अंतरिक्ष से लेकर स्वास्थ्य तक, डिजिटल तकनीक से लेकर कृषि तक और क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर सेमीकंडक्टर तक, भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने देश की क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आइए जानते हैं भारत की कुछ प्रमुख वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी उपलब्धियों के बारे में। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचा। इसके साथ भारत इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना। प्रज्ञान रोवर ने चंद्र सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग किए और सल्फर सहित विभिन्न तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि की। इसके बाद आदित्य L1 मिशन ने सूर्य के अध्ययन की दिशा में भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया। फरवरी 2025 में इसके सूट उपकरण ने एक शक्तिशाली सोलर फ्लेयर के निचले वायुमंडल के अभूतपूर्व तस्वीरें प्राप्त की।

2025 में स्पारडेक्स मिशन ने दो उपग्रहों की अंतरिक्ष में ऑटोनोमस डॉकिंग और अनडॉकिंग तथा उनके बीच पावर ट्रांसफर का प्रदर्शन किया। इसके साथ भारत अंतरिक्ष में डॉकिंग क्षमता प्रदर्शित करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। यह तकनीक भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन, सैटेलाइट सर्विसिंग और दीर्घकालिक अंतरिक्ष अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष विज्ञान केवल चंद्रमा और ग्रहों तक सीमित नहीं है। नाविक जैसी स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली, परिवहन, गतिविधियों, आपदा प्रबंधन और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज में उपयोगी है। मौसम पूर्वानुमान, कृषि संचार, आपदा चेतावनी और प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी में भी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने 2025 में श्रीहरिकोटा से अपना 100वां प्रक्षेपण भी पूरा किया। साथ ही नासा के साथ संयुक्त निसार मिशन भारत की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष साझेदारी का महत्वपूर्ण उदाहरण है। विज्ञान का सबसे बड़ा उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना है। स्वास्थ्य और बायोटेक्नोलॉजी में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में विकसित और निर्मित वैक्सीन्स ने देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक्नोलॉजी क्षमता को दुनिया के सामने रखा। आज भी भारतीय वैज्ञानिक जीनोमिक डायग्नोस्टिक, ड्रग डिस्कवरी, जीन एडिटिंग और प्रिसीजन मेडिसिन जैसी क्षेत्रों में अनुसंधान कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कैंसर रिसर्च, नई दवाओं और रोगों की शीघ्र पहचान के लिए भी किया जा रहा है। भारत की बायो इकोनॉमी भी तेजी से विस्तारित हुई है। सरकारी आकलन के अनुसार लगभग 12 वर्षों में देश की बायो इकोनॉमी करीब 10 लाख अरब डॉलर से बढ़कर लगभग 119 अरब डॉलर तक पहुंची है। भारत कृषि प्रधान देश है और इसलिए कृषि में वैज्ञानिक तकनीक का महत्व अधिक है। आज रिमोट सेंसिंग, ड्रोन सैटेलाइट इमेजरी, सॉइल टेस्टिंग, बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग खेती को अधिक उत्पादक और जलवायु अनुकूल बनाने के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए सैटेलाइट डेटा से फसल की स्थिति, सूखे और जल संसाधनों की निगरानी की जा सकती है। ड्रोन से खेतों में फसल निरीक्षण और टारगेटेड स्प्रेइंग भी संभव हो रही है। इससे किसान को कम संसाधनों में अधिक उत्पादन, बेहतर निर्णय और मौसम के जोखिमों से निपटने में सहायता मिल सकती है। डिजिटल तकनीक ने भारत में सेवाओं के स्वरूप को बदल दिया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल भुगतान और UPI ने करोड़ों लोगों के लिए वित्तीय लेनदेन को सरल बनाया है। आज मोबाइल फोन से कुछ ही क्षणों में भुगतान किया जा सकता है। अगला बड़ा क्षेत्र है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। भारत में भारतीय भाषाओं और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप AI विकसित करने में जोर दिया जा रहा है। भारत जैन जैसी पहली मल्टीलिंगुअल मल्टी मॉडल AI की दिशा में महत्वपूर्ण उदाहरण है। AI का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, मौसम पूर्वानुमान, यातायात, भाषा अनुवाद और वैज्ञानिक अनुसंधान में बढ़ रहा है। अगली क्रांतिकारी तकनीकों में क्वांटम टेक्नोलॉजी का नाम प्रमुख है। भारत ने नेशनल क्वांटम मिशन के माध्यम से क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग और क्वांटम मटेरियल्स के क्षेत्र में अनुसंधान को गति दी है। क्वांटम टेक्नोलॉजी भविष्य में अत्यंत जटिल गणनाओं, सुरक्षित संचार, नेविगेशन, मेडिकल सेंसिंग और साइंटिफिक सिमुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सेमीकंडक्टर तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में आज मोबाइल फोन से लेकर ऑटोमोबाइल, सैटेलाइट और मेडिकल इक्विपमेंट तक लगभग हर उपकरण के पीछे सेमीकंडक्टर चिप होती है। भारत ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत बड़े स्तर पर निवेश और परियोजनाओं को बढ़ावा दिया है। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने चिप डिजाइन में महत्वपूर्ण क्षमता विकसित की है। उदाहरण के तौर पर इसरो और सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी चंडीगढ़ ने अंतरिक्ष उपयोग के लिए 32-बिट विक्रम प्रोसेसर विकसित किया है। इसके अलावा 28 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर नाविक और GNSS सिग्नल के लिए इंडिजिनस बेसबैंड ASIC विकसित किया गया है। यह उपलब्धियां भारत की स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस के लिए महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती के बीच विज्ञान का एक बड़ा लक्ष्य है स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा। भारत में सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, फ्यूल सेल्स, एडवांस बैटरीज और एनर्जी स्टोरेज जैसी तकनीकों पर अनुसंधान और विकास हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य में उद्योग, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र में फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है। विज्ञान का सीधा संबंध लोगों की सुरक्षा से भी है। आज भारत में वेदर रडार, सैटेलाइट्स, न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के माध्यम से मौसम की भविष्यवाणी पहले से बेहतर हुई है। चक्रवात, भारी वर्षा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की पहले चेतावनी मिलने से प्रशासन और आम जनता को तैयारी के लिए अधिक समय मिलता है। सरकारी आकलन के अनुसार देश में वेदर रडार नेटवर्क के विस्तार से फोरकास्टिंग क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत की
वैज्ञानिक दृष्टि अब

की गहराइयों तक भी पहुंच रही है। डीप ओशन मिशन के माध्यम से डीप सी एक्सप्लोरेशन, मरीन बायोडायवर्सिटी, समुद्री संसाधनों और अंडर वाटर टेक्नोलॉजीज पर काम हो रहा है। समुद्र विज्ञान का महत्व केवल संसाधनों तक सीमित नहीं है। समुद्र जलवायु, मौसम, मत्स्य संसाधन और तटीय जीवन को प्रभावित करता है। विज्ञान से स्टार्टअप तक, भारत में विज्ञान और इनोवेशन इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब रिसर्च लेबोरेटरीज और यूनिवर्सिटीज से निकलकर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज तक पहुंच रही है। विशेष रूप से स्पेस सेक्टर इसका एक अच्छा उदाहरण है। भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में लगभग 1 से बढ़कर फरवरी 2026 तक 400 से अधिक हो गई है। यह बदलाव बताता है कि भारतीय युवा केवल टेक्नोलॉजी के उपयोगकर्ता नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजी के निर्माता भी बन रहे हैं। श्रोताओं, भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों की यह यात्रा केवल उपलब्धियों की सूची नहीं है, यह उस परिवर्तन की कहानी है जिसमें विज्ञान प्रयोगशाला से निकलकर किसान, विद्यार्थी, मरीज, उद्यमी और आम नागरिकों के जीवन तक पहुंच रहा है। चंद्रयान से लेकर सेमीकंडक्टर तक, वैक्सीन से लेकर बायोटेक्नोलॉजी तक, यूपीआई से लेकर एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी से लेकर ग्रीन एनर्जी तक, भारत का वैज्ञानिक विकास अब ज्ञान, नवाचार, आत्मनिर्भरता और जन कल्याण को एक साथ जोड़ रहा है। आने वाले समय में ज्ञानयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एंड एडवांस एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्र भारत को एक विकसित और जन आधारित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यही है विज्ञान की शक्ति, नई खोज, नई तकनीक और बेहतर भविष्य। इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं।

0: डॉक्टर संजय वत्स।
1: हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, शोध और समाज के भविष्य से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के जनक, महान शिक्षाविद और दूरदृष्टि विचारक डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर रंगनाथन ने अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और दूरदृष्टि विचारों से भारत में पुस्तकालय विज्ञान को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने पुस्तकालय को केवल पुस्तकों के संग्रह के रूप में नहीं देखा बल्कि इसे ज्ञान के प्रसार, शिक्षा, शोध और समाज के विकास का महत्वपूर्ण केंद्र माना। यदि हम पुस्तकालय के इतिहास पर एक नजर डालें तो पाएंगे कि पुस्तकालय मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ ही विकसित हुआ है। प्राचीन भारत में नालंदा, तक्षशिला जैसे महान विश्वविद्यालयों के साथ ही उनके केंद्र में पुस्तकालय केंद्रित रहा। नालंदा में देश विदेश से विद्यार्थी और विद्वान यहाँ पर पुस्तकालयों का उपयोग करने के लिए आते रहे हैं। समय के साथ साथ हस्तलिखित पांडुलिपियों से मुद्रित पुस्तकों और फिर आधुनिक पुस्तकालयों तक की यात्रा हुई। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय और राष्ट्रीय पुस्तकालयों ने शिक्षा और शोध को आगे बढ़ाने में विशेष महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। पुस्तकालयों ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय में भी लोगों में शिक्षा, जागरूकता, सामाजिक चेतना को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्थात पुस्तकालय का इतिहास केवल पुस्तकों का इतिहास नहीं है, यह वास्तव में मानव और सभ्यता के विकास का इतिहास है। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पुस्तकालय हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा बनी हुई हैं। मोबाइल, इंटरनेट, ई पुस्तकें, ई जर्नल, ऑनलाइन डेटाबेस और डिजिटल रिपोजिटरी ने ज्ञान तक पहुंच को अत्यंत आसान बना दिया है। एआई आधारित प्रणालियां बड़ी मात्रा में सूचनाओं को व्यवस्थित करने और दस्तावेजों का वर्गीकरण करने के आधार पर सामग्री खोजने और उपयोगकर्ताओं को प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करती है। एआई पावर्ड स्पीच रिकमेंडेशन सिस्टम, चैट बॉक्स, वॉइस सर्च, ऑटोमेटेड मेटाडाटा जनरेशन, सिस्टमेटिक रिसर्च जैसी तकनीक पुस्तकालय सेवाओं को अत्यधिक तेज और उपयोगकर्ताओं के लिए केंद्रित बनाती हैं। कल्पना कीजिए कि कोई शोधार्थी किसी विषय पर जानकारी चाहता है, भविष्य के पुस्तकालय में वह केवल कुछ शब्द टाइप नहीं करेगा बल्कि एक प्रश्न पूछेगा और एआई प्रणाली उसके लिए संबंधित पुस्तकों, शोध पत्रों, रिपोर्टों और अन्य विश्वसनीय स्रोतों की पहचान कर सकती है। इस प्रकार पुस्तकालय इंफॉर्मेशन स्टोरेज से इंटेलिजेंट नॉलेज सेंटर की रूप में बढ़ रहे हैं। भविष्य का पुस्तकालय किस प्रकार होगा, अब वो डिजिटल लाइब्रेरी से इंटेलिजेंट लाइब्रेरी तक का सफर तय कर रहा है। पुस्तकालयों का भविष्य डिजिटल होने तक सीमित नहीं है। आने वाले समय में हम ऐसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लाइब्रेरीज देख सकते हैं जहां भौतिक और डिजिटल संसाधन एक साथ कार्य करेंगे। भविष्य का पुस्तकालय कैसा होगा, जहां आप 24 आवर्स ज्ञान तक पहुंच बना सकेंगे, एआई आधारित और अनुशंसा सेवाएं प्रदान करेंगे, उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार सूचना उपलब्ध कराएगा, डिजिटल और भौतिक संग्रह को एकीकृत करेगा, शोधार्थियों को रिसर्च सपोर्ट प्रदान करेगा और विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान को शोधार्थी तक पहुंचाने में मदद करेगा। डिजिटल प्रिजर्वेशन के माध्यम से महत्वपूर्ण पांडुलिपियां, दुर्लभ पुस्तकें, दस्तावेज और सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी जा सकती हैं। यहां ओपन एक्सेस की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। ज्ञान केवल कुछ लोगों तक सीमित न रहे बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, यही आधुनिक पुस्तकालय व्यवस्था का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, जो कि है भी। लेकिन क्या तकनीक पुस्तकालयों की जगह लेगी, यह एक स्वाभाविक प्रश्न हम सभी के मन में उठता है। आज किसी भी शोधार्थी या विद्यार्थी को किसी जानकारी के लिए केवल पुस्तकालयों की अलमारी तक जाने की आवश्यकता नहीं है, वह घर बैठे दुनिया के विभिन्न पुस्तकालयों और सूचना संसाधनों तक पहुंच सकता है। ओपन ऑनलाइन कैटलॉग, डिजिटल लाइब्रेरी, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, ओपन एक्सेस रिसोर्सेज, ई बुक्स और ई जर्नल आज आधुनिक पुस्तकालय सेवाओं के महत्वपूर्ण भाग बन चुके हैं। लेकिन प्रिय श्रोताओं, यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, जब इंटरनेट इतनी जल्दी और इतनी अधिक जानकारी उपलब्ध करा सकता है तो फिर पुस्तकालय और पुस्तकालय अध्यक्ष की आवश्यकता क्यों? हाँ, ये प्रश्न सभी के मन में स्वाभाविक रूप से उठना भी चाहिए। लेकिन सूचना और सही ज्ञान में अंतर क्या है? इंटरनेट इंटरनेट पर जानकारी तो बहुत है, लेकिन हर व्यक्ति जानकारी की विश्वसनीयता को कैसे प्रमाणित करे यह केवल और केवल पुस्तकालय अध्यक्ष ही बता सकता है। आज हमारे सामने फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जैसी चुनौतियां हैं। ऐसे समय में पुस्तकालय अध्यक्ष की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पुस्तकालय अध्यक्ष केवल एक पुस्तकों का संरक्षक नहीं है, वह इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल, नॉलेज मैनेजर, रिसर्च सपोर्टर, डिजिटल क्यूरेटर और इन्फॉर्मेशन लिटरेसी एक्सपर्ट है। वह विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों और आम नागरिकों को सही सूचना खोजने, उसका मूल्यांकन करने और उसका जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करने में सहायता करता है। इतिहास से वर्तमान तक और वर्तमान से भविष्य तक पुस्तकालय की यात्रा वास्तव में ज्ञान की यात्रा है।
0: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक संपन्न होता है। प्रस्तुत करता थे दिलीप झा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरती आकाश। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। और अब वक्त है समाचारों का।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता, केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। ईरान ने खाड़ी देशों को अमरीका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके। और अब समाचार विस्तार से।

0: की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन, और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये फोर लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की चार मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की चौथी लाइन, भद्रक हरदासपुर की चौथी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की तीसरी और चौथी लाइन तथा कटक पारादीप की तीसरी तथा चौथी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को चार लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
0: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है, 83 किलोमीटर्स का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा फोर लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों के उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट DPR की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली DPR और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बनते हैं।
2: कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशंस ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हेवी स्नोफॉल अभी बहुत कठिन है, ये जो जिला में काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
3: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people.
1: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षा

0: परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा भी निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्र नाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनिरका इलाके में मणिपुर के 2 लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
2: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
1: श्री गोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन

0: सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबिलाडो डे ला एस्प्रियला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके, दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 5 infrastructure projects worth over 13,000 crore rupees. Clears 4 railway multi-tracking projects across 4 states, also gives nod to widening of National Highway 22 in Bihar. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari says high quality and cost-effective infrastructure top priority, says Centre will review subcontracting norms. US Ambassador Sergio Gore hails steps taken by Centre and Jammu and Kashmir governments to improve security in the Union Territory. President Draupadi Murmu calls for accurate, credible and citizen-centric government communication in social media era. Iran warns Gulf nations against facilitating US military operations. India beat Pakistan 5-3 to qualify for second round of men's FIH Hockey World Cup in the Netherlands. And in men's cricket, India sealed a commanding 165-run win over hosts Sri Lanka in Gaul Test. Manav Sutar claims maiden 10-wicket haul. The Union Cabinet today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railways covering 8 districts across 4 states

0: क्या हो रहा है? कंसोल नहीं
1: है? वो कहने हमको उधर के फ्लिक नहीं दिख रहे।
0: वो तो पढ़ रही
2: है। मल्टी ट्रैकिंग के चार प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी। बिहार में कौमी शाहराह 22 को वसत दिए जाने को भी मंजूरी दी गई है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि आला मयार और किफायती बुनियादी ढांचा अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि मरकज जैली ठेकेदारी से मुतालिक जब्तों का भी जायजा लेगा। अमरीकी सफीर सर्जियो गोर ने मरकज और जम्मू कश्मीर हुकूमतों की जानिब से मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सिक्योरिटी को बेहतर करने से मुतालिक किए गए इकदाम की सताइश की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के दौर में दुरुस्त काबिल भरोसा और शहरियों पर मरकूज हुकूमती रबते पर जोर दिया है। ईरान ने अमरीकी फौजी कार्रवाईयों में सहूलत के खिलाफ खलीजी ममालिक को खबरदार किया है। नीदरलैंड्स में मर्दों के FIH हॉकी आलमी कप में भारत पाकिस्तान को 3-5 से हराकर दूसरे राउंड में पहुंच गया है। और मर्दों के क्रिकेट में गोल में भारत ने पहले टेस्ट मैच में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से शिकस्त दी। मानव सुथर ने पहली मर्तबा 10 विकेट हासिल किए। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने आज 13,000 करोड़ रुपए मालियत के 5 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी, जिनमें रेलवे के 4

0: और शाहराहों का एक प्रोजेक्ट शामिल है। इत्तला तो नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के बाद मीडिया को प्रोजेक्टों से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की। जनाब वैष्णव ने मुतला किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जीर कयादत काबीना ने रेलवे के मल्टी ट्रैकिंग के 4 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिनमें 4 रियासतों मगरबी बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 अजला का इहाता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पर कुल 9,450 करोड़ रुपए की तखमीना लागत आएगी और ये प्रोजेक्ट 2030-31 तक मुकम्मल होंगे।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: मुजविजा प्रोजेक्ट तकरीबन 60 लाख की आबादी वाले 6,448 गांवों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अहम सियाहती मकामात तक रेल राबता बेहतर होगा और अहम अशिया की नकलो हमल मुस्तहकम होगी, जिनमें कोयला, सीमेंट, स्टील, कंटेनर, ऑटोमोबाइल और अनाज शामिल हैं। जनाब वैष्णव ने मुतला किया कि मरकजी काबीना ने बिहार में कौमी शाहराह 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा हिस्से को 4 लेन वाला करने को भी मंजूरी दी है, जिस पर तकरीबन 3,590 करोड़ रुपए की कुल सरमाया लागत आएगी।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि आला मेयार के बुनियादी ढांचे के साथ साथ कम लागत हुकूमत की अहम तरजीह है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे की तरक्की के मेयार से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आज नई दिल्ली में टनल्स एंड ब्रिजेस कॉन्फ्रेंस 2026 के 4th एडिशन से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि वजारत शाहराहों के कामों की सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए मौजूदा जब्तों का जायजा लेगी, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक जरूरतों की सख्ती से तामील हो। उन्होंने कहा कि इसका मकसद इस बात को भी यकीनी बनाना है कि मयार और बरवक्त तकमील की जिम्मेदारी वाज तौर पर असल कॉन्ट्रैक्टर से मंसूब रहे। जनाब गडकरी ने मजीद कहा कि वजारत पहले से ही कॉन्ट्रैक्टर्स का उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर जायजा ले रही है और ये अमल तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार करने वाले कंसल्टेंट्स पर नाफिज करने की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा टेंडर की अहलियत को कारकर्दगी के जायजे से मुंसलिक करने की भी तजवीज है। हिमालयी खितों में तो देखे सकने शदीद मौसम, कुदरती आफात और लॉजिस्टिक दुश्वारियों समेत तामीरात को दरपेश चैलेंजों का जिक्र करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि हिमालय में जेरे जमीन सुरंगों और पुलों की तामीर का काम काली मिट्टी की चट्टानों वाले इलाकों के मुकाबले ज्यादा चैलेंजेस से भरा है। झारखंड में JPSC JSSC से मुतालिक तलबा का 26 रोजा एहतजाज खत्म हो गया। रियासती हुकूमत की जानिब से भर्ती के मुख्तलिफ इम्तहानात को मनसूख करने के फैसले और मुबैना बेजाब्तगियों में तहकीकात का हुक्म दिए जाने के बाद ऐसा हुआ है। ताहम इस फैसले से वो उम्मीदवार नाखुश हैं जिनकी मनसूख हुए इम्तहानात के जरिए पहले ही तकर्री की जा चुकी है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: एहतजाज कर रहे तलबा ने रियासती हुकूमत की जानिब से 22 इम्तिहानात को मंसूख करने के सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किए जाने और JPSC सिविल सर्विसेज और JSSC CGL समेत 45 इम्तिहानात में बेसाब्तगियों की तहकीकात का हुक्म दिए जाने के बाद अपना एहतजाज खत्म कर दिया है। तलबा ने तहकीकात के लिए हुकूमत को ये वार्निंग देते हुए 60 दिन का वक्त दिया है कि अगर तहकीकात गैर मुनसिफाना या नाकाफी साबित हुई तो वह अपना एहतजाज फिर शुरू करेंगे। तलबा ने आज शाम रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एका चौक तक एक आभार यात्रा भी निकाली। इस दौरान हुकूमत के इस फैसले से 2628 उम्मीदवारों की तकरीरियां मुतासिर हुई हैं और उन्होंने अपनी नौकरियों और मुस्तकबिल के सिलसिले में तशवीश का इजहार करते हुए झारखंड सेक्रेटेरिएट और प्रोजेक्ट भवन के बाहर एहतजाज किया। احتجاج کر رہے ملازمین نے کہا کہ انہوں نے مقررہ عمل کے ذریعے امتحان پاس کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ

0: अगर बेजाब्तगियाँ हुई हैं तो कसूरवार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि मुंतखब और मुकर्रर हुए उम्मीदवारों की तकरीरियाँ मनसूख की जाएँ। रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: मगरबी बंगाल के नदिया ज़िले की एक अदालत ने मुबैना नफरत आमेज तकरीर के मामले के सिलसिले में अदालत के सामने पेश न होने पर तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट महवा मोइत्रा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने का हुक्म दिया है। कृष्णा नगर अदालत ने इस बात का भी हुक्म दिया है कि वारंट जारी करने के सिलसिले में एक रिपोर्ट 28 अगस्त तक दाखिल की जाए। मोइत्रा के खिलाफ मुबैना तौर पर खवातीन की तौहीन और नफरत आमेज तकरीर करने का मामला है। अदालत ने इससे पहले इस मामले में उन्हें समन जारी किया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत में अमरीकी सफीर सर्जियो गोर ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा करार देते हुए कहा है कि मरकज और खित्ते की हुकूमतों ने सलामती की सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए अहम इकदाम किए हैं। जनाब गोर जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे पर हैं, जहां उन्होंने श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की। उन्होंने वजीर आला के साथ अपनी मुलाकात को मुस्बत करार दिया और कहा कि फरीकैन ने मुस्तकबिल से मुतालिक अहम इकदाम पर तबादला ख्याल किया। जनाब गोर ने कहा कि हालांकि आज कोई रस्मी ऐलान नहीं किया जा सकता, ताहम सफर से मुतालिक एडवाइजरी में कमी लानी चाहिए, क्योंकि नई दिल्ली और मकामी हुकूमत की कोशिशों की बदौलत सलामती की सूरत हाल में बेहतरी आई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पब्लिक सर्वेंट्स को मशवरा दिया है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल सिर्फ मालूमात फराहम करने और शहरियों के साथ जुड़ने के लिए ना करें, बल्कि इसे उनकी शिकायतों को सुनने, समझने और कार्रवाई करने के लिए भी इस्तेमाल करें। सदर जमहूरिया ने जोर देते हुए कहा कि जब मालूमात तेजी से फैलती हैं तो इसे हमेशा मुस्तनद ज़राए के जरिए दुरुस्तगी, मोतबरियत और अवामी मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सदर जमहूरिया ने राष्ट्रपति भवन में इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के ऑफिसर ट्रेनीज से मुलाकात के दौरान ये बात कही। इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस के रोल पर रोशनी डालते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि इसने शहरियों के साथ हुकूमत के राबते को मुस्तहकम करने में अहम रोल अदा किया है।
2: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people.
1: सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि मौसर बातचीत और मोतबर मालूमात दरख्शां और जवाबदेह जमहूरियत के अहम सुतून हैं। उन्होंने अफसरान को मशवरा दिया कि वो अपने फैसलों में मुनसिफाना रहें, अपने तर्ज अमल में तहम्मुल बरतें और ईमानदारी को सबसे ऊपर रखें। सदर जमहूरिया ने वाजे किया कि लोगों की खिदमत करने की उन्हें तफवीज़ की गई जिम्मेदारी ईमानदारी, इनकसारी और फर्ज शनासी का तकाजा करती हैं। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस दोनों खिदमत का मुश्तरक मकसद हुक्मरानी के मियार को बेहतर बनाना और लोगों की खिदमत करना है। ईरानी दिफाई अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खलीज फारिस के जुनूबी साहिल के ममालिक को अमरीकी अफवाज की मदद करने से खबरदार किया है और कहा है कि तेहरान मकामी फौजी अड्डों की सरगर्मियों पर गहरी निगाह रखे हुए है। जनाब अब्दुल्लाही ने कहा कि इन अड्डों पर अमरीकी फौज के जंगी तैयारों की मौजूदगी और तैनाती इन मुल्कों की मालूमात के बगैर नहीं हो सकती। जनाब अब्दुल्लाही का इंतबाह ऐसे वक्त में आया है जब ईरान वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जारी तवील कशीदगी के दौरान खित्ते में अमरीकी फौजी नकलो हरकत पर निगरानी जारी रखे हुए है। जनाब अब्दुल्लाही ने यह इंतबाह मुजाकरात की बहाली से मुतालिक वाशिंगटन और तेहरान के मुतजाद बयानात के दौरान दिया है। 60 रोजा मुफाहमतनामा किसी वसीतर मुआहदे में तब्दील नहीं हो सका, जिससे सिफारती कोशिशें मजीद पेचीदगी का शिकार हो गई हैं। इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है और न ही इस तरह का कोई प्रोग्राम है। जनाब ट्रंप का यह बयान उनके दामाद और नुमाइंदे जैरेड कश्नर के उस बयान से मुतजाद है, जिसमें कश्नर ने कहा था कि तेहरान के साथ रबते जारी हैं। इस दौरान ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराकची ने दावा किया है कि तेहरान को खुद सुपुर्दगी करवाने में नाकाम रहने के बाद वाशिंगटन मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के वजीर कानून आजम नजीर तारर ने कहा कि आज हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म पर नजरसानी चाहेगी जिसके तहत उसने साबिक वजीर आजम इमरान खान को जामिया तिब्बी जांच के लिए एक अस्पताल में मुंतकिल करने का हुक्म दिया है।

आइंदा कुछ दिनों में जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान को जामे तिब्बी जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा बैन अलावामी अस्पताल मुंतकिल करने के पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुकाम को हिदायत दिए जाने के बाद यह बयान सामने आया है। मुकामी मीडिया ने खबर दी है कि सुप्रीम कोर्ट की तीन रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को अस्पताल में दाखिल किए जाने और अपने कुनबे से मिलने के सिलसिले में मुख्तलिफ अर्जदाश्तों की समाअत के दौरान यह हुक्म सुनाया। अदालत ने कहा कि यह हुक्म इमरान खान की सेहत और जिंदगी और तिब्बी सहूलतों तक रसाई की आईनी गारंटी के पेश नजर दिया गया है। हॉकी में भारत ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में जारी एफआईएच आलमी कप में आज इस बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए भारत अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गया है। इस शिकस्त के साथ ग्रुप मरहले में पाकिस्तान की मुहिम खत्म हो गई है। मैच का दूसरा क्वार्टर इंतहाई दिलचस्प रहा, जहां दोनों टीमों ने 9 मिनट के दौरान 4 गोल किए। इससे पहले भारत ने वेल्स को 3-1 से हराते हुए अपनी मुहिम का आगाज किया था। इससे पहले भारत को इंग्लैंड के हाथों 4-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ग्रुप डी से भारत और इंग्लैंड अगले राउंड में पहुंच गए हैं, जबकि पाकिस्तान का सफर खत्म हो गया है। आज गोल में पहले टेस्ट मैच में भारत ने मेजबान श्रीलंका पर 165 रन से शानदार जीत दर्ज की। भारत को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल हो गई है। श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का निशाना मिला था और लंच के बाद उसकी पूरी टीम 206 रन पर आउट हो गई। भारत के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज मानव सुथर ने भारत की जीत में इंतहाई अहम रोल अदा किया और उन्होंने दूसरे इनिंग्स में 6 विकेट हासिल किए और पहली मरतबा टेस्ट मैच में कुल 10 विकेट हासिल किए, जबकि ये उनका महज दूसरा टेस्ट मैच था। 24 साल भारतीय खिलाड़ी बैरून मुल्क 10 विकेट लेने वाले भारत के सबसे कम उम्र स्पिन गेंदबाज भी बने। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। मरकजी काबीना ने 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बुनियादी ढांचे के 5 प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। उसने 4 रियासतों में रेलवे मल्टी ट्रैकिंग के 4 प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी। बिहार में कौमी शाहराह 22 को वसत दिए जाने को भी मंजूरी दी गई है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि आला मयार और किफायती बुनियादी ढांचा अवलीन तरजीह है और उन्होंने कहा कि मरकज ज़ैली ठेकेदारी से मुतालिक ज़ाब्तों का भी जायजा लेगा। अमरीकी सफीर सर्जियो गोर ने मरकज और जम्मू कश्मीर हुकूमतों की जानिब से मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सिक्योरिटी को बेहतर करने से मुतालिक किए गए इकदाम की सताइश की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के दौर में दुरुस्त काबिल भरोसा और शहरियों पर मरकूज हुकूमती रबते पर जोर दिया है। और नीदरलैंड्स में मर्दों के FIH हॉकी आलमी कप में भारत पाकिस्तान को 3-5 गोल से हराकर दूसरे राउंड में पहुंच गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: सरकारी बैंकों की तरफ से दो दिन पहले ही एक मंथन किया गया और उसमें तमाम मुद्दे निकलकर सामने आए और साथ ही वित्त मंत्रालय ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई और एक रूपरेखा तय हुई कि आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर को किस तरह से काम करना है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र कुमार भसीन साहब मौजूद हैं, जो जोनल हेड हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के, और साथ ही साथ अश्विनी राणा जी भी मौजूद हैं जो पुराने बैंकर हैं। आप दोनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र जी आपसे समझना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर से जो युवाओं के लिए एक महीने का विशेष बैंकिंग अभियान शुरू होने जा रहा है, इस अभियान के जरिए युवाओं को बैंकिंग से जोड़ने की आखिर जरूरत क्यों महसूस हुई?
3: या नमस्कार। सो बेसिकली जो 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जो 7 थीम थे, उन थीम में से एक सेकंड थीम था जो बैंकिंग फॉर यूथ करके था, और जो अभी इवन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण मैम ने भी अपने इनॉग्रेटिव सेशन में बोला कि 29% जो पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन हमारी जो कंट्री के है एंड 15-29 ईयर्स ऑफ एज के, तो जो ये लोग UPI इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बैंकिंग को समझते हैं। तो अभी जो हमारे जिस तरह के 7 मुद्दे भी हैं और जिस तरह बैंकिंग कंसोलिडेशन करके मेन पर्पज था कि 4 बड़े बैंक हो, और इवन प्रधानमंत्री ने भी इंडिपेंडेंस डे के उसमें कहा कि उसमें से एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो टॉप 5 ग्लोबल में आए, तो उस

0: मुद्दों को लेते हुए देखा जाए तो ये कि यंग जो जनरेशन है जो बैंकिंग को समझती है और बैंकिंग प्रोडक्ट को लाती है, तो इसीलिए ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 2 अक्टूबर से जो एक यूथ कैंपेन दैट इज अ बैंकिंग फॉर यूथ करके लाया जाए। और अभी पब्लिक सेक्टर बैंक को जरूरत है कि हम वापस कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज और स्किल सेंटर में जाएं जहां पे वहां के लोगों को बच्चों को यंग जो आप कह रहे हैं कि जेन जी इनको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाए। हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑलरेडी कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं एम्प्लॉयज हैं, तो उससे एक नया लाइफ साइकिल अप्रोच जो हम अभी देख रहे थे कस्टमर का, हम सोचते हैं कि जब से वो खाता खोलता है लाइफ साइकिल अप्रोच, बट अब लाइफ साइकिल की जगह हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की जरूरत है कि ताकि ये कैंपेन का भी यही फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स सेवी हैं यंग पीपल, और 66% यूपीआई ट्रांजेक्शन जो 18 से 29 साल के बच्चे, क्योंकि ये मोबाइल बैंकिंग और ये बैंक में कम विजिट करते हैं तो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, तो इसी को ये सोचते हुए कि यूपीआई और इन बैंकिंग प्रोडक्ट्स को बढ़ाते हुए, और मेनली जो हमारा विकसित भारत 2047 का भी यही है कि स्ट्रॉन्ग बैंक बने, बड़े बैंक बने, और इसीलिए अगर देखा जाए तो इसके लिए हमें यंग जनरेशन जो आज खाता ही नहीं और अदर तरह के क्रेडिट ट्रांजैक्शन में यूज करे, तो ये पर्पस है जिससे मतलब एक नया वेव बैंकिंग इंडस्ट्री में आएगा।
1: बिल्कुल अश्विनी जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आपने एक लंबा समय दिया है बैंकिंग व्यवस्था को, तो 16 साल से ऊपर के युवाओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए बैंक जमीनी स्तर पर क्या क्या कदम उठाएंगे, क्या चुनौतियां हैं, और क्या आप एक कमी देखते हैं जो बैंकों की तरफ से युवाओं को आकर्षित करने के लिए अभी है और उसे आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा?
2: देखिए, एक अच्छा है कि भाई सरकार युवाओं को बैंकिंग के साथ जोड़ने की बात कर रही है। जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि भाई बैंकों के साथ युवाओं को आज जोड़ने की जरूरत नहीं है, उनको जोड़ना चाहिए था स्कूल टाइम से। स्कूल में जब बच्चा एंटर होता है उसी समय उसका अकाउंट खुले, उसकी जो फीस है उसी अकाउंट में से चली जाए, तो उसको एक फीलिंग आती है कि मैं पर्सनल बैंकिंग कर रहा हूँ। और आज का जो युवा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहले बैंकिंग थी क्या, बैंकिंग विद स्माइल। आज क्योंकि वो बैंक जाता ही नहीं है, बहुत ऐसे युवा हैं कि खाता खोलने से 10-10 साल हो गए, वो बैंक कभी नहीं गए, वो सिर्फ ऐप से ही। लेकिन सरकारी बैंकों को उस जो जनरेशन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो जो एप्स हैं या टेक्नोलॉजी है उसको आज के युग में लाना पड़ेगा। प्राइवेट बैंक उसमें बहुत पहले से हैं, तो इसलिए बैंकों को उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्व करना होगा, और उसके लिए वैसी ही आपको ह्यूमन कैपिटल HR जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, वो वैसे ही चाहिए। मशीनें सिर्फ नहीं काम कर सकती, ह्यूमन कैपिटल का भी टच बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, तो मशीनें काम नहीं कर सकती और एक बैंकिंग व्यवस्था में ऐसे काम करने वाले लोग होने चाहिए जो जेन ज़ी कहें या जो उनके कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी बातों को समझें और उनकी उम्मीदों पर खरे भी उतरे। नरेंद्र जी, सरकार युवाओं के लिए एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की भी बात कर रही है, ये इसकी रूपरेखा किस तरह की हो सकती है, और खासतौर पर युवाओं की अगर हम बात की जाए तो उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं इसके जरिए?
0: देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि अश्विनी जी ने सही बोला कि राइट फ्रॉम स्कूल डेज से अगर बच्चों को बैंकिंग, तो यही थीम इस जो अपना कैंपेन है कि कैंपस टू कैरियर, जो स्कूल से कैरियर और कैंपस टू कैरियर। और जो आज का जो यंग जनरेशन है वो जैसे हमारे फॉर्म्स हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स हैं, लंबे लंबे फॉर्म में साइन करना, क्रेडिट, अब ये जो बच्चे आज के जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में इनमें आइडियाज होंगे, और ये यंग बच्चे एंटरप्रेन्योर और बिजनेस, अब उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर यंग चाहे उसका कोई क्रेडिट तो हिस्ट्री होगी नहीं, ना सिविल होगी कि पहली बार लोन रहे, तो इसलिए हमें डॉक्यूमेंटेशन और क्रेडिट कोलेटरल से उनके आइडियाज, उनके कैश फ्लो, जो उनके उस चीजों को देखना पड़ेगा। और मेनली ये कि इस कॉन्फ्रेंस का जो यंग जनरेशन का एक नया इनिशिएटिव लिया जो है, और उसी से ये है कि आगे नए नए आइडियाज आएंगे, तो जो अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमें जाना है ग्लोबली, तो यंग, क्योंकि हमारे कस्टमर भी यंग जनरेशन है, तो यंग प्रोडक्ट है, और जैसे अश्विनी सर ने बोला कि अब कस्टमर आता नहीं है बैंक, तो कस्टमर आएगा नहीं, तो ह्यूमन टच, और पर ह्यूमन टच बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल ही रहेगी, क्योंकि ह्यूमन जहां बैंकिंग है या कस्टमर है, दोनों ह्यूमन बीइंग है। तो इसलिए यंग जनरेशन को कैसे अट्रैक्ट करना है थ्रू मोबाइल, थ्रू इवन सीधर मैम ने ये भी बोला कि उसमें अट्रैक्ट करने के लिए जैसे हम लाइफ स्टाइल वोचर्स देते हैं या रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं, वेलनेस है, तो इन चीजों को सारे नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, अट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि यंग जनरेशन जो कल का जो हमारा फ्यूचर है बैंकिंग का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके।
1: बिल्कुल, ताकि भविष्य सुदृढ़ रहे, उस दिशा में कोशिश की जाएगी। अश्विनी, एक बड़ी चुनौती ये है कि आज का यूथ इंटरनेट पे रहता है, तमाम सोशल मीडिया एप्स पर रहता है, और उसके जरिए कहा जाए तो फायदा होने के बजाय कई मौकों पे नुकसान भी हो जाता है, युवा गुमराह हो जाता है, और वो तमाम अलग अलग एप्स जिनके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं होते हैं वहां से भी वो लोन ले लेता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि फॉर्मल जो बैंकिंग

0: व्यवस्था से उसे जोड़ दिया जाएगा तो युवा चाहे पढ़ाई की बात हो, नौकरी की बात हो, बिजनेस की बात हो या निवेश जैसे अलग अलग वित्तीय फैसले हो, उन जरूरतों को इन बैंकों के जरिए पूरा किया जा सकता है।
1: नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है और उनके पास लिक्विडिटी भी है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि भाई उनको फंड्स की प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो। बस ये है कि भाई उसके अंदर उनकी समय के अनुसार अपने आप में बदलाव, ये जरूरी है। और जहां तक आप ऐप की बात कर रहे हैं, ऐप के लिए सरकार को एक बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा जैसे और चीजों के लिए उठाते हैं, मेटा है या दूसरी कोई भी एजेंसी जो भी प्लेटफॉर्म है, कि भाई इस तरह की ऐड आती ही क्यों है। अब मैं बता रहा हूं आपको, बैंक वाले कोई पेंशनर का कार्ड इश्यू नहीं करते, लेकिन आप देखेंगे फेसबुक पर हर बैंक की ऐड आ रही है कि आप जो है पेंशनर हैं तो आप इस बैंक का अपने पेंशन कार्ड बनवा लीजिए, और लोन लेने की और इतने भ्रामक प्रचार हैं उसके ऊपर सरकार को सख्त कानून बना के ताकि लोग उसमें ट्रैप ना हो जाए। भाई पढ़ा लिखा युवक तो समझ जाएगा, लेकिन जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे भी बहुत युवक हैं, वो उस झांसे में ना आए, वो भी हमारी बैंकों की और सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, तो हाल ही में सरकार ने तमाम ऐसे ऐप्स को बैन किया है और इस तरह के ऐड भी बैन किए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इन नियम कानूनों को और सख्त किया जाए। नरेंद्र जी, इस दो दिनों के मंथन की अगर हम कहें तो उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्या बैंक सिर्फ इस नई व्यवस्था के जरिए खाता खोलने पर ही उनका फोकस रहेगा, या युवाओं को लंबे समय तक अपने साथ जोड़ने की भी कोई फुल प्रूफ एक योजना, एक प्लानिंग की जा सकती है इसके जरिए?
2: नहीं, कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने बताया कि 7 थीम थे, 7 मुद्दे थे इसमें, जिसमें डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पहला मुद्दा था, जिसमें जो कि बैंक के लिए कासा और एफडी वगैरह जो होता है उसी के बेस पे और क्रेडिट होता है। सेकंड जो बैंकिंग फॉर यूथ था, फिर इन्वेस्टमेंट साइकिल, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो कि इंटरनेशनल की तरफ जाना है तो हमें बड़े बड़े एग्रीकल्चर पे फोकस तो है ही, और इवन क्रेडिट कार्ड बिजनेस को भी रिवैम्प करेंगे नए तरीके से, और फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो सभी जो मुद्दों का यही था कि इसमें अब एक्शनेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए और पीपल सेंट्रिक आउटकम, मतलब कि जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली आपने देखा होगा बजट फरवरी में एक हाई पावर कमेटी बैंकिंग के लिए एक बनाने की जो हुई थी, तो बेसिकली उसी का अनाउंसमेंट इवन फाइनेंस मिनिस्टर इनॉग्रेशन बोला कि आजकल में अनाउंस हो जाएगा, और उसी के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें 125 एमडी सीएमडी बड़े बड़े लोग आए, जो यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ दो दिन का, वो एक मटीरियल रेडी हो रहा है जो मटीरियल उस कमेटी को प्रेजेंट किया जाएगा। तो मेनली उसमें से यूथ का, जैसे आपने बताया कि यही था, एफएम का भी था कि यूथ को हमें जल्दी कैप्चर करना पड़ा, ये नहीं कि हम उनको वेट करना है कि जब उनकी जॉब लग जाए या फर्स्ट सैलरी अकाउंट खोले। और जैसे अच्छे ने बताया कि बैंकिंग के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, राइट फ्रॉम द एजुकेशन लोन से लेके स्किल डेवलपमेंट, आजकल अप्रेंटिसशिप भी आ रही है, इंटर्नशिप्स भी स्टूडेंट को दिया जाए ताकि उनको यंग कस्टमर को एजुकेशन, फाइनेंस से लेके फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, पहला क्रेडिट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट, ताकि वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा सके। और पब्लिक सेक्टर बैंक का जैसे ऑलरेडी हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस है, हमारे पास एजुकेशन लोन है, तो इसी तरह एक रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट करके जो यंग कस्टमर को अ कस्टमर फॉर लाइफ, हमेशा के लिए, ताकि हम जिसे हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कहते हैं, ताकि उनको एक्वायर करके और उनको एक अगर जॉब्स मिलती हैं तो नया रोजगार बनता है, बिजनेस डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए कैच दीज पीपल यंग जो है, वही हमारा मुद्दा है इसमें, और इसी के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि जितना जल्दी हम यूथ को एंगेज करेंगे उतना ही वो रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे, और जब उनको सेविंग के हैबिट्स पता चल जाए, एफडीज वगैरह या अदर देन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, तो उनको अलग अलग इन्वेस्टमेंट के पैटर्न पता चल जाएंगे। तो इसलिए कि स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल जर्नी उनको जितना जल्दी हम फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में ले आए वो हमारे लिए भी फायदा, और बेसिकली ये जितने भी हमारे साथ जो दो दिन डिस्कशन हुआ बेसिकली वही है कि कोलैबोरेशन है और अपना कस्टमर वेलफेयर के ऊपर फोकस है और एक ट्रस्ट के ऊपर, क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी इनके ऊपर भी डिस्कशन था कि जितना जितना सेफ बैंकिंग हम इसको करेंगे, तो डाटा एनालिटिक्स की बातें भी थी। तो ये सारे जितने भी मुद्दे आइडियाज हैं इनको अब फॉर्मली करके जो हाई कमेटी उसके आगे प्रेजेंट करके आगे ले जाया जाएगा।
0: दूसरे दिन के इस कॉन्फ्रेंस में जो चर्चा हुई थी वो जो थीम थी उसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वैल्यू चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर बात हुई, साथ ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात की गई। खासतौर पर ये वो कर्ज होते हैं जिसके तहत किसानों को, छोटे कारोबारियों को और कमजोर वर्ग को कर्ज दिया जाता है। तो आप आज के दौर में इस तरह के कर्ज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या देखते हैं जो आने वाले दिनों में इस कॉन्फ्रेंस के बाद बैंक दूर कर सकते हैं?
2: प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में वो ये कि जो हम लोन वगैरह देते हैं उसका फिर अभी एनपीए तो काफी हमारा रिजॉल्व हो गया जो 14.6 से 0.39 आ गया। अब प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग हो गया एग्रीकल्चर फार्मिंग, उसमें बेसिकली रिकवरी और क्रेडिट मॉनिटरिंग का ज्यादा फोकस रहता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में इसका भी फोकस भी गया कि एसेट क्वालिटी तो इम्प्रूव हुई।

0: ये हमारी सब्सटेंशियली, और एसेट क्वालिटी को फर्दर, अब ये हमारा कि फोकस ज्यादा कि नंबर और टारगेट पे नहीं होना चाहिए कितने लोन करने हैं हमें, क्वालिटी लोन होने चाहिए ताकि जिस पर्पस के लिए, और फिर फॉलो अप रिकवरी और मॉनिटरिंग जो सबसे जो मेन रीजन रहता है कि एनपीके हो जाता है कि हम लोन तो दे देते हैं पर उसके बाद मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, रिकवरी नहीं हो पाती। तो इसी कॉन्फ्रेंस का ये कि इसको और लोगों को, और ये नहीं कि जब किसान या जो भी प्राइवेट सेक्टर अप्रोच करे तो बैंक को भी टाइम टू टाइम असेसमेंट करना पड़ेगा कितना कब कब उसको लोन चाहिए या आगे उसको फर्दर ग्रोथ करना है। तो रोल काफी चेंज होने वाला है बैंकिंग का, जो क्रेडिट मॉनिटरिंग था कि एनपीए को अब एक बार कम हो गया ये नहीं कि दोबारा हो जाए, तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए फॉलो अप और थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच उसमें लानी पड़ेगी।
1: बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच लानी पड़ेगी, बैंकिंग काफी बदल गई है। तो अश्विनी जी आपसे ये समझना चाहेंगे, इसी सवाल का एक एक्सटेंशन कहें तो, सरकार ने बैंकों से कहा है कि कर्ज देने के अपने लक्ष्य में किसी भी तरह की कमी ना रहने दे, तो इसे सुनिश्चित करने की अगर हम बात करें तो बैंक अपने अंदर क्या बदलाव करेंगे, क्योंकि ब्रांच पहले से है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है, अब एक सिर्फ अप्रोच को बदलने की जरूरत है, तो वहां क्या बदलाव आप देखते हैं होगा आने वाले दिनों में?
2: आपने सिर्फ लोन ही नहीं देना, लोन देने के बाद उसकी फॉलो अप प्रॉपर यूज हो रहा है, उसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, रिकवरी है, वो चीजें भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए टारगेट ज्यादा ना फिक्स करके उसको इनिशिएट करके कि भाई हाँ भाई ज्यादातर तो लोगों तक वो पहुंचे, वो एक बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस, मुझे लगता है जैसे आपने एक हाउसिंग लोन के लिए, कार लोन के लिए कुछ अलग अलग ब्रांचेस स्पेसिफिक बना दी, वैसे इनके लिए आपको स्पेसिफिक ब्रांचे और उस तरह का जो स्टाफ है वो भी रखना पड़ेगा। अब आप एक देखिए, आज गोल्ड लोन कितना पॉपुलर है, गोल्ड लोन बैंक भी करना चाहते हैं, आप उसके लिए स्पेसिफिक ब्रांचें बना दीजिए, तो उससे क्या होगा, वो उस ब्रांच के अंदर उसका जो उसको स्कैन करने का कि गोल्ड ओरिजिनल है वो भी रहेगा, गोल्ड को सिक्योरिटी के तरीके से भी। तो यानी हर, अब एग्रीकल्चर जो लोन है वो हर ब्रांच में तो नहीं हो सकता, तो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपको उस तरह की वर्क फोर्स भी एडिशनल डालनी पड़ेगी अगर वहाँ आप कोई चीज को अचीव करना चाहते, तो वो एक बहुत जरूरी है। और दूसरा, जैसे डिपॉजिट की बात, मोबिलाइजेशन की, हम यंगस्टर को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आज यंगस्टर की आदत क्या है, बाय टुडे पे टुमारो, तो वो डिपॉजिट की बात ही नहीं सोचता। तो आपको डिपॉजिट का कोई ऐसा अट्रैक्टिव प्लान लाना पड़ेगा ताकि वो अट्रैक्ट हो, पुराने एफडी और सेविंग से वो आपके पास, और डिपॉजिट के बिना बैंकिंग नहीं हो सकती भाई, आपके पास अगर फंड्स नहीं है तो आप फाइनेंस कहाँ से करो। तो आपको जो डिपॉजिट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उन जेंजी के अकॉर्डिंगली आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आप वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन भी कर सकते
1: हैं जी। और एक जो क्रेडिट कार्ड को लेकर के और एक क्रेडिट व्यवस्था को लेकर के भी खास अहम चर्चा हुई है, एक थीम थी, उसको लेके आपका अश्विनी जी क्या कहना है कि वो कितना जरूरी रहेगा आज के माहौल में, खासतौर पर युवाओं की बात करें तो?
2: उनकी एक सोच है बाय टुडे पे टुमारो, तो वो उनके लिए क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब बैंकों के लिए भी, क्योंकि वो एक टारगेट है उनके लिए, लेकिन उसके अंदर भी आपको देखना पड़ेगा कि वो उसको प्रॉपरली यूज कर रहे हैं और उसकी रिपेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे बैंकों का जो एनपीए है या वो क्रेडिट के कार्ड के कारण ही है, क्योंकि वो उस तरह उसकी आप सर्विस नहीं कर पाते उसको देने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, अब नए भी फिर आप ले आएंगे, तो क्रेडिट कार्ड क्योंकि वो विदाउट एनी सिक्योर लोन नहीं है वो, तो उसको आप किसको दे रहे हैं। अब आप देखिए कि मेट्रो स्टेशन पर भी क्रेडिट कार्ड बांट रहे होते हैं, अरे भाई उसकी क्रेडिबिलिटी तो हो कि भाई वो पे कर सके, जितनी उसकी लिमिट बना रहे हो उसकी सैलरी तो इतनी हो, तो उसको भी आपको सारी चीजों को फोकस करके उसको जो है प्रमोट और करने की जरूरत है,
1: यानी कस्टमर स्पेसिफिक लिमिट और इन सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए उसको दिया जाएगा, तो एक तरह से एनपीए पे कहें
2: काम। हाँ भाई, सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड हमने इतने दे दिए, आप किन को दे रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
1: बिल्कुल, आंकड़े बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। नरेंद्र जी, जिस तरह से डिजिटल व्यवस्था तेजी से बढ़ रही है बैंकिंग सेक्टर में, उसके साथ ही साथ साइबर फ्रॉड भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है, तो ग्राहकों को और उनके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या लगता है बैंकों की तरफ से किन नए प्रयासों की जरूरत है?
0: नहीं, ऑलरेडी इसमें काफी बैंकों ने भी, इवन गवर्नमेंट में भी, और काफी अवेयरनेस है, और साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस, इवन आरबीआई का भी आपने देखा, आरबीआई कहता है उनके वेबसाइट में, और इवन डिजिटली, तो क्योंकि आपकी बात सही है कि एक तरह हम कह रहे हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, यूपीआई बढ़ रहा है, पर उधर से साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं और तरह तरह के फ्रॉड आ रहे हैं, लाइक हमने फिशिंग है, विशिंग, ईमेल से भी ओटीपी आ गया, तो अवेयरनेस का काफी बैंक्स भी, हर बैंक अपने देखा गया, आईबीएम में हमने अभी रिसेंटली एक बैंक का ट्रेनिंग किया, तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग से पहले 15 मिनट एक साइबर के ऊपर की टाइप्स साइबर डूज एंड डोंट की कैसे, तो कस्टमर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट, डिजिटल रिस्क जैसे

0: साइबर हर पुलिस स्टेशन में, साइबर पुलिस स्टेशन भी जहाँ पे हेल्प है कॉल कर सकते हैं आप इमीडिएटली। आप जो वेबसाइट है हेल्पलाइन साइबर सिक्योरिटी के 1930 और ये www. ये साइबर, तो साइबर सुरक्षा कवच में वहाँ जाके अपना आधार कार्ड और नंबर लोड कीजिए, और जो भी आपका कोई स्कैम या फेसबुक या जो भी इंस्टाग्राम हैक हुआ है तो इसमें आजकल काफ़ी फास्टली, और ये कि आपको जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी उसका समाधान मिलेगा।
1: तो अश्विनी जी, आम ग्राहकों को इसने किस तरह से भागीदारी देनी चाहिए कि वो एक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए साइबर ट्रैप में ना आए?
2: ग्राहकों को तो निश्चित रूप से क्या है कि जो जो गाइडलाइंस बैंक जो हैं इश्यू करते हैं टाइम टू टाइम, भाई किस तरह के, अब जैसे SMS है तो SMS मतलब किसी बैंक के नाम का आया है अगर, और उसके आगे S लगाए तो ही वो जेन्युइन बैंक का मैसेज है, अदरवाइज अगर उसमें लास्ट एक S अल्फाबेट नहीं है तो वो नहीं है। दूसरा, उसकी जो वेबसाइट है उस पे भी आप जाते हो या मेल है bank.in, बैंकों की आज एक ऑथेंटिकेटेड मेल है, उसके अलावा किसी को नहीं। कहीं से भी फोन आता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, कोई मैसेज आता है विदाउट एस आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, तो ही बच सकते हैं। उसके साथ साथ बैंकों को भी डाटा सिक्योरिटी के लिए अभी बहुत सारी चीजें RBI कर रहा है, म्यूल हंटर उन्होंने एक ऐप बना दिया, लेकिन वो म्यूल हंटर ऐप तब काम करता है जब वो फ्रॉड हो चुका होता है, उससे पहले वो अकाउंट, क्योंकि अकाउंट तो एक ऑर्डिनरी अकाउंट है, वो कब म्यूल अकाउंट बनता है जब फ्रॉड और उसमें पैसा आ जाता है। तो उसको भी जो बैंकों का जो टेक्नोलॉजी है उसको भी और जो है अपग्रेड करने की जरूरत है कि भाई कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो फ्रिक्वेंटली हो रही है, क्योंकि ब्रांच में बैठा, कई बार लोग कहते हैं कि ब्रांच मैनेजर जिम्मेवार है, ब्रांच मैनेजर को पता ही नहीं, क्योंकि सारा कुछ सेंट्रल सर्वर से जो ट्रांजेक्शन है वो मूव होती हैं, तो वहां पर इतनी ज्यादा उसको आपको अवेयरनेस चाहिए कि वो आपके पास वो टेक्नोलॉजी चाहिए, वैसे स्टाफ चाहिए। अब बैंक में क्या है कि बैंक में जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं उनको भी आप जनरल इम्प्लाई की तरह ट्रांसफर कर देते हो, जो एक ट्रेंड होता है, तो कम से कम जो टेक्नोलॉजी और के साथ लोग हैं वो रेगुलर उस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में रहें ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो काम आ सके। उनको जनरल बैंकर इम्प्लाई मत समझिए, तभी जाके आप कर सकते हैं, नहीं तो नए नए लोगों को लाते रहेंगे क्योंकि आप उसको आउटसोर्स भी नहीं कर सकते। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो, और दूसरा ये जो सारी चीजें आई है, जो बात वहां पर हुई है बहुत अच्छी है, और जब ये हाई पावर कमेटी बनेगी तो मेरा ये सुझाव है हाई पावर कमेटी को अलग अलग ग्राउंड रियलिटी के लोगों से बात करके उसके अंदर बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी भी जानना उस कमेटी के लिए बहुत जरूरी है।
1: नरेंद्र जी, 2 दिन की बैठक में 7 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, तो अब इन चर्चाओं को जमीन पर लागू करने के लिए अगला कदम बैंकों की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या होगा?
0: सरकार का यही मैंने बताया कि जो जितने भी डिस्कशन हुए, तो जैसे FM ने बोला कि जितना भी मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा होगा उसी सारे मुद्दों को एक कंसोलिडेट करके जो अब नेक्स्ट जो मीटिंग होगी, जो हमारा बेसिकली इन 7 दिनों का जो अब निचोड़ देखें तो बेसिकली वही है कि टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के ऊपर बात हुई, कस्टमर सेंट्रिसिटी क्या रहेगा, कि अल्टीमेटली देखो डिजिटल हो या साइबर सिक्योरिटी से बचाना तो मेनली कस्टमर सेंट्रिसिटी और कस्टमर इम्प्रूवमेंट के ऊपर ही है। तो कोलैबोरेशन मैसेज है यहाँ पे, कॉमन मैसेज की IT और डिजिटल ये सबको एक, और मेनली डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, तो जैसे अश्विनी सर ने बोला कि बैंक के लिए इम्पोर्टेंट है उसी के बेस पे, और यूथ बैंकिंग को जो हम ऐड करेंगे तो उससे हमारा जो एक नया वेव उसमें आ जाएगा। और बट अल्टीमेटली देखा जाए तो क्वेश्चन यही उठेगा कि पब्लिक सेक्टर नंबर ऑफ ब्रांचेज है, उनका स्केल काफी बड़ा है टेक्नोलॉजी, और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो ये कि अब हम लार्जर बैलेंस शीट्स के ऊपर तो फोकस धीरे धीरे हमारा मूव हो रहा है, तो और बैंक्स को थोड़ा एजाइल होना पड़ेगा, थोड़ा डिजिटल के साथ सेफ एंड सिक्योर, और नेक्स्ट जो इंडिया का नेक्स्ट फेस ऑफ ग्रोथ इसी के ऊपर है, क्योंकि अगर हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो अगर हमें बड़े बैंक बनाने हैं विद बेस्ट कस्टमर सर्विस, बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट, तो आई थिंक ये नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि जो भी यहाँ पे 2 दिन के डिस्कशन हुए पावर कमेटी के लिए ऐसा मटेरियल बनेगा, और जैसे अश्विन सर ने कहा कि डाउन द लाइन रियलिटी से जरूर जुड़ी है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आम कस्टमर होता है वहां तक उसको बेनिफिट नहीं पहुंच पाता, तो दैट इज इम्पोर्टेंट है। और जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो बैंकर कस्टमर के पास पहुंचता है, मतलब डोरस्टेप बैंकिंग है, तो वहां पब्लिक सेक्टर बैंक में भी थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं कि वेट करना कि कस्टमर ब्रांच में आए, तो हम एज अ बैंकर ऑल्सो वी कैन कस्टमर को वहां पे अवेयरनेस है और ऑन द स्पॉट डेमोन्स्ट्रेट करके चीजें बतानी ज्यादा जरूरी होंगी।
1: लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि हालांकि निजी बैंक की तरफ से भी अच्छा काम हो रहा है और सरकारी बैंक की तरफ से, लेकिन सरकारी बैंक का जब

0: दायरा बढ़ेगा तो लोगों का बैंकिंग व्यवस्था की तरफ भरोसा भी और ज्यादा मजबूत होगा, ये भी इस पहल के जरिए देखने को मिलेगा।
1: हाँ देखिए, दोनों ही क्योंकि पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसमें, और प्राइवेट सेक्टर ने जो एक नया यंग जनरेशन और इनके प्रोडक्ट्स, और क्योंकि वहां पे है कि स्टाफ भी यंग है कस्टमर भी यंग है तो एक माइंडसेट और वो बात होती है। बट आई थिंक दोनों को मिलकर ही प्राइवेट सेक्टर बैंक तो रहे ही है क्योंकि जितने भी हमारे सरकारी बैंक है 100 साल 118 साल कोई 120 तो वो तो हमारा रहेगा, बट जब दोनों साथ में काम करेंगे तो नेचुरली ग्रोथ तो उसमें आएगा बैंकिंग।
0: एक अहम बदलाव अगर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस के बाद में, तो क्या बैंकिंग सेवा में किस तरह का बदलाव हमें दिखेगा आने वाले दिनों में?
1: बदलाव देखिए, अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काफी मुद्दा इसमें रहा क्योंकि डिजिटली जितना अब हम डाटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो अभी ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अब रुकेगा नहीं ये, क्योंकि अभी अगर 30 साल पहले देखा जाए तो मैनुअल बैंकिंग से हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल है तो फिर यंग जनरेशन है, तो अगर उस दोनों को देखा जाए तो डिजिटल बैंकिंग अब धीरे धीरे बढ़ेगी और उसको कैसे हम सिक्योर कर सकते, इसलिए साइबर सिक्योरिटी जो डिफरेंट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ईमेल क्वेश्चनर है, अवेयरनेस है, तो डिजिटल तो हमारा फ्यूचर है। इवन फॉर्मर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी एक लास्ट कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई फ्यूचर इज मनी इज नाउ डिजिटल ही है, उसके बैक नहीं जा सकते हम, तो सीबीडीटी है या डिजिटल करेंसी या आरटीजीएस, यही हमारे ऐसे है जो अब डायरेक्टली धीरे धीरे बैंकिंग का बेस बनेंगे।
0: अश्विन जी, 2047 तक सरकार भारत को एक विकसित देश बनाने की बात कर रही है, तो इस लक्ष्य में आप सरकारी बैंकों की सबसे बड़ी भूमिका क्या देखते हैं?
2: देखिए, सरकारी बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है क्योंकि सरकारी बैंक जो है उनका एक जो कस्टमर बेस है वो भी एक वाइड है, और वहीं प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास को जो है सर्व करते हैं, तो यहाँ पर और उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। और उसके अंदर मैं बार बार इसलिए ये कहता हूँ कि अब जैसे आप कह रहे हैं कि यूथ को अट्रैक्ट करना है, 2 अक्टूबर से कर रहे हैं, तो अब यूथ को अप्रोच करने के लिए वैसा ही माइंडसेट चाहिए। अगर आप उस माइंडसेट के साथ जाएंगे, उस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे, उस झील के साथ जाएंगे जो उनसे बात कर सकता है, तभी आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। उसके लिए वैसा आपका माइंडसेट चाहिए और वैसे ही आपके पास वर्क फोर्स भी चाहिए।
0: नंदा जी, जो एक नए तरह के वर्क फोर्स और नए स्वरूप की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है क्या नए प्रोडक्ट्स बैंक लेकर के आ सकते हैं? क्योंकि आप लोगों ने एक लंबा दौर देखा है बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव का। पहले बैंक सिर्फ कैश जमा करने और देने का काम करते थे, फिर वहां पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की भी एंट्री होती है और अब उसका स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है क्या नए तरह के प्रोडक्ट, किस तरह के प्रोडक्ट्स दिखाई दे सकते हैं जो लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो?
1: देखिए, बैंकिंग प्रोडक्ट्स अगर इस पर आरबीआई देखे तो हमारे वो ट्रेडिशनल वही है, सेविंग है, करंट है या फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, बट अभी जो यूथ जो अगेन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है यंग जनरेशन, क्योंकि डिपॉजिट में अगर हम 3-4% की बात करें या 6-7% की, तो वो फिर यंग जनरेशन रिस्क थोड़ा ज्यादा ले सकते, तो इसलिए मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में जाते हैं, तो वहां पे इनको अपना म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, अब बैंक्स के कई बैंक्स ने टाइप भी किया हुआ है कि म्यूचुअल फंड हो गए आपके, यूलिप प्रोडक्ट या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जहाँ की थोड़ा सा रिस्क है बट उसके साथ जो यंग जनरेशन है या जो नया कस्टमर हमारा जो बैंकिंग में आएगा उनको थोड़ा सा मार्केट के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करने का, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट, तो बेसिकली न्यू प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जैसे यूनिट लिंक इंश्योरेंस या एफडी के साथ है, या आप जैसे रेकरिंग डिपॉजिट की जगह अब सिप्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, हर महीने आप 1000 करते हैं, वो मार्केट के उतार चढ़ाव देखते रहे अल्टीमेटली, तो ये है कि अब जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है बैंकिंग कस्टमर भी, यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि डिपॉजिट पे अब कस्टमर कम होते जा रहे हैं बिकॉज लोग म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या यूनिट लिंक इंश्योरेंस या इन चीजों के ऊपर, तो यहाँ भी कुछ कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ेंगे, कॉम्बो प्रोडक्ट जैसे कह सकते हैं, जैसे अब जनरल इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, पीपीएफ वगैरह, तो अब हर तरह का उसमें एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बनाना पड़ेगा। अब जो आज का जो बैंकर है वो खाली बैंकर नहीं है, अब कस्टमर के साथ वेल्थ क्रिएशन है कि अगर 1,00,000 रुपया देता है तो उसको कैसे डिवाइड करेगा, तो अब थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानर के रूप में बैंकर को बनाना पड़ेगा यंग जन पीपल को, क्योंकि जब जैसे जैसे एज यंग होते हैं तो लोग रिस्क है, उसके बाद फिर हमारे पास पेंशन प्लान है, तो एक बार जो कस्टमर अकाउंट खोलता है यंग जनरेशन एजुकेशन लोन से लेके सैलरी अकाउंट से धीरे धीरे फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, तो इन्हीं कॉम्बो प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाना पड़ेगा जो अट्रैक्टिव हो या जिनको उनको लगे कि यस उनके बैंक के साथ जुड़ा रहेगा तो आगे उसको। और बेसिकली अगेन पब्लिक सेक्टर बैंक नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारे पास काफी हैं, हमारा रीच काफी है, तो इन्हीं को देखते हुए अगर ट्रस्ट है बैंक के ऊपर और हमारा रीच है तो मॉडर्न बैंकिंग का कि ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंस्टीट्यूशन बन सकता है। और यही हमारा 2017 का मुद्दा भी है कि हमें टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट बैंक्स बनाने।
0: और एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे ये भी चाहेंगे कि एक तरह से फाइनेंशियल हिस्ट्री भी एक यंग एज से देश के लोगों की तैयार होने जा रही है, तो उससे किस तरह के फायदे लोगों को मिलेंगे?
1: फायदे तो देखिए, जितना जल्दी अगर हम बैंकिंग से जुड़ते हैं, जितना जल्दी हम अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उतना ही फायदा होता है। तो इसीलिए मैडम ने बोला कि सीता मैम ने कि हम कॉलेजेस में जाएंगे, वहां पे बच्चों के हैबिट्स बनाएंगे, सेविंग्स वगैरह होगा, तो धीरे धीरे उनका बैंकिंग इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो इसी ये नए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, प्लस डिजिटल है और थ्रू डाटा एनालिटिक्स हम जो क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग करते हैं, तो इन सबको इकट्ठा लेके चलेंगे तो आई थिंक हमारा डिपॉजिट भी बढ़ेंगे और एक जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन और सभी के जितने सभी का खाता हो, जितने लोग बैंकिंग में आएंगे और उतना ही प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे।
0: आपसे भी एक सवाल का जल्दी से आप चाहेंगे कि अगर इस कॉन्फ्लुएंस का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा बताना हो जो आम लोगों, युवाओं और किसानों के लिए सीधे फायदेमंद हो, तो वो क्या होगा?
2: वो ये है कि बैंकिंग को 2047 में किस रूप में हम देखना चाहते हैं, मतलब वो सभी जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे यूथ है, चाहे एग्रीकल्चर है, ट्रेडर है, एमएसएमई है, सबकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए और सबको सर्व करने वाला बैंक चाहिए। तो वो दोनों तरफ से है, मतलब वैसा ही आपको कस्टमर बेस चाहिए और वैसा ही ये चाहिए।
0: बिल्कुल, तो अब देखना होगा सरकारी बैंक या तमाम बैंकिंग व्यवस्था इन चीजों को किस तरह से अमलीजामा पहनाती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
5: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
4: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुम्मीडी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने आज नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है।

0: अमेरिकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री घोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमेरिकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। और खेलों में भारत ने गोल में दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन का से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर ऑल आउट हो गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके थे, वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और नीदरलैंड्स के अम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरलम, माहे और तमिलनाडु में कल गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Union Cabinet today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31. The proposed projects will enhance connectivity to approximately 6,448 villages with a population of about 60 lakhs, improve rail access to major tourist destinations and strengthen the transport of key commodities including coal, iron ore, cement, steel, containers, automobiles and food grains. Mr. Vaishnav informed that the Cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamari Sonbursa section of National Highway 22 in Bihar to 4-lane standard at a total capital cost of over 3,590 crore rupees.
2: The project is becoming a major lifeline for the entire Bihar. It starts from Sonbursa on the Nepal border and passes through Sitamarhi and Muzaffarpur. It will create a complete transport artery which will benefit Bihar for many years. It is an 83-kilometer brownfield project under which the existing road will be upgraded into a 4-lane highway with an investment of 3,591 crore rupees.
1: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost-effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the 4th edition of the Tunnels and Bridges Conference in New Delhi. He said his ministry would review the existing provisions governing subcontracting of highway works to ensure that contractual requirements are strictly adhered to and that responsibility for quality and timely execution remains clearly with the principal contractor.
2: We need fixed policy.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी के रंग। आशी कलाकार रही मुक्ता वाष्णे, इनकी आवाज़ में आपने सुने ब्रज लोकगीत। हारमोनियम पर संगीति की जाकिर धोलपुरी ने, सितार पर साथ दिया अकील अहमद ने और ढोलक पर रहे गौरव पंत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, वक्त स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम राग रंजन। कलाकार है नीता सूरमा। सुनते हैं राग मिश्र तिलक कामोद में इनका गायन। हारमोनियम पर संगति कर रहे हैं बदलू खां और तबले पर हैं शांति भूषण झा।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत राग रंजन। मीता सूरमा के स्वर में आपने राग मिश्र तिलक में गायन सुना। हारमोनियम पर संगीति की बदलू खाने और तबले पर साथ दिया शांति भूषण झा ने। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 10:59:50 हुए हैं। फिर 11 बजे प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमिडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन, कटक पारादेव की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों की उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर में अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। नीदरलैंड्स के अम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। भारत ने गोल में दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर आउट हो गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट छटके थे। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The Union Cabinet today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said, the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said, with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
3: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the 4th edition of the Tunnels and Bridges Conference in New Delhi. He said his ministry would review the existing provisions governing subcontracting of highway works to ensure that contractual requirements are strictly adhered to and that responsibility for quality and timely execution remains clearly with the principal contractor. US Ambassador to India Sergio Gore today described the Union Territory of Jammu and Kashmir as an important part of India and said the governments at the center and in the region have taken significant steps to improve security in the Union Territory. The US envoy was talking to media after holding a meeting with Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah at his residence in Srinagar. Chief Minister Umar Abdullah said the meeting focused on India-US relations and areas where the United States can engage with Jammu and Kashmir. India's young sensation Ayush Shetty has expressed happiness after securing a second round victory in the men's singles event at the BWF Badminton World Championships in New Delhi. Talking to media, Shetty said it was a comfortable victory and he is happy to move forward in the tournament. The 21-year-old shuttler is the only Indian remaining in the men's singles draw. India's Unnati Hooda today described her match against Canada's Michelle Lee as a good contest and praised her opponent for playing really well. Talking to media, the Indian prodigy said she was happy with the way she played but felt unfortunate that she could not convert her performance into a win. Defence Secretary Rajesh Kumar Singh has concluded his 2-day visit to Armenia. During the visit, he held bilateral meetings with Deputy Defence Minister of Armenia, Karin Brutyon, and First Deputy Defence Minister and Chief of General Staff of Armenia, Edward Azrian. The Defence Ministry said that the discussions covered the entire gamut of ongoing defence and military technical cooperation, with particular emphasis on capacity building, training, military technical cooperation, and defence research and development. It added that the two sides also exchanged the terms of reference for institutionalizing joint services staff talks between the Indian and Armenian armed forces. In hockey, India registered a comprehensive 5-3 victory over arch-rivals Pakistan in the final Pool D encounter of Men's FIH World Cup at Amstelveen in the Netherlands today to qualify for the second round. The defeat ended Pakistan's campaign in the group stage. India registered a commanding 165-run victory over host Sri Lanka in the first test in Galle today to take a 1-0 lead in the two-match series. Sri Lanka, chasing a target of 372 runs for victory, were bowled out for 206 during the post-lunch session on the fifth and final day. Indian left-arm spinner Manav Sutar was the architect of India's victory, taking 6 wickets in the second innings to finish with a maiden 10-wicket match haul in only his second test. And that is the end of this news bulletin.
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, वक्त स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11:10 हुए हैं और ये समय रहता है कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में, जी हाँ, आपकी फरमाइश में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। स्वीकार करें प्यार भरा नमस्कार। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, तेरा इंतजार हूँ मैं।

जी हाँ श्रोताओं, फिल्म आराधना से अभी आपने गीत सुना किशोर कुमार की आवाज़ में और साथ में लता मंगेशकर। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम का पहला गीत आप सभी ने ज़रूर पसंद किया होगा। और इंतज़ार, जी हाँ इंतज़ार आज ख़त्म हुआ आपका और मेरा। बहुत दिनों बाद आप सभी से मुलाकात हो रही कार्यक्रम में और काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था मुझे आपसे बात करने का। इंतज़ार भी कितना अजीब सा शब्द है ना, इसमें बेसब्री भी है और थोड़ा थोड़ा सा दर्द भी होता है और एक अनकही उम्मीद भी होती है। और किसी ने ठीक ही तो कहा है, वो ना आएगा हमें मालूम था इस शाम भी, इंतज़ार उसका मगर कुछ सोच कर करते रहे।

जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में और साथ में आशा भोसले, और ये फिल्म रही हम जोड़ी। कभी कभी हम जानते हैं कि सामने वाले के आने की गुंजाइश जो है ना वो थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी दरवाजे पर टिकी नज़रें हटने का नाम नहीं लेती हैं। ऐसा ही होता है ना इंतज़ार। और वो जो नज़रें हैं ना, साथ साथ ये भी कयास लगा के बैठती हैं कि भाई जो दिल के करीब है बस वो आ जाए। चाय के कप से उठता हुआ धुआं ठंडा पड़ जाता है। मोबाइल के स्क्रीन पर बार बार हम उस लाइट को जलाकर देखते हैं कि शायद कोई पैगाम आया होगा। इंतज़ार सिर्फ किसी इंसान का नहीं होता है, ये किसी पुरानी याद का भी हो सकता है, किसी अधूरे ख्वाब का भी हो सकता है, और या फिर किसी अपने के वापस लौटने का भी हो सकता है। आप जुड़े हुए कार्यक्रम फिल्म संगीत से, और आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ चेतना।

जी हाँ श्रोताओं, वक्त स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11:23 हो चुके हैं और आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से। और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त चेतना। चलते हैं आपके संदेशों की तरफ।

वो हम इंतज़ार की बातें कर रहे थे और इंतज़ार का जो है ना लम्हा आप थोड़ा सा ख़त्म कर देते हैं और चलते हैं आपके संदेशों की तरफ। बेहद खूबसूरत हमारे पास संदेश आया है रश्मि पांड्या का और ये हमें गुजरात से सुनती हैं। रश्मि झरना जी लिखती हैं कि चेतना जी आपको जुल्मी बोलना होगा, कहाँ चली गई थी आप इतनी सारी जुदाई देकर, यूं ना किया करें और छोड़कर ऐसे मत जाया करें, बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज़ कानों में पड़ी तो जान सी आ गई, चेतना आ गई। बहुत बहुत खूबसूरत रश्मि जी, आपके संदेश जो है ना वो मेरा हौसला बढ़ाते हैं। रियासत हुसैन जी ने उत्तराखंड से हमें संदेश भेजा है, साथ में नाजमा रियाज मोहम्मद समरीत माहिरा नूर है और बहुत सारे संदेश हमें रियासत हुसैन जी भेजते हैं। तो जनाब एक संदेश में भी आप अपनी बात लिखकर हमें भेज सकते हैं। जसबीर सिंह जी हमें सुन रहे हैं गांव डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से। जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत, करमजीत कौर और इन्होंने भी कहा है कि किसी भी गीत में हमें शामिल करें। गीतांजलि कारवा जी कार्यक्रम से जुड़ गई हैं, साथ में आकाश और आकांक्षा हैं और ये हमें नगर भीड़ से सुन रहे हैं, फुलाई नगर, शायद मैं इस जगह का नाम ठीक से ले पा रही हूँ। और बाला प्रसाद हैं इनके साथ में। मल्होत्रा, टीडी मल्होत्रा जी हमेशा की तरह कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, चंडीगढ़ से हमें सुनते हैं और इनके साथ साथ प्रकाश वर्मा जी भी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं और निखिल यशस्वी वर्मा हैं इनके साथ में। संदेशों का सिलसिला लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जसबीर सिंह जी ने भी हमें लगातार अपने संदेश भेजे। नवी हसन जी ने अपना आदाब प्यार भरा सलाम हम तक पहुंचाया है। भूषण खेरा जी ने भी अपना सलाम वालेकुम भेजा है फसलिका पंजाब भूषण से। खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु और बहुत सारे लोग हैं इनके साथ फैमिली मेम्बर्स और लिख रहे हैं कि जीवन बुक का जो गीत है वो लता मंगेशकर की आवाज़ में प्ले कर दीजिए और फिल्म मेरा साया से भी गीत को सुनना चाहते हैं, कोशिश ज़रूर करेंगे प्ले करने की। फागुराम यादव जी ने भी अपने गीत के साथ अपने सप्रेम नमस्ते को हम तक पहुंचाया है। सतीश अनेजा जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं और इंद्रप्रस्थ के लिए बेशुमार मोहब्बतें दुआएँ हमेशा रहती हैं इनके साथ में। शुक्रिया आप सभी का संदेश भेजने के लिए। गुरमीत सिंह हमें और मीता जो हैं वो हमें सुनते हैं साउथ एक्सटेंशन से। हम बात कर रहे थे इंतज़ार की और वाकई में जो इंतज़ार है ना वो बहुत खूबसूरत होता है और इंतज़ार जब मोहब्बत में तब्दील हो जाए, जी हाँ, तो उससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती है। भाई इंतज़ार जब तक रहता है जब तक एक आस रहती है और वो मिलने की आस में जो पल पल जो एक समय बीतता है ना वही तो असली इबादत होती है। अगर आप भी आज की रात किसी की राह देख रहे हैं, किसी के जवाब का इंतज़ार ढूंढ रहे हैं तो ये नगमा आप सभी के लिए।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, और अभी आपने की सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, साथ में सुरेश वाडेकर, और फिल्म रही प्यासा सावन। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीत दिया। तेरे आने की क्या उम्मीद थी मुझे, तेरे आने की क्या उम्मीद थी ही, मगर कैसे कह दूं कि इंतज़ार नहीं था। बहुत खूब।

0: है।
1: जी हाँ श्रोताओं, छैला बाबू, ये रही फिल्म लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ में, और इस गीत को लिखा शोमू मुखर्जी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और वाकई में इंतज़ार जो है ना वो ख़त्म हुआ, मेरा भी और आपका भी। बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं जो इंतज़ार कर रहे थे मेरे आने का, और मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार था आज प्रोग्राम में आपके साथ बहुत सारी बातें करने का। नंदकिशोर घाटी जी भी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं और ये हमें अपना संदेश भेजते हैं महाराष्ट्र से, बीड शहर महाराष्ट्र से, और संगीता घटे, अंजलि कारवा, बाला साहेब इनके साथ हैं। इसी के साथ साथ सुदर्शन मुखी जी ने अपना संदेश हम तक पहुंचा है शांति नगर सोनीपत से, अनीता और सिमरन भी हैं इनके साथ में। लिखते हैं कि चेतना जी सादर प्रणाम, कार्यक्रम सुन रहे हैं और मधुर वाणी, मोहक प्रस्तुति और मनपसंद बातें बहुत खूब, और मनभावन गीत, मस्त कार्यक्रम, मन से बड़े वाला थैंक यू और बधाई लिख के भेजा है। आपकी रात्रि और जीवन बहुत मंगलमय हो, शुक्रिया। आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। और इतनी सारी बातों के साथ उन्होंने ये भी लिख के भेजा कि नींद और नीट पर जो विजय पा लेते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत खूब, सारी बातों के साथ अपनी बात भी इन्होंने लिखकर भेज दी, अपनी जगह का नाम, अपने परिवार का नाम, और बहुत सारी शुभकामनाएं भी, शुक्रिया।

0: और फागुराम यादव जी ने भी अपनी बात हम तक पहुंचाई है। ज्योति यादव, ओजस्वी यादव है संबलपुर कांकेर से, लिख रहे हैं कि कार्यक्रम की प्रस्तुति बहुत शानदार चल रही है, धन्यवाद मैम, शुक्रिया आपका भी कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। नासिर शेख जी ने भी अपनी बात हम तक पहुँचाई है, लिख रहे हैं कि चेतना जी बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज़ सुनाई दी, मन प्रसन्न हुआ, बहुत सुंदर गीतों की झड़ियाँ आपने लगा दी और वाकई में बहुत मज़ा आ रहा है। शुक्रिया।
1: क्या हुई इंतजार की।
0: इसी के साथ साथ सुरेश यादव जी भी कार्यक्रम से जुड़ गए, मुकेश बाटा जी ने भी अपनी बात हम तक पहुंचाई है और ये हमें पटियाला से सुनते हैं। इसी के साथ साथ सतीश अनेजा जी ने भी अपनी बात हम तक बहुत सारे सुंदर शब्दों के साथ लिखकर भेजी है कि चेतना जी बहुत इंतज़ार किया आपका और आपको सुनते ही मेरा दिल खुश हो गया, और साथ साथ लिखते हैं कि तेरा इंतज़ार, हाँ मुझे तेरा इंतज़ार रहता है, हर पल हर घड़ी जागते सोते खाते पीते वक्त बेवक्त बस तेरा इंतज़ार रहता है, कभी गूंजों में तो कभी खामोशी में, कभी नज़रों में तो कभी यादों में, कभी सांसों में तो कभी धड़कन में तेरा इंतज़ार रहता है, कभी किस्सों में कभी कहानी में कभी किताबों में कभी फसानों में बहुत खूब, और कभी प्रार्थना में कभी दुआओं में बस तेरा इंतज़ार रहता है। और बेहद खूबसूरत पंक्तियाँ हैं अंत में कि कभी हवाओं में कभी वादियों में कभी आंधी में कभी बारिश के पानी में और कभी ठंडी में तो कभी गर्मी में तेरा इंतज़ार रहता है। बेहद बेहद शुक्रिया, आपको इंतज़ार था मेरा और मुझे भी इतनी बेसब्री से आप सभी का इंतज़ार था। शुक्रिया आप सभी का संदेश भेजने के लिए।

जी हाँ श्रोताओं, समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 11:38 हो चुके हैं और हम बातें कर रहे हैं इंतज़ार की। खैर, वाकई में इंतज़ार बेहद कहें कि अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन कभी कभी इंतज़ार खूबसूरत भी लगता है, क्योंकि जो उम्मीद होती है ना, वो कभी टूटती नहीं है। उसकी यादों के चरागों को बुझाए कैसे, दिल की सूनी हवेली को सजाए कैसे। वो ना आएगा मगर आस तो लगी रहती है, इस उजड़ती हुई उम्मीद को बचाएं कैसे जनाब।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने की सुना फिल्म आपकी परछाइयों से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत से, मैं हूँ आपके साथ चेतना।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने की सुना फिल्म दो रास्ते से और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना और उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम को आप ज़रूर पसंद कर रहे होंगे। अनिल मोहन जी ने अपना नमस्कार हम तक पहुँचाया, लिख रहे हैं कि हमारी बधाई अवश्य स्वीकार करें। उषा मोहन टिल्लू नायक और मधु नायक हैं पहाड़गंज से, शुक्रिया आपका भी। और इसी साथ में छोटे अंसारी जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुंचाया, लिख रहे हैं कि मोहतरमा जी सब खैरियत है, संभल से छोटे अंसारी जी हैं और लिख रहे हैं कि आपके प्रोग्राम को मेरे दिल से मैंने याद किया, शुक्रिया आपका। और मुझे भी इंतज़ार रहता है अंसारी साहब कि आपका संदेश ज़रूर आया होगा। विनय भान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से, हमें सुनते हैं, ये सीपी दिल्ली में है और लिख रहे हैं कि गुड इवनिंग मैम, आपका बहुत दिनों से इंतज़ार था और वेट कर रहे थे, आप आए तो बहुत खूब और बस आपकी आवाज़ सुन के अच्छा लग रहा है, ये सॉन्ग आपने प्ले किया अच्छा था, बस आप आ गए अच्छा लग रहा है, पूरा प्रोग्राम प्लीज़ मेंशन करें मेरा नाम।

आप जुड़े हुए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से और मीडियम वेव 366.3 मीटर पर आप हमें सुन रहे हैं। कार्यक्रम है फिल्म संगीत का कार्यक्रम है, मैं हूँ आपके साथ चेतना और समय 11:51 हो चुके हैं। संदेशों की तरफ चलते हैं क्योंकि समय थोड़ा कम बचा है हमारे पास आपसे बातें करने के लिए। सतीश अनिजा जी चंडीगढ़ से हमें सुनते हैं और अपनी बात, अपनी दिल की बात हम तक पहुँचा रहे हैं कि 25 दिन से मैं चोटिल हूँ, काफ़ी तकलीफ में रहा हूँ, शिद्दत से आपका इंतज़ार किया, आज इंतज़ार मेरा ख़त्म हुआ और हॉस्पिटल में लगभग ये हमेशा ही प्रोग्राम को ज़रूर सुनते थे और शायद आपकी आवाज़ सुनने को मिल जाए क्योंकि आपकी प्रस्तुति का मैं कायल हूँ। बहुत खूबसूरत आपने संदेश अपना पहुँचाया, लेकिन वाकई में आप तकलीफ़ में हैं ये सुन के अच्छा नहीं लगा। आप जल्दी से ठीक हो जाएं, बस हम यही कामना करते हैं और दुरुस्त होकर आप हमेशा की तरह हमारा प्रोग्राम सुनते रहें सतीश जी, यही उम्मीद कर रहे हैं। रश्मि पांडे जी लिख रही हैं कि चेतना जी थोड़ा जल्दी जल्दी आया करिए। जी मैं अभी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी आकर आपके साथ समय बिताऊँ। दारा सिंह जी हमें हरियाणा से अपने संदेश को पहुँचा रहे हैं। संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा हैं और एक गीत की रिक्वेस्ट इन्होंने भेजी है। उषा मोहन जी ने अपनी बात हम तक पहुंचाई है कि चेतना जी कार्यक्रम में शामिल सभी गीतों का चयन बेहद सराहनीय है, बधाई को स्वीकार करें, शुक्रिया आप सभी का कार्यक्रम को पसंद करने के लिए।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं और समय जो है स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 11:57 हो चुके हैं और लगभग जाने का वक्त, लगभग क्या करें भाई, जाना ही पड़ेगा। छोटे अंसारी जी ने लिखा है कि आज का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा और मैं रात भर जाग सकता हूँ। संभल से छोटे अंसारी जी, बहुत खूब। और गाँव फ्रांसी हिसार से राजकुमार, पुष्पेंद्र और भागवत वर्मा जी हैं। किसी भी गीत में हमारे नाम को शामिल करें, हमने आपके नाम को शामिल कर लिया है जनाब, और उम्मीद करती हैं कि आज का कार्यक्रम आपने पसंद किया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं भेजना ना भूलें, इंतज़ार रहेगा। मिलेंगे आपसे दोबारा से अब अगले बुधवार को, रहेंगे इस ये लगभग एक घंटे के प्रोग्राम में, करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल अपनी दोस्त चेतना को अनुमति दें। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर रात्रि के 12 बजने को है। इन मीटरों पर अब हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। फिलहाल वक्त स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11:59.50 हुए हैं। ठीक 12 बजे प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुम्मिंडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इसमें भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण में ये बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य 24 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही अंतिम मतदाता सूची अब नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन

0: के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमरीका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा, इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। नीदरलैंड्स के अम्स्टल्फेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The Union Cabinet yesterday approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said, with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक, ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari yesterday said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost-effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the 4th edition of the Tunnels and Bridges Conference in New Delhi. He said his ministry would review the existing provisions governing subcontracting of highway works to ensure that contractual requirements are strictly adhered to and that responsibility for quality and timely execution remains clearly with the principal contractor. US Ambassador to India Sergio Gore yesterday described the Union Territory of Jammu and Kashmir as an important part of India and said the governments at the center and in the region have taken significant steps to improve security in the Union Territory. The US envoy was talking to media after holding a meeting with Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah at his residence in Srinagar. Chief Minister Umar Abdullah said the meeting focused on India-US relations and areas where the United States can engage with Jammu and Kashmir. Defence Secretary Rajesh Kumar Singh has concluded his 2-day visit to Armenia. During the visit, he held bilateral meetings with Deputy Defence Minister of Armenia Karin Brutyon and First Deputy Defence Minister and Chief of General Staff of Armenia Edward Arsyan. The Defence Ministry said that the discussions covered the entire gamut of ongoing defence and military technical cooperation, with particular emphasis on capacity building, training, military technical cooperation and defence research and development. It added that the two sides also exchanged the terms of reference for institutionalizing joint services staff talks between the Indian and Armenian armed forces. Bangladesh will hold its presidential election today, with lawmakers set to choose between the ruling BNP stalwart Mirza Fakhrul Islam Alamgir and 11-party opposition alliance candidate Colonel retired Oli Ahmed. The voting will take place for the first time in a presidential election after a gap of 35 years. The voting will be held at the Parliament, Jatiya Sangsad, from 2 p.m. to 5 p.m. today, according to the election.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24/7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में रात के 12:10 हुए हैं। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों जब स्टूडियो की घड़ी में बजते हैं 12:10 और आप इंतजार करते हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा का। आज आपके साथ सुरों का सफरनामा लेकर मैं हूं आपकी अपनी सरिता। आदाब, नमस्कार मेरे प्यारे सुरीले दोस्तों। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो किसको समर्पित है। जी हाँ, आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो समर्पित है हिंदी सिनेमा के उस कलमकार को जिन्होंने शब्दों को न केवल लय दी बल्कि उन्हें जिंदगी के गहरे जज्बातों से बेहद सादगी के साथ कागज पर उतार दिया। हम बात कर रहे हैं अरफन मौला गीतकार और पटकथा लेखक राजेंद्र कृष्ण जी की।

तो जब मदन मोहन जी की धुनें हो, सी रामचंद्रन की मस्ती या हेमंत कुमार का ठहराव हो, तो राजेंद्र कृष्ण के बिना 50 और 60 के दशक की दास्तान अधूरी है। तो कार्यक्रम का आगाज इस खूबसूरत से गीत के साथ करते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज के सुरों के सफरनामा में हमारे कलाकार हैं राजेंद्र कृष्ण जी। तो आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ अपने संदेशों के जरिए, अपने ईमेल्स के जरिए। हमारा मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com ipradiodelhi@gmail.com। जी हाँ, ये वो माध्यम है जिसके जरिए आप साझा कर सकते हैं अपने दिल की बात हमारे साथ, जुड़ सकते हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा में।

दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं गीतकार पटकथा लेखक राजेंद्र कृष्ण जी की। राजेंद्र कृष्ण का जन्म 6 जून 1919 को जलालपुर जट्टन, जो कि अब पाकिस्तान है, वहां पर हुआ था। उनका पूरा नाम था राजेंद्र कृष्ण दुग्गल। हिंदी सिनेमा के महान गीतकार, कवि और पटकथा लेखक राजेंद्र कृष्ण ने 3000 से भी ज़्यादा गाने लिखे। और आज का जो कार्यक्रम है सजा हुआ है राजेंद्र कृष्ण जी के गीतों से।

दोस्तों, शुरुआती दिनों में राजेंद्र जी की जो थे वो शिमला में नगर पालिका में क्लर्क के रूप में कार्यरत थे। एक मुशायरे में उनकी शायरी से प्रभावित होकर उन्हें मुंबई आने की प्रेरणा मिली और यहाँ उन्होंने शुरुआती दिन बहुत ही ज़्यादा संघर्ष भरे बिताए। शिमला से मुंबई आना, जो मुंबई की गलियों में जो आने का सफ़र था, बहुत आसान नहीं था, लेकिन उनकी कलम की तासीर ऐसी थी कि जो एक बार सुन ले वो उनका मुरीद हो जाता था। जब राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार मदन मोहन का मेल हुआ तो भारतीय सिनेमा को गज़लों और नफासत का खजाना मिला। इसकी चमक आज भी पूरी तरह से बरकरार है और फिलहाल जो अगला गीत है वो भी कतार में बरकरार है। सुनिए संगदिल फिल्म का अगला गीत।

दोस्तों, आज के सुरों के सफ़रनामा में हम बात कर रहे हैं राजेंद्र कृष्ण जी की। एक दिलचस्प बात यह है कि राजेंद्र कृष्ण सिर्फ गीतकार ही नहीं थे, बल्कि कई यादगार फिल्मों जैसे पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा, साधना के संवाद और पटकथा लेखक भी थे। उनकी सादगी का आलम यह था कि वो भारी भरकम शब्दों की बजाय आम बोलचाल की भाषा में जिंदगी का सबसे बड़ा सच कह डालते थे। और जो अगला गीत है, खानदान फिल्म से है, इस गीत को एंजॉय कीजिए।

दोस्तों हम बात कर रहे हैं राजेंद्र कृष्ण जी की, और जब बात राजेंद्र कृष्ण जी की हो और फिल्म पड़ोसन का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पड़ोसन की फिल्म की जो फिल्म है ये, इसका जिक्र किए बिना महफिल अधूरी रहेगी। जी हाँ, ये वो फिल्म थी जिसने राजेंद्र कृष्ण जी को खूब पहचान दिलाई। आर डी बर्मन का संगीत और किशोर कुमार के अलड़पन के साथ मिलकर उन्होंने ऐसा खूबसूरत मज़ेदार संगीत रचा कि जो आज की पीढ़ी है उसके चेहरे पर भी मुस्कान बिखेर देती है। तो आइए, अगला जो गीत है पड़ोसन फिल्म का ही है, आनंद लीजिए इसे खूबसूरत से गीत का।

0: गारे गारे
1: जरा बड़ा जी
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल
0: गारे गारे
1: ये हमको बटका
0: गारे गारे
1: ये सूर की तरह जी ये सूर इन्ना आया है तो

0: घोड़ा चतुरा घोड़ा, ये क्या रहा घोड़ा चतुरा घोड़ा चतुरा, एक पे रहना या घोड़ा बोलना या चतुरा बोलना,
1: एक चतुर ना।

दोस्तों राजेंद्र कृष्ण जी को गजल की नफाजत पर गजब की पकड़ थी। जब मदन मोहन की धुनें हों और राजेंद्र जी के अशआर मिलते थे तो हर मिसरा दिल के आर पार उतर जाता था। साल 1965 में फिल्म खानदान के लिए हम बात करें तो राजेंद्र कृष्ण जी को बेस्ट लिरिसिस्ट के जो अवार्ड था, फिल्म फेयर अवार्ड, उससे नवाजा गया था। संगीतकार रवि के साथ उनकी ट्यूनिंग ऐसे खूबसूरत थी कि उन्होंने पारिवारिक रिश्तों, आस्था और प्रेम को बहुत ही पाकीज़ा अंदाज में पिरोया। और फिलहाल एक और गीत पिरोकर लाए हैं हम आपके लिए इस शुरू के सफ़रनामा की माला में। तो अगला गीत फिल्म नागिन से है।

दोस्तों राजेंद्र कृष्ण जी की बहुत से संगीतकारों के साथ ऐतिहासिक जुगलबंदी रही, जहां 1950 के दशक में सी रामचंद्रन के साथ उनकी जुगलबंदी रही, वहीं मदन मोहन के साथ, हेमंत कुमार, रवि के साथ उनकी जोड़ी को खूब सराहा गया। 1960 से 70 के दशक में आर डी बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ उन्होंने चुलबुले और सिचुएशनल गीत लिखे। राजेंद्र कृष्ण जी न केवल गीतकार थे बल्कि एक कुशल, सफल और महान लेखक भी थे। उन्होंने पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा, गोपी और साधना जैसी बहुत सारी हिट फिल्मों के लिए पटकथा और संवाद भी लिखे थे।

दोस्तों अब हम बात करें राजेंद्र कृष्ण जी के पुरस्कारों की और सम्मान की, तो 1966 में फिल्म खानदान के लिए अमर जो भक्ति गीत था उसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था, और 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उन्हें विशेष सम्मान दिया गया था, जब महात्मा गांधी के निधन के पश्चात उन्होंने एक ऐतिहासिक गीत लिखा था, सुनो सुनो ये दुनिया वालों बापू की अमर कहानी। इस गीत के लिए उन्हें विशेष पुरस्कार दिया गया, और 1960 और 70 के दशक में वे हिंदी सिनेमा के सबसे सफल और सबसे अधिक पारिश्रमिक पाने वाले गीतकार लेखकों में शुमार रहे।

दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि राजेंद्र कृष्ण जी ने AVM स्टूडियो के लिए 18 फिल्में तमिल में लिखी थी और उनकी जो अंतिम फिल्म थी अल्लाह रखा 1986 में आई थी, जबकि दो ही साल बाद 23 सितंबर 1987 में मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले वह आग का दरिया के लिए लिख रहे थे और यह फिल्म उनकी मृत्यु के दो साल बाद 1990 में प्रदर्शित की गई थी। तो हम आज का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से समर्पित था राजेंद्र कृष्ण जी पर। उन्होंने अपने पीछे 300 से भी ज़्यादा फिल्मों के लिए गाने लिखे, हजारों अमर नगमे, यादगार पटकथाएं और न जाने कितनी समृद्ध विरासत वो छोड़ गए अपने पीछे।

तो दोस्तों, आज का सुरों का सफरनामा का सफर यहीं तक। फिर किसी दिन, फिर किसी मोड़ पर होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और जुड़े रहिए एआईआर लाइव न्यूज 24/7 चैनल के साथ। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 1 बजने को है। अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमीडी पुंडी कुदूर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण में ये बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का काम 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। नीदरलैंड्स के अम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: to finish with a maiden 10-wicket match haul in only his second test. The 24-year-old has also become the youngest Indian spinner to take 10 wickets in an overseas test. Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu has said that the government aims to triple the country's air cargo volume by 2030. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24/7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में रात के 1:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे गोल्डन एरा। जी हाँ, ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए गोल्डन एरा के वो खूबसूरत गीत जो हमेशा सदाबहार रहती है। और आज के इस गीत सुनहरे कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी दोस्त सरिता। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म CID के इस गीत के साथ। आवाजें हैं शमशाद बेगम की। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत दिया है OP नय्यर साहब ने।

गीत है फिल्म चोरी चोरी से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की, संगीत है जय शंकर जयकिशन का और गीतकार हैं शैलेंद्र।

अभी आपने सुना फिल्म राम और श्याम का ये गीत, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी की थी। आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है रामपुर का लक्ष्मण, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

गीत सुनहरे कार्यक्रम में लीजिए सुनिए आखिरी गीत। फिल्म का नाम है सीता और गीता, आवाजें आशा भोसले और किशोर कुमार की हैं। इस गीत के साथ ही अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 2 बजने को हैं। आप समाचार सुनिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमिडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोनों मंत्री मेक इन इंडिया ढांचे के तहत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजपूत ने कहा, केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन को ब्रिटेन के सैन्य समर्थन को लेकर चेतावनी दी है और कहा है कि रूसी क्षेत्र पर हमलों में ब्रिटिश मिसाइल बलों की सीधी भागीदारी युद्ध में सहभागिता के समान है। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2027 का शुभारंभ 17 अगस्त से 30 सितंबर तक चलने वाली विकसित भारत प्रश्नोत्तरी के साथ हो गया है। ये संवाद पूरे देश के युवाओं के लिए नेतृत्व, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की एक सुनियोजित और योग्यता पर आधारित यात्रा में भाग लेने का अवसर है। नीदरलैंड्स के अम्सटलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 2:10 हुए हैं और श्रोता, ये वक्त है कार्यक्रम गीत बहार का। आज के गीत बहार कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ सरिता, लाई हूँ आपके लिए नॉन स्टॉप धमाकेदार फिल्म म्यूजिक। कार्यक्रम का आगाज कुमार शानू और संजीवनी की आवाज के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। गीत बहार कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 3 बजने को है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।

0: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले चार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले चार प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक, ये फोर लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की चार मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की चौथी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की चौथी लाइन, गुमिडी पुंडी गुदूर की तीसरी और चौथी लाइन, कटक पारादीप की तीसरी और चौथी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोनों मंत्री मेक इन इंडिया ढांचे के तहत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने, रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। मिजोरम की न्यायिक अधिकारी हेलियन डांगलियानी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जज नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जज बनने वाली दूसरी मिजो महिला हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल की तराई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स में आम्सटलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The Union Cabinet yesterday approved 5 projects worth 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, The Union Cabinet, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said, with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
0: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक, ये 4-लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
2: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari yesterday said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the 4th edition of the Tunnels and Bridges Conference in New Delhi. He said his ministry would review the existing provisions governing subcontracting of highway works to ensure that contractual requirements are strictly adhered to and that responsibility for quality and timely execution remains clearly with the principal contractor. Union Home Minister Amit Shah will chair the Southern Zonal Council SZC meeting today in Mahabalipuram, Tamil Nadu. The council comprises the states of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Telangana and the union territories of Puducherry, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. The meeting will be attended by the lieutenant governors, chief ministers and administrators of the member states and union territories of the southern region along with 2 senior ministers from each state. Union Minister Kiran Rijiju has termed the claim as false that China has entered 60 kilometers into Arunachal Pradesh. In a social media post, Mr. Rijiju said, photos and videos from Bangladesh were being used to falsely portray Chinese entry into Arunachal Pradesh. He said such claims could demoralize army personnel guarding the border and create unnecessary confusion. The minister said that the India-China border issue is a serious matter and appealed to people to not make any false or unverified claims on such a sensitive issue. Defence Secretary Rajesh Kumar Singh has concluded his 2-day visit to Armenia. During the visit, he held bilateral meetings with Deputy Defence Minister of Armenia, Karen Rutyan, and First Deputy Defence Minister and Chief of General Staff of Armenia, Edward Azarian. The Defence Ministry said that the discussions cover the entire cabinet of ongoing defence and military technical cooperation with particular emphasis on capacity building, training, military technical cooperation and defence research and development. Bangladesh will hold its presidential election today with lawmakers set to choose between the ruling BNP stalwart Mirza Fakhrul Islam Alamgir and 11-party opposition alliance candidate Colonel retired Auli Ahmed. The voting will take place for the first time in a presidential election after a gap of 35 years. In hockey, India registered a comprehensive 5-3 victory over arch-rivals Pakistan in the final Pool D encounter of NENT's FIH World Cup at Amstel Wien in the Netherlands yesterday to qualify for the second round. The defeat ended Pakistan's campaign into the group stage. India registered a commanding 165-run victory over hosts Sri Lanka in the first test in Galle yesterday to take a 1-0 lead in the 2-match series. Sri Lanka, chasing a target of 372 runs for victory, were bowled out for 206 during the post-lunch session on the 5th and final day. Indian left-arm spinner Manas Sathar was the architect of India's victory, taking 6 wickets in the second innings to finish with a maiden 10-wicket match haul only in his second test. The 24-year-old also became the youngest Indian spinner to take 10 wickets in an overseas test. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। वक्त है गीत गजल कार्यक्रम का।

आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस बहुत ही प्यारी सी गजल के साथ, जिसे गाया है मिताली ने।

उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन, आप सुन रहे हैं गीत गजल कार्यक्रम। अभी आपने कामचोर फिल्म से इस गीत को सुना, आइए अब सुनते हैं एक और प्यारी सी गजल।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

गीत गजल कार्यक्रम में हमने अगला गीत या अगली गजल ली है फिल्म पिंजर से, स्वर जगजीत सिंह और प्रीति उत्तम के हैं।

आप सुन रहे हैं गीत गजल कार्यक्रम। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त हूँ। अभी आपने ये गजल सुनी, ये गीत कहें फिल्म पिंजर से, जगजीत सिंह और प्रीति उत्तम की आवाज में। उम्मीद करता हूं आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है। कोशिश यही कि आपकी पसंद और हमारी पसंद एक रहे, और गजलें और गीत तो ऐसे होते हैं जो सबको पसंद आते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, जिनमें एक इत्मीनान है, जिनमें एक सुकून है, जिनके अंदर एक ऐसा जज्बात है जो जिंदगी को अपनी तरह सुनाई देता है। जो संगीत है वो ये दर्शाता है या ये कहता है कि सरोकार तुमसे है, सरोकार मुझसे है। कार्यक्रम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत गजल कार्यक्रम। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। ये थी कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। यह आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। प्रातः के 4 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है अर्चना।

अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम में।

0: अब आज का अर्चना कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में

अब सुनते हैं उषा विजय कुमार को राग चारुकेशी में वाद्य गुट्टू।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज। डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज बृहस्पति वार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 अगस्त सन 2026 सुबह के 4:54 और 24 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की हम आपको जानकारी दे दें। अब से कुछ ही देर बाद आप प्रातः 5 बजे सुनेंगे हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार। का समय रहेगा आओ योग करें कार्यक्रम का, जिसके अंतर्गत आज आप समझेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। पांच बजकर 20 मिनट पर आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत। भारतीय सुगम संगीत के कार्यक्रम में 5:30 का समय स्वर रंजनी कार्यक्रम का है, जिसमें फयाज वसीफुद्दीन डागर के स्वर में आप सुनेंगे राग भटियाल।

0: हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी हिंदी और अंग्रेजी समाचारों के साथ सुबह 6 बजे और 6:05 पर। 6:10 का समय वंदना कार्यक्रम का है और 6:40 पर आप सुनेंगे चिंतन राजा राम मोहन राय के विचार। 6:45 का समय रामचरितमानस से अयोध्या कांड भाग 23 आप सुन सकते हैं। श्रोताओं, इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की ये थी संक्षिप्त जानकारी। प्रातः के 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 5:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल में 13,031 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमुंडी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारदीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर रेल मार्ग की वृद्धि होगी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप,

0: समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इससे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय 24 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब इस महीने की 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर होगी। इन आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद 4 नवम्बर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। झारखंड में 26 दिनों से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षा रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें JPSC सिविल सर्विस और JSSC CGL भी शामिल है। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। सरकार के इस फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रभावित हुई है। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और अब खेल खबरें। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडेम में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। उधर श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन पर सिमट गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में कुछ हिमालय के तराई क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देर रात बारिश हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with a total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं।
3: 5 मेजर डिसीजंस हैव बीन टेकन। द फर्स्ट 4 प्रोजेक्ट्स आर रिलेटेड टू द रेलवेज, व्हाइल द 5th इज अ हाईवे प्रोजेक्ट। द फर्स्ट 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स इंक्लूड द क्वाड्रपलिंग ऑफ द हावड़ा चेन्नई मेन रेलवे रूट एंड द क्वाड्रपलिंग ऑफ द कटक पारादीप रेलवे लाइन। द 5th प्रोजेक्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 4-लेन हाईवे फ्रॉम मुजफ्फरपुर वाया सीतामढ़ी टू सोनबरसा। दीस प्रोजेक्ट्स विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 13,041 करोड़ रुपीज वर अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट टुडे।
2: टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: Mr. Vaishnaw informed that the cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of National Highway 22 in Bihar to 4-lane standard at a total capital cost of over 3,590 crore rupees. Union Minister Kiran Rijiju has termed the claim as false that China has entered 60 kilometers into Arunachal Pradesh. In a social media post, Mr. Rijiji

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और

रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएं। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। आज बात करेंगे अर्धमत्स्येन्द्रासन की। अर्धमत्स्येन्द्रासन को हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो अर्धमत्स्येन्द्रासन तीन शब्दों के मेल से बना है, अर्ध, मत्स्य और इंद्र। अर्ध मतलब आधा, मत्स्य यानी मछली और इंद्र मतलब भगवान। अर्धमत्स्येन्द्र का अर्थ है शरीर को आधा मोड़ना या घुमाना। अर्धमत्स्येन्द्रासन आपके मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के लिए अत्यंत लाभकारक आसन है। यह आसन सही मात्रा में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, अथवा जननांगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। यह आसन रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। अर्धमत्स्येन्द्रासन की प्रक्रिया को आपको समझाते हैं। सबसे पहले पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। दोनों पैरों को साथ में रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। अब बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने कूल्हे के पास रखें, या आप बाएं पैर को सीधा भी रख सकते हैं। दाहिने पैर को बाएं घुटने के ऊपर से सामने रखें। बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें और दाहिना हाथ पीछे रखें। कमर, कंधों व गर्दन को दाहिनी तरफ से मोड़ते हुए दाहिने कंधे के ऊपर से देखें। रीढ़ की हड्डी सीधी ही रखें। इसी अवस्था को बनाए रखें। लंबी गहरी साधारण सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए पहले दाहिने हाथ को ढीला छोड़ें, फिर कमर, फिर छाती और अंत में गर्दन को ढीला छोड़ें। आराम से सीधे बैठ जाएं। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ दोहराएं। अर्धमत्स्येन्द्रासन के लाभ। इससे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है। छाती को फैलाने से फेफड़ों को ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलती है। अर्धमत्स्येन्द्रासन में रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ता है।
जिससे उसकी कार्य

0: कुशलता में सुधार होता है। पीठ में दर्द और कठोरता से राहत मिलती है। यह आसन छाती को खोलता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। अर्धमत्स्येन्द्रासन बाहों, कंधों, ऊपरी पीठ और गर्दन में तनाव को कम करता है। अर्धमत्स्येन्द्रासन स्लिप डिस्क के लिए चिकित्सीय है, लेकिन यह आसन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। यह आसन पेट के अंगों की मालिश करता है और पाचन में सुधार लाता है, जिससे कब्ज जैसी स्थिति में लाभ होता है। अग्नाशय के लिए लाभदायक है, मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी है अर्धमत्स्येन्द्रासन। यही आसन डायबिटीज, कब्ज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मूत्रपथ विकारों, मासिक धर्म की परेशानियां और अपच के लिए चिकित्सीय है। अर्धमत्स्येन्द्रासन के दौरान कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान यह आसन वर्जित है, नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जिनके दिल, पेट या मस्तिष्क की ऑपरेशन की गई हो, उन्हें अर्धमत्स्येन्द्र आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। उनके लिए भी आसन वर्जित है। पेप्टिक अल्सर या हर्निया वाले लोगों को यह आसन बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसी तरह अगर आपको रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट या समस्याएं हैं, तो आप यह आसन ना करें। हल्के स्लिप डिस्क में इस आसन से लाभ हो सकता है, लेकिन गंभीर मामलों में इसे नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी इसी चैनल पर, इसी समय। योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम स्वर रंजनी, फयाज वसीफुद्दीन डागर के स्वर में राग भटियार आप सुनेंगे।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।